0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।

नमस्कार, रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सब दोस्तों का स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। जिंदगी के इस सफर में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे साथ आते हैं, वो है कर्म। दोस्तों, कर्म सत्कर्म हो या फिर बुरे कर्म या विकर्म हो, लेकिन कहा जाता है कि आत्मा के साथ और कोई नहीं जाता, लेकिन कर्म सदैव उसके साथ ही रहते हैं, और जैसा कर्म वैसा फल। और इसीलिए भारतीय

0: संस्कृति में कर्म फल का सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है, इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। हर कर्म, चाहे वो सोचना, चाहे वो बोलना, चाहे वो कर्म करना, कर्म के खाते में ही जमा होता है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति का सिद्धांत कर्म पर ही आधारित है, या कर्म सिद्धांत को भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज कर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे पास उपस्थित है ज्ञानेश्वर जी। हम रेडियो मधुबन की तरफ से उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, सुस्वागतम, वेलकम।
1: थैंक यू भक्ति जी, और गुड मॉर्निंग आपको भी और हमारे सब श्रोतागण को भी।
0: थैंक यू। कहा जाता है कर्म ऐसे करो कि कभी कर्म कूटना ना पड़े, या इस कर्म क्षेत्र पर हम जो रहते हैं उस कर्म क्षेत्र पर कर्म के बिना रह नहीं सकते, चाहे वो श्वास लेना भी कर्म है। तो ये कर्म की गति बड़ी गुह्य है ज्ञानेश्वर जी, ऐसे सुना है कि कर्म की गति बड़ी गुह्य है, परंतु अगर उस गुह्य गति को हम सहज कर दे, आसान कर दे, तो फिर एक एक इंसान कर्म के प्रति जागरूक होगा, और कर्म कैसे करने हैं ये जानने के बाद उसके कर्म बड़े अच्छे होंगे। आप इस कर्म सिद्धांत के बारे में क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये कर्म सिद्धांत या कर्म के बारे में जो हम चिंतन करते हैं, तो पहले कर्म के बारे में आपने बहुत अच्छा व्याख्या भी दी, लेकिन कर्म जब हम शब्द सुनते हैं तो पहले मुझे याद आता है कर्म के विषय पर गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और काफी प्रसिद्ध श्लोक है वो। और ये श्लोक हमें कर्मों के ऊपर बहुत कुछ ज्ञान देता है, बहुत कुछ सावधानी देता है, और बहुत कुछ जानकारी देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, आपने जो शब्द यूज किया था कर्म फल, अगर हर कर्म का फल है तो ये गीता का श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर भी हमें विषय पे चिंतन करना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये मा फलेषु कदाचन, ये जो कहा है, अगर हर कर्म का फल है तो ये जो कहा है मा फलेषु कदाचन, उसके प्रति क्या भाव होगा, आपको क्या लगता है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि कर्म करो, नेकी करो और दरिया में डालो, अर्थात कर्म करो लेकिन उसकी अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन जो है वो आज हम रखते हैं कि अगर मैंने किसी को मदद की है, कहाँ न कहाँ सूक्ष्म रूप में मेरे मन में वो नोट हो जाता है कि मैंने फलाने फलाने आदमी की मदद की है, अगर कभी मुझे मदद की आवश्यकता है तो यह मुझे ज़रूर मदद करेंगे, और यहाँ ही हम फंस जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जैसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक किताब में ये जो वचन है जो सब जानते हैं और कभी कभी मुख से निकलता भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हम कर्म पर हमारा अधिकार होना चाहिए लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो आज की कलियुगी मानव की एक सहज और स्वाभाविक क्रिया हो गई है कि हम बोलते बोलते कहते हैं और फिर जब हम अपेक्षा करते हैं और वह अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तब फिर हमें जो दुख पहुंचता है वह दुख ना पहुंचे, इसके लिए शायद भगवद गीता में भगवान ने ये बात कही होगी, ऐसा मेरा खुद का विचार है, परंतु इसकी दूसरी भी एक बाजू हो सकती है, पक्ष हो सकता है। बात यह है कि हमें इस पर भी सोचना है, और कर्म की अपेक्षा भी हम छोड़ेंगे, वो भी एक प्रैक्टिस से हमें आ सकता है। लेकिन कर्म हमारे ऐसे हो जो कर्म हमें कभी कूटने न पड़े, अर्थात पश्चाताप उसका न हो, यह विषय मैं समझती हूँ ज़्यादा गहरा है। और उस विषय में चर्चा करने से, उस विषय में समझ पाने से हमारे दोस्तों को, हमको ज़्यादा लाभ हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है।
1: तो कर्म कूटना जो है, कर्म कूटना जो हमने कहा शब्द का प्रयोग किया, तो उसके पहले कर्म और कर्म का फल, इसके बारे में हमें चिंतन करना है। इसलिए मैंने जो आपको प्रश्न पूछा था कि गीता में जो वर्णन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल की अगर अपेक्षा नहीं करनी है, लेकिन कर्म फल अगर निश्चित है, तो ये कर्म क्या है, उसका फल क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है। और आपने जैसे बहुत अच्छा कहा कि कर्म फल का अपेक्षा को त्यागना ये सुख के लिए रास्ता है, क्योंकि अगर मैं कर्म करता हूँ और फल की अपेक्षा करता हूँ तो शायद मैं दुख के बीज भी बोता हूँ, ऐसे कहा जाता है। तो ये कर्म फल जो है, वो मुझे जो लगता है, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। कई कर्म ऐसे होते हैं कि अनजाने में हम कुछ कार्य करते हैं, और अगर अच्छी कंडीशन मिल गई, अच्छी परिस्थिति निर्माण हो गई, तो ये अनजाने में किए हुए कर्म भी हमें अच्छा फल देते हैं। उसका हमें भी लाभ होता है और लोगों को भी लाभ होता है। और ऐसे कई कर्म जो है, उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ तो देखिए, पक्षी होता है और पक्षी कुछ फल खाता है, पक्षी फल खाता है, उसमें कर्म की जो भावना है वो उसे कुछ मिलता है, इसलिए वो खा लेता है। अभी उसकी जब विष्ठा हो जाती है, तब विष्ठे में से जो फल का जो बीज है वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और वो बीज विष्ठा के रूप में जमीन के ऊपर आके गिर जाता है। अभी उसने कर्म किया, उसका उद्देश्य क्या था कर्म करने का, फल खाने का, उसने फल खाया और विष्ठा के रूप में वो जमीन पे गिर गया। उसमें कर्म करते समय उसकी ये प्रेरणा नहीं थी या ये भावना नहीं थी कि मैं किसी का कल्याण कर रहा हूं, उसने नैसर्गिक कार्य किया, और नैसर्गिक कार्य करने के बाद वो विष्ठा संयोगवश अच्छे जमीन पे गिर गई, जहां परिस्थिति उसे अनुकूल थी, और ये अनुकूल परिस्थिति के वश उस बीज से वृक्ष पैदा हो गया। अभी उस बीज से जब वृक्ष पैदा हो गया, तब उसी वृक्ष बाद में उसी पक्षी का सहारा भी बन सकता है। उसी पक्षी का सहारा तो बनता ही है, और उसके ही फल खाने के लिए उसका वो अन्न भी बन सकता है। इसके ऊपर भी हमें चिंतन करना है।
0: बहुत खूब। ये जो आपने कहा कि अनजाने में भी अगर हमारे ऐसे कर्म हो, तो हो सकता है कि उस कर्म का फल जो है वो आगे जाकर हमारे लिए लाभदायक हो। प्रश्न है, जाने अनजाने में किए हुए भी कर्म क्यों न हो, लेकिन वो कर्म हमारे साथ कैसे आते हैं, और आज पूरा जीवन जो है मनुष्य का वो कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है, जो मानव समझना चाहता है। और कई जगह आध्यात्मिक किताबों में ऐसा रेफरेंस आता है कि कर्म की गति अति गुह्य है, परंतु अगर गुह्य गति को हम नहीं जानेंगे, तो फिर उस गुह्यता को न जानने के कारण हो सकता है कि हमारे से कोई गलत कर्म हो बैठे। हम इस बात को ज़रूर इस भाव से देखेंगे जो हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और इस कर्म को जानने के बाद अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो ये निश्चित है कि उसका फल अच्छा होगा, प्राप्तियाँ अच्छी होगी, और हम उस कर्म के फल को समझकर और अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम उसी टॉपिक को फिर से आगे बढ़ाते हैं, कर्म जो हमारे एक स्वाभाविक रूप से होते हैं वो, और दूसरा जो है हम औरों के संग में आकर करते हैं वो, और तीसरा है जो हमारे संस्कार बन जाते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप हमें बता रहे थे कि उस पक्षी का उदाहरण देके, दृष्टांत देके, कि किस प्रकार से कोई कर्म जो है वो हमारे आगे के लिए निमित्त बन जाते हैं, उसका फल हम अच्छी तरह से पाते हैं। हम जिंदगी में कैसे कर्म करें, जो आपने इस दृष्टांत के द्वारा बताना चाहते हैं।
1: देखिए, ये जो पक्षी का उदाहरण हम देख रहे थे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो ये पक्षी को ये मालूम नहीं है कि वो कुछ अच्छा कर्म कर रहा है, और वो नैसर्गिक कर्म उसने किया, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उस कर्म के उसे फल मिल गए। पक्षी ने ये सोचा नहीं था कि उसमें फल क्या चाहिए। फल की त्यागना और फल की जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि कर्म की जानकारी उसे नहीं थी, कर्म की ही जानकारी नहीं थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई और उस परिस्थिति का फायदा उसे मिला, क्योंकि उसने कर्म भी किया था। और सिर्फ उसे नहीं मिला, उसके जैसे अनेक पक्षी जो है वो भी उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उसका जैसे वृक्ष पैदा हो गया तो उस वृक्ष पे बहुत सारे पक्षी रह सकते हैं, उस वृक्ष के जो फल है वो बहुत सारे पक्षी खा सकते हैं, और फिर उससे अनेक वृक्ष भी पैदा हो सकते हैं। तो ये एक कर्म जो है, भले वो अनजाने से किया है, लेकिन अगर अच्छा है और परिस्थिति भी ऐसे निर्माण होती है, तो फिर वो कर्म जो है वो फल देता है। अगर उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं है और वो किसी पत्थर पे जाके गिर गया, तो क्या होगा?
0: वेस्ट होगा।
1: वो वेस्ट भी नहीं होगा, वो पत्थर पे जाके गिर गया और वो बीज स्वरूप में ही टिक गया। पत्थर पे है, बीज रूप में है, और कई महीनों के बाद या कई सालों के बाद कुछ कारणवश वो अगर जमीन पे गिर जाता है, उस समय परिस्थिति उसे अनुकूल हो जाती है और उस समय उसका वृक्ष पैदा होता है, तो भी वो फल देता है, लेकिन तुरंत नहीं देता, कुछ सालों के बाद मिल जाता है। वैसे हमारे कर्म जो है वो चाहे जाने अनजाने में होते हैं, अगर अच्छे होते हैं तो उसके फल हमें मिलते हैं, तुरंत मिलते हैं, और परिस्थिति वश जो है उस समय अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो बाद में भी मिल सकते हैं, और लेकिन फल मिलना जरूरी है, और फल तो मिलते ही है।
0: हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो विज्ञान का जो लॉ है वो कहता है, साइंस का लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ओन रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया तो है ही, तो क्रिया तो हम इस शरीर को प्राप्त करने के बाद तुरंत करते हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी है, तो इसको हम कैसे समझें और हमारे आज के जो कर्म हैं वो किस प्रकार से सुचारू हो?
1: हमारे आज के जो कर्म हैं वो कर्म हमें करने हैं, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। जो आपने कहा कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं एक्शन करता हूँ तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए, लेकिन हर कोई एक्शन का रिएक्शन जो है वो उसी हिसाब से नहीं होता। मेरे कर्म जो है, कर्म अगर मैंने बुरा किया तो क्या होगा? बुरा फल मिलेगा मुझे, अच्छा किया तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वो जो अच्छा फल मिलेगा वो कभी तुरंत भी मिल सकता है, कभी बाद में भी मिल सकता है। वैसे बुरा फल भी जो है वो कभी तुरंत मिल सकता है, कभी बाद में भी मिल सकता है, और फिर हम भ्रमित होते हैं। कभी कभी ऐसे हम देखते हैं जिंदगी में कि कई लोग हम देखते हैं कि जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें फल अच्छा मिलता है, और फिर हम मुंज जाते हैं कि उसने तो बुरे कर्म किए और उसे अच्छा फल कैसे मिला। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगता है कि उसका उत्तर, उसका जवाब ये है कि शायद जिन्होंने पहले बीज बोए थे उसका फल जो आप वे खा रहे हैं और अभी जो कर्म किए हैं उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, उसे अनुसार परिस्थिति अनुसार फल निष्पत्ति नहीं हो रही है, इसलिए जब परिस्थिति आएगी उस समय उसे फल मिलेगा।
0: बिल्कुल, सिर्फ बात यह होती है कि हम बहुत क्षणिक सोचते हैं। जैसे कि आपने कहा कि उस बीच का उदाहरण दिया, वो वैसे ही थोड़े समय पत्थर पर ही टिका रहा और बाद में वह जमीन पर गिरा। शायद हमारा भी ऐसे होता है कि हम पेशेंस नहीं रखते हैं और इसीलिए हमको लगता है कि जब से मुझे याद है तब से तो मैंने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरी इस प्रकार की नसीब में ये बातें क्यों आई। और इसीलिए ये कर्म सिद्धांत तो जो है, ये कर्म सिद्धांत तो मैं समझती हूँ केवल भौतिक दुनिया में ही नहीं है लेकिन

0: इसका जो बल है वो विचारों तक जाता है। विचार, शब्द, कार्य तीनों में ये लागू होता है। तो हमें सोचना है, पहले इस बात में हमें चर्चा करना है कि कर्म का प्रभाव हमारे विचारों पर कैसा हो, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो ये पहले तो शुरू कहाँ होता है, कोई भी क्रिया करनी है हमें तो उसकी शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो होता है हमारी संकल्प शक्ति पर। तो सोचना भी एक कर्म है, यह बात ही कई लोग समझते नहीं हैं। बुरा सोचा तो क्या हुआ, अभी तक हमने हाथों से तो बुरा नहीं किया है। तो उसकी जो जड़ है वो शुद्ध हो जाए, वो पवित्र हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
1: ये जो कर्म जो है, कर्म जो आपने कहा कि हमारा विचार जो है वो कर्म की शुरुआत है, और ये बिल्कुल सही है कि हर कर्म के पीछे पहले आपका संकल्प रहता है। अगर हमें कर्म को सुधारना है, अगर हमारे कर्मों में परिवर्तन लाना है, क्योंकि कर्मों में परिवर्तन क्यों लाना है, क्योंकि हमें फल प्राप्ति में परिवर्तन लाना है। हम फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, वो तो बिल्कुल सही है, अभी अपेक्षा नहीं करेंगे, लेकिन उसकी जिद नहीं करेंगे। ये अपेक्षा का मतलब है जिद नहीं करेंगे, और अगर फल प्राप्ति नहीं होती है तो हम दुख नहीं करेंगे, जिद होती है तब दुख आता है। उसका उदाहरण मैं देता हूँ, किसान है, किसान बीज बोता है, किसान बीज बोता है तो कर्म करता है ना, कर्म करता है, मेहनत भी करता है, जमीन की बहुत अच्छी देखभाल करता है, उसको हल चलाता है, घास जो है वो निकाल देते हैं, और बहुत अच्छी देखभाल करने के बाद उसमें बीज बोता है, उसमें धान भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाथ आते आते कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसने जो मेहनत की वो बिना फल के आसक्ति के की। जब वो बीज बोता है उसकी अपेक्षा ये है कि फसल अच्छी हो, ये अपेक्षा करना भी गलत नहीं है। अगर कोई पूछता है तो कर्म फल की आसक्ति रखनी नहीं है, कर्म फल इच्छा को त्यागना है, तो इच्छा को त्यागना और आसक्ति को त्यागना उसमें अंतर है। कोई भी इच्छा है उसे त्यागना, इसका मतलब ये नहीं आसक्ति को त्याग लिया। शास्त्रों में जो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें फल की आसक्ति को त्याग, मुझे यह लगता है इच्छा को त्यागना है। अगर विद्यार्थी परीक्षा में परीक्षा देता है, हर साल में परीक्षा देता है, एग्जाम पास होता है, तो जब स्कूल में विद्यार्थी जाता है, एग्जाम को बैठता है, तब उसको इच्छा तो है ही ग्रेजुएट बने, अच्छा नौकरी मिले, अच्छा धंधा करे, अच्छा ज्ञान प्राप्ति हो, लेकिन आसक्ति और इच्छा में अंतर है, और जहां इच्छा को आसक्ति में परिवर्तन हो जाता है वहां दुख है, ऐसे मुझे लगता है।
0: मतलब अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें मोह नहीं होना चाहिए। तो ये शब्द बहुत अच्छा है कि आसक्ति, कोई भी चीज की जब आसक्ति होती है तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और हमें दूसरा कोई भी सोचता नहीं है। परंतु विद्यार्थी के लिए अच्छे मार्क्स की उम्मीद रखना, इच्छा रखना, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसी प्रकार से हमें कर्मों के बारे में भी ये बात को हम कैसे ला सकते हैं, और फिर हमारे कर्म आसक्तिवश होकर जब हमें ही दुख देते हैं, या हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं, लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, इन सब बातों का हल निकालना चाहिए, और हल निकालने के बाद हमारा जीवन सचमुच ही बहुत ही सुखदायी दूसरों को भी और खुद को भी होगा, ये निश्चित है। लेकिन दोस्तों अब समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते।

0: वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आसक्ति जब मन में है तब दुख भी आ सकता है या नाराजी भी आ सकती है, लेकिन इस आसक्ति का त्याग इतना सहज नहीं लगता और फिर हम उसको कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं या कहते हैं इतना सा तो हमने किया तो क्या हुआ। लेकिन ज्ञानेश्वर जी आप हमें बता रहे थे कि आसक्ति जो है वो मनुष्य को कभी अच्छा नहीं बनने देती, तो ये आसक्ति और इच्छा इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और फिर हमारे कर्म ऐसे होंगे जो आप कहते हो कि कर्म करना है लेकिन वो सत्कर्म हो जाए, इसके बारे में आप क्या बताते हो?
1: देखिए आसक्ति और इच्छा जो है उसमें जो अंतर है, मैं उदाहरण देता हूँ। कोई विद्यार्थी है वो परीक्षा के लिए बैठता है, परीक्षा रिजल्ट आती है, पढ़ाई बहुत करता है, अच्छी पढ़ाई करता है, रिजल्ट आती है और उस समय कुछ कारण की वजह से, चाहे वो बीमार पड़ गया हो या उसे एग्जाम में ठीक तरह से तबीयत ठीक न होने के कारण उसने ठीक तरह से पेपर नहीं लिखा हो या कोई भी वजह हो, उसने पढ़ाई अच्छी की, उसका उद्देश्य अच्छा था, इंटेंशन बहुत गुड, पढ़ाई अच्छी की थी, उद्देश्य अच्छा था, लेकिन कुछ कारणवश उसे रिजल्ट अच्छा नहीं निकला। अगर उसे आसक्ति है तो वो अच्छा रिजल्ट जो आया था या गलत रिजल्ट जो आया, मीन्स उसके अपेक्षा अनुसार नहीं आया, वो रिजल्ट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और कई हम ऐसे इंसिडेंट देखते हैं, कई घटनाएं देखते हैं कि जो रिजल्ट आउट होने के बाद, दसवीं हो या बारहवीं हो या और कोई परीक्षा हो, ये परीक्षा में जब फेल हो जाता है तब वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, देखते भी हैं हमारे इर्द गिर्द। अभी मुझे ये लगता है कि इच्छा हो रख के परीक्षा देना अलग है, उसमें अगर फेल्यूर भी आ गया तो बहुत बड़ी फिर मेहनत से फिर वो उसमें यश प्राप्त कर सकता है, उसमें तरक्की पैदा कर सकता है। लेकिन आसक्ति जब हो जाती है तब वो ऐसे हादसे को या ऐसी घटना को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता और फिर वो ऐसे कई सुसाइड जैसी घटना को उसको परिणाम देता है। मुझे लगता है ये फर्क है इच्छा और आसक्ति में, और इसलिए हमें इच्छा रखना कोई गलत बात नहीं है लेकिन आसक्ति नहीं रखना चाहिए। और जैसे आपने बिल्कुल कहा कि आसक्ति, जहाँ आसक्ति है वहाँ मुश्किलें आ सकती है, और ये मुश्किलें कभी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और फिर कर्म का जो फल है वो भी गलत या सही कर्म आपको मिल सकता है।
0: ये आपने बहुत अच्छा कहा, पर फिर भी हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं उनमें युवा होंगे और उनके मन में एक प्रश्न ऐसा भी आता होगा कि आसक्ति रखना नहीं है ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंज अगर हमने स्वीकार किए या मुझे इतना ही ऐसे ही होना है यह बात को स्वीकार किया तो इसमें गलत क्या है?
1: ये तो स्वीकार करना है, उसमें गलती बिल्कुल नहीं है। देखो गलती नहीं है, हमें जिद रखना है, हमें अच्छे संकल्प करने हैं, उसमें बिल्कुल ही गलत नहीं है। उल्टा मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास अच्छे संकल्पों का खजाना चाहिए। अगर मुझे विजन रखना है तो मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, ये विजन रखना चाहिए। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं टाटा बिरला अंबानी जैसे बिजनेस करूँ, अगर ये मन में रखता हूँ तो उसके हिसाब से मेरे एक्शन भी होती है या मेरे कर्म भी होते हैं, ये मुझे देखना है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये ऐसे बहुत बार आपने एक सीक्रेट करके बहुत अच्छी किताब आती है उसमें ये कहते हैं, और मैं भी काफी सहमत हूँ उससे, कि आपके जो कर्म हैं आपके संकल्पों के ऊपर चलते हैं और आपके संकल्प जो है आपके विजन के ऊपर चलते हैं। आप क्या देखना पसंद करते हो उसके ऊपर आपके कर्म रहते हैं। लेकिन आप ये देखना क्या पसंद करते हो, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा विजन ही खराब हो जाता है
0: या मन में आशंका रहती है कि मैं इतना बड़ा विजन देख रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि शायद मैं इसमें अपना कामयाब हो।
1: मींस इसका मतलब यह है कि आपका विजन जो है वो शक्तिशाली नहीं है, आपका विजन दोषपूर्ण है, क्योंकि आप विजन कर रहे हैं अच्छे पोजीशन का, आप विजन कर रहे हैं अच्छे प्रसंगों का, लेकिन आप उसी विजन में आपने ये भी विजन डाला फेल्योर का, शायद उसमें मैं फेल्स हो सकता हूँ, ये विजन डाला, तो ये विजन जो है वो क्लियर नहीं है। हम हमेशा कैमरा की उपमा देते हैं, कैमरा है, आपको अगर पिक्चर निकालनी है, फोटो निकालनी है, तो उस समय आपको दो प्रकार के कैमरा होते हैं। एक ऑटो फोकस होता है, ऑटो फोकस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो ऑटो फोकस जो कैमरा है उसमें क्लैरिटी भी बहुत कम आती है। लेकिन आपको जो मैनुअल फोकस होता है उसमें SLR जो बोलते हैं, उसमें आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, फोकस अच्छा करना पड़ता है, लेकिन अगर बहुत अच्छी फोकस की आपको उसमें जानकारी प्राप्त की तो जो पिक्चर आती है वो बहुत ही खूबसूरत आती है, बहुत ही अच्छी आती है। तो उसके लिए मेहनत है, लेकिन फोकस रखना जरूरी है। अगर ये फोकस नहीं है, फोकस में कुछ गड़बड़ है, तो पिक्चर बहुत ब्लर आती है, क्लैरिटी नहीं रहती, और आपने किसकी पिक्चर निकाली है ये भी बाद में पता नहीं चलता
0: जी।
1: तो अगर आपको अच्छे कर्म करने हैं, अगर आपको अच्छे फल प्राप्त करने हैं, अगर आपको कुछ अच्छी पोस्ट और पोजीशन हासिल करनी है, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपका फोकस परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका फोकस ब्लर्ड है तो उसके हिसाब से आपकी एक्शन होगी, आपका कर्म होगा, और फिर उसका जो परिणाम है या उसका फल जो है वो ठीक तरह से मनवांछित फल नहीं होगा। मनवांछित फल अगर आपको लेना है तो उसके लिए जो मेहनत करनी है, अगर बीज खाली बोना जरूरी नहीं है, सिर्फ बीज बो के काम नहीं होगा, आपको उसे पानी भी देना पड़ेगा। आपको सिर्फ पानी दे के काम नहीं होगा, आपको बीच बीच में थोड़ी धूप भी देनी पड़ेगी। ज़्यादा पानी भी नहीं हो चलेगा, थोड़ी धूप भी चलेगी। वैसे हम हमारी ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ पानी ही देता रहूँगा बीच को, तो ये सड़ जाएगा बीच, बीच का पौधा नहीं होगा, पौधे का वृक्ष भी नहीं होगा। बीज को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। वो पानी जैसे पीता है, पानी उसे जैसे मिलता है, वैसे कड़ी धूप भी मिलनी चाहिए, तो फिर बीज मजबूत हो जाएगा, बीज की जड़ मजबूत हो जाएगी और फिर उसका वृक्ष हो जाएगा। तो हमें कठिनाइयों का सामना अगर करना पड़ता है तो उसमें दुख नहीं मानना पड़ेगा और हमें हार भी नहीं माननी है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत सुंदर। लेकिन जैसे आपने कहा कि बीज बोना ये कर्म का एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके आगे के पार्ट को भी देखना है कि बीज तो बोया है लेकिन उसको पानी समय प्रति समय जितना किफायती है उतना ही दिया या ज़्यादा दिया, उसको धूप ठीक से मिल रही है या नहीं, कैसी वेदर है, हवा कैसी है, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। अर्थात बीज बोने के बाद फल आने तक के जो एक्शन है वो देखने पड़ेंगे। भौतिक दुनिया में भी हम जब रहते हैं तो इन सब बातों का नियम जो ये है वो तो ज़रूर लागू होता है, और जिससे हमारे सत्कर्म बनते हैं या विकर्म बनते हैं। और जब किसी को बहुत सुंदर सब कुछ सुख प्राप्त है, सुख सुविधाएं प्राप्त है, या कहो तन मन धन सब कुछ है, तो कहा जाता है कि इन्होंने ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, तब तो इतने अच्छे घर में या कुल में उनका जन्म हुआ या उनको सब सुख सुविधाएं प्राप्त है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे कर्म ऐसे हो जिससे मुझे भी ऐसा ही जन्म मिले या ऐसा ही उसका फल मिले, जो मैं बरसों तक उसको चखता रहूं। और इसके लिए हमें जानना है सत्कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और उन विकर्मों से कैसे बचना है, क्योंकि भगवद गीता में भी कहा गया है कि विकर्मों का जो बोझ है आत्मा पर वो उसको अच्छे कर्म नहीं करने देता। लेकिन दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद इन सब बातों की गहराइयों को जानेंगे और अपने कर्म को कैसे सुधारना है उसको हम धारण करेंगे। रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

वेलकम बैक टू रेडियो मधुबन पर सुनते रहो मुस्कुराते रहो। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले हम कर्म योगियों को ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, और केवल जानना समझना नहीं लेकिन उस पर चलना पड़ेगा कि हमारा कर्म, हर कर्म, चाहे वो श्वास हो, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो क्रिया हो, वो इतना अच्छा हो जो हर कर्म का फल हमें अच्छा ही मिलेगा। कर्म योगी माना कोई ऐसा नहीं कि जिसने सब कुछ त्याग किया है, लेकिन कर्म योगी की परिभाषा ही यही है जो कर्म करते हुए अच्छी स्मृति में रहता है, श्रेष्ठ स्मृति में रहता है। इस कर्म योगी के लिए क्या जरूरी है, या हम सब कर्मयोगी है जो कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, उनके लिए सत्कर्म या सुकर्म कहो और विकर्म, इसकी परिभाषा को कैसे जानना है गणेश्वर।

0: जी।
1: दो शब्द का प्रयोग आपने किया है, कर्म योगी और सुकर्म और विकर्म। विकर्म जो है वो दुष्कर्म हो या और कुछ हो, वो उसमें कैटेगरी में आता है, ऐसे मैं समझता हूँ। और जैसे आपने कहा कर्म, कर्म सुनने के बाद मुझे लगता है कि उसको सुकर्म या विकर्म बनने के पहले ये कर्म जो है, कर्म क्षेत्र जो है, वो कर्म क्षेत्र मुझे लगता है गीता में जो कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है वो कर्म क्षेत्र ही है। और गीता की शुरुआत जो है, भगवद गीता की शुरुआत जो है वो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। वो धर्म क्षेत्र भी है, ये कुरुक्षेत्र भी है, और उसे कुरुक्षेत्र बनाना है या धर्म क्षेत्र बनाना है ये हमारे संकल्पों के ऊपर है। क्षेत्र वही है लेकिन हमें क्या करना है, वो संकल्प क्या करना है उसके ऊपर निर्भर है कि यह धर्म क्षेत्र है या कुरुक्षेत्र है। तो सबसे पहले जो हम कहते हैं कि हमारा कर्म एक्शन के पहले ये हमारा विजन जो है, यह विजन के भी पहले हमारा संकल्प जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई आर्किटेक्ट रहता है, वो बंगला बनाने की जब सोचता है तब वो सोच जो है पहले वो विजन लेता है। वो सबसे पहले आर्किटेक्ट देखता है कि ये घर कैसा हो, उसके दृष्टि के सामने, उसके आंखों के सामने वो चित्र हूबहू तैयार हो जाता है और फिर वो उसके अनुसार कर्म करता है। और फिर क्या होता है, घर का निर्माण कागज के ऊपर होता है। सिर्फ कागज के ऊपर निर्माण करके भी कुछ फायदा नहीं है, उसको कोई ऐसे ठेकेदार के पास जाना है कि वो उसके संकल्पों के अनुसार वो ठेकेदार घर बनाता है। और फिर वो घर इतना सुंदर बनता है कि वो घर का उपयोग सिर्फ आर्किटेक्ट ही नहीं बाकी सब लोग भी कर सकते हैं। वैसे हमारा जो संकल्प है वो संकल्प है आर्किटेक्ट, और ये संकल्प अगर हम अच्छा करते हैं तो सिर्फ अच्छा संकल्प होके फायदा नहीं है, हमें ऐसा कुछ ठेकेदार चाहिए कि जो हमारे संकल्पों के अनुसार कर्म करे और फिर उसका फल जो है वो बहुत अच्छा मजबूत मकान है जो मेरे लिए भी लाभदायक है और बाकी लोगों के लिए भी लाभदायक है। तो ये विकर्म जो है या सुकर्म है सबसे पहले निर्भर है हम संकल्प क्या करते हैं, और इसलिए बोलते हैं संकल्प जो है वो हमेशा श्रेष्ठ हो, संकल्प मेरे बहुत अच्छे हो, संकल्प मेरे बहुत मजबूत हो, कमजोर ना हो, तो फिर उसका फल जो है मुझे हमेशा के लिए अच्छा मिलेगा।
0: समर्थ संकल्प अर्थात जो आपने कहा कि कर्म मेरे अच्छे हो श्रेष्ठ हो, और समर्थ संकल्प कभी कभी हम चाहते हुए भी नहीं कर सकते, मालूम है कि ये मुझे संकल्प नहीं करना है फिर भी कर जाते हैं या कर लेते हैं, तब क्या हमारी वो मजबूरी होती है जो हम चाहते हुए भी कभी कभी उसको नहीं कर पाते?
1: ये मजबूरी नहीं है, एक्चुअली ये कमजोरी है, और ये कमजोरी इसलिए है कि हमारी स्मृति जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति अगर भ्रष्ट हो जाती है तो फिर ये गड़बड़ शुरुआत होती है। इसलिए देखिए उसमें जैसे हम गीता का हमेशा उदाहरण देते हैं, तो गीता में अर्जुन कमजोर नहीं था, अर्जुन काफी शक्तिशाली था, अर्जुन काफी निपुण था, शस्त्रास्त्र में निपुण था, उसमें काफी जानकारी रखता था, प्रवीण भी था। प्रॉब्लम ये थी कि उसे कमजोर संकल्प आया, उसे कमजोर संकल्प आया, और वो कमजोर संकल्प ने उसकी स्मृति जो है वो नष्ट कर दी। वो स्मृति ये थी वो बहुत अच्छा योद्धा है, लेकिन संशय निर्माण हो गया कि ये ठीक है या नहीं है, और इसलिए उसकी स्मृति जो है वो नष्ट हो गई। परमात्मा जैसा, भगवान जैसे श्री कृष्ण उनके साथ है, ये भी स्मृति नष्ट हो गई, और फिर वो भ्रमित हो गए, संशयित हो गए, और ये संशय का जो बीज है वो देखते देखते वृक्ष में परिवर्तन हो गया, और उनका जो गांडीव धनुष उनके हाथ में था वो गिर गया। अभी जो गांडीव धनुष धनुर्धारी है, श्रेष्ठ धनुर्धारी है, उनकी अगर ये स्थिति है तो सामान्य इंसान जो है वो भी परिस्थितिवश कभी कभी भ्रमित हो जाता है, तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये नहीं समझना कि मेरे जैसे सामान्य आदमी का क्या होगा। सिर्फ आप सामान्य हो, ये स्मृति आपकी जागृत हो गई है, इसलिए गड़बड़ है और वो स्मृति सही नहीं है। जैसे अर्जुन को क्या किया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, जब उनकी स्मृति जागृत हो गई तो उनका मोह खत्म हो गया, मोह नष्ट हो गया, और स्मृति जागृत होने के बाद उन्हें खुशी भी आ गई। हम हमेशा गलती करते हैं क्योंकि खुद की पहचान हमें नहीं है, इसलिए हमारी स्मृति जो है वो कमजोर रहती है। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये बुराई है, ऐसे बारे में हम सोचते रहते हैं, तो मेरे में अच्छाई क्या है ये ना मैं खुद देख सकता हूँ ना दूसरों को दिखा सकता हूँ।
0: या कभी कभी ये होता है कि हमारे भूत के पास्ट के जो कर्म हैं वो कर्म हमें उसी समय याद आते हैं कि अरे इस समय तो मैंने असफलता पाई हुई थी, तो फिर से ये रिपीट होगा।
1: इसलिए जब भी मैंने सफलता पाई है, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे नहीं होता कि हमेशा मैं असफल हूँ, जिंदगी में ऐसे कई क्षण होते हैं जो सफलता के निदर्शक है, और ऐसे कई क्षणों में मैंने सफलता पाई है और उस क्षणों को उजागर करना है। इसलिए मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, कई क्रिकेटियर को अगर बैड पैच चलता है, वो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म है, तो उसको कोच सलाह देता है कि उसने जितनी अच्छी बैटिंग की है वो वीडियो क्लिप्स देखें और मन को समझाइए कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है और अच्छा कर सकता है। वैसे मेरी स्मृति अगर ठीक है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, और ये स्मृति सबसे ठीक क्या कब होगी, जब मेरे स्मृति में आएगा कि मैं बच्चा किसका हूँ। अगर मैं भगवान से पिता का रिश्ता जोड़ता हूँ तो सिर्फ कहने मात्र नहीं कहता हूँ कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माताश्च पिता तुम्ही हो, लेकिन अगर मैं उसे धारण करता हूँ, अगर मैं उसे विश्वास रखता हूँ, तो फिर अगर मेरा विश्वास है कि मैं बच्चा किसका हूँ, अगर मैं भगवान का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान जो भगवान है उसका अगर मैं बच्चा हूँ, तो उसके सर्व गुण जो है वो मेरे पास उपलब्ध है। सिर्फ उसकी स्मृति मुझे उजागर करनी है। अगर मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, विघ्न विनाशक का बच्चा हूँ, सुख का सागर जो है उसका बच्चा हूँ, शांति का सागर है उसका अगर बच्चा हूँ, तो उसके सब जो भगवान के गुण है वो मेरे में उपस्थित है। और ये जब भावना, ये निश्चय जब मेरा मन में आता है, तब मेरे हर कर्म अच्छे होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं।
0: बहुत सुंदर। बचपन जो होता है वो हमेशा इनोसेंस होता है उसमें, और इसीलिए भगवान का बच्चा मानना है। लगता है कि हमारी उस समय विस्मृति हो जाती है और हम अपने को बड़ा समझते हैं। जब खुद को बड़ा समझने लगते हैं तब जिम्मेदारी हमारी हो जाती है और भगवान जो है वो न्यारा हो जाता है। परंतु जैसे कोई बच्चा अपने आप सब कुछ नहीं कर पाता, और इसीलिए वो माँ जो है उसकी देखभाल करती है क्योंकि वो जानती है कि बच्चा है। लेकिन कोई बड़ा हो गया, 20 साल का अगर लड़का हो गया, तो माँ उसका सब कुछ नहीं करेगी क्योंकि वह जानती है। तो मन में बचपन की स्मृति रखना और उस स्मृति के साथ भगवान हमारा माता पिता है यह भी विश्वास रखना, अगर हमने वो आदत लगाई तो आत्मबल जो है वो हमारा बढ़ेगा। और ये आत्मबल बढ़ना, ये स्मृति रखना, यह है सुकर्म। और इस स्मृति को कुछ सेकंड के लिए भी क्यों न सही, या कुछ मिनट के लिए क्यों न सही, विस्मृति में बदलना, ये है विकर्म। और इन विकर्मों से बचने के लिए एक अभ्यास चाहिए, और उस अभ्यास के लिए हमें ज़रूरत है, हम जो अमृत धारा प्रोग्राम सुनते हैं, सुबह सुबह जो अमृत बुद्धि को देते हैं, उस अमृत का बीच बीच में भी फिर से रिवाइज करना, सेवन करना, और वह जब होगा तब उस अमृत धारा प्रोग्राम का भी लक्ष्य हासिल होगा और

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, युवाओं के लिए कहा जाता है कि युवा वर्ग सभी क्रांतियों की नींव में रहे हैं। जहां युवा होता है, वहां सभी कार्य सहज और सरल हो जाते हैं। युवा यदि अपनी शक्तियों को रचनात्मक कार्यों में लगाए तो कोई भी राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बन सकता है, या फिर यदि वो विध्वंसकारी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की क्षति हो सकती है, वो पतन के गर्त में भी जा सकता है। इसीलिए सभी का ध्यान युवाओं के ऊपर होता है और हम समाधान कार्यक्रम में भी युवाओं पर लंबी चर्चा कर आए हैं। आज भी युवा वर्ग हमारे साथ है और आपको याद होगा कि हम लोगों ने मीडिया पे चर्चा की थी कि मीडिया का प्रभाव युवा पर कितना अच्छा और कितना बुरा। इस विषय पर हमारे युवाओं के क्या विचार हैं, ये आज के इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे। कुछ प्रश्न लेकर वो आज के एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। आइए पहले उनका हम स्वागत करते हैं और आपसे उनका परिचय भी कराते हैं। हमारे साथ हैं पहले कनिका जी, जो मुंबई से आई हुई हैं। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सचिन जी हैं, जो धार MP से आए हुए हैं। आप दोनों युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें समाधान देने के लिए राजयोगी सूर्य भाई जी, आइए हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। प्रता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रता जी, आज चर्चा का जो विषय है वो मीडिया है। मीडिया का प्रभाव कितना अच्छा कितना

0: पूरा युवाओं के ऊपर, और खास करके इस पे हम लोगों ने लंबी चर्चा की थी, लेकिन आज हमने युवाओं को आमंत्रित किया है, इन दोनों युवाओं को। तो हम चाहेंगे आप दोनों से कि इस विषय पर जो आप लोगों की राय है, आप लोगों के प्रश्न हैं, आपके जो सुझाव हैं, आज की इस चर्चा में खुल करके इस समाधान कार्यक्रम के माध्यम से सामने रखें। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कनिका जी, क्या समझती हैं आप कि ये जो मीडिया है जो हमें परोस रहा है आज, कितना अच्छा है कितना बुरा है? यदि आप परसेंटेज में से डिवाइड करें तो क्या कहेंगे?
1: 60% जो है मीडिया नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है एंड 40% पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम बोल सकते हैं कि आजकल जो विलेजेस में जो आजकल यूथ है उनको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीविजन ही है जहां वो गेन कर सकते हैं बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम सिटीज। तो जो आजकल डांस शोज हैं, रियलिटी शोज हैं, कुकरी शोज हैं, तो हम लोग ने ये देखा है कि जो विलेजेस में जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो इसी माध्यम से वो बाहर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। प्लस जो वोटिंग में आजकल अवेयरनेस चाहिए कि किसको वोट करे किसको नहीं,
0: जी
1: तो उस चीज में भी मीडिया इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल टू ब्रिंग आउट दी अवेयरनेस। वो एक चीज
0: तो
1: है।
0: दोनों पक्ष हैं
1: हाँ, दोनों
0: आपके
1: पक्ष
0: हिसाब
1: हैं।
0: से, कौन सा पक्ष भारी और कौन सा हल्का, ये सबके अलग अलग
1: अलग
0: विचार
1: अलग
0: हो
1: विचार
0: सकते
1: हैं।
0: हैं, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम उससे
1: एग्जैक्टली
0: क्या लेते हैं।
1: हाँ,
0: सचिन जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पे?
2: मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसी तरह हमें मीडिया से बहुत कुछ गलत मैसेज भी मिलता है। तो एक तरह से दो ही बातें ठीक है कि एक तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और उसके चलते ही हम कुछ लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ गलत मैसेज के थ्रू हम ये देखते हैं कि युवा वर्ग जो है बिगड़ता जा रहा है।
0: अब आप दोनों भ्राता जी से क्या पूछना चाहेंगे इस संदर्भ में, जो मीडिया की बात हमारी चल रही है, अच्छाई और बुराई की जो बात चल रही है? भ्राता जी हमारे साथ हैं, और आप लोगों की जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि भ्राता जी ने भी जर्नलिज्म किया हुआ है, मीडिया के लिए लगातार आप लिखते रहते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही आप बराबर रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो इस फील्ड के बारे में, चूंकि आप एक ऐसे महानुभाव के सम्मुख बैठे हुए हैं जिनके पास एक बहुत गहरा अनुभव है, क्या पूछना चाहेंगे?
2: शुरू में तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो अभी हमने बात कही उसके परसेंट की बात करते हैं कि युवा वर्ग जो एक अच्छी बात भी सीखता है और एक बुरी बात भी सीखता है, तो हम किस मात्रा में हम उसे सही ठहरा सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं मैसेज के थ्रू ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं।
0: प्रता जी, जो सचिन ने बात कही उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, मीडिया अच्छी चीजें परोस रहा है, कनिका ने भी कहा कि बहुत सारी अच्छाइयां दी जा रही हैं, ठीक है बुराइयां भी हैं, लेकिन बुराइयों का प्रभाव कहीं ज्यादा देखने में आ रहा है युवाओं पर। तो ये जो बुराइयों का ज्यादा प्रभाव देखने को आ रहा है अच्छाइयों को छोड़ करके, उसका भी रीजन हम जानना चाहेंगे इन युवाओं की ओर से।
3: बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है, दोनों ने भी अच्छी बातें की। देखिए, अब हमने इलेक्शन में देखा कि युवकों को इतना जागृत कर दिया मीडिया ने कि वोटिंग शायद सर्वाधिक हुई हो अब तक के जितने भी इलेक्शन हुए
0: बिल्कुल
3: हैं
0: बिल्कुल
3: लंबे काल में, हमारे राजस्थान में तो गजब की बात हो गई। तो अच्छाई सिखा सकता है मीडिया बहुत ज्यादा, लेकिन आजकल हुआ क्या है, बहुत सारी चीजें जो है ना कॉमर्शियल हो गई हैं। एक व्यक्ति अखबार निकालता है, पहला उसका लक्ष्य होता है धन कमाना। ये जो कॉमर्शियलाइज कर दिया है हर चीज को, इसने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। अब वो देखता है कि अधिकतर जो उसके दर्शक हैं या अखबार वाले पढ़ने वाले हैं वो ये चीज पसंद करते हैं। अब वो अच्छी है या बुरी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, वो उसको दिखाएगा। जैसे मीडिया में, हमारी पत्रकारिता में एक बहुत छोटा सा सिद्धांत हंसी का लोग सुनाते हैं कि कुत्ते ने मनुष्य को काटा, ये कोई समाचार थोड़ा ही हुआ। कहीं मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया हो तो फटाफट
0: ब्रेकिंग
3: हेडलाइन पे
0: ब्रेकिंग
3: आएगा,
0: न्यूज़
3: ब्रेकिंग न्यूज आएगा। तो क्या है कि लोग, मीडिया कर्मी जो है, मीडिया के जो संपादक या जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अपनी कमाई की चिंता है। वो श्रमजीवी कुछ पत्रकार हैं, वो तो अधिकतर लोग चिंतक नहीं है कि जो चीज हम दे रहे हैं या जो चीज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखा रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। अब देखने वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं कि हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते, माँ बाप को उठ जाना पड़ता है या बच्चे उठ जाएंगे अगर समझदार होंगे। तो ये जो कॉमर्शियल बना दिया हर चीज को कि भाई इससे हमारी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमें तो ये दिखाना है। लेकिन बुद्धिमान पत्रकारों को, संपादकों को, मालिकों को ये अवश्य सोचना पड़ेगा, वो समाज के निर्माता हैं। एक बहुत सुंदर इफेक्ट, क्योंकि 50-60 साल 80 साल से मीडिया का युवा वर्ग पर और सभी मनुष्यों पर होता जा रहा है, इसलिए उनको अपने को बहुत जिम्मेदार समझना ही चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो देश के निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे हैं। जैसे इलेक्शन में उन्होंने किया, सब जगह ऐसा प्रचार कर दिया कि हर व्यक्ति वोट देने जाने के लिए तैयार हो गया। तो अच्छी बातें सिखाएं तो मीडिया वास्तव में समाज के लिए, हमारे देश के लिए वरदान बन जाएगा। मीडिया ने ही तो, जब महात्मा गांधी थे और मीडिया के माध्यम से ही तो उन्होंने क्रांति लाई थी ना, संदेश कैसे मिले सबको, तभी आजकल के टेलीफोन थोड़ा ही थे कि फटाफट मैसेज दे दो। तो बहुत सुंदर चीज है मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। और जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया तो लोगों ने किताबें पढ़ना तो छोड़ ही दिया, जब से मोबाइल फोन आए तो कोई किसी को पत्र लिखता ही नहीं है। एक परिवर्तन हो गया है 25-30 सालों में हमारे देश में बहुत बड़ा। रही बात ये, जैसा रुपेश ने कहा कि युवक लोग निगेटिव चीजें ज्यादा सीखते हैं मीडिया से, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे टेलीविजन चैनल्स पे अच्छी बातें नहीं आती, आती हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं और हमने तो बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, नो डाउट। लेकिन जब बुरी बातें आती हैं तो हम बंद कर लेते हैं, डांसी जैसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे सीन आ रहे हैं तो हम उसे नहीं देखते। तो ये देखने वालों पर डिपेंड करता है कि वो क्या देखें। लेकिन सूक्ष्म चीज जो है, जो बहुत डीप साइकोलॉजी है, कि क्योंकि इस समय मनुष्य के मन में अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए उसे निगेटिव चीजों की ओर ज्यादा अट्रैक्शन होता है, उसे समझ में आ रहा है ये सब चीजें बुरी हैं, स्टिल वो उनको देखने के लिए बाध्य हो रहा है। तो अंदर की निगेटिविटी बाहर की निगेटिविटी के लिए आकर्षित कर रही है मनुष्य को। हम एक बार एक छोटा सा प्रयोग किया, 10 बच्चों को टेलीविजन के सामने बैठाया 2 घंटे के लिए, देखो क्या देखते हैं, फिर सुनाना है आपको क्या देखना है। तो उनमें से सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने, जो निगेटिव चीज थी ना वो ज्यादा सुनाई, बहुत थोड़ों ने कोई अच्छी बातें सुनाई कि ये भी था आज उसमें। तो अंदर की निगेटिविटी, माइंड निगेटिव हो गया है, अंदर निगेटिव एनर्जी हो गई है, थिंकिंग निगेटिव हो गया है, पॉजिटिविटी कोई सिखा नहीं रहा, हमारे स्कूल कॉलेजों में इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जा रही। तो अंदर की निगेटिविटी निगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट कर रही है उन्हें, ये एक मूल कारण है।
0: जी जी जी,
1: मीडिया भी दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी ये सामने आ रहा है कि यूथ ज्यादा नेगेटिव ले रहा है या जो भी ऐसे संस्कार हैं, लेकिन मीडिया की तरफ से, यानी वो भी ये सोचते हैं कि अगर वो नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा या ये सब चीजें हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए या मीडिया को कुछ चेंज करना चाहिए, तो क्या चीज होनी चाहिए आगे जिसके लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो।
3: अच्छी चीज आपने पूछी। हम बहुत सारे पेपर्स में देखते हैं कि वीकली एक पेज मेडिकल का होता है, फिल्मों के भी होते हैं, तो कहीं कहीं कोई त्यौहार आ रहा तो उसके बारे में 2-4 पेज वो छापते हैं, तो लोगों को अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, रिजल्ट्स भी छापते हैं, एग्जाम्स कब किसके होने, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। मैं हमेशा मेन जो लेख आता है पेपर में वो हमेशा पढ़ता हूँ कि लोगों के विचार क्या, जो अच्छे चिंतक हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो किसी समस्या को किस दृष्टि से देख रहे हैं, मैं उसे अवश्य पढ़ता हूँ। तो अच्छी चीज़ों की भी कमी नहीं है, लेकिन बात वही हुई कि देख क्या रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी पत्रिकाओं ने, अखबारों ने ये कर दिया है, हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका आती है, हम देखते हैं उसमें गंदगी कम से कम, बिल्कुल एक दो बार कोई चीज़ आने लगी, लोगों ने आवाज़ उठाई होगी और वो बंद कर दी गई। तो अखबार के मालिकों का, संपादकों का और स्वयं पत्रकारों का भी ये कर्तव्य है, संवाददाताओं का भी, कि वो ऐसे न्यूज दें जिससे समाज और व्यक्ति, बच्चे बूढ़े कुछ सीखें, आकर्षण हो उनको इन चीजों के लिए, वो केवल गंदगी ना सीखें। ये अलग चीज है कि मनुष्य के मन में ज्यादा गंदगी हो गई है, पर अच्छाई के लिए भी मनुष्य का आकर्षण कम नहीं हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा मूल रूप से पवित्र है तो अच्छी चीजों को वो बहुत लाइक करती है। एक तो ये करना चाहिए। और जहां तक आपने सरकार की बात कही, बिल्कुल आपका मानना ठीक है, अगर हमारी सरकार में लोग चिंतक हों और वो इस तरह से चिंतन करें कि किस बात का राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान है या राष्ट्र के पतन में कौन सी बात कैसी बड़ी भूमिका निभा रही है, चिंतक हो वहां लोग। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कहूंगा अवश्य चिंतक लोग वहां बहुत कम है, केवल सत्ता धन बस राजनीति इसमें लग गए हैं लोग। देश के चिंता करें, कल्याण की भावना से विचार करें, ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है। तो सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे कानून बनाए कि ऐसी गंदी चीजें कोई न परोसे, इवन चाहे फिल्में ही हो, फिल्मों का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि युवक देवता बन जाए।
0: एक भ्राता जी बात आती करने का मैं बीच में ले रहा हूँ कि कई बार सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी आय का ये स्रोत है, मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी आय का स्रोत है मद्यपान से जुड़ी हुई चीजें हैं या कोई ऐसी चीजें जो नहीं दी जानी चाहिए जो आप कह रहे हैं विज्ञापन के रूप में, वो एक आय का बड़ा स्रोत है और ये माना जाता है कि यदि आय ही न हो तो शायद ये ठप हो जाएंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है। तो ये उन्हें धन के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी करना पड़ता है, उनके लिए क्या विकल्प है?
3: देखिए सबसे बड़ा धन मनुष्य का चरित्र है, सबसे बड़ा धन मनुष्य की मॉरलिटी है। जिस देश में अधिक लोग चरित्रवान होंगे वो संपत्तिवान होगा ही, क्योंकि संपत्ति प्रकृति से आती है। और ये जो धन एक और शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, दूसरी ओर कहा जा रहा क्राइम ना हो, हमारे देश में क्राइम बहुत बढ़ गया। अब शराब पी के लोग करेंगे क्या, घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, मारपीट करेंगे ना, फिर पति पत्नी के डाइवोर्स होंगे जरूर ना, कहीं मर्डर होंगे, कहीं रेप के केस होंगे, कोर्ट में केस बढ़ेंगे। तो गलत तरीकों से जो धन का स्रोत उन्हें समझा जा रहा है ये मान्यता ही गलत है, ये मान्यता पूरी तरह से निगेटिव है। अगर हम ये सोच लें कि भले ही धन कम आए लेकिन समाज अच्छी चीज सीखे तो समाज का निर्माण हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगा।
0: बिल्कुल, मतलब हम समाज के हित के बारे में सोचें। वैसे भी पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि पहले समाज के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो, फिर प्रदेश के बारे में, फिर जिले के बारे में, फिर अपने शहर या मोहल्ले या परिवार के बारे में सोचें। उल्टा हो गया शायद भ्राता जी, इसीलिए अब राष्ट्र की चिंता हमें करनी पड़ेगी और इन चीजों को दूर करना होगा। जी कहने
1: जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो चिंतित हैं, तो अगर वो लोग ठीक है उनकी माइनॉरिटी है तो युवा को ऐसे में हम लोग की तरफ से क्या एफर्ट होना चाहिए कि हम लोग को ठीक है नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है टेलीविजन से, बट हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में उन सब चीजों का इफेक्ट ना हो।
3: हाँ, एक तो युवकों को अच्छा संगठन तैयार करना चाहिए, अपना संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे क्लब्स बने हुए, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीजें वो दें सरकार को, एक राय के रूप में भी दें, दी जाती हैं और कहीं कहीं हमारे जो MPs हैं उनको स्वीकार करते हैं और वो जो चीज़ कानून पास करने जा रहे थे उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, युवकों में बहुत अच्छी जागरूकता आ जाए और युवक स्वयं के लिए ये सोचें कि ये जो हमारा युवा काल है इसमें हमें श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचारों का, शुद्धि का निर्माण करना है अपने जीवन में। जैसे मान लो एक युवक वेजिटेरियन है और वो जा रहा है मार्केट से और वहाँ बहुत सारा मांस आदि बिक रहा है, तो वो रुमाल रख के जाएगा ना, देखने नहीं लगेगा, खरीदने की नहीं सोचेगा, क्योंकि वो उसका अपना फील नहीं है, वो उसको स्वीकार्य नहीं है। ऐसे ही एक युवक को अपना मन बना लेना चाहिए कि अगर मुझे अपने कैरियर को सुंदर बनाना है, मुझे अपने भविष्य को चमकाना है, अगर मुझे कुछ जीवन में अचीव करना है तो मुझे इन माध्यमों से गलत चीजें, निगेटिव चीजें सीखनी नहीं, चाहे वो मुझे दिख भी रही हो मुझे रिजेक्ट कर देना है, केवल अच्छी चीजें सीखनी है जिनसे मेरे विचार सुंदर हों, जिनसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, जिनसे मेरे अंदर प्योरिटी और मानसिक शुद्धि बढ़े, मेरा चरित्र बहुत उज्ज्वल हो, तो युवकों को ये करना चाहिए।
0: मैं आप दोनों से, जैसे भ्राता जी ने एक बहुत सुंदर विषय उठाया है कि यदि युवा इन चीजों को रिजेक्ट करे तो निश्चित रूप से इनकी कमी होती जाएगी। मैंने ज्यादातर सुना ये है कि युवाओं में ही ज्यादा क्रेज होता है कि हाँ भाई ऐसी हेयर स्टाइल हो, ऐसे कपड़े डिजाइन के हम कपड़े पहने, तो आप दोनों को क्या लगता है क्या युवा वर्ग की यहाँ भूमिका नहीं बन जाती कि हम अपने आप को एक ऐसा आदर्श बनाएं, अच्छाई के पथ पे ले चलें, ताकि ये चीजें जो हमारे लिए परोसी जा रही हैं हम स्वीकार नहीं करेंगे, निश्चित रूप से वो बंद हो जाएंगे।
2: मीडिया में होता क्या है कि कोई स्टाइल चली है, जैसे हेयर स्टाइल चली है, तो उसे फॉलो करने की बहुत सोचते हैं, पर उनमें से कुछ कम भी होते हैं जो उसे सिंपल रखना चाहते हैं। और फिल्मों में हम देखते हैं कि किस टाइप के हीरो कपड़े पहन रहा है, किस टाइप के सनग्लासेस पहनता है और वो स्टाइल लगाता है, और हीरो
0: स्टाइल से
2: स्मोकिंग करता है और विलन को किस टाइप से मारता है, तो वो युवा वर्ग उस हिसाब से उसको फॉलो करने की ज्यादा जरूर सोचते हैं।
0: सचिन, मेरी बात वही थी कि यदि मीडिया वो चीजें परोस रहा है, यदि यूथ रिजेक्ट करे उस चीज को कि वो भले, ये तो जरूरी नहीं मेरी थाली में यदि 10 चीजें दी गई हैं और उसमें से कुछ चीजें गलत हैं जो मुझे सूट नहीं करती, अच्छी नहीं है, उन चीजों को तो मैं स्वीकार वैसे भी नहीं करता, मैं वो चीजें लूंगा जो चीजें मुझे खानी है। ठीक वही बात है, मीडिया यदि थाली परोस के आपको दे रहा है तो आप वही चीजें क्यों नहीं खाते जो चीजें आपको खानी है, वो चीजें आप पहले क्यों खाते हैं जो चीजें आपको नहीं खानी है, किसकी जिम्मेवारी बन जाती है यहाँ?
2: ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे किस टाइप से यूज करते हैं। दो ही टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक तो अच्छा भी होता है एक बुरा भी होता है। अच्छा व्यक्ति अच्छी चीजें यूज करने की सोचता है और बुरा व्यक्ति उसे फॉलो करने की सोचता है।
0: जी, आपका क्या विचार है सचिन?
2: व्यक्ति को अपने हिसाब से चलना चाहिए, एकदम सिंपल से रहना चाहिए।
0: आप दोनों अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे युवा वर्ग को, तो युवा वर्ग एक बहुत बड़ी शक्ति है और यदि वो चाहे तो निश्चित रूप से ये जो चीजें परोसी जा रही है उसमें कटौती या कमी हो सकती है।
1: देखिए ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमें परोस के दे रहे हैं, अभी इट इज आर चॉइस कि हम लोग क्या चूज करें। पर एक चीज मुझे ये लगती है, मीडिया से हमें एक ये हेल्प मिल सकती है कि रात में जैसे कैसा होता है कि हम जो खाते टाइम जो देखते हैं चैनल्स एंड जो हम लोग देखने के बाद फिर सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं तो जो माइंड में एक प्रोसेस चल रहा है उसका काफी इफेक्ट रहता है। तो रात में कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जब भी मीडिया यानी सारे चैनल्स पे कोई एक पॉजिटिव कोई हेल्दी टॉक, मतलब सभी चैनल्स पे इंस्टेड ऑफ मूवीज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कुछ हेल्दी डिस्कशन हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत स्पिरिचुअल लेक्चर हो या ऐसा कुछ भी, बट कुछ भी ऐसी अच्छी चीज जो लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स का कुछ ऐसा डिस्कशन हो ऑन ऑल दी चैनल्स, सो दैट इट विल इंक्रीज अवेयरनेस। कि मेरे ख्याल से यूथ को थोड़ा अवेयरनेस की भी जरूरत है। बहुत ही लोग अभी हम लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी से या जो भी हमारा पीयर प्रेशर है इन सब चीजों के चक्कर में वो चीजें कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। तो अगर मीडिया इस चीज को और प्रमोट करे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, अगर ऐसे कुछ ऑल चैनल्स पे कुछ ऐसे शोज हों तो आई थिंक इट कैन प्रमोट।
0: बिल्कुल, कई चैनल्स ऐसे हैं जो ऐसे आध्यात्मिक विषय दिखाते हैं और उन चैनल्स पे बहुत कम टीआरपी होती है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसी चैनल्स जो हैं जहां पे अच्छी चीजें परोसी जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग उसे देखता है आज या उसकी इच्छा कुछ और है?
1: युवा जो है नेगेटिव चीजें ज्यादा ग्रहण करते हैं, ये एक है चीज। लेकिन इसीलिए मैंने कहा सी इंडिविजुअली सबका ओपिनियन अलग रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए शायद सारे ही चैनल्स पे वो चीजें होनी चाहिए।
0: क्या कहेंगे इस विषय पे? बहुत सुंदर कनिका
3: ने बहुत सुंदर बात कही और मेरी भी राय यही है, चाहे रेडियो हो चाहे कोई चैनल्स हो, इन्होंने तो कहा सभी चैनल्स पे, ये बहुत सुंदर बात है। हमारे पीस ऑफ माइंड पे तो आता ही है। सवेरे का एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे 6 बजे 6 बजे 15 मिनट बहुत सुंदर चीजें दी जाएं। तो जैसे मैंने कहा, युवकों में अच्छाई सीखने की बहुत ज्यादा अंदर इच्छा है। हमने देखा जब रामायण सीरियल चला था, सबसे आगे युवा बैठे देखते थे और लगता था कि हमारे युवकों ने भारत की प्राचीन संस्कृति को अब पहचाना है। तो हम ये बिल्कुल फाइनली नहीं कह सकते कि युवक निगेटिव चीज ही देखेंगे, देखते हैं वो, हमारा ये समाधान कार्यक्रम भी युवक बहुत लोग देख रहे हैं।
0: बस मेरी बात इतनी ही थी भ्रता जी कि टेलीविजन चैनल वाले भी टीआरपी देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना ऊपर जा रहा है।
3: इसमें मुझे कुछ कहना है, एक तो सवेरे की बात और रात को सोने के समय, जैसे 10 बजे या 10:30 बजे चाहे वो 10 मिनट ही दें, ऐसी सुंदर चीजें दें जिनको सुनकर सब लोग सोएं, तो नींद भी बहुत सुंदर होगी, उससे ब्रेन एनर्जेटिक होगा, सवेरे उठ के उनके विचार सुंदर रहेंगे, फिर वो सुनेंगे, एकाग्रता अच्छी होगी, अगर वो स्टूडेंट्स हैं बहुत सफल होंगे। रही बात ये, देखिए कोई भी अच्छी चीज जब शुरू की जाती है उसके देखने वाले हम ही होते हैं, लेकिन हमें ये देखकर निराश नहीं होना चाहिए। आज जिस चीज को 10 लोग देख रहे हैं, 1 मास के बाद उसे 100 देखेंगे और अगले 1 मास के बाद उसे 1000 देखेंगे और एक दिन आएगा सभी उसको फॉलो करेंगे, सभी उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए भले टीआरपी कम हो लेकिन अच्छी चीजें देनी चाहिए। हम अपने चैनल से जानते हैं, जब हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ लोग बहुत कम देखते थे और आज देखने वालों की संख्या में समझता 1 करोड़ तो पहुंची गई है, विदेशों में गाँव में हम सुनते हैं जब प्रोग्राम आता है हमारा समाधान मतदान का, हमारे अपने गांव में भी है, वो सबको बुला लेते हैं, आओ आओ देखो, और 200 लोग बैठ के 25 लोग देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल, मतलब एक शुरुआत होनी चाहिए। तो जैसे कनिका कह रही है, बहुत अच्छी राय इन्होंने दी है कि एक शुरुआत हर एक चैनल वाला कम से कम अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी समझ के
3: 10-10 मिनट करे।
0: और वैसे भी रहता जी, एक नैतिक जिम्मेवारी तो हमारी बनती ही है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और एक अच्छी चीज जिससे कि युवा एक अच्छे मार्ग की ओर चल सकता है, तो जिससे उनको एक अच्छा मार्ग भी मिले और साथ ही प्रोत्साहन भी मिले, उन्हें दिखाना चाहिए। राता जी, युवा वर्ग के लिए ये जो चीजें दी जा रही हैं, क्या कहीं ना कहीं, मतलब गवर्नमेंट की जहां तक बात आती है या मीडिया वर्ग की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जहां तक बात आती है, ये क्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि जो चीज ऊपर से दी जा रही है हमारे बच्चे वही तो खाएंगे? तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या नहीं लगती कि उनकी हो जाती
3: है? बिल्कुल, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की है, क्योंकि वो समझदार हैं, वो मैच्योर हैं, पर मैं कहूंगा वो मैच्योर नहीं हैं, क्योंकि वो समाज के कल्याण की सोच ही नहीं रहे। उन्हें तो देना है, तुम्हारी मर्जी हो खाओ, तुम्हारी मर्जी हो न खाओ, पर जिम्मेदार वही हैं। इसलिए जितनी अच्छी चीज वो परोसेंगे, समझ लो वो उनका देश से बहुत प्यार है, उनका मानवता से प्यार है, उनका युवकों से प्यार है, और वो अपने देश के युवकों को बहुत महान देखना चाहते हैं।
0: बिल्कुल राता जी, मैं संक्षेप में चाहूंगा कि इस विषय पर आप क्या हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: यही कि मीडिया वाले जो भी इसके जिम्मेदार हैं, राइटर हैं या पत्रकार हैं या सीरियल बनाने वाले हैं, या इवन जो एड देने वाले लोग हैं, एड बहुत अच्छी तरह भी तो दी जा सकती है, वो इसको एक बहुत दिव्य रूप, बड़ा सौम्यता पूर्वक प्रदर्शित करें, ताकि हमारे सभी दर्शक उससे बहुत अच्छी चीजें सीख सकें। सभी अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं, सभी को अच्छी चीजों की आवश्यकता है, और मैं अपने युवकों को भी ये संदेश देना चाहूंगा कि वो रिजेक्ट करें बुरी चीजों को, और अगर युवक रिजेक्ट करेंगे तो बनाने वाले सचमुच नहीं बनाएंगे, उन्हें दिखेगा कि भाई कोई देख ही नहीं रहा हम क्या करेंगे। इसलिए मैं अपने युवा साथियों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके लिए हम सोचते हैं इनका भविष्य, मतलब ये पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह विश्व गगन में चमके, ये अपने जीवन में आनंदित रहें, सफल हों, खुशी में तो इनका सारा दिन बीतता रहे, इनसे इनके माँ बाप भी प्रसन्न हों, इनके सारा जो फ्रेंड सर्किल है और जो रिलेटिव्स हैं वो इन पे गर्व करें। इसलिए सभी को इन नेगेटिव चीज़ों को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए संसार को कि हम महान देश भारत के महान युवक हैं।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद राता जी, आपका बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है, और हमारी तो यही कामना रहेगी कि ये संदेश जन जन तक पहुंचे और सभी इस पे अमल करें, ताकि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी सचिन, कनिका, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए, और बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों ने रखे हैं, विचार आप दोनों के बहुत अच्छे हैं। कम से कम आप दोनों अपने फ्रेंड सर्कल में इस चर्चा को तो जरूर आगे बढ़ाइएगा, ताकि वहां भी पॉजिटिव फैले, और इस प्रकार एक से एक करके जैसे दीप से दीप जलता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में पुनः संपूर्ण रूप से सकारात्मकता आएगी और हम एक श्रेष्ठ समाज बनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, देखिए, हर चीज के दो पहलू तो अवश्य होते ही हैं, लेकिन यदि दूसरा पहलू ज्यादा हावी होता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से पहले पहलू पर हमें अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमें सकारात्मकता को बढ़ाना है, और इसके लिए हरेक को जिम्मेवारी लेनी होगी। मुझे याद एक बात आती है, जब हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे और वो इसराइल गए हुए थे, वहां से जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैंने वहां के न्यूज़पेपर्स देखे, वहां सबसे अच्छी घटना को सबसे पहले पेज पे स्थान दिया जाता है, और सबसे जो बुरी घटना है लास्ट के पेज पे बहुत छोटे से डिब्बे में उसे स्थान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शायद बिल्कुल इसके विपरीत है। तो आवश्यकता है मीडिया कर्मियों को भी इस विषय पर विचार करने की, सरकार को भी विचार करने की, और साथ ही युवा वर्ग हमारा जो आने वाले कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसे भी ये अवश्य अपने अंदर एक जागृति लानी है कि हमें क्या चीजें खानी है, स्वीकार करनी है, और किन चीजों को छोड़ देना है। यदि सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा, श्रेष्ठ होगा, स्वर्ग होगा, और यही हम सबकी, समाधान परिवार की कामना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग गाबू इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और सुबह 7:30 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ शनिवार का ये सुबह। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत सुकून देने वाला ये सुबह है। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 अक्टूबर 2026 आज का तारीख है। गुड मॉर्निंग गाबू इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ ही आज का दिन जो है सर्व पितृ अमावस्या का दिन है और विशेष पितृ विसर्जन का भी आज का समय है। पितृपक्ष समाप्त होने वाला भी है और श्रीपाद विशेष रूप से माता महाश्राद्ध भी कहा जाता है। अमावस्या भी, सर्व पितृ अमावस्या भी आज है, तो एक तपस्या का दिन भी आज है और इसके साथ में हमारे मानसिक स्थिति को समृद्ध करने का भी समय आज है। क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या में होता क्या है कि जिनका भी तिथि हमें पता नहीं है उन सभी का जो है श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपने कर्मों का, अपने पुराने हिसाब किताब का पश्चाताप करके उन्हें चुक्त करने का और अपने आप को निश्चिंत करने का ये समय है। तो सर्व पितृ अमावस्या या पितृपक्ष के साथ में जो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर हम अपने पूर्वज या फिर हमारे जो पितृ होते हैं उनके साथ कोई बंधन हो या कोई चीज़ रह गई हो, उन सभी चीज़ों के लिए उनके नाम से जो है तर्पण किया जाना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जिससे उनके आत्मा को शांति मिलती है और वो अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटती है या फिर हम सभी को माफ़ कर देती है। तो इस तरह का ये सुंदर जो है सर्व पितृ अमावस्या का दिन है, तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहूँगा कि आप भी विधि विधान से अपने जीवन के, अपने पूर्वजों के कर्ज को ख़त्म करें और एक नया मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी शुभ आशा के साथ चलिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ आज एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ शुरू करेंगे और सबका भला हो, है ना। ऐसी शुभ आशा के साथ सबका भला हो, सब सही हो, ऐसा कुछ भाव भरा गीत आपको सुनाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप इस खूबसूरत भाव को महसूस करें और जो भावना है वो भाव को अंदर महसूस करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते ज़रूर हैं लेकिन उसको फील करना उतना ही ज़रूरी है कि वो हमारे अंतर चेतना के अंदर ये चीज़ें आ गया है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

करते चलो सब का भला, जीवन जीने की यही है कला। साथियों, जीवन जीने की यही कला है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज सर्वपितृ अमावस्या है, अश्विन माह के अमावस्या को कहा जाता है। अश्विन महीने का कृष्ण पक्ष का वह विशेष काल है जिसमें पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध आदि किए जाते हैं। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की तिथि होती है, किंतु अश्विन महीने के अमावस्या पितृपक्ष की उत्तम मानी गई है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है और महालय समापन या महालय विसर्जन आदि नामों से भी जाना जाता है। यूं तो शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ ये श्राद्ध सदैव कल्याणकारी होता है, परंतु जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को ना कर सके, उन्हें कम से कम अश्विन माह के पितृगण की मरण तिथि के दिन श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितरों का काल शुरू हो जाता है और सर्व पितृ अमावस्या तक रहता है। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर पाते और जिन्हें पितरों की मृत्यु तिथि याद न हो, उन सब के श्राद्ध तर्पण इत्यादि इसी अमावस्या को किए जाते हैं। तो ये विशेष रूप से आज के दिन जिनका भी रह गया हो या नहीं मालूम हो, ऐसे लोगों का जो है तर्पण आज किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को विशेष रूप से सर्वपितृ अमावस्या के बारे में अगर बताएं, तो तिल का प्रयोग इसमें उचित माना जाता है। श्राद्ध कार्य में ब्राह्मणों को मौन होकर भोजन करना चाहिए और भोजन लोहे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध करने वालों को सफ़ेद वस्त्र ही पहनना चाहिए। साथ ही बैंगन की सब्जी भोजन में नहीं होनी चाहिए। सर्वपितृ श्राद्ध अपराह्न में ही किया जाता है और साथ ही श्राद्ध करने वाले परिवार को प्रसन्नता एवं विनम्रता के साथ भोजन परोसना चाहिए। संभव हो तो जब तक ब्राह्मण भोजन ग्रहण करे तब तक पुरुष सुक्त तथा पवमान सुक्त आदि का जाप होते रहना चाहिए। भोजन कर चुके ब्राह्मणों के उठने के पश्चात श्राद्ध करने वालों को अपने पितरों से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। दातारो नो अभिवंत वेदा संतिरेवा श्रद्धा चे नो मा वैगम बहुदेय न चय अस्तिवती। अर्थात पितृगण, हमारे परिवार में दाताओं, वेदों और संतों की वृद्धि हो, हमारे आप में कभी भी श्राद्ध न घटे और दान देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो, तो इस तरह की प्रार्थना की जाती है। और मनुस्तुति अगर देखा जाए, पुराणों में देखा जाए, इन सभी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को, गुड मॉर्निंग, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत। ईश्वर से प्रार्थना ये किया जाता है कि मुझे सब कुछ मिला है, तो सब कुछ हमारे पास होता है। तो सुंदर विधि यही है कि अगर आप आत्मिक भाव से जुड़कर ईश्वर का धन्यवाद करें, मुझे तूने सब कुछ दिया है, तो फिर आपके पास सब कुछ होता है।

मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा, जब हम अनुग्रही हो जाते हैं और अपने आप को नम्र और नम्रचित बना लेते हैं तो चीज़ें सब सेट हो जाती है। जब हम नम्र नहीं होते तो चीज़ें अस्त व्यस्त होने लगती है। तो ऐसा कहा जाता है, जीवन अगर जीना है तो नम्र होना ही जीवन जीने की शान है, और अकड़ के जिएंगे तो मुर्दे की निशानी, क्योंकि जब मुर्दा होता है वो अकड़ा रहता है, उसको फोल्ड नहीं कर सकते या वो झुकता नहीं। तो इसीलिए अगर जीना है तो नम्र हो, ताकि ब्लेंड हो, रियल गोल्ड बने मोल्ड होते हुए, ऐसा कहा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और रियल गोल्ड मोल्ड होने के लिए हमें खुद को टाइम देना है, साइलेंस जोन में जाना है। जब हम साइलेंस जोन में जाते हैं तो साइलेंस ही हमें जो है शक्ति प्रदान करता है, और उस शक्ति से ही हम अपने आप को मोल्ड कर पाते हैं, और जब मोल्ड करेंगे तो रियल गोल्ड भी हम ही बन पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, और आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की तरफ, जो हमें नम्रता के साथ साथ समर्पण भाव को याद दिलाता है, और जहाँ समर्पण है वहाँ सब कुछ है ऐसा कहा जाता है, सच्चा सुख है समर्पण में, जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ

सुख नहीं है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है और इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस में होता क्या है, पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात किया जाता है, जागरूकता के कार्यक्रम किया जाता है और ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कार्यस्थल में मानसिक अवस्था कैसे रखा जाए, क्योंकि कार्य करते समय हमें वहाँ पर काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और गंभीर जो समस्या है वही पर आती है। हमारी मनोस्थिति कार्यस्थल पर शांत और सरल रहे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रथम चिकित्सा में सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों सहयोगों को शामिल किया है। जैसे कि सामान्य स्वास्थ्य देखभाल कभी भी अकेले शारीरिक प्रथम उपचार से नहीं होती, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अकेले मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार के नहीं होती। निसंदेह मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश लंबी अवधि के प्रयास का हिस्सा है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि संकट के कारण कोई भी गंभीर समस्या से पीड़ित व्यक्ति बुनियादी सहयोग प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा जिन लोगों को मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा से ज़्यादा सेवाओं की आवश्यकता होगी उन्हें अतिरिक्त उन्नत सहयोग स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाओं से प्राप्त होगा। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं, लेकिन एक गीत के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो सब शिव बाबा आप और नाम मेरा हो रहा है। तो आइए सर्वप्रीत रू हमेशा अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी है। एक्चुअली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी काम किया जा रहा है और करने लगे हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकार विश्व भर में सामान्य बीमारियों में से एक माना गया है। आजकल विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित जो संख्या

0: सूचना। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत मजा आ गया
0: जी, शुक्रिया।
1: बहुत सबको याद करने का है और बहुत मजा आ गया। आपने मन की बात रेडियो मधुबन ने और आपने इन सर को याद करना चाहिए, शुक्रिया उनका ही करना चाहिए। विश्लेष दुख तो हम हमारे हाथ से लेते, बाकी सुख तो उन्होंने बहुत दिया। उनका जितना धन्यवाद करो उतना ही काम है। शुक्रिया, आपने गाना अच्छा सुना और सुनाते रहे, हम भी सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। गुड मॉर्निंग, आपको नमस्कार करते हैं, रमेश जी को, हमारी शिवा दीदी को भी नमस्कार करते हैं और सभी प्रोग्रामों को नमस्कार करते हुए हम यादों में लहरा रहे हैं। थैंक यू सर, बड़ी और भी गीत लगा देना और हम सुन रहे हैं और मुस्कुराते हैं और रेडियो मधुबन को और सभी को याद करते हैं। हमारे सभी दोस्त,
0: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई, थैंक यू सो मच याद करने के लिए, ढेर सारी खुशियाँ आपको। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर गुड मॉर्निंग आबू इस कार्यक्रम को, और 8 बजने वाले हैं अभी। और मानसिक बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा होता क्यों है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए बीमारियों का मूल कारण को समझ लेते हैं। परिवेश संबंधित तनाव जैसे कि चिंता, अकेलापन, साथियों का दबाव, आत्मसम्मान में कमी, परिवार में मृत्यु या तलाक, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। दुर्घटना, चोट, हिंसा एवं बलात्कार से मनोवैज्ञानिक आघात होना, अनुवंशिक असमानता ही यहाँ पर आती है। तीसरा, उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य या मस्तिष्क की चोट या दोष। पाँचवा आता है अल्कोहल और ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन। छठवा आता है संक्रमक के कारण मस्तिष्क की क्षति। तो ये 6 अलग अलग पार्ट है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ता है। तो इन चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे, इन चीज़ों से बचे रहेंगे तो चीज़ें संभवतः अच्छी हो जाती है। लोगों में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं तो उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो
2: अभी बजे हैं सुबह के 8। स्वयं के प्रति 1 मिनट का समय दें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार हैं गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा कि आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा गीत आप सुन रहे थे और आज सभी जो समर्पण भाव के गीत है वो आपको सुना रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो आइए इस खूबसूरत समय को और यादगार बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं। और बातें चल रही थी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, भ्रांतियाँ जो है लोगों की कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उस पर बात करने वाले हैं अभी हम। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि बड़ी जो गलत धारणा है मानसिक विचारों को या स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति जनता के लिए हिंसक और खतरनाक होते हैं। इस तरह का नकारात्मक रवैया गलत फैमिली के परिणाम स्वरूप मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्ति को समाज से अधिक दूर ले जाता है। इसका परिणाम सामाजिक भ्रांतियां ही है। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति का प्रभावी ढंग से संवाद न करने की क्षमता के कारण उनका संपूर्ण समाज के साथ साथ सामान्य जनता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति जन जागरूकता एवं सामाजिक सहयोग से इन भ्रांतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या कर सकता है। तो ये जो गलत धारणा है कि भाई अब मानसिक जो अच्छा बोल नहीं सा रहा या व्यवहार में ठीक नहीं कर पा रहा, तो उसको हम लोग या तो बहुत दूर कर देते हैं या उसको एग्रेसिव समझ के उसको जो है समाज से भी दूर कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये जो गलत फैमिली, अगर हम उनको साथ में लेके चलेंगे, उनकी समझ को समझेंगे, तो चीज़ें सही हो जाएगी और धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करके उनको नॉर्मल पोजीशन पे ले आ सकते हैं। लेकिन अगर हम उनसे दूर हो जाएंगे तो वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होगा। तो आइए पीड़ित व्यक्ति से व्यवहार जैसे करना है उनकी भावना और स्वभाव को समझें तथा उनके साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने का प्रयास करें। अब मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति के साथ व्यवहार बहुत सुंदर करना चाहिए और उनको लगना चाहिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वो बंदा जो है थोड़ा सा और अच्छे से काम करना शुरू करेगा। उन्हें भावनात्मक और सामाजिक सहयोग दें, उनके साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें तथा उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में सहयोग करें। रचनात्मक मनोरंजनात्मक गतिविधियों जैसे कि पढ़ने, खेलने, घूमने, योग व ध्यान एवं यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें नया सीखने एवं नई रुचियां विकसित करने में प्रेरित करें। उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और रवैया पैदा करें और अपने दैनिक कामकाजों से समय निकालकर उनकी सहायता अवश्य हमें करनी चाहिए। तो इस तरह का जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से उनको अच्छा लगेगा और वो बेहतर होने के कगार पर होंगे। अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो वो एग्रेसिव होना स्वाभाविक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 8:15 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ गुड मॉर्निंग आबू, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए मैं एक और सुंदर सा गीत आपको सुनाने वाला हूं और मुझे लगता है कि आज हम लोग जो समर्पण भाव वाले गीत हैं वो मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इस भाव को समझे। नैया हमारी पार लगाओ प्रभु। तो आइए इस भाव से ये गीत की ओर ले चलता हूँ आपको और आप नाव में बैठकर प्रभु का गुणगान करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गुड मॉर्निंग बाबू, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बड़ा प्यारा सा बहुत ही सुंदर ईश्वर का गीत आप सुन रहे थे। और इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूं। अभी जैसे कि आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, तो बहुत बार हमने देखा है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन भी शुरू हो गया है। गवर्नमेंट और कुछ एनजीओस वगैरह इस काम को कर रही हैं, वहाँ पर बच्चों को सही ट्रेनिंग दिया जाता है। थोड़ा स्लो उनको समझ में आता है चीज़ें, लेकिन वो अच्छे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग अपनी जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ों को जो है समझने में देरी कर देते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ को जो है वो सारी चीज़ें सिखा भी देते हैं, और जब बच्चा कुछ समय तक वहाँ ट्रेंड हो जाता है तो उन्हें फिर वापस घर भेज दिया जाता है, ताकि उनके परिवार वाले ही उसको ठीक से और अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर, जो ट्रेनिंग दिया है उनको, उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को ट्रेन करा सकें। तो ये स्लो एंड स्टडी मेक द मैन परफेक्ट वाला काम है। यहाँ पर धीरज और धैर्य के साथ काम करना होता है, जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें नहीं बनती है। तो इसलिए बच्चों को जो लर्निंग है, जो स्किल है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसे सीखने में भी थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी। तो ऐसे बच्चों को जो है विशेष रूप से हमें सहानुभूति के साथ इनके ऊपर काम करना चाहिए। और दूसरा, जो लोग मानसिक बीमार है, यानी उनके व्यवहार में, उनके चीज़ों में उनको समझ में नहीं आता, लेकिन वो बीमारी है, अब उनके साथ भी हमें जो है बड़ी सहानुभूति से, या आप नहीं समझ पा रहे उनकी बातें, तो थोड़ा दूरी बना के उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ रहने से उसका प्रभाव आप पर पड़ता है और फिर वो क्लैशेस बनी रहती हैं। तो इसीलिए परिवार में भी देखिए, आप जितना ज़्यादा परिवार में पति पत्नी की जो लड़ाई है वो रोज ही होती है तो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से भी होता है। लेकिन दोनों अगर स्वभाव समझकर एक न्यूट्रल वे में बातचीत करना शुरू करेंगे तो उनकी भी समस्या का हल आसानी से हो जाता है। लेकिन ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि समझदारी से काम लेना कोई भी नहीं चाहता, है ना, धैर्य से कोई काम करना ही नहीं चाहता, तो ऐसे में ये सारी दिक्कतें आ जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ और एक और सुंदर गीत जो आपके मन को बहुत ज़्यादा जो है करीब से सुनेंगे। सुनते रहो।

0: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में गुड मॉर्निंग गाबो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ इस कार्यक्रम में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
4: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन है, उन पे सभी पे हमने राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल है वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस है, प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
3: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
5: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजीत वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
6: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया

0: और गौरव दिवस की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्म सम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
2: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
3: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
4: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
5: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
5: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।
7: अभी बजे हैं सुबह के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दें।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कितनी भी बड़ी समस्या हो, अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ भाई, दीपावली जल्दी ही आने वाली है और घरों में साफ सफाई का काम चल रहा है, तो पित्तल और तांबे के बर्तनों को कैसे साफ करेंगे, ये टिप्स आपको जरूर देंगे, ठीक है। और आज की युवा पीढ़ी शादी तो कर लेती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाते। इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हो ना आप सभी, तो जरूर तैयार रहिएगा। और बनाएंगे गर्मा गर्म कुछ खास, वो क्या, वो सस्पेंस रहेगा भाई। आप आशियाना सुनिए, सब कुछ जान जाएंगे और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ, तो तैयार रहिएगा आशियाना में प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो अभी सुन लेते हैं गीत, पुनः लौट करके आ रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति मिल ही जाती है। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूंगी स्पष्ट। कि एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में बहुत ही निपुण था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उनकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसके पत्नी पर पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते पत्नी थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेदों शास्त्रों में पंडित है, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे काम करने वाला व्यक्ति उस यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रह करके काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर के यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ ही साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की ये शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी तो बड़े प्रसन्न हुए, पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा करके वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर के खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले बर्तन पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वह जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बड़ा था, बहुत ही बड़ा था, सो घर का पूरा काम करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। ये काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि ये काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगी तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इसलिए प्यारे श्रोता बंधुओं, कहने का भाव यही है कि कितनी भी बड़ी समस्या हो अगर युक्ति से चलते हैं तो समस्या से मुक्ति जरूर मिलती है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे। और आइए सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: Hi, this is Ravina Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: You are listening to the program. और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर टिप्स। देखिए दीपावली के दिन चल रहे हैं भाई, दीपावली बहुत ही जल्दी आने वाली है और घरों में साफ सफाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले हम साफ सफाई करेंगे, घर हमारा चमकेगा, तभी तो दीपावली पर हम माता लक्ष्मी जी का आह्वान कर पाएंगे ना। तो स्वाभाविक है कि घर की साफ सफाई में हम बर्तनों को तो मांजते ही है, सब कुछ पूरे घर को हम अच्छे से स्वच्छता से साफ करते हैं, सारे ही सामान को उथल पुथल करके वहां से हटा के साफ करके उस जगह को साफ करके फिर वहां पर वापिस व्यवस्थित रखते हैं। तो भाई पित्तल के बर्तन की तो वैल्यू बहुत है, स्टील के बर्तन तो अभी चले हैं, पहले के समय में पित्तल के बर्तन ही चलते थे और हमारे दादी नानी के जमाने में पित्तल के बर्तन में ही भोजन पकाया जाता था, खाया जाता था। पित्तल के, तांबे के ये बर्तन सबसे ज्यादा चलते थे। आप पनियारे पर देख लीजिए, तांबे के घड़े रखे जाते थे पानी भर के, वो भी कुएं से ला करके। तो अभी समय के साथ परिवर्तन हुआ है, माताएं बहनें थोड़े काम धंधे में नौकरी में व्यस्त हो गई है, भाई लोग भी, तो पित्तल और तांबे के बर्तन को हटा ही दिया गया, क्योंकि उसमें मांजने की मेहनत है ना, स्टील के बर्तन में कोई मेहनत ही नहीं है और मेहनती काम आजकल कोई करना नहीं चाहते। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसा मत सोचना है कि मैं सभी के लिए कह रही हूँ। आज भी बहुत जने पित्तल और तांबे के बर्तन रखते हैं और बड़े ही उसको प्यार से साफ करते हैं। तो आपको बहुत ही सरल टिप्स देती हूँ ताकि तांबे और पित्तल के बर्तनों को फिर से चमका सको। देखिए मैंने तो देखा है बहुत जगह पर, विशेष करके गुजरात में, कि पित्तल के बर्तन और तांबे के बर्तन को बहुत ही अच्छी तरह सजा करके रखते हैं दीपावली के दिनों में। वो मांज मांज के थक जाते हैं, बोलते कि बहन जी क्या करे, लेकिन जब ये चमकते तो बड़े अच्छे लगते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो सही कहा है कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपके बर्तन ऐसे चमकेंगे कि बस आने वाले देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ बहुत ही सुंदर की। देखिए बाजार में पीताम्बरी पाउडर आता है बर्तन मांजने के लिए, जो पित्तल और तांबे के बर्तन है उसमें आप पीताम्बरी पाउडर को यूज करेंगे तो बर्तन बहुत ही अच्छी तरह चमकेंगे। इसमें खास मेहनत नहीं है, आपको क्या करना है, पीताम्बरी पाउडर लाना है और जो अपने बर्तन मांजने का स्क्रब होता है ना, जिसको हम देसी भाषा में कुच्चा कहते हैं, लोखन वाला, ठीक है, तो उस कुच्चे से आप उस पीताम्बरी पाउडर को लगाइए और साफ करिए। ज्यादा आपको रगड़ने की जरूरत नहीं, आप हल्के हल्के हाथों से पित्तल और तांबे के बर्तन को रगड़ेंगे ना, घिसेंगे तो भी बर्तन चमक उठेंगे, ठीक है। तो ये टिप्स आपको मिल गई है। पीताम्बरी पाउडर का पैकेट आता है मार्केट में और आप इससे आसानी से पित्तल और तांबे के बर्तन को मांज सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स आपको दे रही हूँ। नींबू तो देखिए सभी लाते हैं, नींबू का रस निचोड़ दीजिए, इसमें नमक मिला दीजिए, फिर कुच्चे से इस कुच्चे को पूरा भिगो दीजिए अच्छी तरह और फिर तांबे और पित्तल के बर्तन को हल्के हल्के हाथों से रगड़िए। 5 मिनट के बाद फिर से घिसिए साफ, ना आपको पाउडर ना लिक्विड लगाने की जरूरत है, बस नींबू में नमक डाल दीजिए नींबू के रस में और कुच्चे से इसको अच्छी तरह घिस दीजिए, तो पित्तल और तांबे के बर्तन चमक उठेंगे और बर्तन चमकेंगे तो हमारे चेहरे के मुस्कुराहट भी बढ़ेगी, क्योंकि इतने सरल तरीके से साफ हो गए। पहले तो हम बहुत घिसते थे, घंटों घंटों लग जाते थे और एक 5 मिनट में बर्तन चमक उठे तो खुशी तो होती है ना। और लास्ट टिप्स ये कि अगर आप नींबू यूज नहीं करना चाहते हैं तो विनेगर और नमक ये आप यूज करिए। विनेगर और नमक को मिक्स करके कुच्चे से फिर आप मांजिए बर्तन को, तो इससे भी बर्तन तांबे और पित्तल के चमक उठेंगे। तो ये टिप्स आपको मिली है, जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको आजमा सकते हैं। अब मैं आज का प्रश्न पूछने जा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, बस इससे आगे नहीं बोलूंगी। चुंडावत ने जब अपनी पत्नी से निशानी मांगी युद्ध पर जाते समय, तो क्षत्राणी ने सिर ही काट के दे दिया। तो उस क्षत्राणी का नाम आपको बताना है, ठीक है? रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: किसी ने कुछ ठीक ही लिखा है कि मांग भरने की सजा कुछ इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूँ। तो ये विषय आपको दिया है, आप चर्चा में राय अपनी व्यक्त कर सकते हैं कि शादी ब्याह, आज की पीढ़ी शादी ब्याह तो करने के लिए उत्सुक रहती है परंतु रिश्ते टिका नहीं पाती है। देखते हैं कि समाज में ज़्यादातर रिश्ते टूट रहे हैं, सहन शक्ति कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती जा रही है। बहुत कुछ देखते हैं आजकल शादी ब्याह में। लड़की वाले तो इतना कुछ देखते हैं कि लड़के के घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भले अपने घर में कुछ हो ना हो लेकिन मेरे अपनी बेटी की शादी जहाँ करूँ वहाँ पर सब कुछ होना चाहिए, और फिर भी करते भी हैं लेकिन उसके बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद भी लड़कियाँ टिक नहीं पाती अपने ससुराल में और तलाक ले लेती हैं। तलाक के पीछे बहुत सारे बातें भी होती है, वो आप सभी जानते हो कि खर्चा भी लेती है, घर का हिस्सा भी लेती है। तो समाज में ये क्या हो रहा है? देखिए, आप सभी सामाजिक प्राणी हैं, हम सभी, आप भी, तो आप भी देखते हैं आपके आसपास या कहीं पर तो इस तरह की बातें होती होगी, तो आप भी चर्चा में राय व्यक्त कर सकते हो। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। जब चूंडावत ने युद्ध में जाते समय अपनी पत्नी से निशानी मांगी तो उनकी पत्नी ने सिर काट करके दे दिया। तो ऐसी क्षत्राणी का आपको नाम बताना है, ऐसी रानी का नाम आपको बताना है। नंबर 94141514-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब भी आपको देना है और विषय में भी आप भाग ले सकते हो। हेलो,
3: जय माता दी, जय श्री हरि।
2: जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
3: सभी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार
2: जी।
3: टॉपिक तो बहुत ही सुंदर लेके आई है। सबसे पहले तो मैं एक विश करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ?
2: हाँ जी,
3: आपकी इजाजत हो तो।
2: जी जी, कहिए।
3: मेरे पति का जन्मदिन है तो उनके जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं।
2: जी जी, हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके भतीजे के जन्मदिन पर। बहुत बहुत खुश रहे वो, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़े और हमेशा स्वस्थ रहे।
3: भाई नाम है उसका। और आज का टॉपिक है तो देखिए, अभी जो कुछ हो रहा है ना उसी पे आपने टॉपिक लिया, बहुत सुंदर टॉपिक है
2: जी।
3: कि शादियाँ हो जाती है फिर मतलब तलाक भी लेना नहीं चाहती है और उनको खर्चा भी चाहिए
2: जी।
3: ऐसे भी मैटर देखे है
2: जी।
3: तो मैं कहना चाहूंगा अगर वो ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो चलो दे सकता है, मगर कोई बंदा ऐसा भी होते है जो 10-15 हजार महीने के कमाता है
2: जी,
3: और वहाँ वो खर्चा पहुँचाएगा तो वो खुद पर घर कैसे चलाएगा, खाएगा क्या
2: जी।
3: तो मैं जो भी, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच गई है उन सभी बहनों से यही मेरी गुजारिश है कि आप अगर शादी कर रहे हो, आपको पसंद नहीं है तो तलाक करके छुट्टी कर सकते हैं
2: जी।
3: केशबाजी में भी कोई बेनिफिट नहीं है और ऐसे मतलब गरीब परिवारों को दुखी करने में भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि परमात्मा देख रहा है
2: जी।
3: अगर वो कोई मतलब उनकी गलती है तो आप उनको सजा दे सकते हो, मगर कोई उसमें गलती नहीं है, वो राजी खुशी रखना चाह रहे हैं उसके बावजूद भी ये गलत फहमियाँ कुछ हो जाती है, तो ये गलत है ना कि किसी को बिना कसूर के फिर दर्द दुख देखना पड़े
2: जी।
3: तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, और रही बात की शादी करे तो देख के, मतलब थोड़ा बहुत देख के, मतलब कुछ समय के बाद में जल्दबाजी में शादी भी जाना
2: जी
3: तो सही रहेगा। और रही बात दूसरी, तो मैं सभी बहनों और भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मतलब कई ऐसे कुछ वहम वगैरह भी हो जाए ना, तो उसका सही मुजारा करना चाहिए, उसकी सही जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाए।
2: जी जी।
3: तो दूरियां बनी मतलब नजदीकियां बनी रहेगी, नहीं तो दूरियां आ सकती है। और बस कुछ बहनों मेरे देखने की भी बात हुई है, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे कदम उठाने से पहले लाखों बात सोचिए। थैंक यू।
2: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर आपने स्पष्ट किया है। देखिए, शादी ब्याह तो होते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, और एक दूसरे को देख करके, परख करके, समझ करके ही शादी करते हैं। क्योंकि पहले के समय में तो ऐसा होता था कि एक दूसरे को देखते नहीं थे, परिवार वाले ही फाइनल करते थे कि भाई आपकी लड़की हमें पसंद है, और शादी फाइनल हो जाती थी। लेकिन लड़के लड़के आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे को देखते नहीं थे, फिर भी रिश्ते टिकते थे। कभी पहले के समय में सुना आपने कि भाई वो छोड़ के चली गई, या उनका तलाक हो गया, अब वो मायके जाकर के बैठ गई? बिल्कुल नहीं। वो 100-200 में एक आध केस ऐसे होते थे तो ये समस्या आती थी। और आज तो आप देख लीजिए, 100 में से कुछ ऐसे है जहाँ पर रिश्ते टिके रहते, बाकी अधिकतर लड़ाई झगड़े और फिर तंग आ करके घर परिवार छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। और ये भी है कि देखिए, हम एक बार बात करेंगे अपने श्रोता बंधु से। हेलो,
4: हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में, सुरेश भाई।
4: जी जी जी, बहुत अच्छी बात हो रही है
2: जी।
4: और अभी अभी जो आपने दीदी बताया कि बिल्कुल सही बात है कि पहले जमाना में कोई देखता नहीं था, लड़की लड़का ने देखता, माँ बाप करते वो सही हो जाता था
2: जी,
4: और कभी भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था
2: जी।
4: तो पूरी जिंदगी तक सबर सीखते थे
2: जी।
4: लेकिन आज नहीं, पता नहीं, आज इतने सब कुछ देखते हैं, सब कुछ तय होने के बाद ही शादी करते हैं, बाद में भी ऐसा होता है। तो इसका मतलब तो देती है कि अभी लोग को सहन शक्ति भी बिल्कुल नहीं है। कुछ बात हो जाती है तो तुरंत बोल देते हैं हमको रिश्ता नहीं रखना है, हमको ये नहीं करना है
2: जी।
4: तो और दूसरी बात कि आप कितना ही दो लड़के वाले को, फिर भी वो बस यही बात करता है, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, ये हमारे पास नहीं है तो ये दे दो, हरदम मांगने की ही बात करते हैं
2: जी।
4: तो माँ बाप भी कई ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जो माँ बाप का आंसर दे सकते हैं
2: जी।
4: तो ये मांग भी सही नहीं है, इसीलिए भी रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि माँ बाप के पास कुछ नहीं होता है। तो
2: जी जी जी,
4: सामने वाला मांगता है शायद बेटी को दुख तो होता है कि मेरे पास को पास कुछ नहीं है, फिर भी ये मांग करता है, तो
2: जी जी
4: सही नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा।
4: माँ बाप भी कई बार, माँ बाप भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है तो सामने वाले को हम तो इतना बेटी को, वो हमारी बेटी को ये चाहिए, हमारी बेटी को ये चाहिए, सब होना चाहिए। ये भी एक बात सही है, इसी कई बार क्या होता है हमारे घर में कुछ नहीं होता, वो सामने वाले को हम सब कुछ बोलते हैं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बंगला नहीं है, उसके पास कोई अच्छा टैलेंट नहीं है, जॉब नहीं है
2: जी।
4: लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि सामने वाले पास कुछ ना हो, लेकिन इसके पास रिश्तेदारी हो, खानदानी हो, उसका लड़का अच्छा हो, अच्छी तरह से वो करका जो पूरा कर सकते हो, और लड़का सीधा साधा हो, तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है
2: जी।
4: हम कई बार क्या होता है, ज्यादातर बहुत बड़े लोग भी शादी करते हो तो यही प्रॉब्लम रहता है
2: जी जी।
4: तो हम बराबरी का रिश्ता करें तो यही रिश्ता सीख सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत आभार आपका।
4: मैं तो यही कहूँगा, बस बराबरी में रिश्ता करिए, और सब चीज़ें सब कुछ देख के करिए तो अच्छा रहेगा
2: जी जी जी। बहुत सुंदर जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया आपने। अब यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा, प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा। चूंडा वत्त मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर ही काट करके दे दिया? तो प्रश्न का जवाब भी दीजिए और विषय में भी जरूर भाग लीजिए। नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और रेडियो मधुबन से आप जुड़ सकते हो। आइए सुनेंगे एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे हैं? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: चूंढावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, इस पर आपको जवाब देना है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपने पति को सिर काट करके ही दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम आपको बताना है। भाई आप सभी देखिए राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान का ही ये इतिहास है और ये इतिहास तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आप जो भी आशियाना सुन रहे हैं जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इतिहास की बातें हैं तो इतिहास में तो अगर हम बात करते हैं तो और हमारे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो होती है लेकिन कुछ ऐसे हम टॉपिक को लेकर आते हैं या फिर अच्छे अच्छे से गीत सुनते हैं तो उससे और भी हमारे मन में देश के प्रति प्रेम बढ़ता है। और ये राजस्थान का इतिहास है कि ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने अपने पति को निशानी के तौर पर सिर काट करके दे दिया है। तो जिन्होंने भी पढ़ाई की हो जरूर आप जवाब दे सकते हैं, और पढ़ाई नहीं की है तो ठीक है, फिर तो आपको हम बताएंगे, जवाब देंगे ताकि आप इतिहास को जान सको। तो देखते हैं अब किन्होंने पढ़ाई की है, जवाब आएगा, फोन कॉल्स आएंगे तो पता चल जाएगा। और विषय भी बहुत सुंदर है कि भाई शादी ब्याह तो कर लेते हैं लेकिन रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, क्या करें। बहुत से पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों को इतना उमंग उत्साह से शादी करवाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माता पिता बेचारे पूरे कहते हैं ना जिंदगी भर की कमाई लुटा देते हैं, उसके बाद रिश्ते नहीं टिकते और इस तरह लड़कियां घर छोड़ करके चली जाती है, बेटा वापिस कुंवारा। बेटी के भी माता पिता को कोई कम दिक्कतें नहीं आती है, दोनों ही परिवार को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर वो दूसरी जगह देखते हैं कि कहीं अच्छा मिल जाए। तो देखिए जीवन में थोड़ा बहुत तो सबके जीवन में तकलीफ होती ही है, और कहते हैं कि कुछ समस्याएं आती है तो हमें भी उस समस्याओं का सामना करने का अवसर मिलता है। अगर समस्या नहीं आती है तो कैसे जिंदगी का आभास होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव भी है, एक रस जीवन सभी के जीवन में नहीं होता है। तो कहते हैं कि रिश्ता टूटे उससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत वही सहन कर लो, और सहन शक्ति अगर वो कहते हैं ना कि लिमिट से बाहर हो जाती है तो स्वाभाविक है एक रबड़ को आप कितना खींचेंगे, ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूटेगा ही। तो रिश्ते भी ऐसे हैं कि अगर मजबूरी से निभाए जाए तो फिर वो टिकेंगे नहीं, टूट जाते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर देखिए अलग अलग समाज की अलग अलग बातें हैं, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि भाई दहेज बहुत मांगते हैं और डिमांड पूरी नहीं होती है तो भी इस तरह रिश्ते टूट रहे हैं, तो इस तरह भी होता है। हेलो
4: हेलो, नमस्कार जी।
3: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो आप भोरीलाल जी? जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या बात है, आप तो हमेशा मुस्कुराहट के साथ ही आते हैं, बहुत अच्छा है। तो आज के विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? आज के विषय
4: प्रश्न सवाल भी बहुत अच्छा है, प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है
3: जी।
4: तो क्या है कि रिश्ते में तो टिकते ही नहीं है ज्यादातर,
3: क्यों नहीं टिकते?
4: लोगों में एक चीज जो सहनशीलता है ही नहीं
3: जी,
4: इसलिए रहते ही नहीं है
3: जी, जी, जी।
4: इसलिए कह रहा हूँ कि दो ही पार्टी को बराबर रहना चाहिए, समानता का अधिकार रखना चाहिए और ज्यादा दहेज वहेज के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ना चाहिए
3: जी जी,
4: ये
3: जी,
4: मेरा कहने का है
3: जी जी, बहुत सुंदर बात है।
4: वो पद्मावती होनी चाहिए मेरे ख्याल से।
3: अच्छा ठीक है,
4: ये मेरा सवाल तो
3: ठीक है। तो भूरीलाल जी आप आशियाना कार्यक्रम सुनिए, हम जवाब जरूर देंगे आपका, ठीक है?
4: ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम मिलेगा मैं रुकूंगा
3: जी जी,
4: बाकी चला जाऊंगा।
3: नहीं नहीं जाना नहीं है आपको, रुकना है।
4: धंधा करना ही पड़ता है सर।
3: नहीं नहीं धंधा तो देखिए, बिजनेस तो पहले, वो करिए आप
4: जी,
3: लेकिन आप ईयरफोन लगा के रखिएगा और सुनते भी रहिए कार्यक्रम, ठीक है? बीच बीच में समय मिले तो जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि देखिए सहनशीलता होना जरूरी है, लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि लड़कियां भी, एक हमारे ही लिसनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनके साथ भी इस तरह की परेशानी हुई है और उन्होंने कहा है कि लड़कियां शादी कर तो लेती है लेकिन फिर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है, इसलिए थोड़ा सा अनबन करके घर से चली जाती है और पैसे ऐंठती है पति से और रहना नहीं है साथ में, सास ससुर की सेवा। अरे सास ससुर की सेवा क्या, देखिए आजकल तो बूढ़े बूढ़े माता पिता भी अपना काम खुद कर रहे हैं, अपना ही नहीं पूरे घर परिवार का काम कर रहे हैं, तो कौन से हम उनकी सेवा कर रहे हैं? और जरूरत पड़ने पर हम भी तो बीमार हो जाते हैं ना, तो हमारी भी सभी मदद करते हैं, ऐसे वो भी बीमार होते तो उनके मदद, उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। हेलो
5: जी, नमस्कार, ओम शांति।
3: हाँ जी नमस्कार कुपाराम जी, ओम शांति, कैसे हो आप?
5: बस बहुत अच्छे कार्यक्रम सुन रहे
3: जी।
5: पहले तो वो आपका प्रश्न बता देता, वो तो हांडी रानी है
3: जी,
5: और एक बटालियन भी बनी हुई है हांडी बटालियन
3: जी,
5: इसके नाम से हांडा परिवार में हुई है
3: जी,
5: की स्टोरी तो बहुत लंबी है, फिर आप भी बताना
3: जी जी जी।
5: और ये विषय चल रहा है मेरे हिसाब से क्या नए नए होते हैं ना,
3: हाँ जी,
5: ये उनको अभी ये मालूम नहीं, लेकिन तो पूरी दुनिया में ऐसा होता रहा, खटपट वाली बात तो छोड़ना नहीं है, उसके साथ संघर्ष करना है
3: जी।
5: जैसे कोई भी गाड़ी आती है तो ड्राइवर होशियार होगा ना
3: जी,
5: उनको ठिकाना लाता है वो, और रिश्ते तोड़ के वो फिर दूसरी जगह जाएगी भी कहाँ
3: जी,
5: वहाँ भी परेशानी तो होगी, वो खड़ी होगी
3: जी। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत ही परेशानी होती है घर में, तो फिर क्या करना चाहिए? बहुत जैसे कोई समझने को तैयार नहीं, लड़ाई झगड़े ताने मारना, तो फिर क्या होगा?
5: वो तो ऐसे करना पड़ता है थोड़ा सा
3: संघर्ष।
5: हाँ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे थोड़े दिन

0: लेकिन वो उसके उसको सोचना है कि मेरे घर को बिगाड़ना है कि सुधारना है, वो उसके ऊपर है।
1: जी जी जी,
0: फिर समय तो निकल जाएगा, थोड़े दिन उधर गए ना, थोड़े दिन उधर गए ना, फिर कहेगा हम तो पीछे रह गए।
1: जी,
0: ऐसे तो वो पीछे ही रहेंगे।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत सुंदर बात आपने कही है, आभार आपका। और देखिए, ये टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात करे उतनी कम है, हर प्रकार के पहलू हुए इसमें। कहीं पर दहेज की डिमांड है, तो कहीं पर पति की ज्यादती है, कहीं पर नशे में ग्रस्त रहते हैं वो भी, पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, और कहीं कहीं पर पत्नियां भी कम नहीं होती है, वो भी पैसे ऐड करके चली जाती है। कोई पैसे मतलब ऐडने के लिए आती है तो फिर वो ऐड के चली जाती है, लेके चली जाती है। मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि तलाक तो लेती नहीं है भाई, साइन नहीं करूंगी लेकिन मैं रहूंगी नहीं तुम्हारे घर में, और फिर भरण पोषण देना ही पड़ेगा। तो ये भी हर प्रकार के पहलू है, ऐसा नहीं है कि एक तरह की समस्या है, लेकिन सभी का तोड़ यही है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए और समझाने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझते हैं, बेसिर पैर की बातें होती है और बिल्कुल समझते नहीं है, देख लेते हैं कि साल, दो साल, तीन साल या पाँच साल में भी अगर ससुराल वाले नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो। और मैं तो हर माता पिता से भी यही कहना चाहूँगी कि बेटी को अगर आप विदा करते हैं तो उनको यही शिक्षा दीजिए कि भाई आप घर में शांति से और प्यार से रहिए, क्योंकि अगर बेटी की शादी होती है तो वो सिर्फ पति ही उसका सब कुछ नहीं होता है, पति का जो पूरा परिवार होता है वहाँ पर, सास, ससुर, ननंद, भाई, देवर, जेठ जो भी होते हैं, सभी को सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही रिश्ते टिकते हैं। बाकी ठीक है, मैं तो पति का कहना मानूंगी, बाकी सभी का कुछ भी नहीं करूंगी, सामने बोलूंगी, जबान लड़ाऊंगी, वो नहीं चलता है। इसलिए परिवार में अगर रहना है, परिवार को टिका के रखना है, तो सभी के साथ प्यार से रहना होगा, और सभी का सम्मान करेंगे तो सभी का प्यार भी मिलेगा। इसलिए पति के घर वालों को भी कहना चाहूंगी कि वो भी आने वाली बहू का दिल से स्वागत करें और उसको एक बेटी की तरह प्यार देवे। मैं जानती हूं कि बहू बहू ही रहेगी, बेटी नहीं बन सकती, लेकिन बेटी का प्यार तो दे सकते ना। कहीं कहीं पर तो देखने को मिलता है कि बेटियों से भी बढ़कर के बहुएं होती है और पूरे ही अपने पूरे ससुराल वालक जो परिवार का पूरा ही ध्यान रखते हैं। तो हर तरह की बातें आती है इसमें, लेकिन बस थोड़ा सा सहन कर लीजिए, थोड़ा सा एक दूसरे को पहचानिए, एक दूसरे को समझिए, तो ये रिश्ते टिकेंगे और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। बाकी तो कहते हैं कि रिश्ते टूटने में तो कोई देरी नहीं लगती, भड़काने वाले कितने ही आ जाते हैं, लेकिन स्वयं को सोचना होता है कि हमें क्या करना है। हमें अपने परिवार को टिका के रखना है, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी को टिकाए रखनी है या तोड़नी है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी, तो ऐसी कौन सी क्षत्राणी है जिसने निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए बढ़ते हैं गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो भाई, इतने बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, कल शरद पूर्णिमा है, फिर दीपावली, दीपावली के आसपास तो कितने सारे त्योहार होते हैं, और त्योहारों की तैयारी तो पहले ही कर लेते हैं, इसमें मिठाइयाँ वगैरह भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना करके रखते हैं। कहते हैं ना कि भाई दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि बहुत सारे टू मच मिठाइयाँ, नमकीन आइटम बना बना करके रखते हैं, ताकि मेहमान जब दीपावली पर आना शुरू करे तो उनको हम मिठाइयों और नमकीन आइटम के साथ उनका वेलकम करते हैं, है ना। आते हैं तो बहुत प्यार से उनको बिठाते हैं, खिलाते हैं। तो सोचा कि क्यों ना आपको मैं इमरती सिखा दूँ, ताकि आप ऐसे बड़े त्यौहार पर आप इमरती बना सको और अपने गेस्ट को खिला सको। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ, जलेबी की तरह ही होती है इमरती, लेकिन फिर भी टेस्ट में फर्क है, क्योंकि जलेबी बनाते हैं मैदे की, और ये बनाएंगे हम उड़द की दाल की इमरती, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है। जलेबी टेस्टी लगती है, इसी तरह इमरती भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ, 250 ग्राम लेंगे आप उड़द की दाल, ठीक है। फिर आप लीजिए 1 किलो चीनी। अब आप 50 ग्राम दूध ले लीजिए, और 25 ग्राम लेना है मैदा। फिर आप आवश्यकता के अनुसार घी लीजिए, और खाने का मीठा रंग लेना है, ठीक है, जिसको नारंगी रंग भी कहते हैं। तो बस सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, इतनी सी ही सामग्री है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 1 किलो चीनी, फिर आप लीजिए 25 ग्राम मैदा, आवश्यकता के अनुसार घी, और 50 ग्राम दूध। फिर आप खाने का ले लीजिए मीठा रंग, ठीक है। अब बनाने का तरीका भी आपको साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि इमरती कैसे बनाई जाती है। आप क्या करेंगे, दाल को अच्छी तरह धो करके भिगो दीजिए, ठीक है। दाल कम से कम 4 घंटे भीगी रहने दीजिए, ताकि वह अच्छी तरह से फूल जाए। इसके बाद दाल का छिलका निकालिए, उसे खूब बारीक पीस लीजिए। अगर मोगर है तो आप मोगर को गलाइए, ठीक है। इस तरह आप कपड़े में पानी डाल करके गला कर रखिए, और अगर मोगर नहीं है तो फिर छिलके वाली दाल को भी आप भिगो सकते हैं। 4 घंटे में तो सारे छिलके निकल जाएंगे, तो इन छिलकों को निकाल दीजिए, फिर बारीक पीसना है, ठीक है। पीसी हुई दाल में मैदा और रंग मिला करके परात में आप डालिए, जिसको गुजराती में कचरोट कहते हैं। तो कचरोट में डाल करके काफ़ी देर तक अच्छी तरह उसको फेंटिए। इतना फेंटना है कि फेंटते फेंटते दाल का हल्कापन आ जाए। पहले जब हम फेंटेंगे ना तो हमको भारी भारी लगेगा, लेकिन अच्छी तरह जब फेंटेंगे, फेंटते ही जाएंगे, तो फिर हल्कापन आ जाएगा। इतनी देर तक आपको फेंटना है। फिर एक तवी लीजिए, समतल कढ़ाई भी कहते हैं इसको, तवी जिसमें मालपुआ भी बनाते हैं, तो ऐसी तवी आपको लेनी है, ठीक है। तवी में ही हम ये बना सकते हैं इमरती। तो फेंटी हुई दाल को एक कपड़े में रखिए, स्वच्छ कपड़ा लीजिए, उसमें भरिए फेंटी हुई दाल, ठीक है। इतना लीजिए कपड़े के आवश्यकता के अनुसार, भाई कपड़ा छोटा और दाल का खीरा ज़्यादा भर देंगे ना तो ऊपर से निकलेंगे, जब आप दबाएंगे तो ऊपर से निकल जाएगा सारा खीरा, इसलिए आप कपड़ा ऐसा लीजिए और उसमें आवश्यकता के अनुसार ही इस खीरे को भरना है, ठीक है। और नीचे से काना कर दीजिए, काना बोले तो खड्डा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा सा छेद कर लिया। अब आप तवी में घी डाल दिया, घी गर्म हो जाए तो फिर आप बस कपड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह पकड़ लीजिए ऊपर से, और थोड़ा सा प्रेशर दे करके एक अपन चूड़ी कैसे पहनते हैं ऐसे गोल गोल गोल गोल आप डालिए तवी में, ठीक है। जो साइज आपको पसंद है उस साइज में डाल करके फिर आप दूसरी डालिए, फिर तीसरी डालिए, फिर चौथी डालिए, घी के अनुसार, तवी के अनुसार, जो साइज है उसके अनुसार आप इस तरह इमरती डालिए, फिर इसको आप पलटी लगाइए अच्छी तरह, एक तरफ से सिक जाए तो दूसरी तरफ से पलटी लगाइए। पलटी लगाने के बाद इधर आपने जो शक्कर ली है ना, तो उसके आप चाशनी बना लीजिए, ठीक है। चाशनी बनानी है फिर इस चाशनी ज्यादा देर के कड़क नहीं करनी है, चाशनी को एक तार की चाशनी बनानी है जैसे कि गुलाब जामुन की बनाते हैं ऐसी, ठीक है। और फिर इस चाशनी में आप इमरती को डालते जाइए, तो इस तरह सारी इमरती बना लीजिए। बहुत सरल तरीका है ना, हाँ जरूर आप बना करके देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और एक नई आइटम बनाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, गुलाब जामुन नहीं, इमरती और जलेबी हम बाजार से लाते हैं, घर पर बनाते नहीं है। लेकिन घर पर अभी दीपावली का त्योहार है, बाजार से कितना लाएंगे, घर पर बनाएंगे तो अच्छा है ना, थोड़े से क्वांटिटी में बनेगी वही चीज और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम खुद अपने हाथ से बना रहे हैं, ईश्वर की याद में, प्रभु की याद में बनाते हैं, स्वच्छता से बनाते हैं, तो वो क्वालिटी वाली भी हो जाती है और क्वांटिटी तो बढ़ती ही है। एक किलो आप बाजार से लाइए और एक किलो ही आप घर पर बनाइए, देखो कितना बैठती है, तो सस्ती पड़ती है घर पर, ठीक है। तो इस तरह इमरती बनाई जाती है। फिर से मैं तरीका समझा रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह बना सको, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो उड़द की दाल ली है ना, उसको आप पानी में डाल करके भिगोइए। अगर मोगर है तो मोगर भिगोइए, नहीं है तो छिलके वाली दाल भी भिगोइए। 4 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह ये दाल फूल जाए। 4 घंटे के बाद जो छिलके हैं ऊपर आ जाते हैं, सारे हटा दीजिए, निकाल दीजिए और फिर इसको बारीक पीस लीजिए, ठीक है। पीसी हुई दाल में फिर आप मैदा और रंग डालिए, खाने का जो रंग लिया है ना वो डालिए, और एक परात में, चौड़े बर्तन में, जिसको कचरोट भी कहते हैं, परात कहते हैं राजस्थान में, हिंदी भाषा में भी परात कहते हैं, गुजराती में कचरोट कहते हैं, चौड़े बर्तन में आप निकालिए और अच्छी तरह इसको फेंटिए। फेंटते समय थोड़ा भारीपन महसूस होगा, जब फेंटते जाएंगे तो हल्कापन आ ही जाएगा, तो इतनी देर तक आपको फेंटना है, ठीक है। अब फेंटने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको अच्छा से इकट्ठा कर लीजिए, और कढ़ाई नहीं तभी रखनी है आपको गैस में, और इसमें घी डालिए आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। और इस खीरे को आप क्या करेंगे, एक स्वच्छ कपड़ा लीजिए, वाइट सूती, ठीक है, इसमें आप भरिए और भर करके चारों ही कोनों को लपेट करके हाथ से पकड़ लीजिए मुट्ठी में, ठीक है, नीचे से एक छेद कर लीजिए और फिर थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर देते हुए तवी में जब घी गर्म हो जाए तो मध्यम आंच पर आप चूड़ी की तरह गोल गोल गोल गोल गोल गोल डालते जाइए। तो जो आपने घी डाला है, तवी की साइज है, उस अनुसार इमरती आप बनाइए, 3, 4, 5 डालिए, ठीक है। फिर आप जाले से इसको पलटी मारिए, जब दोनों तरफ से अच्छी तरह लाल लाल हो जाए तो फिर आप एक तरफ चाशनी बना दीजिए एक तार वाली, और उस चाशनी में फिर आप इन इमरती को डालते जाइए। तो ये इमरती तैयार है। फिर चाशनी जब पी ले वे इमरती, तो फिर आपको निकाल देना है, चाशनी में ही नहीं रखना है। गुलाब जामुन को हम चाशनी में रखते हैं लेकिन इमरती को चाशनी में नहीं रखते हैं। अच्छी तरह वो जब चाशनी पी ले तो आप निकालते जाइए, दूसरी इमरती डालते जाइए, उनको निकालिए, फिर तीसरा पाया डालिए, इस तरह इमरती आपको बनानी है, ठीक है। तो चलिए इमरती बन चुकी है हमारी। अब भाई मीठा सिखाया है तो कुछ नमकीन तो जरूर बनाना पड़ेगा, परंतु एक ब्रेक के बाद, ठीक है। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे इमरती। अब बना देते हैं भाई नमकीन आइटम में चीज की पकौड़ियाँ। बहुत तरह की आपको पकौड़ियाँ सिखा चुकी हूँ, तरह तरह की। देखिए पकौड़ी तो ऐसी है कि बहुत अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, और हर जिस भी तरीके से हम बनाते हैं सभी स्वादिष्ट ही लगती है। तो आपको रतालू की, कच्चे केले की, न जाने कौन कौन सी आपको पकौड़ियाँ सिखा चुकी हूँ। आज सोचा कि चीज़ की पकौड़ी आपको सिखाऊँ। तो इसके लिए सामग्री ले लेंगे आप 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधी कटोरी पानी ले लीजिए और एक चौथाई छोटा चम्मच लेना है लाल मिर्च, चुटकी भर स्वाद के अनुसार नमक और 40 ग्राम के आसपास बारीक कसा हुआ चीज़। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री, ध्यान दीजिएगा। 25 ग्राम मक्खन, 50 ग्राम मैदा, आधा प्याला माने आधी कटोरी पानी, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च, चुटकी भर नमक, या फिर नमक और मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोई तीखा पसंद करते हैं, कोई मोरा पसंद करते हैं, तो आप पर छोड़ा। फिर 40 ग्राम के आसपास लीजिए बारीक कसा हुआ चीज़। ठीक है, ये तो हो गई सामग्री। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाल आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि देखिए आंच को तो आपको स्लो करना है, ठीक है, मध्यम आंच पर ही आपको बनाना है, बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक आपको चम्मच से हिलाते रहना है। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। लगातार हिलाते हुए एक एक करके कसा हुआ चीज और नमक मिर्च मिला दीजिए इसमें। फिर ना अच्छी तरह खीरा तैयार हो गया है। अब आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, फिर मैदे और चीज के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से गिराते जाइए, ठीक है, और पकौड़ियाँ सुनहरे रंग की तल लीजिए। निकालने के बाद ऊपर से कसा हुआ चीज बुरक दीजिए और गरम पेश करिए। तो ये बन गई चीज की पकौड़ियाँ। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। पानी में मक्खन डाल दीजिए और पकने के लिए रख दीजिए। जैसे ही उबाला आने लगे एकदम से सारा मैदा डाल दीजिए और लगातार घुमाते जाइए, जब तक कि बिल्कुल बराबर मुलायम न हो जाए तब तक इसको हिलाते रहना है। फिर गैस बंद करके इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने तो देना है लेकिन फिर भी लगातार हिलाते रहना है और एक एक करके कसा हुआ चीज और नमक मिर्च मैदा सब इसमें मिला दीजिए, ठीक है। मैदा तो ऑलरेडी हम इसमें गरम कर चुके हैं और अब आप सभी अच्छा मिश्रण ये तैयार हो गया, मसाला इसमें डाल दिया नमक मिर्च वगैरह। तो फिर आप कढ़ाई में तेल गरम करिए, तेल गरम हो जाए तो मैदे और चीज़ के मिश्रण को एक छोटे चम्मच से पकौड़े की तरह डालिए, अगर हाथ से पसंद करते हो तो हाथ से डालिए। तो पकौड़ियाँ सुनहरे रंग की तल लीजिए और निकाल दीजिए। निकालने के बाद ऊपर से और भी आप किसा हुआ चीज़ बुरक सकते हैं। तो ये बन गए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तरह तरह के स्वाद की अलग अलग प्रकार की पकौड़ियाँ आपको सिखाते रहते हैं। तो चीज़ की पकौड़ी भी आप बना करके ज़रूर खाइएगा, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट है। तो चलिए, इमरती और पकौड़ियाँ तैयार है, तो देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली। थाली में आप ये एक प्लेट में इमरती रखिए, एक प्लेट में चीज़ पकौड़ी रखिए, और जो भी कुछ आपने बनाया है रखिए, तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास पर के भी रखिएगा। ऊपर से थाल पोश ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद ले सकते हो चीज पकौड़े का, ठीक है। और आज का प्रश्न बड़ा सुंदर था, लेकिन हमारे श्रोता बंधु लगते हैं कि या तो शरद पूर्णिमा की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीपावली की साफ सफाई में खोए हुए हैं। इसलिए देखे, हमारी बहनें तो जुड़ी नहीं पाती है क्योंकि वो साफ सफाई कर रही है घर की, चलिए वो भी बहुत जरूरी है। प्रश्न था कि चूंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी। ये राजस्थान का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत ही बड़ी बात है कि चूंडावत ने जब सेनानी के तौर पर, निशानी के तौर पर अपनी पत्नी से मांगा, युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जाते जाते याद आ गई पत्नी की, तो फिर से लौट आए और लौट करके पत्नी से निशानी मांगी, और पत्नी ने सोचा कि अगर ये मेरे ही याद में खोए रहेंगे तो युद्ध को क्या खाक जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि न रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, और उन्होंने अपना सिर काट करके दे दिया। ऐसी क्षत्राणी का नाम है हाड़ी रानी, जो आप सभी ने सही जवाब दिया है। सिर्फ एक भूरी लाल जी का जवाब गलत है, उन्होंने पद्मावती कहा है, पद्मावती ने जौहर किया है, उन्होंने शीश को नहीं काटा है, ये हाड़ी रानी ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले जवाब दिया है सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, फिर सुरेश भाई झोटाना से, और फिर कुपाराम जी ने, आप सभी ने सही जवाब दिया है। बोरीलाल जी का जवाब गलत है। तो आप सभी के लिए, जिन्होंने सही जवाब दिया है, आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं दहेज प्रथा पर एक सुंदर कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। नारी का न करो व्यापार, नारी का न करो व्यापार, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार। दौलत के तराजू पर तोल के, दौलत के तराजू पर तोल के, छीना तुमने उसका अधिकार। नारी बिन जीवन है सुना, नारी बिन जीवन है सुना, थोड़ा तो करो विचार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। कभी संगिनी कभी भगिनी बन, उसने लुटाया तुम पर प्यार। दौलत के नशे में डूबे ए मानव, लूट लिया तुमने उसकी खुशियों का संसार। अब भी समय शेष है देखो, अब भी समय शेष है देखो, करो स्वयं में जागरूकता का संचार। कुरुतियों से ग्रसित समाज का, कुरुतियों से ग्रसित समाज का, तुम करो अब बहिष्कार। त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, त्यागो कुंठित सोच को अपनी ए मानव, करो परिवर्तित अपना व्यवहार। हो सके जिससे समाज में, हो सके जिससे समाज में स्वस्थ मानसिकता का निर्माण। बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार, बंद करो दहेज प्रथा, नारी का न करो व्यापार। स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, स्वयं जिसे कहते तुम लक्ष्मी, क्यों कर रहे फिर उस पर अत्याचार, क्यों कर रहे फिर उस पर तुम अत्याचार।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं कौन बनेगा ध्वनि सुपरस्टार।
2: एल्मो, तैयार हो गए? खाला और पीकू आ रहे हैं, याद है ना?
3: मम्मी, एल्मो को याद है। आज मम्मी, खाला, पीकू और एल्मो मिलकर टीवी जैसा एक खेल खेलेंगे जिसका नाम है
4: कौन बनेगा शब्दों की ध्वनि का सुपरस्टार।
3: मम्मी मम्मी, एल्मो को खेल जल्दी से शुरू करना है। पीकू और खाला कब आएंगे?
2: यही कुछ 5 मिनट में।
3: मम्मी, 5 मिनट कितनी देर में होंगे?
2: 5 मिनट? देखो, अभी घड़ी का बड़ा वाला काटा यहाँ पे है। जब वो इस निशान पे पहुँचेगा तब 5 मिनट हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी।
3: ओके। पीकू और खाला आ गए।
5: हेलो आंटी। हाय एल्मो।
3: पीकू, खाला। हाय पीकू, सलाम खाला।
6: नमस्ते मैं। हेलो एल्मो।
2: हेलो पीकू बेटा, सलाम खाला। सब आ गए तो शुरू करें कौन बनेगा शब्दों की ध्वनि का सुपरस्टार।
4: हाँ, जल्दी से।
2: तो सबसे पहले आइए मिलते हैं आज के गेम के 2 खिलाड़ियों से। इनके नाम है
3: एल्मो
5: और पीकू।
2: और गेम की स्कोर कीपर है
3: खाला।
6: और खेल की लाजवाब होस्ट है मैं।
2: अब आ गई है वो घड़ी जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। खिलाड़ी रेडी है?
4: रेडी।
2: गेम शुरू करते हैं पहले राउंड से, जिसमें सुनाया जाएगा खिलाड़ियों को एक ध्वनि यानी साउंड। उस ध्वनि को सुनने के बाद दोनों खिलाड़ियों को उसी ध्वनि से शुरू होने वाला एक एक शब्द बताना होगा।
6: और सही जवाब देने वाले के लिए बजेगी खाला की ओर से जोर से सीटी। जी हाँ, आपका स्कोर गिना जाएगा सीटियों में। गेम के एंड में जिस खिलाड़ी के लिए ज्यादा बार सीटी बजेगी वो ही बनेगा ध्वनि सुपरस्टार।
2: अब ध्यान से सुनिए ध्वनि। प प प प प से शुरू होता है पलंग। अब तुम बताओ प से और क्या होता है शुरू? प। बारी है पीकू की।
5: प प से शुरू होता है पपीता। हाँ, प प प प से शुरू होता है पपीता। पपीता शब्द शुरू होता है प से।
6: सही जवाब। पीकू का स्कोर है 1 सीटी।
2: अब एल्मो की बारी। क्या एल्मो के लिए भी बजेगी सीटी?
3: हाँ, एल्मो के लिए भी बजेगी सीटी, क्योंकि एल्मो को प से शुरू होने वाली एक चीज पता है। प प प प प से शुरू होती है पतंग। पतंग शब्द शुरू होता है प से।
2: सही जवाब।
6: पहले राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों का सीटी स्कोर बराबर है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है।
2: और इसी के साथ शुरू होता है हमारा अगला राउंड, जो कि है पहेली राउंड। ध्वनि है च। ध्यान से सुनिए च। और ये आई पहली पहेली एल्मो के लिए। नाक पे ये पहना जाता, इसको पहन के साफ दिखने लगता। पूछो च से शुरू होने वाली चीज ये क्या
3: है? नाक पे? चा से शुरू होता है चश्मा। चश्मा शब्द शुरू होता है च से।
2: बिल्कुल सही जवाब। अब पीकू के लिए पहेली। रसोई में ये पाया जाता, मुंह तक ये खाना ले जाता। पूछो च से शुरू होने वाली चीज ये क्या?
3: मुंह तक खाना? शुरू होता है चम्मच।
6: सीटी, पी को भी दो सीटी।
2: अगला राउंड है हमारा झटपट राउंड, जिसमें खिलाड़ियों को दी जाएगी एक ध्वनि और उन्हें उस ध्वनि से शुरू होने वाले तीन शब्द बोलने होंगे झटपट। बारी है एल्मो की और स्वर है र। ध्यान से सुनिए र। एल्मो, क्या तुम र से शुरू होने वाले तीन शब्द बता सकते हो?
3: रसोई, लस्सी, रथ। रसे शुरू होते हैं रसोई, लस्सी और रथ। रसोई, लस्सी और रथ शब्द शुरू होते हैं रसे।
2: अरे वाह, बिल्कुल सही। अब पीकू की बारी और पीकू के लिए ध्वनि है स। ध्यान से सुनिए स। पीकू, तुम्हें स से शुरू होने वाले तीन शब्द बताने होंगे, वो भी झटपट।
5: समोसा, सवेरा, सड़क। स स स स स से शुरू होते हैं समोसा, सवेरा, सड़क। समोसा, सवेरा और सड़क शब्द शुरू होते हैं स से।
2: शाबाश, बिल्कुल सही जवाब।
6: अब तक का स्कोर है एल्मो 3 सीटी, पीको 3 सीटी, बिल्कुल बराबर।
2: अब है हमारा आखिरी राउंड, सवाल जवाब राउंड। ध्वनि है ब। ध्यान से सुनिए ब। और पहला सवाल है पीकू के लिए, घास खाने वाला एक जानवर जो मैं करके बोलता है और जिसका नाम ब से शुरू होता है। करेक्ट जवाब। आज के गेम का आखिरी सवाल एल्मो के लिए। एल्मो, पानी में तैरने वाली एक बड़ी चिड़िया जिसका नाम शुरू होता है ब से।
3: ब से, ब से, आप ब से बत्तख। ब ब ब ब ब से शुरू होती है बत्तख, बत्तख शब्द शुरू होता है ब से।
2: ये भी सही जवाब।
6: और गेम के एंड में स्कोर है एल्मो 4 सीटी, पीकू 4 सीटी, यानी एल्मो और पीकू दोनों ही बन गए शब्दों की ध्वनि के सुपरस्टार।
5: ये एल्मो और पीकू ध्वनि सुपरस्टार से।
2: खाला एल्मो और पीकू, आज के गेम में इतने जोश से हिस्सा लेने के लिए थैंक यू।
6: अरे मैं, थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए तुम्हें, ये दिखाने के लिए कि नई नई चीजें सीखना सिखाना कितना मजेदार हो सकता है।
3: हाँ, थैंक यू मम्मी। एल्मो और पीकू को तो आ गया मस्ते मजा।
7: मम्मा मस्ते हो गई मस्ती।

नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे। और भाई, पितरों का खत्म हुआ, आज आखिरी दिन है, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो हमारे लिए तो बल्ले ही बल्ले है कि नहीं। त्यौहार के ऊपर त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार, तो सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे कल से जो शुरू होने वाली है। तो हम ये कह रहे थे कि त्योहारों का तो देश ही है भारत, है कि नहीं। हर दिन कोई ना कोई त्यौहार यहाँ पे मनाया जाता है, और त्यौहार का मतलब है खुशी, खुशी का मतलब विविधता में एकता। तो देखिए कितने प्रकार की भाषा, कितने प्रकार के लोग, कितनी जात पात, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम जैसा। तो बहुत अच्छा लगता है। तो कल से हम सब नवरात्रि मनाएंगे, डांस करेंगे, पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएंगे, ये सब तो करवे करेंगे ना। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है। जिंदगी का सत्य कि हर एक को जिसको आया उसको जाना है। और जितने हम जी चुके, सपोज हम 70 साल जी चुके, तभी उससे कम ही जीना है ना। 10-12 साल ज़्यादा से ज़्यादा, कितना जिएगा इंसान, 20 साल और, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है, ये समझ आने के बाद मुझ में ये परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया वो बता दे रहे, और हर एक में आना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन, किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूँ। कोई अपना चला जाता है ना, छोड़ के चला जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो अब रोना छोड़ चुका है, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। तो जब पता ही है, सबको जाना ही है, तो जाने में रोना का है भाई। इतने साल वो जी लिया, जितना उसकी चाबी भरी थी, जितनी चाबी भरी राम जी ने, उतना चले खिलौना, तो उतना चल गया वो खिलौना, चाबी खत्म हो गई, चला गया। दूसरी बात, उही प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये सोचना भी छोड़ दिया है। काहे कि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा, और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही इतने होंगे कि वही लूट का सोट के कौन कितना ले ले, ये कोशिश करेगा। तो इसकी भी चिंता ना करे कि अगर एकदम से विदाई हो जाती है तो अरे हमारे बाद हमारे ये बेटवा का क्या होगा, नाती पोते का क्या होगा, कोनो फिकर करबे की जरूरत नहीं है, उनका सबको वो मालिक बैठा है। तो अभी हम वो सब फिकर करना छोड़ दिए हैं। तीसरी बात, सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूँ।

कोई कितना बड़ा पराई मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़ा राष्ट्रपति आ जाए, हम अपने को तो सबको सम्मान करते, लेकिन कोई बड़ा ओहदा वाला आए तो उसका हमको उसके पैसे का, उसका पावर का, उसका पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डर लगता। काहे डरे भाई को, चोरी थोड़ी की है जो डरेंगे। और वो होगा तो अपने घर का होगा, हम हैं तो अपने घर के राजा हैं। चौथी बात, खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। हम जिंदगी भर दूसरों के लिए जीते हैं, कभी हम अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए समय नहीं निकालते। मुझे क्या पसंद है, मुझे हंसना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे दूसरे से बतियाना पसंद है, वो कुछ भी नहीं कभी हम करते हैं, बस दूसरे को खुश करे में ही सारी जिंदगी निकाल देते। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है, जब मैं नहीं थी तब भी दुनिया चल रही थी, मैं हूं तो भी दुनिया चल रही है, कल मैं चली जाऊंगी तो भी दुनिया चलती रहेगी, कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। पांचवी बात, छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया है। पहले तो 5-5 पैसे के लिए करते थे, अरे भाई 20 पैसे का धनिया और काहे दे रहे हो, 15 पैसे का दे दो। अब तो वो सब नहीं करते हैं। कभी कभी जानता हूँ कि मैं ठगा जा रहा हूँ, कभी ये भी मालूम है कि चीज 20 रुपए की है, सामने वाला इमोशन में 30 में जा रहा है, ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जाता हूँ। अरे 10-20 रुपए में वो कौन सा बिल्डिंग बांध लेगा और हम कौन सा फकीर बन जाऊंगा। छठवीं बात, कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूँ, पहले उसके भी मोल भाव करते थे। 25-50 रुपए खर्च करता हूँ, जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, उनको फ्री में मिल गई है 20-25 रुपए की चीज, और वो 20-25 रुपए से मेरे को कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले की तो खुशी कितनी होती है, तो वो देख कर हम खुश हो जाता हूँ। सातवीं बात, सड़क पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार की चीज भी खरीद लेता हूँ। कहते ना बोइनी नहीं हुई, दे दो ना बाबा, ले लो ना। अब इस मालूम है बेचारा ईमानदारी से कमाना चाह रहा है, अब उसकी बोइनी नहीं हुई है, 4 पैसा नहीं मिला, उस चीज की जरूरत नहीं, फिर भी खरीद लेते। आठवीं बात, बुजुर्गों और बच्चों की एक ही बात कितनी बार सुन लेता हूँ, कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने ये बात कई बार कही है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने भी अपने बचपन में ये सब किया होगा, मेरे भी बड़ों ने, माँ बाप ने कितनी बार सुनी होगी वो बात, और फिर भी मुझे माफ किया। नौवीं बात, गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करता हूँ। कोई गलत व्यक्ति आ गया, दो बात कह दिया, समझ लो ना पागल है, बोलो नहीं मुंह से, लेकिन मन में समझ लो कि ये तो पगलवा है, तो इसे का बहस करे, तो वो अपनी शांति मन की बनी रहेगी। और दसवीं बात, लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ, ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मजा लेता हूँ, ताकि सामने वाले खुश हो जाते हैं तो उनकी खुशी देख कर, और मुंह से वो ना बोले लेकिन फिर भी दिल से आपको दुआएं मिल जाती है, अगर आप कोई के चेहरे पे बिना स्वार्थ के मुस्कान लाते हैं तो। ग्यारहवीं बात, ब्रांडेड कपड़े, हाँ ये यहाँ के कपड़े हैं, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है, इसने ऐसे कपड़े पहने, इसके पास तो 2 लाख वाला फोनवा है, इससे ऐसे बतियाना चाहिए, नहीं सब एक जैसे हैं, 2 लाख का हो कि 10 लाख का फोन हो कि वो 2-3 हजार रुपए का फोन हो, बात तो वही करेंगे, मैसेज हुआ तो वही आएगा, तो फिर उसके लिए काहे हम आगे पीछे छोड़े। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीजों से नहीं, ये समझ गया हूँ। चीज वस्तु किसी के व्यक्तित्व को नहीं बनाती, बनाते हैं इंसान के विचार। बारहवीं बात, मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारी तो ऐसी परंपरा, अरे परंपरा किसने बनाई भाई, और बनाई भी उन्होंने गलत बनाई तो अब चेंज कर लो ना, सुधार कर लो ना, तो
और जो हम पर थोपने की कोशिश करते हैं, आपको भी ऐसे करना चाहिए। अरे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरी जिंदगी, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कई लोगों ने ये पहले ही कर दिया है उन लोगों के साथ में। 13वीं बात, जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चाले खेलता है, दुनिया में बहुत चाल चलते हैं भाई लोग, तो मैं शांत रखकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, तो काहे तुम आगे मैं पीछे तुम आगे, करे भाई अपने अपने हिसाब से, कर्मों से आगे पीछे बढ़ो। 14वीं बात, मैं वही करता हूँ जिससे मुझे आनंद आता है। लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इसकी चिंता छोड़ दी है। 4 लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया। हाँ मुझे ही कपड़े पहनने, जहाँ पहनने हैं भाई, तुम्हें क्या करना है, कोई गलत तो नहीं पहने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। ये बाल ऐसे काहे बना रहे भाई, मुझे अच्छे लगते, तुमको नहीं अच्छे लगते, आंख बंद कर लो मत देखो ना। तो अपना मन मारना छोड़ दिया है। जो खाना है वो खाएंगे, जब खाना है तब खाएंगे। 15वीं बात, 5-स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। सबको को अच्छा लगता है, काहे कि 5 तत्व का शरीर भी तो प्रकृति का ही बना है ना, तो जहाँ उसकी गोद में जागे तो ऐसा महसूस होगा माँ की गोद में आए। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और मटर की सब्जी में संतोष पाता हूँ। हर एक की ये लास्ट विश यही होती है, दिखाने को कितना भी कहे हम पिज्जा खा रहे, बर्गर खा रहे, 5-स्टार से मंगवाया, लेकिन अंत में तो यही अच्छा लगता है। 16वीं बात, अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय किसी जरूरतमंद के हाथ पे 500-1000 रुपए देने का आनंद लेना सीख गया हूँ। और हर किसी की मदद पहले भी करता था और अब भी करता हूँ, और करना चाहिए हर इंसान को जितना कर सकते। 17वीं बात, गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगा हूँ। पहले करता था बहुत, नहीं ऐसा नहीं ऐसे है, काहे झंझट में फंसते हैं, बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा हूँ, खुद से प्यार करने लगा हूँ। 18वीं बात, मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ, मैं अपने साथ केवल वो प्रेम आदर और मानवता ही ले जा सकूंगा जो मैंने बांटी है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। 19वीं बात, मेरा शरीर, मेरी आत्मा और मेरा नाम सब मुझको दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो लाभ हानि की क्या गणना भाई। और 20वीं बात, अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयां या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है, कहे कि मुझे समझ आ गया कि जो समझना उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता वो समझता ही नहीं। 21वीं बात, अब अपने आनंद में ही मस्त रहती हूँ, कहे कि मेरी किसी भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुझे समझ आ गया है। 22वीं बात, हर पल को जीना सीख गया हूँ, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये दिन भी बीत जाएंगे। 23वीं बात, आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गया हूँ, मुझे समझ आया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। और आखिरी 24वीं बात, प्रकृति में रहने लगा हूँ, मुझे समझ आ गया है कि अंत में उसी की गोद में समा जाना है, देर से ही सही लेकिन समझ आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है। आशा करते हैं हम सब भी ऐसे ही जीना सीख लें तो कितना अच्छा होगा। अंतिम आनंद ही तो चाहिए, खुशी तो चाहिए, किसी की टैटे तो नहीं चाहिए, तो हम दूसरे से नहीं करेंगे तो कोई हमसे काहे करेगा। आप शांति में रहिए, सब कुछ शांति में हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी अच्छी बात कह दिए आपको, बहुत गुड़ बात कह दिए। अभी एक गीत सुन लेते हैं, ओके बाद फिर आपसे बताते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे, सुनते रहे मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: त्रेता युग की बात है। अयोध्या से कुछ दूर एक समृद्ध नगर रहा। वहाँ धनंजय नाम का एक अत्यंत धनवान श्रेष्ठी रहता था। उसके पास सोने चांदी के भंडार, विशाल भवन और अनेक सेवक रहे। उसका एक वृद्ध और बुद्धिमान सेवक था सत्यकेतु। वो केवल धन का हिसाब ही नहीं रखता था, बल्कि अपने स्वामी को सही मार्ग दिखाने का साहस भी रखता था। एक दिन राज दरबार में आयोजित एक भव्य उत्सव में धनंजय की भेंट नगर की प्रसिद्ध नर्तकी मृणालिनी से हुई। वो अपने रूप और मधुर वाणी के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसने धनंजय की संपत्ति देखकर उसका विशेष सम्मान किया और आग्रह किया कि वो कभी उसके भवन पर अवश्य आए। धनंजय उसके मधुर व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ ही दिनों में उसके भवन पर जाने लगा। मृणालिनी भी उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाती। धीरे धीरे धनंजय का अधिकांश समय वही बीते लगा। सत्यकेतु ने एक दिन विनम्रता से कहा, स्वामी, प्रेम वो है जिसमें व्यक्ति आपके धन से नहीं, आपके हृदय से जुड़ता है। जहाँ धन समाप्त होते ही संबंध समाप्त हो जाए, वहाँ प्रेम नहीं स्वार्थ होता है। धनंजय ने उसकी बात हंसकर टाल दी। अब कुछ समय बाद धनंजय अत्यंत बीमार पड़ गया। कई दिनों तक उस सैया से उठ नहीं सका। उसी बीच मृणालिनी का जन्मोत्सव आया। धनंजय ने सत्यकेतु को बुलाकर कहा, मेरे लिए स्वर्ण और रत्नों से जड़ा एक अत्यंत मूल्यवान हार लेकर जाओ और मृणालिनी को दे आओ। उसे कहना कि ये उस व्यक्ति की ओर से है जो उससे सबसे अधिक प्रेम करता है। सत्यकेतु समझ गया कि स्वामी अभी भी मोह में है। फिर भी उसने आदेश का पालन किया। वो मृणालिनी के भवन पहुंचा और हार सामने रखते हुए बोला, देवी, ये उपहार उस व्यक्ति ने भेजा है जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करती हैं। मृणाली ने बिना सोचे तीन नाम गिन दिए। सत्यकेतु शांत स्वर में बोला, इन तीन में उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसने यह हार भेजा है। मृणालिनी घबरा गई। सामने चमकता हुआ बहुमूल्य हार था। उसे लगा कि यदि सही उत्तर ना दिया तो उपहार हाथ से चला जाएगा। उसने तुरंत 13 नाम गिना दिए। सत्यकेतु ने पूछा, क्या इन 13 में भी हमारे स्वामी का नाम नहीं है? मृणालिनी मौन हो गई। सत्यकेतु ने हार का डिब्बा बंद किया और बोला, देवी, आपने आज मेरे स्वामी की आंखें नहीं खोली, बल्कि उनका भ्रम तोड़ने का अवसर दिया है। वो हार लेकर वापस लौट आया। धनंजय बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पूछा, हेलो,
3: हाँ नमस्कार, कानपुर से सिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
2: ओम शांति, कैसे हैं भैया?
3: बस एकदम अच्छे हैं। और आज जो ज्ञान की भी बातें करी, इसमें भी बहुत ही अपने को प्रेरणादायी मिली
2: जी।
3: ऐसा है कि देखो, ज्ञान से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो करे लगता। तो अपने को गधे को नहीं मिलना है, अपने को ज्ञान ही मिलना आप जैसे
2: जी, जी।
3: और दूसरा बहन जी, के आज सर्व पितृ दिन है, तो आज के बाप दादे अपने आगे के जो भी है।
2: आपने क्या कहा? बीच में आवाज कट रही थी, मेरे समझ में नहीं आया। आपकी आवाज कट रही थी बीच में। हाँ, क्या बोला आपने?
3: तो इसमें क्या क्या अपने सर्वपितु दिन है, लास्ट दिन है।
2: हाँ, श्राद्ध का लास्ट दिन है जी।
3: हाँ, जब आगे आपने अपने दूसरी बात दादा गुजर गए, कोई भाई है कोई भतीजे है।
2: ठीक है भैया, हाँ कल से नवरात्रि शुरू हो रही ना, उसकी आपको भी मंगल कामनाएं, आपके परिवार को भी पूरे रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से। ठीक है, ओके भैया। तुम रनाली ने क्या कहा, सत्य केतु ने हार उसके सामने रख दिया और शांत स्वर में कहा, स्वामी आपका प्रेम जिस हृदय में था वहाँ आप न 3 में थे न 13 में, फिर भी आप उस मोह को प्रेम समझते रहे। धनंजय कुछ क्षण मौन रहा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन उसे समझ आया कि धन से खरीदा हुआ सम्मान प्रेम नहीं होता, और आकर्षण को प्रेम समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। उसने नरालिनी के भवन की ओर फिर कभी कदम नहीं बढ़ाया। अपने धन का एक बड़ा भाग धर्म, गौ सेवा, ब्राह्मणों और निर्धनों की सहायता में लगा दिया। उस दिन से धनंजय का जीवन बदल गया, शिक्षा का मिली। सच्चा प्रेम आपकी संपत्ति नहीं, आपकी उपस्थिति चाहता है। जहां आपका मूल्य केवल आपके धन से हो, वहां प्रेम खोजने की भूल मत कीजिए, क्योंकि सच्चे संबंधों में व्यक्ति गिना जाता है, उसका धन नहीं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। समझदार को इशारा काफी। अरे इतने साल में तो भाई आप सब समझदार हो ही गए। चलिए एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। सुनिएगा गीत।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, he's planning all his lessons. जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he's least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He's trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he's in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, they're so damn tired. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, somehow he comes out, और वो अपना घर देखता है 100 meters away. 100 meters seems to him as 100 kilometers because he's so tired. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed, if not the 100 meters world record, lekin 100 meters indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi ki uske paas energy nahi tha, energy tha, but he kept on programming, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise hi usne us kutte ko dekha to kya kiya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock, ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है, और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा, और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual television till 10 o'clock he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my god, tomorrow trip to Khandala, mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aarambh karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 hours ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग।

बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में देवपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राजमहल में सत्यदास नाम का एक सेवक रहता रहा। वो अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त रहा। सत्यदास का विश्वास था कि मनुष्य को अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वो अक्सर कहता रहा, जिसने जीवन दिया है वही जीवन की आवश्यकताओं का प्रबंध भी करता है। एक दिन सत्यदास अचानक राजमहल की सेवा में नहीं पहुंचा। राजा ने कारण पूछा तो पता चला कि उसके घर पुत्र का जन्म हुआ है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सत्यदास ने वर्षों से ईमानदारी से सेवा की है, आज उसके घर भगवान ने पुत्र भेजा है, उसकी सहायता करनी चाहिए। राजा ने उसी दिन सत्यदास की मासिक दक्षिणा बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद सत्यदास राजमहल आया। राजा ने बढ़ी हुई दक्षिणा उसके हाथ में रखी, लेकिन सत्यदास ने न कोई प्रश्न किया और न ही विशेष प्रसन्नता दिखाई। उसने सिर झुकाकर धन स्वीकार किया और भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ महीने बाद सत्यदास फिर एक दिन राजमहल नहीं आया। इस बार राजा को बहुत क्रोध आया। वो सोचे, मैंने इसकी सहायता की, इसकी दक्षिणा बढ़ाई, फिर भी ये अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। राजा ने उसकी दक्षिणा फिर पहले जितनी कर दी। जब सत्यदास को ये पता चला तो उसने तब भी कौनों शिकायत नहीं की। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, सत्यदास, जब मैंने तुम्हारी दक्षिणा बढ़ाई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और अब मैंने घटा दी तब भी तुम्हारे चेहरे पर कौनो चिंता नहीं है, आखिर इसका रहस्य क्या है? सत्यदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जिस दिन मैं सेवा में नहीं आया था उस दिन मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ था। जब आपने मेरी दक्षिणा बढ़ाई, मैंने समझ लिया कि मेरे पुत्र के पालन पोषण का साधन स्वयं भगवान ने आपके हाथों भेज दिया है, इसलिए मैंने उसे अपना अधिकार नहीं प्रभु का प्रसाद माना। राजा ध्यान से सुनते रहे। सत्यदास ने आगे कहा, और जिस दिन मैं दूसरी बार अनुपस्थित रहा उस दिन मेरी वृद्ध माता ने संसार छोड़ दिया। जब आपने मेरी दक्षिणा कम कर दी तो मैंने समझ लिया कि जिस माँ का जीवन भर पालन करने का सौभाग्य मुझे मिला वो अपने हिस्से की चिंता और अपना ऋण अपने साथ लेकर प्रभु के पास चली गई। राजा की आंखें नम हो गई। सत्यदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धन बढ़ने पर अहंकार क्यों करूं और घटने पर दुख क्यों करूं? धन मेरा था ही कब, जो मिला वो प्रभु की कृपा थी और जो चला गया वो भी उसी की इच्छा थी। राजा धर्मकेतु कुछ क्षण मौन रहे, फिर सिंहासन से उठकर सत्यदास के पास आए और बोले, आज तुमने मुझे राज धर्म से भी बड़ी बात सिखा दी। राज चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन जीवन चलाने के लिए विश्वास चाहिए। उस दिन राजा ने सत्यदास को सम्मानित किया और कहा, मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। जो हमारे पास है वो प्रभु की देन है, और जो नहीं है उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य है। सत्यदास मुस्कराया और बोला, जिसे प्रभु ने दिया वो पर्याप्त है, जिसे नहीं दिया उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मन शांत हो तो छोटी सी कुटिया भी महल है, और मन अशांत हो तो महल भी कारागार है। शिक्षा का मिली कहानी से, जीवन में सुख आए
तो अहंकार मत कीजिए और दुख आए तो निराश मत होइए। ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कर्म करते रहिए। जो प्राप्त है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सच्चे संतोष और सुख का मार्ग है। आशा है आप बहुत कुछ इस बात से सीखे होंगे। और सब जानते हैं आज श्राद्ध का अंतिम दिवस है, शनिश्चरी अमावस्या है। कहते हैं कि अगर किसी को नहीं पता कि उनके पितर कब गए थे, उनके वृद्ध दादा दादी नाना नानी या माता पिता कौन सी तिथि को गए थे, तो वो तिथि को अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाए तो कोनो बात नहीं, आज आखिरी दिन है, उनके नाम से किसी को कुछ दान गरीब को कर दीजिए, किसी गरीब का पेट भर दीजिए। समझ लीजिए कि आपको जो आप चाहते हैं, आपकी मन की श्रद्धा, वैसे तो किसी के पास कुछ पहुंचता नहीं, वहाँ पे स्वर्ग में कहते गए स्वर्ग में तो खाना मिलता नहीं होगा का, लेकिन फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए हमें लोग का कहेंगे, उसके लिए अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप किसी गरीब को खिला दीजिए, किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए, किसी जिसको जरूरत है उसको। हम समझते हैं कि आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने अपने पूर्वजों की श्राद्ध कर ली। बाकी कल की तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, कल से नवरात्र मनाएंगे, तो आशा करते हैं कि आज आप अपने सारे दिमाग से जो भी तंसन वंसन है ना पूर्वजों का, कई लोग कहते हैं पितृ दोष है, कई लोग कहते हैं कि हाँ पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया करके घर में कंगाली आ रही, ये सब मन का अंधकार है। ये सब मन में हमारे ना जो भर के रखा हुआ है अंधविश्वास वो है, लेकिन आपके मन को हल्का करने के लिए वैसे भी दान पुण्य करना चाहिए, है तो कर दो। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, ये आज की अमावस्या को बहुत बड़ी अमावस्या मानते हैं, तो आज के दिन जो कुछ भी आप करेंगे तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। चलिए एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे। सुनिएगा गीत।

देखिए भाई, मनुष्य ने कितनी ही सुख सुविधाएं एकत्रित कर ली है, लेकिन फिर भी अफसोस है कि आज धरती पर सभी जीवों में सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य ही है, क्योंकि टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी भी खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। केवल विकृत मानसिकता के कारण संत जन कहते हैं, परमात्मा का दिया हुआ दुख एक सच्ची दुआ से दूर हो सकता है, लेकिन स्वयं के द्वारा निर्मित किया हुआ दुख लाख दुआओं से भी दूर नहीं होता। बाकी समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो भी कदर नहीं, अफसोस ही कहलाता है। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है, ये भी सच्ची बात है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या पर गलत रिश्तों का भी मन ही मन श्राद्ध कर दो। कुछ लोग जिंदा रहकर भी अपनी जिंदगी से विदा होने चाहिए, कुछ रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए जिनमें कुछ बचा ना हो। आशा करते हैं कि आप इन बातों को जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारेंगे। पिता के बिना आंखों का ये मंजर न मिलेगा, पिता के बिना आंखों का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। जब तक कोई होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती है। आंखों आंसुओं को कभी ओस का कतरा न समझना, आंसू को कभी ओस का कतरा न समझना। ऐसा तुम्हें चाहत का समुंदर ना मिलेगा, ऐसा तुम्हें चाहत का समुंदर ना मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें, इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें। जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर न मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत। इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। पिता की महिमा यही है कि साधारण संतान भी असाधारण ऊंचाइयों को छू लेती है और असंभव संभव हो जाता है, क्योंकि पिता एक ऐसा जीव है वो जिंदगी भर अपने बच्चे की भलाई चाहता है, लेकिन बड़े होने के बाद वही बच्चे उसकी कदर नहीं समझते। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, बहुत बार हम किए हैं, बहुत बार कहे हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। अपने मन के विचारों को इतना छोटा मत बनाइए, अपने मन को गरीब मत बनाइए। तन भले गरीब हो लेकिन मन हमारे विचार बहुत ऊँचे हो तो जीवन वैसे ही बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। देखे भाई, हम जितना बोल सकते थे उतना बोल दिया, और कल भी तो बोलेंगे आपके साथ। तो आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

0: राम राम रतन भाई, राम राम।
1: ओहो राम राम भाई कंचन, राम राम। आप भाई आओ, तबियत तो हवे।
0: हाँ तबियत तो आउ है, और थारे लहर
1: जीव
0: राजी, और थारे लहरिया ने सोड और भी गणे होगी बारे हो राजी।
1: बात है ओला दो बालम मारे लेरियो ला दो आज, लेरिया पे लगा दो जालर, लगा दो लूमा चार ला दो।
0: वाह वाह, लगा दो लूमा चार, यानी खाली लेरियो नहीं लानो है बल्कि लूमा भी लगा,
1: लगानी लूमा भी,
0: लूमा भी लगानी है। वाह वाह बहुत सुंदर। ध्यान की अपना गीत है जहाँ संस्कृति और संस्कृति की झलक दिखाई दे।
1: बिल्कुल कंचन, तो गावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन, तो बिल्कुल सही क्यों है कि अपनी संस्कृति की पहचान गीतार माध्यम से केड़ो बढ़िया तरीको हो गए है।
0: बिल्कुल, और अपनी राजस्थान की धरा तो ज्ञान है कि अठे की हर चीज पे एक न एक तो गीत बने हुई है।
1: हाँ, हर चीज पे। वो लेरियो को तो भाई अपने ही महत्व है भाई, लेरियो तो राजस्थान की पहचान है,
0: अपनी जीवन शैली में एक अंग है।
1: अंग है, जान अपने नहीं कहवा कि भाई उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, या अपने राजस्थान का नाक है। हाँ। राजस्थान का नाक है, वैसे नहीं लेरियो भी अपने राजस्थान के पैरवेश में नाक है।
0: बिल्कुल, लेरियो बंदेज ये सब का ये राजस्थान की शान है। यानी जठे भी बंदेज हो लेरियो दिखाई दे जावे, कोठे भी आपा गएड़ा हो तो पत्तो लाग ही जावे कि अमुक अमुक व्यक्ति तो राजस्थानी दिखे।
1: हाँ,
0: पैरवेश से इठा पड़ जावे।
1: पर देख कंचन, मतलब खाई बात करा आपा, आपा कटी घ्यावा, चलो अपना घावरा महीने तो अपना लोगा की कदर नहीं होवे।
0: हम्म,
1: कहवे के बेटी परानंद ससुराल में जावे, पियर को कुत्तो दिखे तो बिना हौला।
0: काई कावत कही है तू भी।
1: तो विदेश या एडी जगह पे चले जावा चटे अपना पियर उन ससुराल खूब दूर आ, बटे अपना पियर को या अपना ससुराल को कोई मल जावे तो केड़ो जीव राज्य हो जावे। पैरवेश हो आपा परिचय करवा की कोशिश करा रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो साड़ी लिंगो पैर रखा या को परिचय कराए तो अपना राजस्थान रहा,
0: अपने राजस्थान का है। बिल्कुल सही कही भाई। और देखो आपने लहरियो और बंदेश की बात खाली अपने राजस्थान में और हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, विदेश में भी मैं कई बार देखूं कि भी आजकल तो कई यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जमानो है, मीडिया पे देखूं मैं।
1: हाँ।
0: ये सब राजस्थानी लोग जो बाहर चले गए, नहीं बाहर चार भी मैं देखूं कि कई जना तो लहरियरी साड़ी नहीं पहने, ओढ़नी पहने पूरी,
1: ओढ़नी पहने
0: पूरी ढाई पटकी वाली।
1: जबकि देख कंचन, ओढ़नी छोड़न साड़ी भी छूट गई, ड्रेसा और ड्रेसा भी छूट गई, जेंसन एड़ा पेरा लाग गया।
0: सही बात, आपने अठा परिवर्तन आ गया।
1: हाँ।
0: पर वे विदेश में जाकर भी अपनी संस्कृति वाले अच्छी लाग रही है, वास्ते वे आज भी उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है।
1: देख कंचन, जैसे मुगी विदेश के थूकी चाल विदेश।
0: हाँ।
1: वो तो पूरा राजस्थानी परिवेश में जीन की।
0: हाँ।
1: तो थाने अतरो नहीं लागी।
0: हाँ।
1: पर थारे जैसे बहु आई, बच्चे बेटी है जो वटी नहीं बड़ी भी, वटीली संस्कृति देखी तो विने राजस्थानी कल्चर घणो हव लागी।
0: वो बिल्कुल सही बात है।
1: डाले क्यों नहीं, लेरियो पहनो, साड़ी पहनो, घर में अच्छो लागे, चनिया चोली पहनो, साड़ी लहंगो पहनो, वाने हो लागे, क्योंकि आपा तो जी चुक्या,
0: आपा जी चुक्या,
1: आपा ने ठा है कि आपनो पैरवेश का ही है, आपने तो खून में बसोड़ो है। तो वटी ना आपा ने अतरो नहीं लागे।

0: ऊपरे नहीं आ सका।
1: तो बहुत बढ़िया है कि पढ़ाई के प्रति अवेयरनेस रहे और आज तो भाई जॉब कर रही तो माने भी गर्व है। तो आप बात कर रहे हैं भाई पहली देखो तो ही ग्रहणी आज भी देखो लेडीज घर बैठन कतरे काम कर रही
0: हाँ
1: कई मजबूरी वे मजबूरी वे
0: बिल्कुल सही बात है। घरेलू उद्योग कई जना का रोजगार को माध्यम भी है।
1: हाँ घर चाल रहे भैया को
0: घर चाल
1: दस दस हजार गामड़ा में जो आपने लेडीज कमा रही है वहां को घर चाल रहे
0: सही बात है
1: क्योंकि अति आवश्यकता तो है नहीं है। रोटी कपड़ा मकान वीमो निकल जावे लाइट बिल निकल जावे लाइट बिल ही असल है सरकार 200 यूनिट के छूट दे रखी जो भाई फर्क भी पड़ गयो।
0: बिल्कुल सही बात है सरकार भी खेरा अच्छा कदम उठावे विकास के वास्ते
1: बिल्कुल तो 8-10 हजार आराम कर खर्चो चाल जावे
0: बिल्कुल
1: तो यह बात अच्छी लगी कि चलो कहीं नहीं तो आप कहीं भी करो पर फ्री मत बैठा रहो आप आटी ने बैठा वो क्या खाली दिमाग शैतान को घर
0: और कई भी टावरा ने तो पढ़ाना भी जरूरी है। देखो
1: बिल्कुल बहुत जरूरी है
0: यानी आप छोटे छोटे लालच के वास्ते कई बार कही है कि भाई यहाँ बांध देवा है वाने टारगेट दे देवा कि भी तूने भी वो करना है तो भी बालक को जो एक विकास है वो तो अवरुद्ध हो जावे
1: रुक जावे। आजकल कंपटीशन को जमाना है पढ़ाई कर रहे हैं तो बस पढ़ाई पे फोकस देवो
0: बस
1: तारे और कहीं नहीं करना पढ़ाई पे ध्यान रखो
0: पढ़ाई पे ध्यान देना
1: दूसरी बाता पे नहीं नवरी बाता पे नहीं कपे नहीं। तो ऐसा ना पे राजस्थान का महीने ले रहा की खूब वेल्यू है सावन महीना में ससुरालू बहू के लेरियो भेजे
0: लेरियो
1: वाह बात अलग वे वो सोम एक आधा किस वे बाकी भेजी है तो पच वे लेरियो नहीं पेरे मैंने याद आवे वाके रिश्तेदार में वहाँ के पीलो नहीं पेरे छापा में जो पीलो देवे और वहाँ की बीन ने पीलिया को उतरो शौक है अगर सारो पीलो छूट गयो वहाँ को नहीं तो पीलिया को घणो ही शौक है तो वहाँ के कई खबर कई पड़ी हुई
0: कई बार के डेथ हो जावे या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जावे तो वे
1: कहे वहाँ के आनो करन आई पियर में और पियर में ससुरा जी बीमार हो जो
0: वह चलता बने
1: हाँ चलता बने पेरियो भी नहीं पीलियो पीलियो के भाई सब क्यों पीलियो पेरन लेवना भट्टियो चापा को आनो आवे तो अड़ोस पड़ोस में सब जगह पे अपने मिठाई बाटी है इन्हें राजस्थान में लेवना के भाई तो सासू जी को तैयार भेजाओ आप दो ही चालिया वाले लेवना दे जावा तो भी इन्होंने पीलियो पेरियो और हाथ में लड्डू की तपेली ली दी और उठी ना ससुरा जी की डेथ हुई की तो क्या बस ओख पड़ गई पीलियो नहीं पहनो।
0: कई बार कही है कि देखो एक ज्ञान की सोच के वास्ते कि अब वे जब जब पीढ़ियों पहनता तो वहां घटना याद आ जाती
1: हाँ,
0: हाँ। ज्ञान की बात है शुरुआत तो ज्ञान हुई
1: हाँ।
0: वे एक नेगेटिव माहौल बन जाता
1: हाँ।
0: ये वास्ते शुरुआत में वे रोक दिया पर बाद में जी की इच्छा है वो पहनो नहीं
1: हाँ, भले पहनो सही बात है
0: कोई अति मोटी गांठ थोड़ी लगानी
1: वो लगवानी भी नहीं चाहिए
0: हाँ लगवानी भी नहीं चाहिए।
1: तो वाह भाई कंचन टाइम हो गयो देखता टाइम तो भाग रहे हो तो चलो अदरत्या को भी बात की थी आप लेरिया की भी बात की थी और भी आप बांधनी की चुंदड़ की पीलिया की सब की बात करा पर आज के लिए सगला श्रोता बंधु इजाजत छावा और थारों भी भाई आओ जय राम राम
0: राम राम भाई राम राम।
2: ओम शांति मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज फिर से हम लोग जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर। जैसे कल हमने संस्कार बनाने की विधि को समझने की कोशिश की थी, तो आज एक और थोड़ा सा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें खास हम लोग बात करेंगे अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ। तो ये पूरा जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है, अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन जीने का जो कला है वो समझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों का या स्वभाव का पता नहीं होगा तो आप डील ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिजनेस डील करना चाहते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो व्यक्ति के संस्कार, आपके खुद के भी और दूसरों के भी। तो इन दोनों की अगर गहरी समझ हो जाए आपको तो आप प्रॉपरली हर चीज़ को कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस विषय पर, जैसे कि संस्कारों की बात चल रही थी, तो अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ, ये विषय क्यों चुना आपने? आपको क्या लगता है इस विषय पर क्यों बोलना चाहिए?
1: हाँ, इस विषय पर हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो समाज में रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे संस्कारों से, हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन टकराव वहाँ पैदा होता है जब हमारी एक दूसरे से आते नहीं मिलती हैं, या जिसे हम भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कहें, गुण नहीं मिलते एक दूसरे से। क्योंकि इंडिया में कल्चर है, अगर शादी भी करानी हो तो पहले पंडित जी को टेवा दिखाया जाता है और कहते हैं कि दो लोगों को सारी उम्र साथ में रहना है ताकि उनका जीवन जो है वो शांतमय हो, खुशमय हो, एक दूसरे को समझ कर साथ में चल सके। लेकिन उन कहते हैं इनके टेवे को या उनकी कुंडली को, कहते हैं हॉरोस्कोप को मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर इनके गुण मिलते हों और ये जीवन जो है इनका अच्छा बीते, कल को जाके तलाक ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, और जिस काम के लिए वो दो आत्माएं इकट्ठी रहना शुरू कर रही थी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए, उसके लिए उल्टा ना हो जाए। इसके लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी विषय है
0: राजेश जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बोलना चाहा। तो मैं चाहूँगा कि आप कैसे समझे कि दूसरे के स्वभाव और संस्कारों को कैसे समझें?
1: दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझने से पहले मैं समझता हूँ पहले हम ये समझें कि कौन से संस्कार अच्छे हैं या कौन से संस्कार बुरे हैं। इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो उसके कुछ हमने खुद ही चिंतन कर करके, अगर आपको पसंद आए तो भाई ये कह सकते हैं कि ठीक है ये संस्कार अच्छा है या ये संस्कार या ये आदत जो है वो अच्छी है, ये आदत जो है वो अच्छी नहीं है, इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। कैसे कहेंगे? तो पहला मापदंड तो ये है कि अगर मुझे वो पसंद है, आई लाइक इट, और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा न केवल मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मेरे परिवार में रहने वाले लोग, जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे समाज में रहने वाले लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, उनको भी उनसे लाभ हो रहा है। और दूसरा मापदंड कहेंगे कि जिनको बुद्धिजीवी ये कहें कि हाँ ये सही है, क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में 100 में से 90% लोग हैं शराब पीने वाले हैं, और अगर वो 90% लोग ये कहें कि हाँ शराब पीना अच्छा है तो सही बात नहीं है। क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसको वो नकार देंगे, वो कहेंगे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसको समझा है, पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब बुद्धिजीवी लोग इसको मानते हैं तो हम कहेंगे ये संस्कार अच्छे हैं। और तीसरे संस्कार, हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हों, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों, और वो हमारी सेहत को अच्छा करें। जैसे हमने अभी बताया कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे, तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी है, इसको तो पीना चाहिए, बल्कि सबको ही क्या होना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मापदंड लेकर के हम चल सकते हैं कि ये वाले संस्कार जो हैं ये अच्छे हैं और ये वाले संस्कार जो हैं वो बुरे हैं। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे समझें, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं संस्कारों को समझने के लिए। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही बाय बर्थ हमें मिले होते हैं, वो हमें किसी ने सिखाए नहीं या किसी ने बताए नहीं, लेकिन बचपन में से ही हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी संस्कार, जैसे हमारी, हम कहेंगे हमारी बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंग्लिश में हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हमारे सीखने की विधि क्या है या हम कैसे लोग हैं। जैसे हम बताते हैं कि आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, आठ तरह की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कई लोग होते हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है, कि वो पढ़ने से सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं, और उनको सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम आजकल मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या अगर वो क्लास में बैठे होंगे स्टूडेंट तो उनको टीचर को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर कैसा लग रहा है, और वो कोई डायग्राम बना रहा है तो वो डायग्राम बनाने से समझ जाएंगे। और ऐसे लोग जो हैं इस विधि से सीखते हैं, और ऐसे ही अगर वो अपने प्रोफेशन में जाएंगे, जैसे वो फोटोग्राफी में चले जाएं या पेंटर बन जाएं या ग्राफिक्स में चले जाएं, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस विधि से सीखते हैं उसी प्रोफेशन में जाना उनको जो है अच्छा लगता है, और ये बाय बर्थ होता है। ऐसे कोई लॉजिक लोग होते हैं, वो हर एक चीज़ में कारण ढूंढते हैं कि ये अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों है, मुझे इसको सीखना है या नहीं सीखना है तो क्यों है। मतलब हर एक किसी चीज़ को स्वीकार करने से पहले उनके मन में एक प्रश्न होता है। ऐसे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं। इस तरह इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटीज होती है, बड़े शांत रहते हैं। जैसे देखा होगा कई स्टूडेंट्स क्लास में, चाहे आगे बैठी हूँ पीछे बैठी हूँ, हमेशा शांत रहते, चुप रहते, किससे ज़्यादा बात नहीं करते। ऐसे लोग जो हैं उनमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होता है, और वो भी साइंटिस्ट बन जाते हैं, और वो साधु संत बन जाते हैं, महान आत्माएं बन जाती हैं। कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल पर्सनैलिटीज, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। आप उनको जो भी कहो वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। जैसे कई क्लास में स्टूडेंट्स हो गए, चाहे उनको आप आगे वाले टेबल पे बिठाओ चाहे पीछे बिठाओ, वो हमेशा बातें करते रहेंगे। ऐसे लोग जो हैं लीडर्स बन जाते हैं, वो समाज सेवी बन जाते हैं, वो काउंसलर्स बन जाते हैं। और उनको अगर हमने कुछ सिखाना है तो उनसे बातें करके, उनसे बातचीत करके हम उनको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। लेकिन जो इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद का खुद ही सीखते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे। और ऐसे सिक्स तरह की पर्सनैलिटी होती है जिनको हम कहते हैं, वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस होती है, उनको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, गीत गाएंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और उनका ये शौक होता है। आप उनको नहीं भी सिखाएं तो भी वो उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे कई लोग बचपन से ही गीत गाते हैं, उनको आपको ज़्यादा कैसे हम गीत गाते हैं सिखाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रोफेशनल जो हैं वो सिंगर बन जाए ना। तो ऐसे कई तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। ऐसे हमारे पास एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग बचपन से आध्यात्मिक होते हैं, और सत्संग में जाना, ध्यान करना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है, और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ना, और भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना उनको बचपन से ही अच्छा लगता है, उनको सिखाना नहीं पड़ता कि आपको जो है ये करना पड़ता है। और एक और पर्सनैलिटी जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ये लोग करने से सीखते हैं। इसलिए स्कूल में कॉलेजेस में जो है वो लैब्स बनी होती हैं, लेबोरेटरीज बनी होती हैं, जैसे थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन ये लोग थ्योरी से नहीं सीखते, लेकिन जो वर्बल पर्सनैलिटी होती है वो थ्योरी से सीख जाती है, विजुअल पर्सनैलिटी देखने से सीख जाती है। उनको आप करके बताओ, उनको उनसे कोई मतलब, लेकिन काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहती है तो हाथों से करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल से सीखती हैं। जब लेबॉरेटरी में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब उन्हें समझ लगेगी हाँ ऐसे करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते नहीं हैं, लेकिन उनको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे फिर उनको जोड़ देंगे। जैसे हमारे एक्टर्स हैं वो अपनी बॉडी से जो है एक्शंस करते हैं, हमारे डांसर्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं हमारे सारे, ये काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी में आते हैं, जिसमें कि बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है, जिसमें कि कोई ना कोई कार्य करना, ये लोग कार्य करने से जो है वो सीखते हैं। ऐसी हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह की वैरायटीज होती हैं, लोग होते हैं, हम उनको समझ पाते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति गाना ही क्यों गाता है, जैसे माँ बाप समझते हैं कि ये मेरा बच्चा ये गाना ही क्यों गाता है, इसको मैथ पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर बने लेकिन ये सिंगर बनना चाहता। माँ बाप को समझ नहीं लगती कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो साइंस में क्यों होशियार और मेरा बच्चा क्यों नहीं, उनको लगता है शायद ये पढ़ता ही नहीं। लेकिन उनको ये समझ नहीं आती इनके ये जो गुण हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो आती हैं, ये बाय बर्थ उनमें होती हैं, और अगर वो उनको उस फील्ड में जाने में सपोर्ट करें जो बाय बर्थ उनमें संस्कार या आदत होती है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन केवल केवल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है किसी व्यक्ति के संस्कारों को समझने की। दूसरा होता है जैसे रिश्तों में, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, या घर में एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को समझना। कई लोग होते हैं वो बाय बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल माना कि जिनका जो है वो राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, माना कि उनका माइंड बहुत इमोशनल होता है, और अगर कोई व्यक्ति उनसे अच्छी तरह बात नहीं करे तो जैसे छुई मुई होता है ना, पत्ते को हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाते हैं। तो अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों में बात नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी तरह अटेंड नहीं करेंगे, तो उनका चेहरा उतर जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं। भले आप उनका काम नहीं करो, फॉर एग्जांपल वो किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिसर से मिलते हैं, ऑफिसर कहता है कि नहीं मैं आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो रूड से बोलेगा तो भले काम नहीं किया रूडली भी बोला तो उदास हो जाएंगे, दो दो तीन तीन दिन उदास रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, अपसेट हो जाएंगे। लेकिन अगर वही ऑफिसर उसको बड़े प्यार से अटेंड करता है, उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, बड़े प्यार से बोलता है कि मजबूरी है मैं ऐसा, तो वो समझते हैं उस व्यक्ति को, उदास नहीं होंगे, और इसलिए भी उदास नहीं होंगे कि उस व्यक्ति ने उसका काम नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार से बात करे। और ऐसे लोग प्यार से ही बात करते हैं, बहुत केयर करते हैं, संभाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक माँ में ये नेचुरल गुण होता है अपने बच्चे की केयर करने का, वो तो बात अलग है कि माँ में नेचुरल गुण होता ही है, लेकिन बहुत सारे जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छे तरह ध्यान रखते हैं, या फादर जो है वो हर एक बच्चे का पूछेगा, अपने रिश्तेदारों को भी पूछेंगे, न केवल अपने परिवार को बल्कि दूसरों को भी पूछेंगे, और उनका ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे, कोई बीमार हो जाएगा तो उनको पानी ला के देंगे, खाना खिलाएंगे, उनके लिए दवाई लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल पर्सनैलिटीज। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी। ये लोग होते हैं, इनको काम से मतलब होता है, ये शब्द अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अगर इनका काम हो गया तो ये कहेंगे सब ठीक है, और इनको काम से मतलब होता है, और ये अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं, शब्दों से जाहिर नहीं करते, किसी को छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उनके प्यार जाहिर करने का तरीका होता है वो दूसरे व्यक्ति का काम कर देंगे। और खुद भी वो वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज होती हैं, और अगर एक ही परिवार में जो वाइफ एंड हस्बैंड है उन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती, एक व्यक्ति चाहता है काम होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति कहता नहीं अच्छे शब्द बोलो।
2: उसको अच्छे शब्दों से मतलब है, उसको काम से मतलब है, तो दोनों को ये समझ नहीं आती है अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या कारण है। तो ये पर्सनैलिटीज भी बाय बर्थ होती हैं, तो एक दूसरे को समझना कि ये जो गुण हैं, ये जो आते हैं, जो संस्कार हैं, उनसे बचपन में ही हैं। और भी बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दवाई के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया होता है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आर्सेनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी विद ए गोल्डन स्टिक इन दी हैंड। ये वो लोग होते हैं जो अपने, जिनको काम भी पसंद होता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हरी वरी एंड करी, अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे, टाइम से उनको पहुंचना अच्छा रहता है, और बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम उनका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है, और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों, उनको हम कहते हैं आर्सेनिक पर्सनैलिटीज़ या टाइप ए पर्सनैलिटीज। इसके अपोजिट होता है होम्योपैथी में, उनको कहते हैं सल्फर पर्सनैलिटी, ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम टाइम से पहुंचें या हमारा काम परफेक्शन से हो, कहते हैं जैसा है चलता है चलते रहने दो। और जो आर्सेनिक पर्सनैलिटी होती है, बड़ी सफाई पसंद होती है, बचपन में हमने सफाई का गुण होता है, लेकिन सल्फर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैले हैं कुचैले हैं कमरे में गंद पड़ा है, उनके लिए सब ठीक है, आराम से चल रहा है, उनको ये पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे सब कुछ ठीक ही तो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको सफाई पसंद है, उसको ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति रह कैसे रहा है, इतने गंद में कैसे रह रहा है, इसको खिन नहीं आती, इसको बुरा नहीं लगता, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को समझने के, तो ऐसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं, और अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दिया, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, किसी को देखने से सीखना अच्छा लगता है, किसी को सुनने से समझ जाते हैं, किसी को बोलने से अच्छा लगता है, और किसी को करके दिखाने से अच्छा लगता है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग व्यक्ति की क्षमता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जिस तरह से अच्छा लगता है, जिस भाषा में वो समझ पाता है, जिस भावना से वो समझ पाता है, जिस तरीके से, जिस स्टाइल से वो, जिस स्टाइल को वो पसंद करता है, उन्हीं चीज़ों को आपको उसी तरह से लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, सबको सब एक्टर्स पसंद नहीं आएंगे, किसका फेवरेट कोई है, किसका फेवरेट कोई है, तो ये भी हमारी जो है चॉइसेस भी अलग है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति की हॉबीज़, उसके नेचर, उसके स्वभाव, संस्कारों को थोड़ा सा ज़रूर समझ ले, और फिर उसके अनुसार आप डील करते हैं, तो उन्हें बेहद खुशी होती है, और आपको दोस्ती करना या उनके साथ कुछ भी कार्य को करना होगा या सामाजिक सेवा करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया संस्कारों के बारे में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
2: मैसेज फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि हम सबको स्वीकार करना सीखें।
0: हाँ,
2: क्योंकि जैसे आपने अभी समझा कि हर एक की आदतें, हर एक के संस्कार अलग हैं।
0: बिल्कुल,
2: और बाय बर्थ ही होते हैं, जैसे वैरायटी होती नेचर में। नेचर में एक तरह के फूल नहीं होते हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: एक तरह के फल नहीं होते हैं, एक तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, नेचर में वैरायटी है। इस तरह इंसान भी जो है, जैसे उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो एक ही परिवार में जन्मे होते हैं, इस तरह की कई जुड़वा बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं, इस तरह हमारे संस्कार अलग हैं, लेकिन हमें क्षमता डेवलप करनी चाहिए, अपने में आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीख लें, कि दूसरों के आदतों को, दूसरों को संस्कारों को हम रिस्पेक्ट करें। जब हम उनको स्वीकार कर पाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसा मैं हूँ वैसा अगला बन जाए, लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आदतों को बदल लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा बन जाए, जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैरायटी हो सकती है, अलग हो सकता है और अलग चीज भी अच्छी हो सकती है। जैसे रंग जो हैं, सात रंग कुदरत में बने हैं, किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो किसी को व्हाइट अच्छा लगता है, जिसको व्हाइट अच्छा लगता है उसको समझ नहीं आती इसको ब्लैक क्यों अच्छा लगता है, और जिसको ब्लैक अच्छा लगता है उसको ये समझ नहीं आती इसको व्हाइट क्यों अच्छा लगती है, कि रंग तो सारे ही अच्छे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और अपना और अपनों का ख्याल रखें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ, फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खम्बा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: एक काम करते हैं, इस पे बातचीत करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं.
1: हाँ
0: है ना, तो पता चल जाएगा फिर. तो बच्चों की दुनिया में आज हम बात करेंगे गर्ल्स और बॉयज के बारे में. तो आपको क्यों लगता है कि गर्ल्स बेस्ट होती हैं?
2: क्योंकि दीदी गर्ल्स घर का भी काम कर लेती हैं, बाहर का भी काम कर सकती हैं, और आज के टाइम पे गर्ल्स कुछ भी कर सकती है, एरोप्लेन उड़ाने से लेके शिप चलाने तक.
0: ये तो सही बात कह रहे हो आप. आपको क्यों लगता है बॉयज बेस्ट होते हैं?
3: दीदी क्योंकि गर्ल्स कोई काम नहीं करते हैं, मतलब आजकल की गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब कहीं कहीं पढ़ाई करते हैं तो फिर जाके बनते हैं, ये तो कभी सफाई भी नहीं करते, बस टीवी के सामने बैठे रहते हैं.
0: ऐसा?
3: हाँ
2: दीदी, ये तो खुद खेलने चल जाते हैं, इनको क्या पता मम्मी के साथ काम कौन कराते हैं. मम्मी के साथ तो काम लड़कियां ही कराती हैं.
0: लड़के नहीं कराते मम्मी के साथ काम?
3: दीदी मैं करवाता हूँ.
2: कहीं कहीं कराते हैं, लगभग तो नहीं कराते हैं.
0: ज्यादातर नहीं कराते?
2: नहीं कराते.
0: पक्का?
2: पक्का.
0: ओके, आपको शिक्षा क्या लगता है?
3: दीदी लड़के काम नहीं करवाते, मेरा भाई भी नहीं करवाता. घर में काम तो बस मैं करती हूँ और मेरी दीदी करती हैं. भाई तो खाना खाने बैठे, रोटी लेके आओ मेरे लिए, वो बस है ना ऑर्डर देता है और कभी खुद तो काम नहीं करता.
0: अच्छा, कुछ हाँ. रोटी लेके भी नहीं आता? आप लोग
3: पानी भी नहीं लेके आता खुद से?
0: अपने लिए भी नहीं?
3: नहीं.
0: तो फिर कौन लेके आता है उसके लिए पानी?
3: मम्मी बोलती है लेके आ जाओ उसके लिए, अब तो वो खाने बैठ गया है, फिर उठ के जाएगा क्या, फिर हमको जबरदस्ती जानी पड़ता है गुस्से में.
0: तो आप खाने बैठते हो तो वो नहीं लेके आता?
3: नहीं लेके आता, भग जाता है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ.
1: दीदी मैं लेके आता हूँ जब वे बैठी होती है.
2: दीदी मेरा भाई भी ऐसा है, अभी तो मेरी नींद भी नहीं खुली थी सुबह.
0: हाँ
2: मतलब दोपहर का टाइम ना, अभी नींद नहीं खुली, मैं तभी घूम रही थी. ये मतलब राजा महाराजाओं की तरह मम्मी एक गिलास पानी ला कर देना. मम्मी मेरे को बोले शिवांशी एक गिलास पानी दियो, मैं कहा मैं नहीं दे रही इसको, कह तो खड़ा होकर लाएगा, मेरी आंखें तो खुल नहीं रही है.
0: हाँ.
2: मतलब पूरा शहजादों की तरह रोटी भी इसको, हाँ शिवांशी रोटी दियो, अगर मान लो गलती से नहीं सुनी फिर ताना मार के बोलते है कि हाँ मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है, रोटी मांगे रोटी को दे नहीं रहा, एक बार नहीं सुना तो वापिस खुद निकाल ले, मैं भी खाना खा रही हूँ ये भी खाना खा रहा है, कब पानी लेके. मैं खाना नहीं खा रही, मेरे को ही जाना पड़ता है पानी लेने.
0: आप खाना खा रहे हो तो तब भी जाना पड़ता है, और
2: नहीं खा रही थी तो भी जाना पड़ता है. कभी कभी मुहूर्त आता है जब ये पानी लेके आता है.
0: कभी कभी मतलब साल में एक आध बार या महीने में एक दो बार?
2: एक आध बार.
3: झूठ बोल रही है बिल्कुल.
2: सिर्फ कल ही पानी पिला है
3: दीदी. काचा काचा झूठ बोल रही है, अभी इसने मतलब बनाया है ये.
0: क्या आप क्या करते हो? अच्छा फिर आप बताओ.
3: दीदी मैं पानी लेके आता हूँ, अगर ये बैठी होती है मैं बोलता हूँ खुद ले आ, ये बोलती है ले आना जाके, फिर मैं लेके आता दीदी. दीदी अगर ये रोटी के नहीं सुनती ना, मैं कोई ताने नहीं मारता, मैं खुद ले लेता हूँ, मैं किसी और को बोल देता या फिर खुद ले लेता हूँ.
0: खुद जाके ले लेते हो आप रोटी? बस एक बार बोलते हो?
3: हाँ.
0: दो बार नहीं?
2: दीदी दादी या दादू में से कोई पानी मांग रहा था ना, राघव एक गिलास पानी रखे दियो, ये वापस ऑर्डर पे बोलता है शिवांशी दो गिलास पानी दियो. मतलब पास टू पास कर रहा है, खुद खड़ा होकर लेके नहीं आ सकता, फिर भी खा किचन में आके मेरे को बोल के जाएगा शिवांशी दो गिलास पानी दे जा, खुद लेके नहीं जाता.
0: ओके. शिक्षा आप कुछ कह रहे?
3: दीदी ऐसे ही करता है मेरा भाई भी, और पता है खाना खाने अकेले नहीं बैठेगा, क्योंकि वो अकेले बैठेगा ना खाना खाने तो मम्मी बोलेगी तुम्हारी गलती है तुम पानी लेके नहीं बैठे, तो वो अकेले नहीं खाता, जब पापा आते हैं तब खाने बैठते हैं, पापा के आगे दीदी कुछ नहीं कहेंगी, पानी लेके ही आना पड़ेगा उनको. वो बोलता है पापा के लिए पानी आता है, फिर ऐसे हंसता है मेरे लिए पानी कहाँ है, फिर पापा बोलते हैं उसके लिए भी लेके आओ, वो खाने बैठ गया है तो खुद थोड़ी जाएगा, वो बेचारा खा रहा है.
0: अच्छा जब मम्मी खाने बैठती है तब?
3: मम्मी खाने बैठती है तब भी मैं ही पानी देती हूँ, और गन्नू से पानी मंगाना होता है ना उससे, तो बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा पानी लेके आ जा, क्योंकि मैं गुस्सा होती हूँ उससे नहीं करवाते आप काम, उससे ही काम करवाते हो सारे.
0: हाँ.
3: तो बड़ी मुश्किल में पानी लेके आएगा वो भी.
0: अच्छा उसको प्यार से बोलती है
3: मम्मी? हाँ तब. हाँ. कि देखो ना मैं चॉकलेट खिलाऊंगी पानी लेके आ.
0: और आपको कैसे बोलते?
3: मैं तो खुद ही लाके दे देती हूँ मम्मी खाना खाने बैठते हैं तब,
0: क्योंकि आपको लगता है ना पानी होना चाहिए.
3: हाँ
2: दीदी ये भी कई कई बार ऐसे करते हैं, जब सारे रोटी खा रहे होते तब ये नहीं खाएगा, बाद में जब सोने का टाइम होगा ना तब इसको भूख लगेगी, फिर काम मेरे को करना पड़ता है, सारा सामान जो मैं अभी रख के आई थी वो सारा सामान वापस उठा के आती हूँ, रोटी ले ले सब्जी ले ले, फिर टीवी चला के बैठेगा एक एक बाइट आराम आराम से खाएगा, मेरे को सोने जाना होगा फिर इतनी आराम से खाएगा, बस कुछ हो मत दी. फिर अगर सामान नहीं रखा ना फिर बाद में मम्मी डांटेंगे कि सब्जी मच्छर चला जाएगा ये चल, तो कुछ रखता भी नहीं है फिर ये.
0: अच्छा एक बार बताओ लास्ट में खाना खाते
3: हो? दीदी मैं रखता हूँ, ये झूठ बोल रही है, जब ये सो जाती है मैं खुद रख के आता हूँ किचन में.
0: कभी कभी आप रखते हो, कभी कभी आप रखते हो, ऐसा तो नहीं होता?
3: नहीं दीदी मैं जब ये सो जाती है तो मैं ही रखता हूँ.
2: दीदी कई बार ज्यादा नींद आ रही होती तो

0: हो जाती हूँ, फिर मेरे से इतना बैठा नहीं जाता, मैं कर रख दियो फिर।
1: हाँ, तो
0: उस दिन इसका मूड अच्छा होता फिर रख देता, नहीं तो मूड अच्छा नहीं होता ना, लड़ाई हुई होती है।
1: हाँ,
0: रख दियो रागल, मैं क्यों रखूँ, तू रख के जा। फिर उसी बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है हमारी। कल हम कैरम खेल रहे थे, बिना बात की लड़ाई हो रही थी कि बारी बार स्ट्राइकर से ना गीटियां सारी उछाल रहा था, मैं करो को क्या है, बारी बार गीटियां उछाल रहा है,
2: शॉट इतना बढ़िया लग रहा था, मेरी क्या गलती है।
0: फिर जब हार जाता है ना, फिर ऐसे करता है, हाँ चीटिंग करके जीतते हैं लोग।
1: अच्छा मुझे ये बताओ, कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि लड़कियों को करने चाहिए, और कौन से काम ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि ये काम लड़कों को करने चाहिए?
0: दीदी ऐसा कोई काम नहीं है जैसे लड़कियां कर सके लड़के कर सके।
1: ओके, शिक्षा आपको ये लगता है?
2: ये सारे काम ही कर सकते हैं। हाँ। खाना वगैरह भी बॉयज बना सकते हैं। हाँ। गर्ल्स भी बना सकते हैं।
1: हाँ।
2: तो कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं।
1: राघव आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन से काम है जो लड़कों को करने चाहिए, कौन से काम है जो लड़कियों को करने चाहिए?
2: सारे काम करने चाहिए।
1: सारे काम करने चाहिए, कोई ऐसा काम तो नहीं है जो लगता है कि नहीं ये लड़कियों का ही काम होता है, या ये वाला काम तो लड़कों का ही होता है?
2: हाँ दीदी, बस एक काम।
1: कौन सा?
2: फ्रॉक डालने।
1: फ्रॉक डालना, ओके।
2: दीदी वो हम थोड़ी डालेंगे, तो
1: वो हम थोड़ी पहनेंगे,
2: या जींस विंस डाल सकते हैं, हम फ्रॉक थोड़ी डालेंगे।
1: पहन सकते हो? नहीं पहन सकते तो वो कपड़े बस नहीं पहन सकते, बाकी सब तो कॉमन है।
2: हाँ
1: ये भी ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ शिक्षा।
2: दीदी एक बात बताओ।
1: हाँ।
2: मतलब ये कपड़े, ये टी शर्ट वगैरह, इन्हें ही पहनने का हक है, हम नहीं पहन सकते?
3: तो
2: अगर टी शर्ट हम पहन सकते हैं, ये भी फ्रॉक पहन ले, इनका मन है तो। हमारा मन है टी शर्ट पहनने का, हम पहनते हैं। और इनको पहनना इतना दिक्कत है, ये भी फ्रॉक पहने, लहंगा पहने, ये भी सब पहने।
1: मतलब जिसको जो मन हो पहन।
2: हाँ पहन सकता है ना।
0: जी हमने कब मना करे, आप लहंगा ना डालो, फ्रॉक ना डालो, डाल सकते हैं।
1: लेकिन लड़कियां टी शर्ट पहनती है तब तो कोई नहीं हंसता, और लड़के पहनेंगे तब तो लोग फिर हंसेंगे, फिर लड़के कैसे पहनेंगे?
0: खुद की मर्जी है।
1: नहीं हंसोगे आप लोग फिर?
0: हंसेंगे तो सही दीदी,
1: हंसेंगे ना। अच्छा ठीक है, जीन्स टी शर्ट तो पहन सकते हैं ना, लड़कियां भी पहन सकती हैं। सही बात है। तो कोई भी ऐसा काम नहीं लगता आपको जो लड़कों के लिए हो, या जैसे बाहर जाके कुछ सामान लेके आना है तो वो काम किसका है?
0: दोनों ही कर सकते हैं।
2: हाँ
1: दोनों का है।
2: हाँ दीदी।
1: राघव?
2: हाँ दीदी दोनों का है।
1: दोनों का है, ऐसा तो नहीं अभी तुमने घर के काम करा दिए मम्मी के साथ तो मैं बाहर का ले आता हूँ?
2: दीदी कुछ ज्यादा। हाँ? वैसा सामान है जैसे कि कुछ ज्यादा सामान लेके आना है जो गाड़ी पे लेके आ सकते हैं, तो वो काम तो लड़के ही कर देते हैं।
1: तो भारी है सामान तो?
2: हाँ।
1: ज्यादा सामान,
2: क्योंकि हम तो बाजार में इतना सारा सामान लेके नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा हम इतना सारा बोरी वगैरह रख के लेके आ रहे हैं सामान में।
0: ऐसे थोड़ी होता है, सामान तो उठाने जा सकते, अगर गाड़ी चलानी आती तो खुद भी जा सकते हैं,
1: गाड़ी चलानी आती है जा सकते हैं।
2: दीदी अगर ज्यादा सामान हो तो शिवांशी मेरे साथ जा सकती है।
1: वैसे घर का सामान लेके कौन आता है आप में से?
0: डैडी।
2: दीदी मैं और मेरे पापा।
1: अच्छा, और जो छोटा मोटा होता है कुछ ऐसा मसाला ले आओ?
0: वो तो मैं ही ले आती हूँ।
2: मैं भी ले आता हूँ, मेरा भाई ला देता है। अगर मेरा मन नहीं होता ना तो बोल देती हूँ तुम ला दो प्लीज प्लीज, उससे बोलती तेरे साथ खेलूंगी, तेरे को है ना बाद में मैं ना कुछ खिलाऊंगी, ऐसे मेरे को जाना नहीं होता तब बड़ी मुश्किल में उसको भेजती
1: हूँ। मना मना के भेजती
0: हूँ। रिश्वत देनी पड़ती
1: है। रिश्वत देनी
2: पड़ती है, रिश्वत में जाता है। दीदी शिवांशी है ना बोलती है बहुत ज्यादा भारी सामान है मेरे साथ बाजार चलेगा, मैंने बोला चल पढ़ूंगा, फिर उसके बाद ना बस इतना छोटा सा चीनी का पैकेट लाना होता है।
0: दीदी भारी तो मैं कुछ भी उठा लूंगा, कुछ सिलेंडर उठवा लो।
1: हाँ।
0: मैं वो भी उठा लूंगी, पर ना अकेले जाने में ऐसा लगता है कि 200 किलोमीटर जाना है, ऐसे कोई होता है ना तो बातें करते करते जाते हैं, टाइम का पता नहीं लगता, फिर
1: साथ में मजा आता है।
2: हाँ। अगली बार हम तो 17 रोबोट भेज देंगे, फिर हरियाणा पैदल जाइयो।
1: अच्छा ये बताओ कि कौन सा काम अच्छा लगता है करना, ये पूछा जाए तो, घर का काम, किचन का काम करना अच्छा लगता है कि बाहर का काम करना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है?
0: दोनों ही।
2: दीदी वैसे तो दोनों ही काम अच्छे हैं, घर का भी कर सकते हैं, बाहर का भी कर सकते हैं। दीदी मुझे बस दो ही काम अच्छे लगते हैं।
1: क्या?
2: जब गर्मी हो तो अंदर एसी में आराम से लेट जाओ, और जब ठंड हो तो बाहर उधर बिछा के धूप में लेट जाओ।
1: ये सबसे बेस्ट काम है ना?
2: हाँ ये लड़कियां भी करती हैं।
0: पर दीदी काम करने के बाद करते हैं घर का?
1: हाँ पहले थोड़ा काम तो करना पड़ता है भाई, घर का काम तो सबका ही है ना।
2: दीदी अगर कभी गर्म पानी नहीं आ रहा होता ठंडे में तो हमको नहाना पड़ता है ठंडे ठंडे पानी से।
1: और ठंड लगती है ना। अच्छा ये बताओ खाना बनाना आप में से किस किस को आता है, या कौन कौन सीखना चाहता है कि बड़े होके सीखेंगे बनाएंगे? ऐसा मन करता है?
2: हाँ दीदी, मन तो करता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें है ना परफेक्ट नहीं बनती, और फिर है ना वही मेरी दीदी बना दे तो लगता है अरे यार मुझे नहीं आता, मुझे भी सीखना है, मन होता है कभी कभी सीखने का ना।
0: हाँ दीदी आता तो है, मतलब देख के तो बना ही लूंगी।
1: राघव आपको लगता है घर का खाना बनाना सीखोगे या नहीं?
3: दीदी बड़े हो गए सीख लूंगा।
1: कितने बड़े हो गए सीखोगे? अभी कौन सी क्लास में आप?
3: मैं 6th क्लास में।
1: हाँ तो कितने बड़े हो जाओगे, कौन सी क्लास में सीखोगे आप खाना बनाना?
3: दीदी खाना बनाना तो आता है, बस मैगी बनाओ और खा लो।
1: सीखना है कि सीखना भी नहीं है?
3: बाद में सीख लूंगा।
1: बाद में सीख लोगे? फिर शिवांशी को बना के खिलाओगे?
3: खिला दूंगा दीदी, पर शिवांशी को खुद नहीं बनाना था दीदी, वो ऐसे ऐसे बेलन चलाती है और बीच में ही होल हो जाता है रोटी के, रोटी ऐसे हार्ट शेप में बनती है और साइड में ऐसे ऐसे पता नहीं क्या हुआ।
0: दीदी जिस टाइम फर्स्ट टाइम रोटी बनाई थी ना तब ऐसा हुआ था, अब इतनी परफेक्ट गोल रोटी बनती है धरती की तरह।
1: अरे वाह
3: दीदी, गोल नहीं, धरती स्पेसिफिक होती है ठीक है ना, गोल स्पेसिफिक बोल दे उसको।
1: ओके तो रोटी बनाना भी सबको आना चाहिए मतलब ना
3: दीदी। बॉयज वर्सेस गर्ल्स की बात हो रही थी पर हम खाने बनाने की बात क्यों कर रहे?
0: अरे नहीं दीदी, आप तो भाई बहन की बातें हो रही है।
1: अच्छा ठीक है,
3: बहन तो
1: अच्छा, तो बताओ आप, बताओ बॉयज में मतलब आपकी जिंदगी में जो भी बॉयज हैं वो राघव में, आपके पापा की भी बात कर सकते हो है ना, और कजिन्स की भी बात कर सकते हो, फ्रेंड्स की बात कर सकते हो, क्या अच्छा लगता है उनमें? नहीं अच्छा अच्छा पूछ रहे हैं अभी।
0: दीदी खुद के भाई बहन, खुद के मतलब बहनों की इज्जत मतलब दीदी नहीं बोलते, पर जो कजन भाई होते हैं ना वो दीदी बोलते, तब इतनी खुशी मिलती है, हाँ किसी ने मेरे को दीदी बोला। और अच्छा बिहेवियर करते हैं,
1: रिस्पेक्ट करते हैं।
0: हाँ
1: तो ओके
2: दीदी, खुद के भाई बहन छोड़ के ना अगर कजन्स आ जाते हैं तो इतने अच्छे से बिहेव करते हैं ना, तो लगता है काश यही मेरा भाई होता। हाँ यही मेरे साथ रह रहा होता। मैंने तो एक बार कहा भी था, मेरी दीदी कहती है मेरी मामी का जो छोटा वाला लड़का है ना, मामी इसको एक्सचेंज कर लो, मेरा भाई आप ले लो, ये मुझे दे दो ये वाला भाई। क्योंकि वो अच्छे से रहता है। और हमारा भाई अगर है ना, हम सब लेटे हो कोई भी काम हो उस पर दूध फैल गया, खुद तो साफ नहीं कर सकता, बस भग जाएगा वहां से, मम्मी मम्मी खाना खा रही होंगी या कुछ काम कर रही हो, तो हमें ही साफ करना पड़ता है। वो तो भग जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद जब मम्मी अच्छे मूड में होती है तब आता है घर में बढ़िया आराम से, और आता है पापा के सामने, जैसे उसे पता चलता है कि उसकी शिकायत पापा से हो गई है, फिर तो वो छुप जाता है, आता ही नहीं जब तक मूड उसे अच्छा ना दिखे पापा मम्मी का,
1: तब तक छुपा रहता है।
2: हाँ वो छुपा रहता है।
1: ओके
2: और अगर पापा घर पे नहीं आए हो तो सो जाएगा, कैसे भी करके अगर सो नहीं रहा हो, नींद नहीं आ रही हो, फिर भी सो जाएगा कि डांट ना पड़े मुझ पे।
1: उठा के तो नहीं डांटेंगे वापस? हाँ। नींद से जगाकर, उसने तरीका ढूंढ लिया है,
2: बच जाता है हर बार गलती करके।
1: और राघव आपको क्या अच्छा लगता है मम्मी में, आपकी सिस्टर में, सबसे अच्छा क्या बात लगती है?
3: दीदी मुझे बस एक ही बात अच्छी लगती है कि शिवांशी है ना, जब भी है ना मतलब ये मेरे और इसके बीच में लड़ाई, और कोई बीच में आके बोलने लगे हे तू तो इतना घंटिया है वो है, तो ये उसको मारने चली जाएगी, क्या है वो मेरा भाई है, बस मैं ही उसको डांट सकती हूँ ठीक है ना, फिर हम दोनों साथ में ऐसे घर चले जाएंगे।
0: घर जाके वापस लड़ाई करे।
1: हाँ लेकिन सपोर्ट करती है ना, कितना मतलब बड़ी दीदी है ना आप, तो शिवांशी आपको बहुत सपोर्ट करती है ना
3: दीदी? मैं भी करता हूँ।
1: आप उसकी तारीफ करते हो नहीं करते? अच्छा उसने कुछ अच्छा बनाया हो तो, कुछ अच्छा कर रही होती आपके लिए, तो उसको फिर थैंक यू बोलते हो, अच्छा कुछ बोलते?
3: दीदी अगर हम दोनों की लड़ाई हुई होती है ना तो हम बोलते हैं कि ना अगर ये अच्छी भी लग रही होगी तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अच्छी नहीं लग रही बस रहने दे,
1: अगर लड़ाई हुई होती है तो।
3: हाँ
1: वरना बोलते हो अच्छी लग रही हो?
3: हाँ कभी कभी बोल देता हूँ।
0: दीदी काम कराने के लिए आता है, जब भी कोई इसका प्रोजेक्ट होगा ना, बना दे बना दे, वो अगर मैं नहीं बनाऊंगा ना तो खुद बनाने बैठ जाएगा, चाहे गंदा सा बनाए फिर बना लेगा, फिर उसके बाद मैं खुद ही जाना पड़ेगा, हाँ दे इधर मैं बनाती हूँ।
1: अच्छा ये तो बताया नहीं आपने, उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको
0: इसमें? कई कई बार जब मूड अच्छा होता तब थोड़ी कम लड़ाई करता है, बस यही अच्छा लगता है,
1: और कुछ अच्छा नहीं लगता? और कुछ अच्छा तो
0: दीदी बहुत सोचना पड़ेगा तब जाके एक और पॉइंट मिलेगा।
1: सोच के बताओ क्या अच्छा लगता है, अभी सामने बैठा है आपके राघव, आपके भाई में क्या अच्छी बात लगती है, आप भी सोच के बताओ।
2: दीदी मेरा भाई ना मुझसे कितनी भी लड़ाई करे, अगर कोई दूसरा मुझसे लड़ाई करने आ जाए और किसी ने बुरा बोल दिया तो सामने वाले से भिड़ जाएगा, बिल्कुल लड़ जाएगा, तुमने मेरी दीदी से ऐसा कैसे कह दिया। हम लोग आपस में कितना भी लड़ते रहे पर है ना कोई और दूसरा, अगर उसने मेरे भाई को कुछ किया तो मैं उसको है ना लड़ने पहुंच जाती हूँ। अगर किसी ने मुझसे किया, वो बड़ा हो मेरी क्लास का हो, उससे लड़ने पहुंच जाएगा, आपने मेरी दीदी से ऐसा कहा था।
1: अच्छा
2: हाँ, वो बोला
1: छोटा है,
2: हाँ लड़ नहीं सकता, फिर भी उनसे है ना बहस करने चला जाता है।
0: दीदी याद आ गया, खबरी है।
1: तो आपको अच्छा क्या लगता है इसमें?
0: यही तो बात अच्छी लगती है ना, किसी के बारे में बात निकलवानी है, इसके पास चल रहा है, निकाल देगा किसी को।
1: अच्छा
0: कहीं से भी मतलब थोड़ी बहुत,
1: नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
0: तो दीदी इतना अच्छा
2: दीदी
0: बोला है, सीक्रेट एजेंट है मेरा।
2: दीदी अभी बेइज्जती कर रही है घर जाके ना, ये मन मन में बोलेगी,
1: मतलब बाद में
2: अंदर सोचती रहती है। फिर
0: दीदी इतनी अच्छी तारीफ कर दी, मेरा सीक्रेट एजेंट बना लिया, पर्सनल पीए बना लिया मैंने,
1: मतलब सब कुछ आपको बताता है वो आके, सब कुछ शेयर करता है।
0: हाँ अगर इसके पास कोई टेंशन हो तो वो भी बता देता है, तो उसको सॉल्यूशन दे देती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है,
2: दीदी माफी दे देता है उसको।
0: कई कई बार इसने मेरे को सॉल्यूशन दी,
2: कई कई बार
3: हर,
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लेते हो बातें, है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, ये तो इतनी अच्छी क्वालिटी है सब भाई बहनों में होनी चाहिए, ये तो मुझे लगता है। तो मतलब एक दूसरे का भाई बहन सपोर्ट बहुत करते हैं, है ना। तो फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे थे सुबह, आप शुरू में बोल रहे थे गर्ल्स बेस्ट होती हैं या बॉयज, यहाँ तो निकल के आ रहा है कि दोनों ही बेस्ट होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कोई कंपटीशन तो दिख ही नहीं रहा है।
2: दीदी गर्ल्स बोल देंगे ये लड़के बढ़िया होते हैं, बॉयज बोल देंगे कि लड़कियां बढ़िया होती है, बस हो गया बराबर ही सब।
1: हाँ ये बोल देना चाहिए ना, बॉयज को बोल देना चाहिए गर्ल्स।
2: दीदी ये अगर हमारी बहस हो जाती है ना तो हमको ये माफी मांगनी पड़ती है, ये तो कुछ करते ही नहीं है,
1: माफी बॉयज को मांगनी पड़ती है।
2: हाँ दीदी ये तो ऐसी दीदी और बहस बढ़ाते जाएंगे क्या। हाँ अगर वो टॉपिक पे बात नहीं हो रही होगी तो भी उस टॉपिक पे बात ले आएंगे।
0: दीदी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल परसों रात को मैं डैडी के साथ मैच देख रही थी, तो ना डैडी और मेरा मुंह इस तरफ था, राघव का मुंह दूसरी तरफ था, तो इसने पैर डैडी और मेरे बीच में कर दिया। मैं कह रहा हूँ पैर दूर कर ले, पैर में से स्मेल आती है, पसीना आता है, नॉर्मल सी बात है। इसको उस बात का गुस्सा लग गया, पैर बिल्कुल भीड़े करके बैठ गया। फिर उसके बाद कुछ मैंने हल्का से इसकी कमर पे हाथ लगाया, उसको कमर में दर्द था, मतलब मैं उल्टी तरफ मुंह करके सोती हूँ ना, तो मेरे पैरों को ऊपर चढ़ गया, कोने में जाने की कोशिश कर रहा, मैं कोने में सोऊंगा। इसको लगता डर है कि हाँ साइड से हाथ निकल जाएगा, मैं कोने में ही सोऊंगा कोने। लास्ट मेरे को माफी मांगना है, रागू सॉरी बोल रही हूँ, आजा इधर आजा इधर आजा। फिर कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढनी पड़ती है कि मतलब माफ कर दे।
1: तो डर लगता है तो कैसे सोते फिर वहाँ पे है रागा?
2: डर लगने का थोड़ी देर नॉर्मल होकर फिर वापिस बातें करनी शुरू कर देते हैं।
0: दीदी सबसे मेन बात, खुद तो दिन में हॉरर देखता है, फिर रात को आके मेरे को भी डराता है। मेरी आदत है कि मैं तकिए को अपने साथ रख के सोती हूँ, उसको गला पा के सोती हूँ। तो फिर राघु कहता, मैं कह राघु बताइए कौन है, कहता मुझे कब था, मैं कहीं रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है जिसका भी नाम है। तो कहता ऐसे मत बोला अगर, ये ना रात को पानी पीने जाएगा फिर उठ के। मैं कहा खुद तो डर रहा है, मेरे को साथ और डर आ रहा है।
1: कौन जाएगा पानी पीने?
0: तकिया।
2: दीदी ऐसे जाते हैं कहीं
1: तकिया पानी पीने?
2: हाँ दीदी होता है, मैंने कैमरों में देखा है,
1: फिल्मों में होता है ऐसा, रियल में तो नहीं होता।
2: दीदी रियल में भी होता है, उधर अंधेरा होता है, कुछ होता नहीं है, ह्यूमन बॉडी डिटेक्टिंग हमने कैमरे में ऑन कर तो ना वो ऐसे कुछ हमको नहीं दिखता, जो कैमरे में नहीं दिखता, बस वो कैमरा डिटेक्ट करता है कि कोई ह्यूमन बॉडी थी, तो फिर वो फोटो खींचता तो सब ब्लैक ब्लैक था, तो हमको क्या पता क्या था।
1: बॉडी तो नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी होगी तो डिटेक्ट कर लेगा।
2: हाँ तो बॉडी थी ना दीदी, तभी तो डिटेक्ट किया।
0: दीदी इसने एक वीडियो देखी थी, उसमें ऐसा था कि ब्रेन पावर को करना था, दोनों एक ऐसी एक नॉर्मल चलते फिरते कोई भी ऐसी सड़क पर चलते सार को एक कमरे में बुलाया, उसको कहा कि कमरे में पूरा अंधेरा होगा और उसके अंदर सांप होगा, तो उसको कमरे में बैठा दिया। उसको लगा कि हाँ अंधेरा ही और क्या, सांप काटेगा नहीं, पैर ऊपर कर लूंगा, सुई दी थी, सुई चुबाई थी थोड़ी सी, तो फिर उसको ऐसा लगा कि मुझे सांप ने काटा। और जब उसको 15-20 मिनट बाद देखा तो उसकी पूरी बॉडी नीली थी। इससे ये पता लगता है कि ब्रेन की पावर इतनी है, अगर उसको पता भी ना हो कि हाँ वो सांप है नहीं है, तो उसके डर के मारे वो खुद ही एक पॉइजन के रूप में बदल
1: भी कर सकता। देखो कितनी बड़ी बात है ये, हमारा माइंड कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि शरीर पे भी उसका असर दिखने लगता है।
0: और जबकि सांप उसमें था कुछ भी नहीं था उसमें, बस एक सुई चुभाई थी।
1: तो उससे ही तो आपको पता चल गया होगा आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, माइंड कितना पावरफुल है, जो सोचो वैसे हम बन जाते हैं। तो इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, पावरफुल पावरफुल सोचो, यानी उसको भी किसी को कुछ लगता होगा कि कोई है तो सच में कोई लगने लगेगा कि है, कोई नहीं भी है तब भी लगने लगेगा कि कोई तो है। और अगर खुद के बारे में सोचो कि मैं सबसे पावरफुल हूँ तो सच्ची में सबसे पावरफुल हो आप।
0: उस दिन मेरे को रात को नींद ही नहीं आई थी, मतलब मैंने वीडियो भी देख रखी थी, ऊपर जिसने मुझे तकिया हिलने लगेगा तो रात को भी मेरे को कहता मेरे को तकिए की आंखें भी दिख रही है, मैंने तो तकिए को साइड में करा फिर साइड में उधर जाकर सोई, फिर जाके नींद आई।
1: जो सोचो वो दिखने लगता है, वो तो है।
2: दीदी मेरे को सच्ची उसकी आंखें दिखी थी, वो हिल रहा था, दीदी उसके थोड़े दांत भी दिख रहे थे, वो ऐसे हंस रहा था, उसके इतने भयानक दांत थे, नोकीले भी
1: दिख सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड, अभी हमने सोचा ना सुई लगाई थी, आपने तो बताया कि सुई लगाई तो सच में ब्लू पड़ गई ना उसकी बॉडी, तो हमारी बॉडी तो आंखें भी तो बॉडी का पार्ट है ना, तो हम जो सोचेंगे जो हमें लगेगा है वो सच्ची में दिखने लगेगा हमको, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो हमको दिखने लगेगा। तो इसीलिए जो हम सोचेंगे वो बहुत जरूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं, और सोचने के लिए क्या जरूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, जो देखोगे वो सोचोगे, जो सोचोगे वो देखोगे।
2: दीदी वो कितना भी किलोमीटर दूर होता है तो हमको उसका मतलब पता चल जाता है, मतलब है ना जैसे कोई मेरे लिए कोई दूर से चीज आ रही है, मतलब मैंने किसी ने मेरे को पार्सल करवाया है तो मतलब मेरे को पता है वो चीज क्या है पर उसका कलर नहीं पता, तो मैं सोचूंगा ये होगा ये होगा ये होगा, चाहे उसका कलर ब्लू होगा ना तो बीच बीच में मैं सोचता हूँ कि वो रेड होगा, तो वो ब्लू से रेड मेरे को दिखता है।
1: हाँ ये होता है बिल्कुल, अब ये कलर्स के साथ भी होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए इस बारे में, हम एक और एपिसोड में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। बट अब जो आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं ना और जो एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, हम अलग से उसके बारे में बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहे हैं ये, है ना। तो हमारे दोस्तों से फिलहाल कहना पड़ेगा हमें गुड बाय, क्योंकि टाइम था हमारे पास इतना ही, और ढेर सारी बातें करेंगे। और अगर आप रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर या मैसेज पर भी, हमारा नंबर है, कोई बता सकता है नंबर क्या है रेडियो का?
0: 94-14-15-14-15।
1: हाँ यानी कि
0: 9414151415।
1: तो रेडियो मधुबन सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए।

भाग 12। ओम राधे जी के वहां ठहरने पर जज साहब ने कहा, पहले गीता हाथ में उठाकर शपथ लीजिए कि आप सब सच बोलेंगी। ओम राधे जी, क्या कसम उठाना है जज साहब? जज साहब, आप गीता को हाथ में उठाकर यह कहिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। ओम राधे जी, जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रही हूँ, भगवान को तो इन नेत्रों से नहीं देख सकती हूँ। तब भला मैं यह झूठी कसम कैसे लूं कि भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ? मैं तो आप आत्मा को ही जज के रूप में देख रही हूँ, इसलिए अगर आप कहें तो यह कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो बोलूंगी सच बोलूंगी। यह विचित्र उत्तर सुनकर कोर्ट में बैठे हुए लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और कई तो हंसने भी लगे। किसी किसी ने तो ताली भी बजाई और कोई कोई बोल उठे कि ओम राधे ने बिल्कुल ठीक कहा है। जज साहब थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर ऑर्डर बोलकर सबको चुप कराया। जज साहब ओम राधे की ओर देखते हुए, मैं कोई भगवान थोड़े ही हूं जो आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह कोर्ट का लॉ है अथवा विधान है, हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। ओम राधे ने नम्रता पूर्वक कहा, जज साहब आप स्वयं ही कहते हैं कि सच बोलो, तब भला विचार कीजिए कि जब मैं यहाँ ईश्वर को हाजिर नाजिर नहीं देखती बल्कि यही देखती हूँ कि आज हरेक के मन में काम क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? जज साहब थोड़ा आवेग से बोले, यह कोर्ट है, कोई सत्संग नहीं है जहां आप मुझे ज्ञान देने लगी हैं। यहां तो कानून चलता है, यदि आप यहां इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओम राधे शक्ति के रूप में निर्भय होकर बोली, जैसे आप इस कोर्ट का अपमान नहीं करना चाहते वैसे ही मैं ईश्वर जो कि आपका और हम सबका परमपिता है उसका अपमान कैसे कर सकती हूँ? गीता में भी भगवान के महावाक्य हैं कि जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ, तो फिर भगवान इस संसार में हाजिर कैसे हुए? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप और निर्विकार है, परंतु आज हरेक के मन में काम क्रोध आदि विकार है और अशांति भी है, तब भला परमपिता परमात्मा हम सब में हाजिर नाजिर कैसे हुए? उस समय ओम राधे जी की आयु लगभग 21 वर्ष थी। निर्भीक अवस्था में उनके मुख से ऐसे विवेक संगत उत्तर सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। एंटी ओम मंडली के जो लोग वहां उपस्थित थे स्वयं उनके मन में भी यह सच्ची बातें स्पर्श करती मालूम होती थी। यह किसी ने नहीं सोचा था कि आज ऐसा कौतुक होगा। कानून से बंधे हुए जज साहब को तो अपनी ड्यूटी ही निभानी थी, अतः उनके मंतव्य को ओम राधे जी के उत्तर झकझोरते हुए मालूम होते थे, तो वे भी कमजोर सी आवाज में बोले, कुछ भी हो कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। तब शक्ति रूपा ओम राधे जी बोली, जज साहब मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं उठा सकती। जज साहब ने एक बार फिर कहा, अभी भी अवसर देता हूं, सोच लीजिए, अभी भी कसम उठा लीजिए, तभी मैं गवाही के लिए प्रश्न पूछूंगा। ओम राधे जी ने फिर कहा, जज साहब मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। जज साहब इस सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। ओम राधे जी को डराने के विचार से उन्होंने उपस्थित पुलिस ऑफिसर को आज्ञा दी कि वे उनके हाथों में हथकड़ी डाल दें। पुलिस कर्मचारी हथकड़ी लेकर आगे बढ़ने लगे, परंतु ओम राधे जी मुस्कुराती हुई सी निर्भय अवस्था में खड़ी रहीं। सभी लोग बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब तो शायद हथकड़ी लग जाएगी। इतने में जज साहब ने पुलिस कर्मचारियों को आज्ञा दी, ठहरो ठहरो। पुलिस कर्मचारी जंजीर लेकर पीछे हट गए। उपस्थित जनता में से कई लोगों ने फिर ताली बजाई। आखिर जज साहब ने इस तरह की कसम उठाने का आग्रह छोड़ दिया। परमपिता परमात्मा ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचा ली। अब जज साहब ने दूसरे प्रश्न पूछने शुरू किए। जज साहब अब ये बताइए कि आप सभी इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गए? ओम राधे जी, जज साहब क्या आपने कभी श्रीमद भगवत गीता पढ़ी है? जब भगवान मुरली बजाते थे तो गोपियां उस मुरली के पीछे क्यों भाग जाती थीं? तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता था? वह
वह यही ज्ञान मुरली ही तो थी। अब भी हम उसी ज्ञान मुरली की सदा अभिलाषी रहती हैं। जज साहब, जब कई पुरुष लोग सन्यास ले लेते हैं तो घर बार छोड़ जाते हैं, तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर और नारी एक समान है। अब उसने हम सब माताओं को ज्ञान कलश दिया है, अतः अब जब हम माताओं को पवित्रता और ईश्वरीय ज्ञान का चांस मिला है, जब हम माताएं ज्ञान और पवित्रता का जीवन प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाती हैं, तो हमसे यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है? जज साहब, ज्ञानामृत पीने के कार्य में संबंधियों की ओर से जो हमारे मार्ग में रुकावटें पड़ती हैं तथा वे माताओं पर जो अत्याचार करते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है। इस प्रकार जज ने और भी कई प्रश्न किए। उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न यह था, भला दादा आप सबकी आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा या अंजन देते हैं? ओम राधे जी। जज साहब, क्या आपने शास्त्र पढ़े हैं? जज साहब, जी हाँ कुछ तो पढ़े हैं। ओम राधे। तो आपने पढ़ा होगा कि ईश्वरीय ज्ञान को अंजन भी कहा गया है, और एक पद भी बड़ा मशहूर है कि ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अब सदगुरु परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं तो आत्माओं का अज्ञान अंधेर मिट जाता है, तो वही ज्ञान अंजन अब हमें परमपिता परमात्मा देते हैं, जो कि हम औरों को भी देते हैं। जस साहब, दादाजी के कितने बच्चे हैं? ओम राधे। जस साहब, हम दादाजी के शरीर को नहीं देखती हैं, हमें तो दिव्य चक्षु द्वारा उनके तन में प्रविष्ट हुए परमपिता परमात्मा का अनुभव अथवा दिव्य साक्षात्कार होता है। अब आप ही बताइए कि भगवान के कितने बच्चे हैं? क्या कोई मनुष्य पूरी गिनती कर सकता है? भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, उनके सभी बच्चे हैं। केवल हम उनकी बच्चियां या बच्चे नहीं हैं, बल्कि आप भी उनके बच्चे हैं। जज साहब ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते भी रहे। ओम राधे जी भी कटघरे से नीचे उतरकर हमारी ओर आई। जनता ने एक बार फिर से तालियां बजाई। विभिन्न समाचार पत्रों के रिपोर्टर अथवा संवाददाता भी कोर्ट में बैठे ये प्रश्न उत्तर लिख रहे थे। हम जज से विदाई लेकर चली आईं। दूसरे दिन प्रातः हमने कराची में लौटकर बाबा को सारा समाचार सुनाया, परंतु बाबा को समाचार पत्रों द्वारा पहले ही सब कुछ मालूम हो गया था। वे शांत, साक्षी और निश्चिंत अवस्था में थे। अब कराची में कन्याएं, माताएं और परिवार ज्ञानामृत द्वारा अपना जीवन उच्च बनाने लगे, परंतु वहां जाने पर भी लोगों ने विरोध न छोड़ा। उन्होंने वहां के एक प्रसिद्ध साधु को भी भड़काकर उसे अपने साथ मिला लिया। इस वृतांत के बारे में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा है, कराची के एक प्रसिद्ध साधु ने कन्याओं के लिए मेरा स्कूल खोल रखा था और वे सत्संग भी किया करते थे। एक दिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आप जाकर साधु जी को ईश्वरीय संदेश भी दे आओ और ज्ञान वार्तालाप भी करके आओ। उन दिनों यह मालूम हुआ था कि साधु जी ओम मंडली के विरुद्ध पिकेटिंग करने की बात सोच रहे हैं, अतः बाबा ने हमें कहा कि आप साधु जी को कहना कि पहले आप स्वयं ओम मंडली को अच्छी तरह से देखिए, वहां आने वाले सत्संगियों के अनुभव पूछिए और यूं ही सुनी सुनाई बात पर कोई निर्णय न कीजिए और बिना जाने कोई आंदोलन करने की भूल न कीजिए। अतः हम कुछ एक बहनें इकट्ठी होकर उनके पास चली गईं और ईश्वरीय संदेश का एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी साथ ले गईं। हम लोगों से उनका ज्ञान वार्तालाप हुआ। हमने उन्हें अपना अनुभव भी सुनाया और यह भी बताया कि अब परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं और क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उससे हमें प्राप्ति क्या हुई है और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया है। यह सब सुनकर वह साधु बहुत खुश हुए। हमने उन्हें बाबा की ओर से और ओम मंडली की ओर से ओम निवास में आने का निमंत्रण भी दिया। वे कहने लगे, अच्छा मैं आपके साथ ही चलता हूँ। वे हम सभी के साथ ही कार में बैठकर चलने लगे। ज्यों ही वे कार में बैठे त्यों ही उनके चारों ओर उनके सत्संग में आने वाले तथा प्रशंसक नर नारी घेरा डालकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं जाने देंगे। साधु ने कहा कि डरिए नहीं, मैं एक घंटे में वापस लौट आऊंगा। परंतु उन लोगों को यह झूठा डर था कि यदि वे भी सत्संग में चले गए और इन पर भी ओम मंडली का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि यह वहीं के हो गए तो हम सबका क्या होगा, अतः उन्होंने साधु जी को जाने नहीं दिया। आखिर साधु जी कार से उतर आए और बोले,
कि दादा से मिलने का बहुत ही मन था, परंतु अभी मैं नहीं चल सकूंगा, फिर कभी जरूर आऊंगा। अब साधु जी के शिष्यों ने तथा मुखी लोगों ने उन्हें खूब भड़काया। एक दिन ऐसा आया कि साधु जी ने उन सभी के साथ मिलकर ओम निवास के बाहर पिकेटिंग की। हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गए। सभी ने बहुत जोर से आक्रमण किया। वे दीवार तोड़कर अंदर भी घुस आए, लेकिन शीघ्र ही पुलिस ने पहुंचकर सभी को भगा दिया और साधु जी को भी पुलिस वाले ले गए। साधु जी श्री कृष्ण के भक्त थे और गीता में उनकी बहुत श्रद्धा थी। यदि लोग उन्हें ना भड़काते और वे दादा के साथ ज्ञान वार्तालाप करते तो वे पिकेटिंग कभी ना करते, बल्कि बहुत खुश ही होते। परंतु अब पिकेटिंग से वातावरण और भी बिगड़ गया। मुखी लोगों ने साधु जी को भी साथ मिलाकर सिंध सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ओम मंडली पर प्रतिबंध लगाए। इस कारण हिंदू सदस्यों तथा मंत्रियों ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री पर दबाव डाले और उन्हें धमकियां भी दी। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने सिंध की विधानसभा में जो भाषण दिए वे बहुत ही तथ्यपूर्ण है। उन्होंने दिनांक 24 मार्च 1939 को सिंध विधानसभा में यह भाषण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मंत्रिमंडल के हिंदू सदस्यों ने हमें त्याग पत्र की धमकी दी है, परंतु हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हरेक को अपने धार्मिक मंतव्य के अनुसार सत्संग या साधना करने का कानूनी अधिकार है। ओम मंडली पर प्रतिबंध किस धारा के अंतर्गत लगाया जाए? उन्होंने हजरत मोहम्मद का उदाहरण देते हुए तथा अन्य सुधारकों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि वे लोग भी शुरू में संख्या में थोड़े होते थे और उन पर भी लोगों ने अत्याचार किए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि दादाजी से जो भी जायज मांग की गई है वह उन्होंने पूरी की है। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तव में ज्यादती तो एंटी ओम मंडली ने की है, परंतु अंत में जब उन्होंने अपना मंत्रिमंडल इसी कारण से टूटते हुए देखा तो वे भी झुक गए। सरकार ने एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया, परंतु इस ट्रिब्यूनल में भाई बांधव तथा मुखियों के रिश्तेदार व्यक्ति ही नियुक्त किए गए थे। इस पर ओम मंडली की ओर से सरकार को स्पष्ट बताया गया कि ट्रिब्यूनल के एक सदस्य तो सिंध आबाजर वर्ग की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है और वह समाचार पत्र तो एंटी ओम मंडली का शुरू से ही पक्ष लेता आ रहा है और ट्रिब्यूनल के इस सदस्य का एंटी ओम मंडली के कुछ एक सदस्यों से रिश्ता नाता भी है, इसलिए ये सदस्य निष्पक्ष नहीं हो सकते। इसी प्रकार अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया कि वे एंटी ओम मंडली के पक्षपाती हैं। अतः सरकार को यह आवेदन पत्र दिया गया कि ट्रिब्यूनल में निष्पक्ष व्यक्ति होने चाहिए, या तो उनमें कोई अंग्रेज आदि हो और या निष्पक्ष हिंदू हो। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि पिकेटिंग के परिणाम स्वरूप जो वातावरण बिगड़ गया है उसे शांत किया जाए और जो सेक्शन 144 लागू है उसे हटाया जाए, ताकि ओम मंडली के प्रतिनिधि आपस में मिलजुल सकें और वे अपने वकील से राय सलाह भी कर सकें। और साथ ही यह भी मांग की गई कि ट्रिब्यूनल के सामने वकील को भी लाने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि एंटी ओम मंडली की प्रबंध कमेटी की सदस्याएं कानूनी बातों को पेश करने की विधि से अपरिचित हैं। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया कि ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होना चाहिए कि वह साक्षी के लिए जिन व्यक्तियों को चाहे बुला सके। ट्रिब्यूनल की कार्य पद्धति का भी पता लगना चाहिए तथा जिन बातों पर उसे जांच करनी है उनकी भी सूची प्रकाशित होनी चाहिए, परंतु ओम मंडली की ओर से सरकार को लिखी गई इन बातों की कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही उनके प्रतिनिधियों को वकील पेश करने की इजाजत दी गई और ना ही उनके आपस में खुली तरह मिलने जुलने के लिए उचित वातावरण पैदा किया गया। अतः ओम मंडली ने ट्रिब्यूनल की बैठक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। ओम मंडली के बहुत से सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से ट्रिब्यूनल को लिखा कि हम भी ट्रिब्यूनल के सामने ओम मंडली के मंतव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। हालांकि वे प्रतिष्ठित कुलों के नरनारी थे, परंतु उनमें से किसी को भी साक्षी के लिए नहीं बुलाया गया। आखिर ट्रिब्यूनल ने ओम मंडली के प्रतिनिधियों की सुनवाई किए बिना एक तरफा निर्णय दे दिया। इसमें उन्होंने यह सिफारिश की कि ओम मंडली के सदस्य अलग अलग रहें। यह बड़ा विचित्र निर्णय था, क्योंकि ओम मंडली के सदस्य तो प्राय परिवार ही थे। क्या पति अपनी पत्नी से, पिता अपने पुत्रों से अलग रहे? ट्रिब्यूनल का इस बात पर तो ध्यान ही नहीं गया था कि बहुत से पूरे कुटुंब ही ओम मंडली में रहते हैं। अतः इस फैसले से कई समाचार पत्रों जैसे कि सिंध गजट आदि में कड़ी आलोचना हुई। बहुत से शिक्षित लोगों ने यह आवाज उठाई कि यह अन्याय है
हरेक को अपने धार्मिक सिद्धांतों पर चलने की पूरी वैधानिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। ओम मंडली की ओर से भी गवर्नर साहब को पत्र लिखा गया। समाचार पत्रों में इस बात पर काफी चर्चा हुई कि जिस कानून के अंतर्गत ओम मंडली के सदस्यों को अलग रहने के लिए कहा गया है, वह कानून तो इस मामले में लागू ही नहीं होता। वह तो किसी ऐसी संस्था पर लगाया जाता है जो उपद्रव करती हो। परंतु ओम मंडली के बारे में तो पहले भी हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि ये लोग शांति प्रिय और समाज सुधारक है। किंतु कितना अन्याय है इस संसार में। हाई कोर्ट के इस निर्णय की ओर भी ध्यान न देते हुए मंत्रिमंडल को बचाने के लिए न्याय का खून कर दिया गया और अंत तक ओम मंडली को यह भी न बताया गया कि ओम मंडली के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में किस किसने गवाही दी है और उसने क्या क्या कहा है और उसका आधार तथा प्रमाण क्या है। आखिर सिंध के मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिए कि ओम मंडली के लिए 5-6 बंगले पास पास ले लिए जाएं, जहां पर कि वे कुछ समय के लिए अलग अलग रहें। उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि कुछ समय इस प्रकार करने से लोगों के अत्याचार और आंदोलन बंद हो जाएंगे और सरकार ओम मंडली के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाएगी। बाप अपने बच्चों के मन को खुश करने की कोशिश तो करता ही है, अतः ऐसा ही किया गया। एक बंगले में बाबा और उनके साथ कुछ परिवार जो कि उनके लौकिक रिश्तेदार भी थे वो रहने लगे। एक बंगले में छोटे बच्चे रहते थे जो कि लौकिक शिक्षा के अतिरिक्त ईश्वरीय ज्ञान भी लेते थे। एक बंगले में ओम राधे जी के साथ कुछ माताएं और बालिक कन्याएं रहती थी। एक अन्य बंगले में भाई लोग रहते थे। इस प्रकार ईश्वरीय यज्ञ का कार्य तो पहले की ही तरह चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए।

रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है यशस्वी भारत। दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने न सिर्फ समाज कल्याण में, भारत की उन्नति में, भारत के कल्चर में अपना योगदान दिया, साथ साथ भारत का

0: हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर परशुराम खुने जी। सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते सर। सर, एक बहुत ही बड़ा सम्मान, और हम सभी जानते हैं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 50 सालों से भी अधिक रहा है झाड़ीपट्टी थिएटर में, और आपने बहुत से युवाओं को रिहैबिलिटेट किया है, उनका पुनर्स्थापना उनको एक कराई है, चाहे वो एडिक्शन से निकाल कर हो या फिर वहाँ की और भी कई कुरीतियों से छुड़ाकर हो, और इसमें आर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो सर, पहले तो आपकी जुबानी ही कुछ आपकी कहानी जानना चाहेंगे।
1: मैं महाराष्ट्र के पूर्व विदर्भ चंद्रपुर गढ़चिरौली भंडारा से एक पूर्व विदर्भ की हमारा एरिया है
0: जी,
1: और मैं 50 साल से मैं वहाँ कार्यरत हूँ एक आर्टिस्ट करके
0: जी।
1: लेकिन ये झाड़ीपट्टी रंगभूमि को एक अलग परंपरा है, अलग पहचान है। वो इसलिए कि वो जो पट्टा है पूरा जंगल व्याप्त है।
0: ओके।
1: वहाँ किसान है, आदिवासी का एक अलग कल्चर है वहाँ, और 150 साल से उसकी पुरानी कहानी है। जो प्रथम अवस्था में था नाटक, वो दंडार करके, दंडार यानी कोई तभी 5-6 आदमी एक दंडा लेके गीत बोल के, स्वागत बोल के, वो एक रामायण महाभारत इतिहासकालीन पर एक स्टोरी बताते हैं
0: जी।
1: लेकिन जैसे समाज परिवर्तनशील है, फिर उन्होंने हमारे पूरे एरिया में, वो पूरे विदर्भ में ये चलता था दंडार, अभी भी चाहे चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने नागपुर आकर, ये बड़े बड़े कंपनी थी, उनका नाटक जो संगीतमय नाटक देखा उसने,
0: अच्छा,
1: तो उनको लगा कि ये तो अपन यही पेश करते हैं, यही अपन, लेकिन इनका जरा सही संगीत का ढांचा अलग है, हारमोनियम है, तबला है, संगीतमय है, तो उन्होंने वो ढंग से जो उसके विद्वान थे अपने घर को लाके, उनने उसे पूरा उसका पढ़ाई किया
0: जी।
1: तो वो फिर एक नाटक के माध्यम से चल रहा है। लेकिन झाड़ीपट्टी रंगभूमि क्या है, ये नामकरण किसने दिया है
0: जी?
1: तो झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि वो झाड़ी से व्याप्त है,
0: अच्छा।
1: पेड़ से व्याप्त है, जुड़पो से व्याप्त है, और जहां गाँव वहां नाटक,
0: अच्छा।
1: ऐसी परंपरा अभी भी चल रही है
0: जी।
1: तो एक, और वहां का नाटक चलता है पूरे रात भर चलता है,
0: अच्छा।
1: 10 बजे अगर चालू हुआ तो सबरे तक। उसकी वजह यह है, कारण यह है कि अगर वो गाँव में जब मेहमान आते, उनकी संस्कृति भी है, उसके पीछे एक ऐतिहासिक, जो आदिवासी लोग हो गए हमारे कुछ इधर भी जमात के होंगे, तो वो बहाने से गाँव में एक कष्टकारी पीड़ित लोग, उनके एक बार कुछ मनोरंजन होना, इसलिए गांव के माध्यम से वो दिन जहाँ जी नाटक रहता है, उसके माध्यम से जो कोई नई लड़कियाँ शादी होकर जाती है वो आती है, नवीन दामाद आते हैं, नई लड़कियाँ देखने आते हैं, उससे लगने कुछ तगाई जुड़ती भी है
0: जी।
1: और सबरे उनकी विदाई होती है उनके साथ, तो वो एक अलग परंपरा है कि तो वो झाड़ी का नाटक, झाड़ी का पट्टे का नाटक, इसलिए वो झाड़ी पट्टी रंगभूमि। दूसरी वो बात यह कि ये इसके अलगपन क्या है, तो अलगपन ये है कि वहाँ का नाटक 10 बजे चालू होता है, 11 बजे तो सबरे तक चलना, 5 बजे तक चलते हो। इसका कारण ये है कि जो बहुत दूर से लोग आते हैं
0: जी,
1: तो उनको खाने का इंतजाम हो जाता है, लेकिन सोने का इंतजाम नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर 3-4 बजे नाटक खत्म हो गया तो उतने रात जाएंगे कहाँ,
0: जाएंगे कहाँ,
1: क्योंकि वो पूरे जंगल का एरिया, कई पशु पक्षी उपाग्रह सब की भीती रहती है, इसलिए वो एक परंपरा अभी भी चल रही है, वो हर गांव में नाटक चलता है। और वो आप बोलेंगे इतनी बड़ी स्क्रिप्ट रही थी क्या, तो नहीं रही थी। बात यह है कि जो नाटक करते हैं गांव में, अभी तो थोड़ा परिवर्तन हो गया, हमारे जब मैंने 30 साल काम किया, एक गांव के हौसले लोग बिता के हमारे जैसे दो एक तो कॉमेडियन, एक दो लेडीज को बुलाते थे, और हर गांव में जब तो उधर एक ऐसी अभी प्रथा है कि उधर एक सम्मान पत्र सबको दे रहे, जब मान पत्र हमारे नाटक देखने आओ
0: जी,
1: फिर खासदार रहे, आमदार रहे, जो जो कोई बड़े बड़े नेताजी है, लीडर है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आते हैं, और उनका वो तो मैं कहता हूँ ये ATM कार्ड है वो मंडल का, क्योंकि आधे आधे जो बख्शिश का जो वितरण होता है वो स्टेज पर हो जाता है,
0: अच्छा।
1: कि हर नाटक को 40-50-60-70 हजार खर्चा है, और वहाँ का जो प्रेक्षक है वो बहुत बड़ा दिलदार है, वो टिकट निकाल कर

0: अंदर आता है और पूरे रात भर नाटक देखता है। लेकिन ये जो मेहमान आते हैं
1: जी,
0: ये भी उनके बाद उनको कोई 10,000 कोई 5,000, इसलिए उसमें फायदा ये है कि चलो भाई वो गांव में नाटक होता है, जो कलाकार आता है बाहर से उसका भी पेट भरता है। और दूसरी बात ये है इसके पीछे
1: जी,
0: कि हमारे झाड़ी पट्टी रंगभूमि में हर साल
1: जी
0: 70-80 करोड़ की उलाढ़ाल होती, इतनी बड़ी एक भी नहीं है।
1: अच्छा।
0: 170 कंपनियां हमारे आज भी है, पहले चालू होते तो होली तक चलते रहते प्रोग्राम।
1: अच्छा।
0: और उसमें से फायदा ये होगा कि जो एक बेकार युवक था, जो मेरे जमाने में ऐसे भी कुछ डर था कि ये लोग कोई भटक न जाए, कहीं इनका इन जाए नक्सलाइट के प्रभाव से कहीं अगर इन हो जाए, तो हमने ऐसे लोगों को ये प्रभाव में ले नाटक के अभिनय का, अच्छा गाता है तो गाओ, यानी कोई खाली जिसको अभिनय तो वही नहीं, उसके पीछे जो नेपथ्य वाला है, पर्दे खींचने वाला है, स्पीकर वाला है, ऐसे 40 लोगों का 50 लोगों का ये सब समूह रहता है, जीव वाले, दो ट्रक वाले, नेपथ्य वाले, वो तंबू लगता हमारा वो गांव में जाके।
1: अच्छा।
0: तो ऐसे 40-50 लोगों का पेट एक कंपनी में उसके ऊपर चलता है, एक रोजगार मिल गया ना उनको।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऐसे ऐसे 100-150 कंपनी आज भी है जो निरंतर नाटक कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: दूसरी बात, अगर जहां तंबू लगता गांव में
1: जी,
0: वो तंबू के सब होता 40-50 दुकान लगते है, चाय टपरी वाला, पान ठेले वाला, चने वाला
1: जी,
0: उनका भी निवरा उसके ऊपर चलता है, जब अंक खत्म होता है बाहर आके सब चाय पीते पान खाते, तो वो भी बेचारे उद्योग कर रहे हैं उनका, इसलिए वो एक बड़ी इंडस्ट्री का ये है, इसलिए उनको एक रोजगार मिल गया।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इसलिए और हर बात और दूसरी, अभी तो जब मैं बात कर रहा हूँ अभी तो अभी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई के हमारे कलाकार, मराठी कलाकार, वो हमारी झाड़ी पट्टी में आके काम करते हुए हमारे साथ में, तो एक बड़ी उपलब्धि हुई है इससे, एक जो भाई का युवक है वो। लेकिन क्या है अभी इसे ऐसे माहौल में आजकल थोड़ा क्या बोलता है, जो नया जनरेशन है
1: जी जी,
0: अभी हमारे तरफ क्या है कि पहले जो हमें नाटक होते थे महाभारत, पौराणिक, धार्मिक रामायण, वो भी नहीं होता, अभी लावणी होना, डांस होना, तो थोड़ा कोई ये जो युवक है थोड़ा नया जनरेशन वो जरा अलग टाइप से देख रहा है, होता तो परिवर्तन है अगर अब जो बिजनेस करना, लेकिन चल रहा, लेकिन अभी भी वो झाड़ी पट्टी रंगमंच की अच्छी, यानी उसका एक अच्छा स्टेज मिला, अच्छा रंगमंच मिला है नाटक हो जाए। मेरे को 50 साल हो गए मैं भी, इसलिए मेरे को यानी अच्छा लगता, मैं आभार मानता हूँ भारत सरकार के, एक झाड़ी पट्टी के एक कलाकार को जो देहात में रहता है, आदिवासी में रहता है, मेरे परिश्रम में एक चीज बोल के मेरे को 2023 में
1: जी
0: कला के माध्यम से मेरे को पद्मश्री बहाल किया
1: जी। तो 50 साल बहुत लंबा समय होता है और आपने एक आर्ट फॉर्म को डेडिकेट कर दी अपनी लाइफ पूरी तरीके से, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ा जब आप इस कला से जुड़े और इतना समय।
0: वो क्या है दीदी, मैं हूँ होम्योपैथी डॉक्टर
1: जी,
0: और मैं हूँ किसान का बेटा। जब मैंने अपना देह रखा कि मेरे को कोई पढ़कर को ऑफिसर बनना नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ जमींदार थे, वो 100 एकड़ जमीन थी, तो मेरे को ऐसा कोई बिजनेस होना कि जो मैं खेती कर भी कर सकता हूँ, तो ये वैद्य की पेशा है, डॉक्टर की है, इसलिए मैं उधर गया। लेकिन मेरे घर में जब मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी दंडार करते थे, मेरे पिताजी मेरे गाँव में एक मंडल करके वो नाटक ये करते थे, तो वो बचपन से मेरे ऊपर वो प्रभाव हुआ। और मैं मेरा असली जो क्या बोलते उसको जो उसके ऊपर संस्कार बोलती हूँ, नोरगांव में हुई, चंद्रपुर जिले में, जो बालाजी पटेल मेरे मामू थे, वहाँ मेरे प्राइमरी शिक्षण से मैं वहाँ गया, तो 5-6 साल बड़े बड़े बॉम्बे से इधर, और वहाँ से मेरे को एक प्रति एक भाव आ गया
1: जी।
0: मेरे में कुछ है, जब मैं कॉलेज पढ़ने नापको रहा उसमें भी मैंने क्या, मेरे को मेरे दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ मैं गया मेरे को अच्छे लोग कलाकार मिलते गए
1: जी।
0: और मैं जब इसमें एक ढंग से मैंने डॉक्टर की नहीं किया, फिर भी एक सेवा भाव, चलो क्या भगवान को सब कुछ कला नहीं देता, कला का ये नहीं देता, ये माध्यम से एक समाज प्रबोधन, कि जो इलाका मेरा पूरा आदिवासी पूरा जंगल, इन बहाने से सब यानी एक और मनोरंजन का साधन कुछ नहीं था उसको, तो इससे भी नाटक से माध्यम से कुछ, जैसे रामायण है, महाभारत है, ऐसे संस्कार में नाटक देने का हमने
1: प्रयास किया।
0: जैसे कोई अभी तुम्हारे ब्रह्मा कुमार का जैसे इनके काम चल रहे तो उनके ऊपर एक एक समाज को ऐसा चेतना देना एक कुछ माध्यम होना चाहिए
1: जी।
0: और आज तो इतनी जरूरत है, मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगा
1: जी।
0: कि हर आदमी ने ये जो चल रहा जो माहौल आज के दिन में जो मन शांति नहीं है
1: जी,
0: जो भटका हुआ है आज का युवक
1: जी,
0: कोई इसकी प्रवृत्ति नहीं अच्छे भाव
1: जी,
0: इसके लिए मैं तो कहता हूँ हमारी तरफ इन्होंने जो काम किया है
1: जी,
0: जो जुड़े हम कुंदा दीदी ने
1: जी,
0: तो ये हर गांव में हर वहां तक पहुंच गए। जो जो हमारा जिला कहा से कहा है वहां उधर सब आदिवासी इसमें लगा, आज वो बहुत बदल जो हुआ है
1: जी जी,
0: तो दीदी के वजह से हुआ है, ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हुआ है
1: जी। सर जैसे आपने बताया तो गढ़चिरौली की बात करें तो बहुत नक्सलाइट एरिया है जितना हाँ। हमने पढ़ा जितना जाना, तो उसमें से क्या युवाओं को आपको एंगेज करना क्या चैलेंजिंग होता था?
0: नहीं अभी क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये जो युवक है
1: जी,
0: तो जो नक्सलाइट का जो प्रभाव था पहले एक डर था मन में बहुत
1: जी,
0: यानी वो गांव वाले में भी था क्योंकि अगर वो गांव में घुसे तो जिसके अगर पुलिस उसको भी दंडा मारते थे, अगर पुलिस के नाम बताए तो वो दंडे मारते थे, नहीं वो बेचारा जो जो युवक था उसके सोचने की माने दोनों तरफ से उनको बड़ा ये था,
1: दोनों तरफ से डर था
0: कि अगर वो नहीं बताया तो पुलिस का मार पड़ता था, अगर पुलिस वाले को बताया तो ये नक्सलाइट, तो इसमें से एक बड़ा द्विंदे मनस्थिति में उसकी एक सोच थी ना, तो इसमें अगर बाहर कैसा निकलना चाहिए इसको, और हर आदमी तो नक्सलाइट नहीं बन सकता उनका ध्येय, लेकिन जब वो युवक ना भटक जाए या ऐसे कोई गए भी तो वो अभी तो आत्मसमर्पण कर लिया और एक माध्यम मिल गई है, अगर तू खाली रहता है कुछ खाली माइंड तो शैतान का ही रहता ना
1: जी,
0: अगर तेरे को कुछ रोजगार मिलता है अच्छे संस्कार होते तो ऐसे एक नीडर भी बन गया ऐसे नहीं। अभी तो मैं तो कहता हूँ कि दावे से कि अभी तो हमारे यहाँ में जो कुछ नक्सलाइट था बहुत सैनिक चला गया, अभी जो कोई बाकी शरणागति पत्कार ले, ये जो बदल है ना ये पहले एक दिन से भी नहीं होने वाला था, लेकिन हमने जो शुरुआत की
1: जी
0: इस माध्यम से नाटक के माध्यम से एक जो संपर्क आया हमारे बातचीत हुई है तो उसे वो फायदा अभी मिल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। उसका बड़ा फायदा ये है कि हमने पहले से ट्राई किया, पहले से उनको एक युवक को ऐसी दिशा दी और उनको आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कभी खेड़े बाड़े में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जा गया हमारे ब्रह्म कुमारी के माध्यम से हमारे जहाँ वहाँ है तो उधर एक संस्कार में एक वहाँ एक वातावरण इन लोगों ने निर्माण, बाकी तो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन ये जो दृष्टिकोण हम जुड़ गए, मैं भी बहुत 5-7 पहले आया था यहाँ
1: जी। अच्छा
0: आया था मैं एक दो दिन रह के चला गया था
1: जी,
0: लेकिन दीदी के माध्यम से आज कुंदा दीदी के माध्यम से मेरे को व्यस्त मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं आया
1: जी।
0: और दीदी के बारे में क्या बात, उनका कार्य तो बड़ा है
1: जी।
0: तो मैं आने का श्रेय भी उनकी वजह से मैं आता गया, नहीं आज नहीं आ रहा था
1: जी।
0: तो ये दृष्टिकोण से आज एक जो परिवर्तन बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, और आज के जमाने में जो मुझे बात की नहीं है, घर घर में जो ये मोबाइल जो इसको ये भले मोबाइल से वो आदमी के लिए अपनी फैमिली से बहुत दूर होते जा रहा
1: जी, ये तो बात है
0: मोबाइल जी का कभी बात नहीं करते हमारे सबके, इससे अगर रोकना है
1: जी
0: इसको देना है
1: जी,
0: तो अपने को ऐसे कोई आध्यात्मिक जैसे ब्रह्मा कुमार है ऐसे लोगों की आज जरूरत है और आश्रम होना चाहिए,
1: होना चाहिए,
0: नहीं तो ये आने वाली जी जो जनरेशन है वो बहुत मैंने चिंता का विषय,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत इस दुनिया ने हमको इतना ज्यादा अपने में ले लिया है कि बाहर की दुनिया तो
0: कुछ भी नहीं, वो अपने इसमें रहता है, कोई करने की जरूरत ही नहीं
1: जी,
0: वो सोचता ही नहीं है, घर में घुसा था ना बाप से बात करता ना भाई से बात करता, यानी वो घर में भी अकल भी दूर रहता है
1: जी,
0: मोबाइल दूर से बात करने की ठीक है लेकिन घर से इतना दूर हो गया कि वो सब भूल गया
1: जी,
0: कहीं कहीं तो हमारे तरफ सुसाइड कर दिया,
1: अच्छा
0: सुसाइड कर दिया है अगर मोबाइल नहीं लेके दिया
1: हाँ जी, जी,
0: ये इससे अगर निकलना है ये नई जनरेशन को तो उसमें ऐसे एक आध्यात्मिक
1: संस्थान की जरूरत है, वातावरण की जरूरत
0: आज उसकी आवश्यकता है
1: जी,
0: पूरा बदल गया।
1: सर मैं ये भी जानना चाहूंगी जैसे झाड़ी पट्टी के बारे में आपने बताया इतना पुराना आर्ट फॉर्म है, ऐसे भारत में बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं लेकिन अब क्योंकि हम इंटरनेट देखते हैं टीवी देखते हैं इसी में सब कुछ आता है, तो ये आर्ट फॉर्म्स का क्या रोल है हमारे जीवन में, और क्या हमको उनसे जुड़ना क्या हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, क्या आवश्यकता है?
0: मैं तो बोलता हूँ आर्ट कोई भी, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, एक जीवन का एक हमने सीखा है ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विषय में, हमें सनातन धर्म से
1: जी,
0: आदमी को हंसना बोले तो एक टानिक है, आधा माइंड उसका मेडिटेशन के लिए भी। तो हमारे क्या अब जो क्रियाशील है, जो संतोष में पैदा हुआ है, जो हर दिन खेत में काम करता है, कोई भी यानी वो कहीं का भी रहे, लेकिन उसको कोई संतोष की बात, अगर उसे कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जिसे बोलते हैं अपन, वो मन में लाना चाहिए। तो वो जीवन तो हर दिन जगना है, लेकिन वो जीवन जगने का तरीका क्या है, अपना जन्म किसके लिए है, वो जब तक उसको ये नहीं है, अब तो जीतो तो सब है
1: जी,
0: लेकिन जो जीवन की फिलॉसफी है
1: जी,
0: ये जैसे ब्रह्म कुमारी है हमारे नाटक से अच्छे आदमी माध्यम से
1: जी,
0: अगर ये जिया तो आने वाले जो जनरेशन बोल लो, आने जो पीढ़ी है वो बहुत सुखी रहेंगे, ना तो बहुत ही क्या बोलते टेंशन में आज का
1: जी,
0: इससे बाहर निकलना जरूरी है,
1: इससे बाहर निकलना
0: उसमें कला संगीत
1: जी,
0: जैसे कला से संगीत में जैसे हास्य कला है तो उससे भी आदमी को टेंशन आधा हो जाता, कम हो जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से मेडिटेशन करना है
1: जी,
0: प्राणायाम करना है, जो कोई योगा है
1: जी,
0: ये आज के अगर इन माध्यम से जुड़ रहे, जो नया नए जो अच्छे अच्छे घर के लोग है
1: जी,
0: ये इस माध्यम में जुड़ रहे और कर रहे हैं, कि उनको भी मालूम है मेरे आने वाली जो पीढ़ी है क्या क्या करेगी, हर के मन में आ रहा है, मुझे बताइए जैसे मोबाइल लूंगा वही हुआ, तो जो हम पिताजी है कोई लड़का अगर जा रहा है तो उनमें से उनको भी लगता है मैं बाहर निकलना चाहिए, तो उसमें माध्यम क्या है, एक तो उसको परिवर्तन से कोई आनंद दे
1: जी,
0: कुछ मेडिशन दे,
1: कहीं ऐसे जुड़े,
0: कहीं ना कहीं उसको यहाँ से निकलने के लिए दो ही तरीके, आदमी वहां से बाहर
1: निकल,
0: दो ही वजह निकलेगी इसमें गरज, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम तो क्या हम, लेकिन जिन लोग ये काम कर रहे हैं, जो गांव में बोलो आसन में बोलो, ये ब्रह्म कुमार के माध्यम से जो लोग जुड़ेंगे ना
1: जी,
0: तो तरीका वो ये माध्यम है बस,
1: बदलाव के लिए, और बदलाव बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी है
1: जी। सर अगर थोड़ा और हम झाड़ी पट्टी की बात करें तो कैसे, मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया रामायण भी महाभारत भी, तो जो एक्टिंग आप करते हैं उस समय क्या उसकी प्रिपरेशन पीछे क्या होती है, तैयारी कितने समय की होती है?
0: मैं अभी जो बात किया आपसे, मैं जिस जनरेशन में 70 की बात कर रहा हूँ
1: जी,
0: 70 की काल की बात करूँ तो 70, 80, 90 तक
1: जी
0: मैं इंडिविजुअल तारक, मैंने इंडिविजुअल एक्टर था मैं, जैसे एक गाँव में वो गाँव के होशियार लड़के एक नाटक की तालीम लेके करते थे,
1: तो
0: बाहर से मैं कॉमेडी करता था, हंसने अच्छा। वाले कम थे, कॉमेडी करता था मैं
1: जी, जी।
0: दादा कुंड के जमाने में हम दादा कुंड के करीब फंसे था, और एक दो लेडीज
1: अच्छा।
0: वो हमारे तरफ जो मैंने रामायण बोला महाभारत के बोला वो 80 तक था
1: अच्छा।
0: उसके बाद में जब दादा कुंड के आ गए, मैंने लावणी महाराष्ट्र लावणी आ गई, यू नो महाराष्ट्र लावणी, लावणी हर घर में घुसी है, जब वो पिक्चर आती थी वही लावणी होती थी, तो वो ढंग से फिर नाटक आने लगे
1: अच्छा।
0: और एक बात दूसरी और बात, जी झाड़ी पट्टी का मैंने आपको पूर्व विदर किया तो वहां ही एक गांव गांव में लेखक राइटर पैदा हो गए अच्छा। आज भी
1: जी
0: उन्हीं लिखा हुआ नाटक, वही लावणी का नाटक, अरे सब लिख सब मैंने जो, अब उसने क्या किया है, मेरा भांजा है
1: जी
0: सदानंद बोरकर, उसे गाँव में एक सत्य घटना होती, देखो वो जो मेरा एरिया है ना
1: जी,
0: ये अंधश्रद्धा की बहुत अंधश्रद्धा थी उसमें, एक सुशिक्षित भाई ने अपने ये बुआ बाजी के उसमें जाके उसको 2 दिन भूखे रखे बांध के धूप में, वो भी क्वालिफाइड लड़का था, इंजीनियर था, वो भी उसकी बीबी टीचर थी, लेकिन उसको कोई स्किनो भेजा था पहले उसको, तो उसको उन्होंने लगा वो बुआ बाजी में गई, तो उसमें वो मर गया धूप से, उसने एक नाटक लिखा माजा कुंकुम पुसल
1: अच्छा।
0: मराठी, तो ऐसे बहुत जो किसान की आत्महत्या हो, कोई अपने कौटुंबिक समस्या हो, एड्स हो, ऐसे ऊपर अभी बहुत नाटक हमारे तरफ आई और चल रही, अभी भी चल रही, तो पैटर्न बदल गया, अभी वो धार्मिक पौराणिक नाटक चले गए, अभी ये ढंग से जो समाज परिवर्तनशील नाटक बहुत ही अच्छे चल रहे, और 100 कंपनियां अभी है, और हजारों कलाकार पेट भर रहे उसके ऊपर, राइटर को जो लिखता है उसको भी रॉयल्टी मिलती है, तो ये ढंग से हमारे तरफ से अभी मैं ये जमाने में मैं कोई जैसे पुराना था उसमें नहीं, जैसा समाज का है तो वैसे मैं भी बदलता रहेगा, वैसे मैं पहले अभी कैरेक्टर रोल करता मैं।
1: अच्छा।
0: कॉमेडी करता जो रोल आया मैं करता हूँ
1: जी। आपका फेवरेट रोल कौन सा है?
0: मेरा फेवरेट रोल है मैं जो एक मैं बोला ना कि हमारे ऊपर वो जो नशा बंदी है
1: जी,
0: एकच प्याला।
1: ओके।
0: एक नाटक है, मैं अभी करता हूँ, मेरा फेमस है वो नाटक, बहुत हर साल मैं उसके ऊपर बड़ी डिमांड रहती है। वो एक नशा बहुत बेवड़ा रहता है और दूसरे का संसार कैसा है, उसमें दारू का वो अपने परिसर में ये मत लोगों को बता दे दारू से कैसे चीज होती है।
1: अच्छा।
0: ये ढंग से है ना, वो वैसा ही रहता है वो, लेकिन उसके जो दुष्परिणाम होते हैं जो संसार बर्बाद होता है तो उससे संदेश जाता कि भाई ये नशा करना दारू वाला पीना कितना घातक है, तो वो बहुत बड़ा संदेश होते जाता है। तो मैं रोल हर साल एक तलीराम करके बाप एक रोल है
1: जी।
0: मैं जब से ज्यादा वही कर रहा हूं, लोगों ने मेरे को उससे ढंग बहुत पसंद किया।
1: अच्छा।
0: मैं जब 22 साल का था तब से अभी तक वो रोल मेरे लिए मायना रखता है, मैंने एक उससे बहुत पब्लिसिटी वो रोल ने मेरे को दी है। वो नाटक संगीतमय नाटक है, कथानक अच्छा है।
1: अच्छा।
0: और वो मेरा जो दारू का जो मैं जो बात करता हूँ ढंग से
1: जी।
0: वो उसमें मराठी में आया हमारा वो।
1: अच्छा। तो मराठी में गीत के माध्यम से
0: मराठी बोलो।
1: हाँ बोलिए कुछ, अगर एक कोई डायलॉग या कुछ ऐसा।
0: वही ना, मराठी में चलेगा
1: जी जी जी।
0: ये जो नाटक है राम गणेश गडकरी बड़े साहित्यिक थे हमारे महाराष्ट्र में, और ये नाटक संगीत एकज पर
1: जी,
0: इसको 100 साल पुराना नाटक है, आज भी चल रहा
1: जी,
0: संगीतमय है। तो उसमें एक अच्छा बैरिस्टर रहता है, वो पढ़ने जाता है
1: जी।
0: वो जब उसको कोई उसके ऊपर कुछ केस ये होता तो वो जरा डिप्रेशन में चला जाता है। वो उसका जो एक नौकर रहता तलीराम, तो वो बोलता है यार ये गम भूलना है तो एक बड़ी चीज है मेरे पास, और थोड़ी शराब पी के उसको उसका महत्व पढ़ा देता और अपने वो अपना क्लब तो एक मराठी में बात करता मैं
1: जी।
0: तो ये दोनों एक पदवीधर और एक ये बैठ के दारू पी के बैठे है, तो ताला संग तो मुझे तो ताला दारू तो मरतो मने दारू सूटत नहीं, एकदा घेतली की मने दारू कधी सूटत नहीं, तेवढं ना दारू वाईट बिशारे का मने सूटत नहीं, भगीरथ दारू बद्दल बडबडणाऱ्या पैकी पुष्कळांना दारू काय चीज आहे हेच म्हणी मला माहित, बर मी म्हण खरंच एकदा दारू घेतली की सुटत नाही, तेवढं दारू वाईट कशी ठरतो, भगीरथ तुम्ही विश्वविद्यालयाचे पदवीधर आहात, 4 दिवस परीक्षा देऊन एकदाची पदवी मिळवता ती जन्माची चिकटते, म्हणून कुणी पदवी घेण्याचं टाकलं आहे का, तशीच बायको एकदा का नुसती लग्नमाळ गळ्यात घातली उभा जन्म बायकोचा लबेदा पाठीमांग बिलमतो, म्हणून कुणी बायका करण्याचं टाकलं आहे का, अरे पदवी वाईट नाही बायको वाईट नाही दारू तेवढी वाईट आहे का, तुम्ही घ्या तशा म्हणाल ना भगीरथ, मद्यपान नीतिमत्तेला फार पोषक आहे पहा कसं, मद्यपी माणूस कधी खोटं बोलत नाही कारण त्याला खोटं रचून सांगताच येत नाही, मद्यपी माणूस कधीही कुणाची कुणारजो चहाडी करत नाही कारण माग कोण काय बोलला याची त्याला आठवणच राहत, आणि मद्यपी माणूस कधीही कुणाचा विश्वासघात करत नाही कारण त्याच्यावर कुणी विश्वासच ठेवत नाही, असे ते मराठीतले डायलॉग असतात। ते पात्रता म्हणजे नाटक फार सुंदर म्हणजे वाङ्मयी आहे त्या नाटकामध्ये, ते विद्यापीठाला पण होतं असे परंपरेने झाले नाटक आहे तो आमचं। आणि दुसरी गोष्ट आहे मराठी भाषा
1: जी सर, थोड़ा सा इसका हिंदी में समझा सकते हैं जो आपने बोला
0: किसका
1: हिंदी आपने में? जो डायलॉग बोला
0: हाँ, वो डायलॉग ऐसा है कि वो बोलता कि देखो एक बार गिलिए हमने नशा किए दारू पी तो बोली छूटती नहीं, अच्छा लोग उसकी बदनामी करते हैं, लेकिन उनके ये नहीं मालूम कि ये दारू क्या चीज है। वो भगीरथ तू विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएट है पदवीधर है, 4 दिन को आप एग्जाम दे के आप पदवी मिलाते हो, जय नंबर चिकटती है उसका कोई बहाना नहीं करता।
1: अच्छा।
0: जैसे औरत अगर एक बार उसने माला डाल दी तो जय नंबर आपके पीछे रहती हो, इतने में कोई औरत तो नहीं करने डाल दिया, अरे वो पदवी भी ये नहीं है वो तुम्हारा, ये औरत भी बुरी नहीं है, तो दारू क्या बुरी है ये बात। उसमें वो दो फायदा ऐसे है कि दारूबाज मानुष कभी भी झूठ नहीं बोलता।
1: अच्छा, झूठ नहीं बोलता
0: जो दारू, झूठ बोल के मैंने बहाना बन के बताने आता ही नहीं।
1: अच्छा,
0: ये जो मध्य आदमी जो दारूबाज आदमी है
1: जी, वो कन्विंस कर रहे हैं
0: उसको, वो कभी किसका तो लावाला भी नहीं करता, चाहड़ी नहीं करता।
1: अच्छा।
0: क्यों कि कौन क्या बोला उसको याद ही नहीं रहता नशे में,
1: भूल जाता।
0: तीसरी बात, वो किसका उसको क्या बोलते विश्वासघात है, क्या बोलते
1: विश्वासघात बोलते,
0: हम विश्वासघात नहीं करता। क्यों? ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता ये उसके ढंग से
1: विश्वास ही नहीं करता तो विश्वासघात कैसे करेगा।
0: हाँ।
1: जी।
0: तो ऐसे तरीके जो उनको
1: व्यंग यूज किया। हाँ। है
0: तो वो अपने को अपने वो क्लब वो आयरे मदिरा वो अपने क्लब में उनको अपने इसमें लाने के लिए बहाना करता है,
1: जी,
0: बताता
1: जी।
0: है। लेकिन वो नाटक बहुत अलग ढंग का है।
1: जी जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जैसा क्योंकि बहुत सारे अब हम सीरियसली उसको बात को कहें कि शराब नहीं पीनी चाहिए या ये से ये होता है तो शायद व्यक्ति नहीं सुनेगा या फिर वो
0: नहीं उसका जो ये नहीं था एक पहला वो जो बताता है आखिरी में इतनी रचनात्मक बताया है, मैं क्या बताऊं आपको, मैं वो तो मैं को याद नहीं अभी
1: जी, जी।
0: लेकिन जो उसका ये जो संदेश जाता है कि ये इतनी बुरी चीज है उसमें, जो लोगों के सामने जब उनका संसार आता है, बच्चे को मारता है, अपने बीबी को मारता है, और वो अच्छा क्वालिफाइड आदमी कैसे भीख मांगता है, और वो आदमी वो खुद पाई जिंदगी समाप्त हो जाता है। तो उससे जब बाहर निकलता है वहां से जो प्रेशर बहुत बड़ा इफेक्ट है, ये कितनी गंदी चीज है, एक अच्छे चलते चलते इंसान को कैसी जानवर बना देती है, ये संदेश जाता है उससे,
1: ये संदेश
0: ये तड़ीराम ही मरता ना आखिर में।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसमें उसमें आखिरी इन बहुत बच्चा पता है उसका ये, तो उसमें भाई ये जो नशा कितनी घातक हो सकती है, एक नाटक के माध्यम से। और बहुत बहुत से ऐसे जो हमारा अभी जो चल रहा है इधर एरिया में, जो हम किसान के बेटे है, तो जो आत्महत्या चलते है नहीं करना चाहिए,
1: किसान आत्महत्या ये बहुत बड़ा विषय है संपूर्ण भारत में जी।
0: तो उसमें नहीं भाई, उसमें एक संदेश आत्महत्या बोल लिया लोगों ने, कोई अभी जैसे हुंडा पद्धति जो रिश्वत ले गए थे, बहुत ऐसे ये है इस बारे में कि जो जो संसार में चलते हैं
1: जी,
0: दहेज वगैरह का, तो वो विषय लेकर अच्छे सब जगह अच्छे रहते हैं, संदेश जाता है समाज को, नहीं भाई ये करने से क्या बुराई हो सकती है, ऐसे कर्म कर्म से कैसी होती है। तो ऐसे आध्यात्मिक लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, मेरी पट्टी रंग मालूम हमारे ये हमारे तो हर गांव में नाटक रहता है।
1: अच्छा जी।
0: लेकिन हम माध्यम से वो जुड़े, अभी मैं तो थोड़ा परिचय मंडल में हूँ, अभी सेंसार बोर्ड का मैं सदस्य हूँ हमारे इसका, मैं एक 3 साल केंद्रीय फिल्म से इसका भी था। तो इस बारे में एक चलो अभी मैं इधर जो आया था अभी, तो हमारा वो क्या बोलते हैं 2 दिन सम्मेलन था
1: जी,
0: झाड़ी पट्टी वो करके मैं इधर आया।
1: अच्छा, अभी खत्म
0: हुआ? बस वैसा ही इधर आया भाई, पूछो था ये मेरे को 9 तारीख बताए थे, हमने 7-8 को लिए वो
1: जी जी।
0: तो मैं बोला 9 तारीख किसी का आ जाऊंगा, ये बोले 7 को जाना है आपको, फिर भी चलो मैं आता हूँ क्योंकि दीदी का मैं कार्य अच्छा है। मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को आने की तमन्ना थी, एक बार मैं तो एक बार गया हूँ, लेकिन हम भी जरा वो टेंशन में रहते इधर हर दिन के अभी उधर का लेकिन आज मैं हर एक को बोलता हूँ, अगर आपको मन शांति चाहते हो तो आप एक बार माउंट आबू जाओ, उनसे मिलो
1: आपने बोला सम्मेलन भी होते हैं। अच्छा, किस प्रकार के सम्मेलन?
0: नहीं, मैं जब पहली बार मैं वो क्या हो गए थे, हमने जब मैं नाटक में आया जब तो मैं हमने ये झाड़ी पट्टी विकास महामंडल नाट्य विकास स्थापन का मैं अध्यक्ष था, 15 साल था उसके एरिया में। ऐसा लगा कि चलो भाई अब ये जो हमारे नाट्य परिषद वगैरह उसकी गवर्नमेंट उसको ही देता है उनके सम्मेलन होते कि उस माध्यम से कलाकार इकट्ठा आ जाए, उनके कुछ जो कोई मनोबल है उससे कुछ डिफिकल्ट है वो एक माध्यम से वो संदेश, क्योंकि वयोवृद्ध कलावंत मानधन नहीं मिलता था पहले।
1: अच्छा।
0: लेकिन हमने उसको किया तो आज 5,000 रुपये एक कलाकार जो 60 उससे ऊपर हो गया उसको मिलता है।
1: अच्छा।
0: उनको रीटा की मदद कुछ नहीं मिलता था ना।
1: हाँ, जी, जी।
0: तो उसे कोई सुविधा है तो इसके वजह से, और जो नया कलाकार आता है जो इतने आज तो ढंग से, तो ये हमारे कुछ जो नाटक कंपनी है उनको कुछ अनुदान मिल जाए, बीमा कवच है उनको, अभी हमारा कुछ हर गांव में नाट्य गुरु बनाना चाहिए, ऐसे हाँ कुछ ये था और गवर्नमेंट ने अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अच्छा चल रहा अभी, हम हजारों कलाकार आए थे
1: जी,
0: तो वो माध्यम से एक परिचय और उसको कुछ कुछ समस्या रहती है
1: जी।
0: तो एक झाड़ी पट्टी रंगभूमि मंच हमारा अलग ही, और मेरे को जब से पद्मश्री मिला है
1: जी।
0: तो एक चर्चा हो गई झाड़ी पट्टी क्या है,
1: जानना चाहते हैं
0: उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि झाड़ी पट्टी के मंच पर एक पद्मश्री मिलता है। तो एक दृष्टिकोण चर्चा तो होती है ना,
1: बिल्कुल।
0: तो उसके माध्यम से मेरे को जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ झाड़ी पट्टी का जो ये, और मैं भारत सरकार ही मानता हूँ कि हमको भी कहीं नहीं लग रहा था कि पद्मश्री क्या है, क्या किसको मिलता है, लेकिन अभी वो हर यानी जब से मिला है तो ये एक पहचान बन गई झाड़ी पट्टी, रंगभूमि की इज्जत बढ़ गई, लोगों का देखने का दृष्टिकोण बदल गया और इधर के लोग आने लगे अभी झाड़ी पट्टी में देखने लगे। अब एक झाड़ी उड करके पिक्चर भी निकला हमारा।
1: अच्छा।
0: हाँ झाड़ी उड।
1: अच्छा।
0: हाँ
1: वाह,
0: और कई लोगों ने पीएचडी के डॉक्टरेट भी लिया उसमें। तो एक चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो दृष्टिकोण अगर अच्छा, इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट था कि सब कलाकार, नेपथ्य वाला है, तबले वाला, पिटी वाला, सब हर प्रकार का जो योगदान देता है झाड़ी पट्टी में
1: जी।
0: उसके लिए ये सम्मेलन वरदान है।
1: ये सम्मेलन वरदान है बिल्कुल। ये बहुत मतलब हम कम सुनते हैं कि इसमें रिटायरमेंट के बाद इस तरह की कोई व्यवस्था हो, ये शायद ही कहीं कभी सुनाई नहीं देती इस तरह की।
0: हमारे महाराष्ट्र में है
1: जी,
0: हमने पहली भी शासन ने भी बहुत, हमारे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक कला लोक कलावंत एरिया, तो उस वक्त क्या था उन्होंने तीन भाग में विभाजन किया था
1: जी।
0: ये अ ब क, अ वाले को 27, ब वाले को 22 और क वाले को 16 के 1200 ऐसे मिलते थे। तो अभी हमारे सांस्कृतिक मंत्री हमारे जिले के थे सुधीर बाबू, और मैं वो सम्मेलन का अध्यक्ष था
1: जी।
0: पिछले साल तो आखिर के जो समारोह के दिन में हमने बोले कि सर ये अभी तीन तीन ये भाग ये सब मतभेद मत करो
1: जी।
0: और आज 1500 में क्या होता है, कुछ तो बढ़ा दो, एक रकम कर दो। तो 5000 रुपये उन्होंने किए अभी चल मिल रहा फारे को अभी। और हमने ये जो सम्मेलन किया कि अभी और मांग ये किया कि भाई ये 5000 में कोई नहीं होता, उसका कोई गुजारा नहीं होता
1: जी।
0: तो इसमें वो फायदा है
1: जी,
0: गवर्नमेंट को सोचना पड़ता नहीं, इनको जो मांगने रखी है इसमें करना पड़ता, तो ये उसका बड़ा फलित है,
1: बहुत बड़ा बेनिफिट है जी जी।
0: उनको न्याय मिलता है,
1: न्याय मिलता
0: है और वो संदेश वहां तक जाता है
1: जी।
0: हाँ,
1: उनकी बात पहुंचती है,
0: बाहर पहुंचता है
1: जी। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि हम जब भी भारत की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, और आपने भी बात की आज के समय कितना चेंज आ गया है, बहुत चीजें, तो क्या इस तरह की जो आर्ट फॉर्म्स हैं जो बहुत ही कई जगह तो विलुप्त हो रही हैं, कई जगह तो परिवर्तन इतना ज्यादा आ चुका है कि उसको ओरिजिनल फॉर्म भूलती ही जा रही है एकदम, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत की संस्कृति को रिस्टोर करने में कोई भूमिका निभा सकता है इस तरह की कलाएं?
0: मैं जो बोल रहा हूँ कि अभी क्या होता है, ये नए नए जब ये जो मीडिया आया
1: जी,
0: टीवी आया, मोबाइल आया, उसमें ये जो अपनी जो कल्चर है
1: जी,
0: ये बहुत दूर चला गया। शार्ट बर्शूट में जो मनोरंजन के साधन हो गए, तो अपन अपनी संस्कृति अपनी हैसियत भूल गए
1: जी।
0: ये बिल्कुल ये लिए मैं बता दूं, तो ये इसके लिए वही बोल रहा हूँ कि उसके लिए मैं करना क्या चाहिए। अभी तो इतना बढ़ गया कि कोई मानने को तैयार नहीं
1: है जी।
0: जी ढंग से हम चले, हम जो भारत जो हमारा प्रेम है, हम यहाँ के नागरिक है, स्वतंत्रता मिली है, बड़े बड़े लोगों ने त्याग दिया है, जो कोई जो वाद हो वाद तो हमारे भारत में रहती है, भारत की जो संस्कृति
1: जी,
0: धर्म जो अपनी एक अनेकता में एकता है
1: जी जी,
0: वो करने के लिए तो भी आज का युवक जरूरी है। और मेरा ख्याल है धीरे धीरे ये अगर माध्यम होगा तो ऐसे माध्यम से, कुंदादाई के माध्यम से बोलो, ऐसे में उसको एकत्र रहना, उसको समझा देना ढंग से, समझना जरूरी है। वो समझ में आ रहा अभी,
1: आ रहा है अभी
0: समझ में आ रहा। मैं भी जिस खेड़ में रहता हूँ आज, लोगों को समझ में आ रहा जो हो रहा आजू बाजू में, अपने जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी अपने कुछ मुल्क है, तो उसमें जो हो रहा है
1: जी,
0: तो उससे एक संदेश उसके वो उसको वो लाइन पे लाने के लिए
1: कभी हमको भी
0: जरूरी है। ये संस्कार जरूरी है,
1: संस्कार जरूरी है।
0: तो अब कर रहे जेदी मानसिक आध्यात्मिक विषय से बोलो तो ये हो रहा परिवर्तन,
1: आध्यात्मिकता को अब स्वीकार है
0: जो हो रहा ना अब अड़ोस पड़ोस में अपने, तो उसका उपयोग हो रहा नई पीढ़ी को
1: जी
0: सोचने को मजबूर कर दिया। अगर हम इस ढंग से नहीं चले तो अपना क्या होगा,
1: अपना क्या होगा जी।
0: तो ये सोचना जरूरी है और ये काम कोई अकेले ब्रह्म कुमारी का नहीं है, कोई उनका नहीं है, अब सबका है।
1: बिल्कुल,
0: ज्ञान तो आप दे रहे हैं लेकिन आप वहां तक ले पीना नहीं पीना पानी वो उनका तैयारी रखो, प्यासे हो आप उसके लिए तो जरूरी नहीं है बात। तो ये नए जो कुटुंब प्रमुख होगा कोई अपने जैसे सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे जैसे संस्था एक एकता में आने के लिए उसको पढ़ाने के लिए करना जब शुरुआत तो है, माने मैं तो बोलता हूँ वो तो हो जाएगा क्योंकि जब एकदा जो क्या बोलते जो देखते अपन जो परिणाम उसका रिपीट होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: तो वो तो जरूरी है आज के लिए, ये जरूरी
1: है, ये जरूरी है। सर एक और चीज जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि पद्मश्री जब आपको अवार्ड हुआ वो अनुभव कैसा था, उस समय कैसा वातावरण था, क्या आप फील कर रहे थे उस समय?
0: मेरे को तो क्या हो गया मैं पहली बार जब कोई भी पुरस्कार रहे
1: जी,
0: आप ये फंक्शन कर रहे हैं
1: जी,
0: कोई भी उसको एक पुरस्कार जब मिलता है तो एक प्रेरणा मिलती है। जब मेरे को स्मिता पाटिल पुरस्कार मिल गया
1: जी,
0: उसके नाम पर, दूसरा मेरे को कलादान पुरस्कार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया, तीसरा पुरस्कार मेरे को खेती में मैं अच्छा किसान हूँ इसमें मैंने उपजत किया, तो उसके में क्षेत्रीय निष्ठा पुरस्कार महाराष्ट्र शासन का मिला
1: जी।
0: मेरे को समाज भूषण बाबा साहब अम्बेडकर भूषण पुरस्कार मिल गया,
1: अनेक पुरस्कार
0: ये मेरे महाराष्ट्र के पुरस्कार बहुत 40-50 की लिस्ट है अभी। लेकिन जब हमको लगा कि अभी जब डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये जो सरकार आई है
1: जी,
0: तो पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो पुरस्कार ये बड़े बड़े क्रिकेटवीर बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े उद्योगपति उनको ही जाता होगा, पद्मश्री का आपको मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से उन्होंने एक ऐप निकाला था कि यहाँ का बोले भारत का कोई भी नागरिक जिसका जिन्होंने कार्य किया है कोई सेवा की है अपने अपने इसमें फील्ड में उन्होंने नाम कमाया है वो आप कर सकते हो, तो ऐसे मैंने मजाक में वो ये सब लेके भेज दिया
1: जी।
0: और मेरा नक्सलड एरिया पूरा वो ढंग से मेरे को शायद हो सकता है वो इन 50 साल उन्होंने कार्य किया इतने साल से इन्हें अवार्ड मिले और नक्सलड एरिया में रहकर ये इतना 50 साल से कर रहे
1: जी।
0: तो वो ढंग से मेरे को जब मिला
1: जी।
0: तो मैंने मेरे को पत्रकार ने आए मेरे घर को बोला आपको कैसा लग रहा टीवी पे आ रहा आपको, मैंने कुछ नहीं मैं बोला देखो ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं 50 साल ये झाड़ी पट्टी रंग में ये जो पूर्व विदर्भ है मैं घुमा हूँ और 50 साल जो निकाला मैंने इसका कारण ये कि जिस ये जो मेरा प्रेषक वर्ग है रक्षक वर्ग है उन्होंने मैंने प्यार दिया 50 साल तक मेरे को उन्होंने ऊर्जा दी मेरे नाटक को आई टिकट निकाल के गर्दी की
1: जी।
0: बोला वो ये सब जो आज जो चल रही है उनका मान सम्मान झाड़ी पट्टी का वो उसका हकदार वो है, मैं ये मेरा पद्मश्री उनके चरणों में अर्पण करता हूँ, ये मेरी पहली प्रतिक्रिया। और बाकी तो अपने कुटुंब में जो मिलता है जो मिला तभी तब से मैं तो अरे मरे यकीन नहीं था कि मेरे को पद्मश्री मिल सकता एक सामान्य आदमी को, लेकिन मिले।
1: आपने जो 50 वर्षों से भी ऊपर जो एक कला को समर्पित किया
0: हाँ।
1: आपका जीवन
0: तो मैं ये बोल निस्वार्थपन से करो ना दीदी, वो भगवान उनको देता है। मेरे बारे में मैंने कई पैसे के लालच नहीं किया, मैं जितना दिया उतना लिया, लेकिन जाता था नाटक लोग बुला नहीं जाता था, कोई पैसे भी कोई अपेक्षा नहीं थी, मैं करते रहना घर तो 8-8 दिन घर नहीं जाता था मैं।
1: अच्छा,
0: उसके पीछे मेरी बीबी आई बीच उनका भी बड़ा सहयोग है, मेरे भाई का मेरे गाँव में सरपंच था 15 साल गाँव का 15 साल, फिर भी मैं वो उनका भी काम करता था। तो कोई काम लगन से करो ना निस्वार्थ करो तो उसको भगवान उसका मिट देता है,
1: फल देता है
0: हाँ।
1: जी।
0: अब मैं आज आया
1: जी,
0: मेरे को अभी खैर मैं आऊंगा करके, लेकिन भगवान की इच्छा हुई चलो आप माउंट आबू आपको जाना है
1: जी।
0: मैं तो टाल दिया था पहले पूछो, तो ये कभी कभी आदमी कर्मी भी ये हो जाते, इतना बड़ा ये आप मेरा एरिया देखोगे आप उधर आओगे तो बड़े कहाँ आके बैठ गए, कभी कहा साला शेर निकलेगा कभी आएगा ये
1: जी।
0: हाँ
1: जी।
0: तो ये इसमें रहकर मैं कभी साइकिल पर, कभी नाव पर, कभी ऐसे चलते थे और रात भर नाटक करके घर के वापस आना, और दूसरे को नॉन स्टॉप करता था मैं 3-4 महीने
1: जंगलों के बीच,
0: जंगल के बीच में कोई 50 साल के एक नाटक किलोमीटर, दूसरा इकड़े मोटरसाइकिल जाना, कभी कभी रेंगे पे जाना, कभी डोंगे पे जाना।
1: तो आपको डर नहीं लगता था कभी?
0: गया था मैं, वो जमाना अभी तो रोड बन गए
1: जी,
0: उस वक्त नहीं था, मैं 70-80 की बात कर रहा हूँ। बहुत जंगल था, अभी भी है, ताड़ोबा है जंगल हमारा, नागजीरा है, हमें जंगल इनका ताड़ोबा देखने लायक है, वहाँ फेमस है हमारा, इधर नागजरा है, नयगांव बांध है, बड़े बड़े हमारे जंगली एरिया वो हमारा
1: जी।
0: लेकिन हमको अच्छा लगता अभी
1: जी,
0: जब से कोरोना आया ना
1: जी,
0: तब से हमारा एरिया अच्छा लगता है कि वहाँ खुला हुआ साक्षर मिलता है।
1: सही बात है,
0: अभी बहुत बदल हो गया अभी।
1: तो इतने महीनों जब आप बाहर रहते थे, और मतलब क्या लगातार पूरी रात, अलग अलग अलग अलग जगह कार्यक्रम?
0: हाँ, आज अलग नाटक का, अलग मेरे को नाटक का नाम भी नहीं मालूम था।
1: अच्छा,
0: अभी तो कंपनी होगी, मैं जब जिस मैं 25 साल मैंने काम किया होगा वैसा ही किया कि आज यहाँ नाटक, परसों आने का, अलग अलग कलाकार कौन क्या कर रहा, जाके मैंने डायरेक्टर नहीं सका, डायरेक्ट जाना था।
1: अच्छा,
0: अभी तो डायरेक्टर बन गया, आज लोग सब रिहर्सल लेके नाटक तैयार करते, हम जब वैसा नहीं था, वो गाँव में 4-5 कलाकार, बाकी हम जाते थे क्या है बताओ।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो एक मैं बोले कि महाभारत रामायण वही नाटक होते थे, तो वो कभी भी, फिर वो मेरे को पूरे कंटेस्ट हो गए। लेकिन अभी जब से ये लावणी प्रधान आ गया, तो अभी अब थोड़ा क्या हो गया, वो थी होशी रंगभूमि, अभी ये 20 साल से थोड़ा कमर्शियल हो गई पूरी, पहले जो गांव के लोग करते थे वो गई अब होशी, अभी वो क्या करते, हमारे वर्षा में बड़ी बाजार पर जो हॉलीवुड पिक्चर निकला गया नहीं, तो बड़े वो उसका मार्केट है, जहाँ दुकान अपना आप लेके बैठे है नाटक के 4-5 नाम कलाकार के नाम, और वो जो लेने वाले आदमी फिर उनको एक दिन के लिए 40-50-70-80 हज़ार रुपये लेके गांव में नाटक करते हैं, हर गांव में नाटक होते हैं। तो वो आ गया अभी व्यवसायिक, तो उसमें अगर तुमने थोड़ा भी गलती कर दिया तो पैसे नहीं देते, इसलिए अभी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है,
1: कॉम्पिटिशन हो गया,
0: एक एक गाँव में 12-12 नाटक होते, गिनीज बुक में है, गाँव में 4 तो होते, 2 तो होते चाहे गाँव में, क्योंकि वो पार्टी का अलग, ये पार्टी का अलग, वो पार्टी का अलग, ठीक है। तो अभी उसके हमारा कोई मतभेद नहीं रहता, क्योंकि चलो कलाकार का पेट भरता है
1: जी, जी, जी।
0: एक गांव में 4 नाटक होना बोले तो क्या बोलते, कलाकार तो 150 का हो गया ना उसमें
1: जी, जी।
0: तो उसमें कोई मतभेद नहीं, वो करते हम
1: मिलजुल के, मतलब
0: मिलजुल के करते, उसमें कोई बड़ी बात
1: जी, जी। मतलब 12-12 नाटक भी,
0: और उसमें मैंने बोला कि उसमें खाली नाटक नहीं है
1: जी,
0: तो वो ढंग से जो मेहमान आते हैं, लड़की देखने वहाँ, फिर शादी जुड़ती है, नए जावई दामाद गांव में आते हैं, कोई देखने आती लड़की, ऐसे ही वो भी चलता है उसमें।
1: हाँ।
0: वो भी एक सामाजिक कार्य का एक फायदा है उसमें,
1: जैसे वो एक पूरा सामाजिक कार्य ही
0: हो गया, क्योंकि हर साल में एक बार नाटक गाँव में होता है।
1: अच्छा,
0: तो एक वो गाँव वाले के लिए वो एक तो यार ही है, मेरे गांव में नाटक हो रहा है, अरे चलो मेरे गांव में बुला जाओ, ही आ जाओ, मेरे बहन आ जाओ, मामा जी आ जाओ, वो ढंग से वो एक निमित्त से वो आते हैं, उससे सबर विदा भी होती, बढ़िया विदा की
1: खातिर भी होती।
0: हाँ, तो एक संस्कृति इसके पीछे
1: जी, भारत की भी संस्कृति ना, मेहमानों को बुलाना, देख रेख करना,
0: उसमें तो यानी शादियां जुड़ती है ना
1: जी,
0: ये परंपरा चल रही है अभी,
1: परंपरा अभी भी चल रही है,
0: थोड़ा ढांचा नाटक का बदल गया
1: जी, जी, जी।
0: पूरे अभी क्या बोलते उसे व्यावसायिक हो गई
1: जी,
0: वो ढंग से नाटक भी सादर करते
1: जी। सर, जो भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई भी भारत के युवा या गांव में रहने वाले युवा, बहुत लोग सोचते हैं कि हमको जीवन में, हम गांव में रहते हैं हम क्या करेंगे, या फिर ठीक है अब जीवन यही है, तो वो भी मान लेते हैं, स्वीकार लेते हैं कि ठीक है यही है, नशा कर रहे हैं या आदत पड़ गई है, दोस्तों के साथ है, तो उनको लगता है कि ठीक है हम कोई शहरों वाले थोड़ी है ना, हम वहां जाएंगे, हमारा जीवन यही, तो कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत अंशी मेरा जो कार्य है वो देहात में गया
1: जी,
0: मैं बहुत नजीक से देखता हूँ उसमें तरुण को, लेकिन आजकल क्या हो गया, एक बड़ा यानी मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे को लोग मजूर नहीं मिलते, एक तरफ ऐसा भारत है वहाँ, दो भारत है, इधर मजूर नहीं मिलते, इधर कई वर्ग जाते तो भिखारी का है कि मैं जब 4 लोगों को पालना चाहता हूँ, मेरे खेत पर बुलाना चाहता हूँ, नहीं आता, क्या कारण है, ये लगन नहीं। मैं कहता हूँ हमारे गांव मेरे गांव में जो कि लड़का इससे जो रात भर नाटे में काम कर दिन भर खेती कर अपने व्यवसाय कर दे, तो आजकल कोई भी सरकार तो हर एक को नहीं दे सकती ना। तू स्वावलंबी बनो, ये तो बड़ा मैं तो बड़ा ये झाड़ी पट्टी रखी तो बड़ी एक बड़ा एरिया है जहाँ आपको अगर आपकी कोई गुणवत्ता हो, आप अच्छा आपको गला है, आपको अभिनय आता है, आपको अच्छा कोई आप पेंटर हो, आप अच्छा बाजा बजाते हो, तबला बजाते हो, सबके लिए तो खुला है, उनको होना ही है ना। अगर ये मैं तो तुम काय नौकर और नौकरी तो इतनी बड़ी कोई जो नहीं लगता आजकल, डोनेशन दो पैसा भरो, ये भी भ्रष्टाचार बहुत चढ़ गया है। कोई ऐसी कोई ऐसा नहीं लगता कि ये लोग तो उनसे टाइम उसमें जो अर्जी जिंदगी चली जाती है उनकी, ना ये ढंग से एक ना गायक बन सकता है ना उधर नौकरी कर सकता है। तो एक लगन से अगर आपको अच्छे है आपको अभिनय आता है तो आप उतर जाओ सीखो। और आज का शहर में भी ये जिंदगी बिताना बहुत कठिन काम हो गया
1: जी,
0: इतना सरल नहीं रहा। तो मान से अपने परिवार बोलो अपने आए बाप जो माँ बाप रहते तो उनके सामने अगर आप अच्छा कमाएंगे एक लगन से काम करेंगे, आज बहुत बहुत है ना। मैं तो कहूँ नहीं जमते जाओ मिलिट्री में देश की सेवा करो, क्या क्या पर आपका को आप तो मुफ्त खाने की बात हो गया
1: जी,
0: एक रुपए करो चावल दो तो कर ये दो हर एक को देखने का। अरे वो तेरे पिताजी के लिए है, काम नहीं उनके लिए, तू क्या मनता है खुद की पहचान अगर तेरे करना तो सोचना मेरे में क्या है। अगर तू अच्छा मजदूर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा गायक बन सकता है, अच्छा कलाकार, खुद को पहचानने की जरूरत है मेरे में क्या है और इस कम है तो मैं कैसा। इसके लिए कोई गाइड गुरु की जरूरत होती है, शायद उन्होंने सोचना चाहिए ये। अगर आपने गुरु ढूंढ ले अच्छे इसमें ये गए आपको अच्छे मार्गदर्शन मिल जाएंगे। अपना क्रोध तुम कंट्रोल होते हो ब्रह्म कुमार तुम्हारे इसमें पढ़ाया जाता है
1: जी,
0: क्रोध का क्या अर्थ है, शांति कैसे बनाए चाहिए, उसका फायदा उसको हो जाता है उसमें। अगर पहले से आप अगर निगेटिव सोच रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव सोचो,
1: पॉजिटिव सोचो, अपने अंदर अपनी पहचान
0: हो मैं कौन हूँ, अगर वो बन गई तो वो बन जाता। टाइम लगेगा थोड़ा, हमारे पता वैसा नहीं था, कंपटीशन कम था
1: जी।
0: अभी बढ़ गया है,
1: अभी तो बहुत
0: बहुत है हमारा, हम तो भाग्यशाली क्या चले गए। अभी तो तुम्हारे बाप आज दूसरा बिला बुला आता है, तो खुद को रखो,
1: मजबूत रहना होगा,
0: प्रेजेंटेशन करो खुद को मैं क्या हो, आत्मा बल बढ़ा। तो उसमें ले अगर ये मेडिटेशन तो आप ये ज्वाइन करो ब्रह्म को, वहां आके अपना ये करो, उसमें तो कुछ ना कुछ फायदा होगा ना आपको। आप जो भटके हुए आपको जो विचार मन में नहीं होते उसको तो एकत्रित उसमें कैसा मैं यहाँ से मैं जाऊँ, तो वो ये कही है
1: जी। सर बहुत सुंदर आपने बात कही और मुझे लगता है युवाओं के लिए बहुत ही बहुत जरूरी है बात,
0: जरूरी
1: है, खुद को खोजना, खुद को पहचानना मेरे अंदर क्या है। और जैसा आपने कहा समय लग सकता है लेकिन पॉजिटिव उसके लिए मेडिटेशन या आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मेडिटेशन तो बहुत ही मदद करता है
0: आज की जरूरत है,
1: युवाओं को भी। हम सोचते हैं कि शायद हम कभी बुजुर्ग हो जाएंगे तो हम करेंगे तो ऐसा ही,
0: आपके बच्चे भी वही आएंगे,
1: हर कोई
0: आना जब जो जैसे परंपरा चल रहा था वो अभी वो परंपरा बदलने को होना ना
1: जी।
0: पुराने तो हम नहीं बोलते पुराने लेखों का, लेकिन जो जैसा जैसा जमाना बदल जा रहा उसमें से अपने खुद को बचा के
1: जी, खुद को बचा के भी
0: साइड को बचा के खुद यहाँ से तैर, ये तो महासागर है
1: बिल्कुल,
0: यहाँ से तैरना निकलना तो आपको कोई ना सहारा लेना पड़ेगा।
1: सही बात है,
0: बहुत मार्ग है तेरे पास है लेकिन तू दिखता नहीं ना, वो गलत है, तेरे
1: मोबाइल ही दिखता है। सही बात है,
0: वहाँ भी है वो खोज, मोबाइल के अच्छे ना मोबाइल में सब कुछ है।
1: सही बात है, उसका भी नुकसान आज
0: वो नहीं देखता,
1: भुगत रहे हैं बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी भी और समाज भी। सर बहुत मोटिवेटिंग आपकी कहानी है और आपने जैसा आगे बढ़ाया है एक कला को ही नहीं बल्कि एक जीने के तरीके को, जीवन शैली को। सर जाते जाते आपसे एक और छोटा सा राउंड हम करना चाहेंगे ऑडियो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में, कि मैं कुछ एक शब्द कहूंगी आपसे और उस शब्द को सुन के आपके मन में एक कौन सा शब्द आता है वो आप बताइएगा, कि इसका जवाब आपको एक शब्द में देना है,
0: एक शब्द में।
1: हाँ जी, हाँ। कि ये शब्द सुनकर आपके मन में कौन सा शब्द आता है वो आपको बताना है।
0: अच्छा
1: जी, तो पहला शब्द है झाड़ी पट्टी।
0: झाड़ी पट्टी पूरा रंगभूमि।
1: पूरा रंगभूमि। भारत।
0: मेरा भारत महान।
1: मेरा भारत महान। कला। कला।
0: कला तो जीने का सहारा है।
1: जीने का सहारा। एंजॉय
0: पॉजिटिव थिंग।
1: युवा।
0: युवा आज का बोले तो आज का युवा भारत का आधार स्तंभ है। भारत उसको बनाना है।
1: बनाना है।
0: बनाना है। और हम हमारे जो पीढ़ी उनकी चाहते कि ये कुछ ना बन जाए। युवा बोले भारत। यंग भारत।
1: यंग भारत। क्या बात है। और अगर मैं आपसे कुछ शब्दों में जानना चाहूं कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में क्या।
0: मैं भारत माता का सेवक हूं
1: जी।
0: मैं खुद को भाग्य से मैं भारत जैसे देश में जन्म लिया
1: जी।
0: और मेरे भारत में जैसे सनातन धर्म की परंपरा है जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से है, खाली भारत में ही मिलेगा आपको
1: जी।
0: जैसे माउंट आबू में आया है, जो आध्यात्मिक देखा मैंने, तो ये कई कल्चर दूसरे देश में नहीं मिलेगा। जीने का सहारा यही है। इसमें भागवन करता हूँ, मेरे भारत में सही रास्ते में लाने वाली बहुत संस्था है, ब्रह्म कुमारी जैसी है। ये मैं भाग्यशाली श्रेष्ठ हूँ
1: जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं इस मामले में, इस भूमि पे जन्म।
0: भूमि में जन्म
1: जी।
0: भारत माता है, माता काली, इसलिए विश्व माता बोलते हैं। भारत बोलते कहीं नहीं बोलती, यहाँ सिखाया जाता है माता क्या है। मेरी माँ है।
1: मेरी माँ है।
0: और माँ के सामने सब बराबर होते हैं
1: जी। बहुत सुंदर बात किया आपने। माँ के सामने सब
0: बराबर,
1: सब बराबर
0: है। पहले भारत माता के पुत्र है, माँ है हमारी, कोई माने ना माने। अगर ये हम सब अनेकता में एकता का प्रतीक यही है, वो माँ का माँ है,
1: ये शब्द माँ, क्योंकि हमने भारत माँ है तो
0: भारत।
1: बहुत सुंदर सर, आपका जीवन काल बहुत ही लंबा, आपने जो समय व्यतीत किया, जैसा आपने बताया कई रातें लगातार, और वो जीवन जीते जीते झाड़ी पट्टी को प्रमोट करते करते युवाओं को उस नक्सलाइट एरिया में उस जीवन शैली से निकालना, बचाना, सकारात्मक दिशा देना।
0: भैया मैं जब यहाँ से 22 साल का था, मैं जब मैंने डॉक्टर के पास की गांव में गया, वहाँ पूरा जब मैं सरपंच बना गांव का, पूरा वो आदिवासी, तो उनका पूरी श्रद्धा पुजारी, फुकपक बुआ बाजी। जब मैं कहीं घर को जाता था, बोले इंजेक्शन को, बोले उनके दे दो, मैं उनको पुजारी ये करके देगा, तो निकालना कैसे। वो पूरे इन ढंग से बुआ बाजी के इसमें गए थे, चमत्कार क्यों नमस्कार। तो मैंने कुछ मैजिक शो सीख लिया था।
1: अच्छा।
0: और वो करना चालू कर, फिर जो दुर्गा उत्सव हो, गणपति हो
1: जी।
0: ये उसका भी रहस्य भी एक, जैसे गुदबत्ती कैसी घूमती है, ये रुमाल है, हवा से ये कैसा आता है, चैन कैसी निकालते है, गणपति दूध कैसा पीता है, ये सब उसको अगर बोलो आश्चर्य लगता था
1: कैसे हो रहा है।
0: लेकिन ये सब थोतांड है जब उसका ये कर रहा था, अरे भाई ये तो साले जी, ये साइंस क्या है उसके पीछे बनिए। मैंने को उसका वो भी कार्य मैं अभी भी कर रहा हूँ।
1: अच्छा, तो आप करके बताते
0: हो। हाँ। मैं टीवी पर अभी आया परसों, मेरे इंटरव्यू हमारे महाराष्ट्र में, मैंने वो भी करता हूँ। मेरे को उसके भी मद्रास में किया था।
1: अच्छा।
0: मैं अभी पुणे में मैं उसका शो किया था। मैं उसके लिए कोई ये नहीं, मैं उसके लिए उनके लिए करता हूँ जो अंदर सदा के निर्मूलन के जरिए मशाम मानव हमारी, तो वो भी मैं किया।
1: उनको बाहर निकालने के लिए उस अंधश्रद्धा से
0: हम नहीं, पूरा जो देहाती पहले था वो इसमें जाता था, डॉक्टर भरोसा नहीं, लेकिन वो पुजारी को भरोसा रहता था। उसमें हम नाटक में मरीमाई का भूतिया,
1: अच्छा,
0: एक नाटक आदिवासी परंपरा का नाटक है, सत्य घटना पे आधारित है, जो नरबड़ी कोई ज्यादा उत्पादन होने के लिए पहले उधर हमारे एरिया में आदमी को काटते थे, कोई एक सत्य घटना पे आधारित था, मरीमाई का भूतिया। मेरी माँ एक रही थी, उसको पटेल उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, नक्सलाइट का हमारे ऊपर अटैक हो गया।
1: अच्छा।
0: कोर्ट में गए इसके लिए, हम कोर्ट को न्यायाधीश को बताया है इस बारे में, बोले इसमें कोई ये जो इसमें से ये परंपरा किसी गलत है, ये हम बताना चाहते हैं। उसमें वो आदिवासी को बाहर निकालना, तो उन्होंने भी फिर भी उसके बहुत यानी क्या है, कोई नकारात्मक ये हुआ तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है। तो वो इतना नाटक चला, इतना नाटक चला कि वो भी हमने की।
1: क्या बात है, ये तो बहुत
0: बहुत अच्छा काम किया,
1: बहुत बहुत ही अच्छा।
0: वो पूरा वो आदिवासी संस्कृति में, वो नाटक आदिवासी भाषा में था, वो जो बोलते थे ढंग का, वो जो उनकी अलग भाषा है आदिवासी की, क्योंकि मराठी अलग जो बात करेंगे
1: जी।
0: तो वो ढंग से उन्होंने लिखा और वो पूरे कलाकार आदिवासी थे हमारे, उनका पूरा जो आदिवासी का जो सास्ता बजाने का वो भी पूरा साज जो उनकी संस्कृति बजाते है देवगढ़ी से, वो पूरा हमने लाए थे। उसका बड़ा इफेक्ट, बहुत दिन हो गए नाटक को अभी, लेकिन बहुत चला
1: उसका बड़ा असर पड़ा,
0: बड़ा असर पड़ा। हमने उसने भी निकाले जो नक्सलाइट में हमारे ऊपर पूरा भैंस का डाला था, लेकिन हमने उनको भी दिखाई, इसमें कोई बोला बुराई है ही नहीं सर, हम तो लोगों को समाज को निशान बाहर निकालना चाहते, ये जो परंपरा है बोले उत्पादन बढ़ने के लिए कुछ बोले आदमी को काटना पीटना अपनी देवी को काटने थोता नहीं है। उसके वो जो पटेल था आदिवासी, उसकी लड़की उससे बंड करती है, इसमें ये बुरी क्या बात थोड़ी है, बोला
1: बुरी कहानी है,
0: कहानी
1: जी। तो आपने उनको भी समझाया?
0: हाँ, वो हमने वो ढंग का भाई वो ये मरी मैं जब होती
1: जी,
0: बहुत पुराना नाटक मैं जब तुम नाटक में कहूँ उसमें बहुत नाटक चलाओ
1: जी,
0: तो उसमें नक्सलाइट ने हमको धमकी दी थी कि हमारे ऊपर नहीं और आपके तरफ नहीं है।
1: अच्छा, उनको लगा होगा कि उनकी
0: हाँ, तो वो हमको फायर मिलिट्री खाली हम नाटक कर रहे हैं, फिर कलेक्टर को देखा है हमने सेंसर बोर्ड और मिलने बोली इसमें कोई है ही नहीं, बाद में वो मान गए।
1: ये तो उनके बेहतरी के लिए, कल्याण के लिए,
0: आपके आपके अच्छे के लिए नाटक,
1: अच्छे के लिए
0: ये जो थोता नहीं, ये जब बुआ बाजी फुआ बाजी ये जो आपको पुजारी बताता है नर आदमी को काटना कहाँ से उत्पन्न होती है, आदमी को काटना गलत है ना,
1: बिल्कुल
0: वो सत्य घटना थी।
1: इस तरीके से
0: अभी तो नहीं, अभी तो उधर का आदिवासी बुरा प्रॉम्प्ट हो गया, अभी
1: बहुत
0: फलित है, हमने हमारे जमाने में
1: बहुत था। बहुत अच्छा सर, बहुत ही पावरफुल कहानियां हैं और बहुत सारी कहानियां होंगी आपके पास, क्योंकि 50 साल का एक लंबा अंतराल आपने इस कला को समर्पित किया है और इसके माध्यम से कुरीतियों को लोगों के दिलों से और डर बन जाता है, वो डर को निकाला, वो बहुत बड़ा काम है, वो एक बार में नहीं होता, वो शायद कला के माध्यम से उसका इम्पैक्ट
0: नहीं
1: होता है।
0: जैसा हमने किया था, जैसे मेरे को प्रेरणा मिली कि मेरे को इस काम का पद्मश्री मिला
1: जी,
0: तो पीछे वाला ने इससे कुछ भले किया तो उसको भी तमन्ना आ जाती है, मैं भी अच्छा कार्य करूँ,
1: मैं भी करूँ,
0: तो वो भी तैयार हो जाए, वो होना चाहिए ना। जैसे दीदी अभी कार्य कर रही, इनके पीछे कोई आने को होना ना, दीदी का कार्य सामने लाने के लिए, यही तो संस्कार है,
1: यही संस्कार है।
0: एक आदमी आया तो भी बहुत हो गया,
1: एक को भी प्रेरणा मिली तो बहुत हो गया जी,
0: भगवान को पत्र मारो तो ये हो जाता ना आसमान को
1: जी जी जी। बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप स्टूडियो में पधारे, आपने अपना समय दिया और इतनी खूबसूरत रीति से इस जर्नी को हमारे साथ जो आपने शेयर किया, जो बांटा, इतनी अनेकों प्रेरणाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्ते,
1: धन्यवाद,
0: राधे राधे, ओम शांति,
1: ओम शांति, राधे राधे। चलिए दोस्तों, वक्त हो गया है इजाजत लेने का, रेडियो मधुबन 107.8 FM से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का स्वागत है। हमने पहले भी जाना कि प्रकृति के साथ संगीत का एक गहरा संबंध है। देखा जाए तो संगीत के माहौल में कोई पेड़ पौधा या फूलों का रंग रूप अलग ढंग से होता है। आप सभी इस पर विचार कर सकते हो। इसलिए मॉडर्न युग में म्यूजिकल गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन मानव मन को आह्लादित कर देता है, जैसे कि मालकोस राग में राधा किशन का मिलन या काफी राग में रंगों की पुहार होती है। तो आइए ऐसे ही संगीत की महिमा में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ गीता जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। जितने सारे लिसनर है सबको मैं नमस्कार करती हूँ।
0: हम जौनपुरी राग की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: आज आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, पिछले एपिसोड में मैं स्वर लिपि दे दिया था।
0: हाँ जी,
1: बच्चे ने शायद लिख लिया। तो अभी क्या करेंगे, बंदिश दे देती हूँ
0: जी।
1: आज बंदिश सिखाएंगे, तान करेंगे तो कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं पहले उसको बंदिश सुना देती हूँ।
0: हाँ,
1: तीन तल की है बंदिश है। पाई लिखी झनेकार बरनिया, बहुत सुंदर बंदिश है। आपने बताया कि राधा किशन अभी बोला थे, हर टाइम राधा किशन जो मालकोस में तरह तरह के राग में भी होता है
0: जी,
1: इसमें भी ऐसे ही है। आपको पहले बताया कि इसका जो प्रकृति जो बहुत शांत प्रकृति का होता है
0: जी,
1: तो इस आधार से ये बंदिश भी है। पायल की झनकार बरनिया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊ अब मैं। अगर झनकार होता है पायल की तो पिया से मिलने के जाने के डर लगता है ना
0: जी,
1: आवाज उठता है ना। तो ऐसी बात है। तो इतना है, पायल की झनकार बरनिया, झन्ने झन्ने बाजे कैसे मोरी, पिया से मिलन को जाऊ अब मैं। ये है स्थाई का बंदिश। अंतरा की है, बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। बिरहा से तने ताप तपत है, अंग अंग सब लागर हीले, सदा रंगीले उठत जिया हुका। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, पिछले एपिसोड में जो स्वर लिपि के साथ इसको बैठा देते हैं पहले। ठीक है
0: जी।

जौनपुरी राग की बंदिश के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में हम इसी राग से संबंधित एक प्यारे से गीत का आनंद लेंगे, और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पुनः आप सभी संगीत प्रेमी मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने शामली जी से जौनपुरी राग की बंदिश सुनी।
1: हाँ जी,
0: अब आगे आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, अभी इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा तान भी करेंगे, स्थाई अंतर की तान भी सुनाएंगे
0: जी।
1: अगर लिस्नर उठा लेते तो अच्छा है, नहीं तो गुरु के पास तो शिक्षा लेना ही है।

0: तो ये जौनपुरी राखी आपने बंदिश की तान सुनाई।
1: हाँ, थोड़ा बिस्तर भी सुनाया, थोड़ा तान अंतरा की तान, स्थाई की तान हमने सुना दिया। अगर लिसनर गुरु के पास शिक्षा लेते हैं ऐसा, अगर इसमें भी सीख सकते हैं तो वो तो कोई ये हर्जा नहीं है ना
0: जी,
1: तो आप और सीख सकते हैं तो अच्छा है।
0: रेडियो के माध्यम से जो संगीत सिखाते हैं ये तो मेरे को लगता है सिर्फ रिवीजन में उनको काम में आता।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बाकी तो आप जैसे पहले भी आपने बताया है कि डायरेक्टली कोई गुरु के पास शिक्षा लेना अनिवार्य है।
1: अनिवार्य है, मैं तो इसने रेडियो के माध्यम से थोड़ा सिखाती हूँ। हाँ। ऐसे इतना कम समय तो नहीं होता है ना
0: जी,
1: मैं थोड़ा से सुनाया सिखाया।
0: श्यामली जी, आज जाते जाते आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज बहुत अच्छा फिल्म है, मेरे को भी फेवरेट है ये।
0: अच्छा
1: फिल्म काटी पतंग।
0: ओके बहुत फेमस
1: बहुत फेमस है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या
0: एक कटी पतंग है। वाह,
1: बहुत सुंदर लता जी का कॉम्पोजिशन है
0: जी,
1: मैं कोशिश कर सकती हूँ
0: जी।

0: एक बात कहूँ आपको?
1: बताइए।
0: कोइंसिडेंस?
1: हाँ जी।
0: ये गीत कहो, ये राग कहो, सब सीजनल हो गया।
1: हाँ जी।
0: क्योंकि अभी अभी जनवरी मास में पतंगों का त्योहार गया।
1: हाँ जी।
0: और पतंगों का अपने जीवन के साथ किस प्रकार का हम संबंध जोड़ के मार्मिक अर्थ?
1: मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं सोचती औरत की जिंदगी जो है ना एक काटी पतंग जैसी है। आप देख लेना, अगर मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ, शिकवा नहीं करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग जैसी है ना। औरत की अभी भी ऐसी जिंदगी नहीं मिला है, लेकिन अभी खुद को अपना जिंदगी बनाना चाहिए। अभी जैसे मैं इसी उम्र में भी मैं अपनी जिंदगी बना लिया
0: जी
1: संगीत के अंदर
0: जी। इसीलिए संगीत हर हमारे अनुभव को, हमारे एहसास को दर्शाता है।
1: देखिए कितना अच्छा,
0: बहुत सुंदर
1: संगीत जिंदगी से मिला हुआ है ना
0: जी।
1: हर समय हर पल जिंदगी में संगीत संगीत संगीत
0: जी। श्यामली जी, इसी के साथ समय देता है हमको इजाजत। जाते जाते आपने मन को खुश कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स
1: जी।
0: फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं या एसएमएस के द्वारा भी आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। किसे कहते हैं दोस्तों, हर किसी के जीवन अलग होती है। हर किसी के अंदर एक ख्वाब होता है, मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है। बचपन में हम माँ बाप के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं और जैसे ही हम होश संभालते हैं और दुनिया को देखने लगते हैं, हम आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आशाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है और मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सपने और वो सोच बुनना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिशा मिल जाती है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जीवन जीना मतलब बाल्यकाल में स्कूल जाओ, युवावस्था में पढ़ाई पूरा करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर सेट हो गया, फिर मिडिल एज में आकर के जिम्मेवारियां संभालो, फिर वृद्धापी में आ गया तो फिर बाल बच्चों के साथ खुश होके जीवन पूरा हो गया। क्या यही जीवन है या हर कोई ऐसे जीना चाहते हैं या कुछ हटके भी जी सकते हैं? आइए आज हम इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है इसमें जानेंगे। हमारे साथ है एक योगी जीवन जीने वाले, ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी जीवन को जीने वाले आदरणीय श्याम भाई जी। आप वर्तमान समय में हेडक्वार्टर्स में रहते हुए अनेक कार्यों को आप मार्गदर्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ये जीवन उन्होंने क्यों और कैसे चुना है, उनकी ही जीवन के अनुभवों से आज हम जानेंगे। श्याम भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू रेडियो मधुबन वालों का हमको बुलाया उसके लिए।
2: शुक्रिया भाई जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अब अपनी जीवन की बहुमूल्य पलों के बारे में साझा करने के लिए। हम सबसे पहले उन पलों के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका जो बचपन रहा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ और आपकी लौकिक परिवार का क्या माहौल रहा है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका अपना लौकिक जीवन का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताएं।
3: ओम शांति। मेरा पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता है और मैं भोपाल जोन पोरसा मध्य प्रदेश एमपी से निकला हुआ हूँ। एज मेरी 51 है अभी। और हमारे फादर जो थे 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो हमारा पहले बिजनेस था, आड़त का काम था, जो सरसों गेहूं वगैरह जो खरीदने का होता है तो वो काम था हमारा। तो उस समय हम बिजनेस में भी रहते थे प्लस सेंटर की सेवाओं में भी अपना समय देते थे। तो हालांकि उस समय पिताजी थोड़े हमारे एंटी थे इस चीज से, ज्ञान में हम नहीं आए, वो सोचते थे कि हम शादी कर लें। तो उन्होंने काफी हमारे आजू बाजू और भी संपर्क वालों से कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके शादी ये कर ले। और कभी कभी लोग बार बोलते थे कि आप दोनों शादी कर लो, भले ही ज्ञान में चलना शादी के बाद। तो और दूसरे लोगों का जो उदाहरण देते थे, उन्होंने भी शादी किया, रामचंद्र जी ने भी शादी किया, ऐसे करके देते थे। तो उनको हम उसी हिसाब से गाइड करते थे। फिर हमारा ज्ञान में आने का सिद्धांत यही रहा, क्योंकि हमें अपना जीवन जिस प्रकार से देश के लिए सेवा के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक संघर्ष माना, जीवन को सोचा चलाने के लिए। तो हमारी माताजी और हमारी लौकिक सिस्टर वो पहले से ही ज्ञान में थे,
2: मतलब ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राज्यों की पढ़ाई है वो पढ़ते थे,
3: ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई पढ़ते थे पहले से ही। तो उनके माध्यम से भी हम संस्था से जुड़े और फिर इस संस्था में धीरे धीरे हम अपना आना जाना होता रहा और काफी चीजों का अनुभव मिला मुझे, जो ज्ञान का अनुभव नहीं था कि जीवन में जीने की कला क्या है। तो वो चीज हमें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि जीते तो सभी हैं लेकिन जीना कैसे है वो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। कि दुनिया में लोग आते तो हैं और अपना जीवन सारे समय ऐसे ही निकाल देते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापे में अपने गृहस्त में ही जीवन निकाल दिया है। लेकिन हमारा एक मतलब यही था कि अपने जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी एक भावना है।
2: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन श्रेष्ठ बनाने की इच्छा थी, देश की सेवा करने की इच्छा थी, तो बचपन में भी आपको ऐसा ही फील होता था। कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने?
3: हमने 12th किया था पढ़ाई
2: जी। तो घर की माहौल ऐसी थी या फिर आपको कहीं से ऐसी?
3: घर का माहौल नहीं, हमारा क्या है, बचपन से ही एक बिजनेस का संस्कार पड़ गया था। तो हमारे लौकिक भाई थे, वो M.Com किया था उन्होंने, लेकिन हमारा क्या है, एक बनिया क्वालिटी में आते हैं ना, उनको नौकरी बहुत कम मिल पाती थी उस समय। तो इसलिए हमने कि नौकरी करके क्या करना है, करेंगे तो बिजनेस ही करना है। तो इसलिए हमारे काफी साथी भाई बहन थे जो, तो वो सब माना थोड़ा ही पढ़ के अपने बिजनेस में लग गए थे
2: जी। आपकी सिस्टर कहाँ तक पढ़ाई की थी?
3: सिस्टर ने तो कुछ M.Com ऐसा कुछ MBA कुछ किया हुआ है, MBA किया हुआ है।
2: तो आप दो भाई एक बहन हैं?
3: हम दो भाई और छह बहन हैं।
2: छह बहने,
3: जिसमें एक की शादी नहीं हुई है, जो समर्पित टीचर बहन है, और बाकी जो सिस्टर हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान
2: से जुड़े हुए, अपना शादीशुदा जीवन जी।
3: जी जी, शादीशुदा जीवन जी करके वो ज्ञान में
2: चल रहे हैं
3: जी।
2: तो जैसे आपने कहा कि आपको ये ख्याल चलता था कि देश की सेवा करना है, ये आम जीवन मुझे नहीं जीना है, तो आपके जीवन में कोई आदर्श रहे जिनसे आप ऐसी प्रेरणा लेते थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित करते थे?
3: मुझे उस समय क्या है, बचपन था तो किसी से हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया कि भाई उनके साथ में रह करके और हम इस प्रकार से देश की सेवा कर सकें। तो वो संपर्क हमें ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो प्रेरणा मिली, वो हमें रास्ता मिला, तो उस प्रकार से हम उस रास्ते पे आकर के और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे।
2: नहीं, बचपन में आपको क्यों लगा मुझे देश की सेवा करनी है?
3: क्योंकि केवल दुनिया में जीना है तो केवल अपने स्वयं के लिए जीना होता है, स्वयं के परिवार के लिए जीना होता है, लेकिन हमारा संकल्प हम देश के लिए जिए।
2: तो बचपन में आपको ऐसा फील होता था
3: ये?
2: तो मतलब आपने कोई मूवी देखी थी या किसी फौजी को देखे थे?
3: मूवी वगैरह तो देखता था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है उसी का, क्योंकि
2: नेचुरली आपको फील होता था
3: जी जी
2: ऐसा देश की सेवा करना चाहिए
3: जी जी
2: इस तरीके से। बहुत अच्छा। तो जब आपकी बचपन से ही ये देश की सेवा करने का इच्छा थी और आपको एक दिशा मिल गई वो सेवा की भावना को ब्रह्म कुमारी इसके आने के बाद, तो फिर ज्ञान जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है, इसके ऊपर निश्चय कैसे हुआ आपका?
3: उसके ऊपर निश्चय ये है कि भगवान हमें जो रोज मुरली सुनाता है, तो मुरली हम सुनते हैं और जो हमारे संकल्प आते थे तो वो संकल्प हमारे ऑलरेडी बाबा पूरा कर देता था। जैसे मान लो संकल्प तो अलग चीज है, लेकिन मैं 2003 की बात है समथिंग, तो उस समय ग्राम विकास अभियान की रैली निकल रही थी जो सारे विश्व में भ्रमण होता था, और माउंट आबू में उसका समापन समारोह था। तो उस समय मैं
2: पूरी भारत में वो रैली घूम के फिर माउंट आबू में समापन होता,
3: तो उस समय मैं वो गाड़ी को लेकर के माउंट आबू आने वाला था, तो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे थे उस समय। तो वहां पर एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ, तो उस समय क्या है, हम एक लोहे का पाइप जो बाबा की गाड़ी में झंडा लगाने के लिए लेके आ रहे थे, तो एक घर के आगे एक लाइन थी 33,000 KV की, तो उस लाइन से मेरा वो ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि यंग एज होती है इतना वो नहीं होता है, तो पाइप क्या है वो 3 फीट दूर से खींच लेता है। तो ऐसे ही मुझे वो 3 फीट दूर से वो पाइप खींचा, लेकिन मैं तो एकदम अचानक
2: मतलब बिजली खींच गई थी
3: जी जी, तो लाइट क्या है वो पाइप तो मुझे नहीं मालूम, मेरे के आगे तो एकदम अंधेरा हो गया बिल्कुल, केवल छाया चित्र रह गया आत्मा का। फिर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करंट लग गया और मेरा इस दुनिया से खेल अभी पूरा हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ गिर गया, और मुझे नहीं मालूम उस चीज का गिरने के बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो गिरे भी थे वो भी आत्मा महसूस कर रही थी। लेकिन उस समय मुझे बाबा की बात याद आई, बाबा ने बोला कि अंत समय में केवल मुझे ही याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसी समय में ये गिरने से पहले मैंने अपनी बुद्धि को और बाबा की याद से जोड़ लिया,
2: परमात्मा
3: की याद से जोड़ा, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ गिर गया। उसके बाद बताते हैं कि मेरे कपड़ों में भी आग लग गई थी, तो वहाँ कुछ भाई बहन थे तो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए थे, तो उन्होंने आग को बुझाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए, तो कहने का भाव ये है कि उसमें मुझे 6 महीना कंप्लीट ठीक होने में लगा, तो 3 महीना तो ज्यादातर हम बेड पे ही रहे और उसके बाद धीरे धीरे एक चलना सीखा, माना लाठी के सहारे, फिर धीरे धीरे अपने आप को माना ठीक हो पाए हम। तो उससे हमें विश्वास हुआ है, बाहर वाले भी दुनिया में भी लोग जब हमको देखने आ रहे थे हॉस्पिटल में, तो उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया होती है, परमात्मा की जो सेवा करते हैं तो उसमें परमात्मा भी हमें पूरा सहयोग देता है, और परमात्मा ने उस समय हमें उस जिंदगी को नया जीवन दिया। तो नया जीवन दिया तो हमें भी एक संकल्प आया कि हमें अभी पूर्ण रूप से देश की सेवा करनी है। फिर हम अपनी अच्छी तरह से ठीक हो गए और फिर हम बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिए।
2: जी, मतलब उस हादसे ने परमात्मा की महावाक्यों की सच्चाई आपको अनुभव कराई,
3: जी,
2: जिसे आपको विश्वास हुआ कि ये सत्य ज्ञान है और यही परमात्मा है,
3: जी,
2: और जीवन को उद्धार करते हैं।
3: जी,
2: तो ये फिर आप रिकवर हुए और सब ठीक हो गया, लेकिन समर्पित होने का ख्याल कहाँ से आया आपको?
3: समर्पित होने
2: घर में पिताजी का विरोध तो था ही ना।
3: समर्पित होने का मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने जीवन में बाबा के आगे माना एक यही संकल्प था मेरा, तो कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा करना वो उसके बस में नहीं है। तो वो मेरा एक संकल्प रहता कि सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाकी फल देने वाला भगवान है, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं मधुबन में भी जब आया था 2006 में, तो मैं बहुत सीधा सिंपल था, तो कुछ लोग बोलते थे कपड़े भी थोड़े वैसे पहने जाते, हमारी एक वो होता है रीति रिवाज होते हैं जो भी है, तो लोगों को थोड़ा वैसा लगता था। तो लेकिन हमारा एक संकल्प था सेवा करते जाओ, तो हम अपनी सेवा करते गए। और 2006 में हम जब आए तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जुलाई में आए थे, पहले सेवा करके गए ऐसे 6 महीने करके, फिर उसके बाद हम 2007 में भी सेवा करने आए, फिर 2008 में हमें स्पेशल निर्मल दादी, शांता मणि दादी जो है हमारी, उनकी सेवा के लिए स्पेशल हमको जून में 24 जून मम्मा डे के समय हम आए थे, और
2: शांतामणि दादी के पास,
3: जी, शांतामणि दादी के पास, निर्मल शांतामणि दादी, तो उनकी गाड़ी की रथवान के सेवा किया मैंने उनके पास। और हमारा अगस्त में ट्रायल फार्म भी भर गया, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे अचानक सब कुछ हो गया। तो मैं तो वैसे जो भी कुछ होता था, जैसे 2006 में मैं आया था सेवा में, तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा मुझे अब कहीं नहीं जाना है, बस मुझे आपकी यहीं सेवा करनी है। तो बस बाबा को ही मैंने योग में जब करते मेडिटेशन करते थे तो उस समय बाबा को मैं बता दिया, तो बाबा ने ऐसे फटाफट ये काम करा दिया मेरा।
2: तो आपको घर से छुट्टी मिल गई थी?
3: घर से हमारी माता जी तो हमारे पूरे सहयोगी थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा एंटी थे, तो पिताजी ने हमारे को यही बोला कि अगर आप दुकान पर नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे।
2: अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा,
3: प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको नहीं देना, आप हमें नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे कह करके उनको बता दिया, क्योंकि उस समय दुकान को छोड़ना, क्योंकि दुकान पे ज्यादातर हम ही पूरा संभालते थे, बाकी पिताजी थे और हमारे भाई थे, वो तो बाहर का कारोबार देखना वो रहता था उनका, तो इसलिए फिर मेरा संकल्प यही था कि मैं अपने लिए कमाऊं कि किसके लिए कमाऊं। भाई मैं तो अकेला हूँ, मान लो माँ बाप है, जिम्मेवारी थी वो तो हमारी चलो पूरी हो गई थी, वो माँ बाप की सेवा के लिए भी चलो हमारे भाई हैं या कभी कभी जाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझ करके हमारी जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने अपनी पूरी कर दिया, उसके बाद हम बाबा के घर में समर्पित
2: हो गए। तो फिर आप जब मधुबन आए समर्पित होने, उस समय क्या उम्र थी आपकी?
3: उस समय हमारी उम्र हो गई लगभग 30 साल।
2: 30 साल की उम्र में आप, जब आप 30 साल की उम्र में आए परमात्मा के घर में समर्पित होके सेवा करने के लिए, उस समय जो आप अपने आप को देखते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
3: उस समय काफी अनुभव हमको बढ़ता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आते हैं तो उस समय इतना हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं, धीरे धीरे जब यहाँ रहते हैं तो उस चीज का अनुभव बढ़ते, बड़ों से हमें पालना मिली। तो जैसे हमारे आदरणीय निरोल भाई साहब जो थे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी हम सेवा में रहे थे, रद्वान के रूप में भी सेवा किया था, और प्लस उनके अंग संग रह करके भी उनका साथ रह करके उनकी सेवा किया था। लेकिन बड़ों के साथ रह करके हमें दूसरों के साथ अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, तो भाई साहब ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा आपस में प्यार से रहने का होना चाहिए, कभी आपस में खटपट नहीं होना चाहिए। तो प्यार से रहने से वाइब्रेशन भी अच्छे रहते हैं, प्लस जो रहने वाले हैं वो भी उनका माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ खटपट अगर होती है, जैसे बाहर की दुनिया में भी देखा है, अगर घरों में कभी खटपट होती है तो वो वायुमंडल खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें जैसे कहा कि आपस में प्यार से रह करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं।
2: तो कोई ऐसी चीजें है जो आपको लगता है कि अगर मैं बाबा के घर में या मधुबन में नहीं आता, समर्पित नहीं होता, तो मेरा जीवन का ये भाग्य नहीं बनता या मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कभी नहीं हो पाता?
3: ये चीज तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाग्य नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को, तो मैं तो यही सोचता हूँ बाबा के ऊपर है, बाबा को जो करना है वो जाने। मैं काफी बार कभी कभी अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन करण करावन हार जो शिव बाबा है उसे क्या मंजूर है वो तो वो ही जानता है। तो हमने तो अपने जीवन बाबा के हवाले कर दिया, लेकिन बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने। बाकी हमने ये कभी संकल्प ही नहीं किया कि बाबा के नहीं बनते तो हमारा जीवन क्या होता, वो हमने कभी संकल्प नहीं किया।
2: हाँ, शुरू से आपको ये था मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस हो गया। बहुत सुंदर भाई जी, ये भी कितनी अच्छी सोच है कि सिर्फ मैं और परमात्मा, हमारा यही रिश्ता है। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी जब आपके परिवार वाले आपसे मिलते हैं, 20 साल से आप एक योगी जीवन जी रहे हैं और इस संस्था की जो मुख्य दादियां और भाई साहब थे उनके अंग संग रह करके आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो जब आपकी लौकिक परिवार अभी मिलते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं?
3: उन्हें यही एक अच्छा लगता है कि भाई देखो मधुबन में रह रहे हैं तो इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा सफल कर लिया। वहाँ की दुनिया में तो हालत खराब होती है, देखती हैं तो उन्हें एक ये चीज लगता है। दूसरा, हमारे फादर जो थे तो वो बाद में वो ज्ञान में आए तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होते गए। फिर मधुबन में भी आए तो मधुबन में भी उनको हमने सब घुमाया, तो माना एक जो उनके अंदर नेगेटिवता थी वो पूरा पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया, कि उनको भी लगा कि हाँ अभी अच्छी जगह रह रहे हैं। तो वो भी अभी जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया उनका, माना वो भी ज्ञान में काफी साल चले, 4-5 साल शायद मैं समझता हूँ, ज्यादा भी हो गया।
2: शरीर छोड़ने से पहले?
3: हाँ, शरीर छोड़ने से पहले लगभग 5-6 साल वो बाबा के यज्ञ में मुरली वगैरह रोज सुनना, गीत भी गाना बाबा के, वो उनकी लगन लग गई थी। हर गुरुवार को वो कुछ ना कुछ फल वगैरह बाबा के लिए लेके जाते थे।
2: बहुत सुंदर। बचपन में पढ़ाई करते हुए आपने दुनिया की महान आत्माओं को भी देखे होंगे, सुने होंगे, और आप जब संस्था में आए, यहाँ पे महान योगियों को देखा, आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
3: हमें तो यही लगता कि हमने जानकी दादी को भी साथ में देखा है, गुलजार दादी के पास जब भाई साहब के साथ में हम जाते थे ना, तो गुलजार दादी को भी हम एक बार ज्ञान सरोवर से नक्की लेके वगैरह गाड़ी से घुमाने लेके आ गए थे। तो उनका जीवन हमने जो देखा, एकदम वैराग्य वृत्ति होता है उनकी, दृष्टि वृत्ति कृति एकदम शुद्ध प्योर, क्योंकि उनके साथ जो भी मिलने सामने जाएगा तो पूरा एकदम संपूर्ण जैसे कहें तृप्त आत्मा हो जाती है, ऐसे उनका जीवन एक अनुभव होता है उनको। तो उनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी पहले से हमारी दादियों ने, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, तो उनकी तपस्या ही उनकी सेवा थी। क्योंकि बाबा भी हमेशा बोलता है ना कि आपके चेहरे से ही सेवा हो, तो ऐसे ही हमारी दादियां जो थी, हमारे बड़े भाई थे, भाई साहब थे, तो उनके चेहरे से ही बाबा की सेवाएं अनेक होती हैं, और हमें उससे ही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भी इसी प्रकार से योग तपस्या के माध्यम से ही अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जिससे सामने वाले को भी वो चीज अनुभव हो।
2: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन में कब और कैसा महसूस हुआ कि यही जीवन है, इसे ही जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? कोई ऐसा मोमेंट या कोई पल रहा जो आपको महसूस हुआ कि हाँ यही जीना इसी का नाम है, इसे कहते हैं?
3: मैं जब ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा था तो उस समय तो हम मंदिर वगैरह में भी जाते थे कभी कभी, कोई कोई धर्म के कार्य भागवत हो रहे हैं या जो भी होता है, तो उससे भी भावना वो रहती थी मंदिरों में जा कर के। तो फिर जब ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो हमने अपने आप को ओनली कोई संकल्प नहीं रखते थे, बस बाबा की सेवा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। जो बाबा की सेवा मिलती थी, हमारी ज्यादातर पहले शुरू शुरू में रथवान गाड़ी चलाने की सेवा रहती थी, तो गाड़ी से जो भी गेस्ट आते थे उनको अहमदाबाद लाना, उदयपुर से लाना, छोड़ना, ऐसे करके स्टेशन कभी छोड़ना। तो जो लोग हम सेवा करते थे तो वो लोग के अंदर से यही भावना निकलती थी कि ये लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं रहता है इनका, तो वो लोग भी काफी संतुष्ट होकर के जाते थे। तो हमारी यही भावना रहता है कि हम कभी किसी की सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हमने नहीं कभी सोचा।
2: बहुत सुंदर भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या सेवा करते हैं मुख्यालय में?
3: वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी जनरल निर्वर भाई साहब जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद, तो हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हमारी आदरणीय शशि दीदी जो पांडवन को संभालते हैं, तो उनके द्वारा हमें जो भी गाड़ी अरेंजमेंट करने की सेवाएं रहती हैं तो उनको हम फिर गाड़ी अरेंज कराते हैं। और फिर उसके बाद कभी हमको भी जाना होता है, किसी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको लाना ले जाना, प्लस हमारा महादानी कॉटेज जो है जो उनके मार्गदर्शन में ही उनके निमित्त है, तो उसको संभालने के लिए हम निमित्त बनाया हुआ है बाबा ने।
2: बहुत सुंदर, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप कारोबार देखते
3: जी,
2: हैं
3: जी।
2: बहुत सुंदर भाई जी, तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक योगी का जीवन या एक योगी, एक आदर्श जिसे हम कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके से जीवन जीऊं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
3: मेरा तो यही एक मानना है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर जन्म लिया है तो इस जीवन को जितना भी हो सकता है दूसरों को सुख देने का काम करें। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतना आपकी पुण्य की पूंजी कहें, दुआएं कहें, वो आपकी जमा हो जाएंगी, और वो ही दुआएं आपको जन्म जन्म वो आपके काम आती हैं। तो हमारा तो यही एक संकल्प है कि जो भी भाई बहन इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, और ब्रह्म कुमारी का जो हमने चुना है तो उसे भी अपने जीवन में, अगर कुछ हमारा मेडिटेशन होता है राजयोग के द्वारा, तो उसको भी अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा, और आपकी जो गृहस्थ जीवन भी कहें, जो गृहस्थ जीवन वाले भी हैं, और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आज आप अपनी अमूल्य समय लेकर के हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए। जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपके योगी जीवन की उन जीवन के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
3: थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से। अभी तक आप सुन रहे थे श्याम भाई जी को, जो ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ और उनके जीवन के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आप सभी का. और आप सभी ट्यून इन कर रहे हैं कार्यक्रम नई दुनिया में. मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्री और मेरे साथ हैं मेरे साथी आरजे आरुषि जी. स्वागत है आरुषि जी आपका.
1: थैंक यू सो मच. नमस्कार सभी दोस्तों को और नमस्कार आपको भी श्री जी.
0: तो क्या हाल चाल है हमारे माउंट आबू के, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं. ये नई दुनिया नया जमाना में नया मौसम है.
1: बिल्कुल, मेरे ख्याल से पर्यावरण का जो विषय है हर साल मन में आता भी है, गहराई से चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में.
0: बिल्कुल. तो दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम लेकर आए हैं कार्यक्रम नई दुनिया. और जैसे आप जानते हैं कि हम उन लोगों से आपकी खास मुलाकात करवाते हैं जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में, एक नई दुनिया बनाने में कार्यरत हैं. हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर हम में से बहुत सारे लोग उन समस्याओं को देख के अनदेखा करने वाले होते हैं. कुछ लोग उन समस्याओं को देखते हैं और जब भी सामने आती हैं वो समस्याएं तो उन समस्याओं को कोसते रह जाते हैं कि ये समस्या ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. और हमें से कुछ लोग इन समस्याओं को दूसरों के सिर पर मढ़ देते हैं कि भाई इनके कारण से ये हो रहा है, ये समस्या की जड़ है. मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो समस्या को समस्या समझकर उसके समाधान खोजने और उस समाधान के स्वरूप बनने का प्रयास करते हैं. ऐसे ही कुछ खास लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे. आज हमारे साथ स्टूडियो में साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुंद्रा जी. मनीष कुंद्रा जी वैसे तो पेशे से ये नोकिया में काम करते हैं और नोकिया में जब आप सुनते हैं

0: मौसम के हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं, ये स्वाभाविक है कि हम अपनी तैयारियां करते हैं। वैसे जैसे अगर आप बाहर के जो परिवर्तन देख रहे हैं, अभी पर्यावरण में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए तो अब हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके नाम में भी ये शब्द जोड़ दिया गया है, क्लाइमेट चेंज। तो आप क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, आपका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है? और क्योंकि आप तो नोकिया में काम करते हैं, पर्यावरण से आपके इस संबंध की शुरुआत कैसे हुई, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के प्रति आपकी आसक्ति कब शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: ओके, बेसिकली पर्यावरण के बारे में मैं बोलूंगा कि कोई लगभग 7-8 साल पहले अपने जो हमारे आसपास के पार्क हैं उसमें हम देखते थे कि कुछ एक बुजुर्ग हैं जो पार्क में अकेले लगे हुए हैं, पेड़ों की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए। फिर हमने पेड़ लगाने से शुरुआत किया। उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमारे आसपास जो कूड़े की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जब भी हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं या किसी भी शहर में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्वागत है वो एक बड़े कूड़े के पहाड़ से होता है। तो उसके लिए फिर हमने सोचना शुरू किया और हमने फिर देखा कि जो ये कूड़ा है ये हमारा ही कूड़ा है, हम ही जनरेट कर रहे हैं और इसका समाधान भी हमारे पास ही है। और आपने जैसे क्लाइमेट चेंज की बात की तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे जो महासागर है, समुद्र है, उनका है, क्योंकि ये जो जितना कूड़ा है अल्टीमेटली ये समुद्र में जाके मिल जाता है। और किसी भी जो हमारी पृथ्वी सिर्फ 30% है तो उस पे जो ओशियंस का क्लाइमेट के ऊपर एक मेजर रोल है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे साइक्लोन्स जनरेट हो रहे हैं तो वो उसका एक मेजर वो है क्योंकि जो समुद्र के उसमें बदलाव आ रहा है और वो हमारे को लैंड पे इम्पैक्ट कर रहा है। जो हमारी बारिश होती है, सब कुछ होता है, वो सब अल्टीमेटली जनरेट समुद्र से होता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं लगभग 50% जो है वो हमें समुद्र से मिलता है। और आज की डेट में आप देखें तो प्लास्टिक पोल्यूशन एक मेजर कॉज है ओशियंस में, और इससे लैंड का क्लाइमेट ही नहीं बल्कि ओशियंस में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी जीवन बहुत बड़े एक खतरे में आ गया है। और अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की भी बात कर रहे हैं तो जो अल्टीमेटली ओशियंस लेवल रेज करने में काफी ज्यादा आई वुड से कि वो उसका इम्पैक्ट है।
0: जी, ये जो बात आपने बताई कि हम सागर की तरफ अगर हम देखें कि हमारा सारा कचरा एंड में जाकर सागर में मिलता है, ये अपने आप में एक नई बात है, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। और ये जो बात आपने अभी बताई कि जितनी धरती पर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन भी लगभग 50% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलता है। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो जंगलों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और हाल ही में अमेजोन में जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन में जो वर्षावन है दक्षिण अमेरिका में, वो सारी दुनिया के लंग्स के रूप में काम करता है ऐसा हम कहते हैं। जब लगभग 30% ऑक्सीजन जो है वो अमेजोन से मिलता है ऐसा हम समझते थे, ये नई बात है। इसके बारे में बताइए कि समुद्र से कैसे ऑक्सीजन मिलता है, ये तो हमने कभी कम ही लोगों ने इसके बारे में सुना होगा।
1: ओके, बेसिकली समुद्र में एक तो जो एक इम्पैक्ट तो ऑक्सीजन का है, जो वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता, बेसिकली जो ओशियंस का फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ही ह्यूज और वास्ट है। अगर आप बेसिक भी देखो कि 70% जो पानी है तो जो उसमें वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना है वो बहुत ही ह्यूज है। जो हम एल्गी पॉपुलेशन वो सब देखें वो उस सरफेस एरिया उसका बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने की क्षमता है वो भी उनमें बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली प्लांट्स भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, आई वुड से पृथ्वी पे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप, बहुत सारी रिसर्च है इस पे कि जो ओशियंस का कितना इम्पैक्ट है मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस के लिए।
0: जी, पहले तो ये एक गहरा सब्जेक्ट है, इस विषय पर आपने बहुत गहरे से जानकारी दी। आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने इस विषय पर अध्ययन किया है, आप क्या करते हैं पेशे से, उसके बारे में भी हमारे दोस्तों को कुछ बताएं।
1: हाँ जी, पेशे से तो मैं एक बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मैंने 1995 में आई वुड से डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ गए थे, तो ऑलमोस्ट 26 साल से हम टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं। बट जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा इंटरेस्ट, इस पर हमने काम करना शुरू किया। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों से प्रेरित होकर हम पेड़ पौधे लगाने से जुड़े,

0: पे फिर और भी बड़ी बड़ी समस्याएं जो एनवायरनमेंट की हैं वो नजर आने लगी। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में श्री भाई आपने कहा था कि बहुत लोगों को नजर ही नहीं आता, आपने देखा होगा कि सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, वो बहुत सारे 95% लोगों को नजर ही नहीं आएगा, उनको दे आर वो क्या हम कहते हैं कि दे आर ब्लाइंड टू इट। अब लेकिन जैसे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ती है फिर उनको नजर आना शुरू होता है, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कमिटीज पे और डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज पे डालना शुरू कर देते हैं कि ये तो उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। तो इसको हमने थोड़ा स्टडी किया, तो इसमें एक तो बेसिकली मेनली है कि अवेयरनेस जब जागती है तो लोगों को पता लगना शुरू होता है कि हमारा ही कचरा है, हमें ही साफ करना है। और तो मेनली जैसे हम लोग एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उसमें एट सोर्स हम किस तरीके से अगर कूड़ा अलग अलग कर लेते हैं तो जो समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरा हम लोग ट्री प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेनली मियावाकी टेक्निक है जो एक जैपनीज पद्धति है उसको यूज करते हैं, इसको अर्बन एफॉरेस्टेशन टेक्निक भी कहा जाता है जिसमें एक बहुत छोटे से एरिया में पेड़ लगाए जा सकते हैं। और फिर देन थर्ड आता है एक इको ब्रिक्स जिसमें हम मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक या MLP जिसको बोलते हैं मल्टी लेयर प्लास्टिक, उससे हम इको ब्रिक्स बनाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे बेसिकली हम एक ऐसा सोल्यूशन मोड हमने मतलब काम करना शुरू किया। तो साथ में बेसिकली हम लोग भी, मैं बोलूंगा कि हम लोग ही सीख रहे हैं, तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो हमें और भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसे अभी मुनीष जी से बात करते हुए ये चीज सुनने को मिला कि भाई हम में से ज्यादातर लोगों को सड़क पे जो कचरा है वो चीज हम देखते ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता है। मैं आपको बता दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले की बात है कि माउंट आबू में एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया गया। जो माउंट आबू के अलग अलग संगठन हैं जैसे ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान सरोवर परिसर रहा, शांतिवन परिसर रहा, माउंट आबू में CRPF का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है तो CRPF के जवान, माउंट आबू के नगर पालिका, होटल एसोसिएशन इत्यादि, ऐसे आर्मी और एयरफोर्स, इतने सभी संगठनों ने मिलकर, बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों, स्कूल्स, NGOs ने मिलकर आबू रोड से लेकर माउंट आबू जाने वाली जो सड़क है, तलहटी से लेके माउंट आबू टोल नाके वाली जो सड़क है, उस पूरे सड़क के किनारे जो भी कचरा था उस सारे कचरे को इकट्ठा किया और सड़क को एकदम चकाचक साफ सुथरा कर दिया। और मैं यात्रा कर रहा था माउंट आबू से नीचे की ओर आ रहा था, तो मैंने जब सड़क देखा तो मैं अचानक से हैरान हो गया कि शाम के 5 बजे सड़क ऐसी साफ सुथरी कैसे हो गई। और फिर जब मैंने पूछा क्या हो रहा है तो फिर मुझे पता चला कि आज पूरे दिन क्लीनलीनेस ड्राइव चला है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, माउंट आबू के नागरिकों ने मिलकर ये काम किया है और ये सफाई देखने को मिली। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे हाथ में है कि हम अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखें। जैसे कचरा प्रबंधन की बात होती है कि वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, आरजे आरुषि आपने भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहां पर लोग प्रयास करते हैं तो सफाई हो जाती है।
2: बिल्कुल, और ज्यादातर देखा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत जागरूक भी हैं आजकल। और मैं यहाँ एक सवाल एक्चुअली पूछना जा रही थी मनीष जी से कि जैसा उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सीखा उन्होंने और उनसे भी लोग सीख रहे हैं आगे, जब यहाँ पे आबू के कुछ यूथ मिलते हैं वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, आगे कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर और ट्रेनिंग की आवश्यकता है या और कुछ सीखना है कि वो प्लास्टिक है उसका और क्या बनाए, वो कई चीजें क्रिएटिव भी कर रहे हैं, उनके साथ सफाई भी कर रहे हैं, पर उन्हें अधिक ट्रेनिंग की या फिर और कुछ सीखने की जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं मनीष जी?
0: ओके आरुषि जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और बेसिकली थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो जो ड्राइव था तो फॉर्चुनेटली सौभाग्य से हम लोग भी उस दिन वहीं पे थे तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो जो शांतिवन सेंटर से जो ब्रह्म कुमारीज के लोग गए थे तो हम भी उसमें थे, तो मैं कहूंगा कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उस दौरान हमने देखा था कि रास्ते में काफी हद तक प्लास्टिक्स हमें काफी मिला था, मेनली चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट, और काफी लोग जो गुटखा खा के पैकेट्स फेंक देते हैं, बॉटल्स, तो इस तरीके की चीजें बहुत वहां मिली थी। तो एक तो बेसिकली डेफिनेटली जब ऐसी ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं तो उस समय जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको उस प्रॉब्लम का एक तो पता चलता है कि ये कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तो ये मे बी गिल्ट भी होता है कि कहीं कभी हमने भी ऐसा किया है कि हमने भी बिना सोचे समझे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं और वहाँ हम बहुत सारा कचरा छोड़ के आते हैं। तो ऐसी ड्राइव्स अगर रेगुलर कंडक्ट हो तो काफी इम्पैक्टफुल होता है, लोग मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ के आते हैं। और जैसे कि आपने यूथ का बात किया कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो मैं बोलूंगा कि जितनी अवेयरनेस ड्राइव्स वो क्रिएट कर सकते हैं, अब हर किसी का एक अपना एक एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है, उनका एक सोशल सर्कल है, तो अपने सोशल सर्कल में एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, अब ये एक इंडिविजुअल एफर्ट से काम नहीं चलेगा, अब एक मास मूवमेंट की तरह ये एनवायरनमेंट पे काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम बहुत क्रिटिकल उस पे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। और इसके लिए जैसा कि सॉल्यूशंस की बात करें, तो हमने देखा कि जो इको ब्रिक्स एक बनाने का तरीका है वो एक सिंपलेस्ट तरीका है जो हर कोई इंडिविजुअल अपने घर में कर सकता है। जैसे हमने बहुत सारे सेशंस स्कूल्स में कंडक्ट किए, इवन माउंट आबू में कुछ स्कूल्स हमने सेशन कंडक्ट किए, तो ये इको ब्रिक्स जो है बच्चे भी अपने घर में बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जिसके लिए इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए, जैसे आप प्लास्टिक अगर इकट्ठा करते हैं तो आप उससे ब्रिक्स जो एक टाइल्स होती है पेव टाइल्स बना सकते हैं, या और भी उसको रिसाइकिल करके दोबारा से यूज किया सकता है, बट वो सारे इंडस्ट्रियल एफर्ट्स है। तो हम लोग अगर ध्यान दें कि एक बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन कि आपने एक प्लास्टिक की बॉटल देखी रास्ते में और उसमें आपने प्लास्टिक भरना शुरू कर दिया, तो उससे आप बेसिकली मैं बोलूंगा हर कोई उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट डेफिनेटली जैसे यूथ की बात करें, जो कुछ इनोवेटिव लोग हैं जो कुछ इसको ऐसे प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो उस पे आप काम कर सकते हैं।
2: जी अमीशी, जैसा आपने इको ब्रिक्स के बारे में बताया, तो प्लास्टिक उसके अगर आप थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप बता पाए कि कितना स्टफ करना है ज्यादा या कितना स्पेस रखना है। मेरे ख्याल से उसके बारे में सुना होगा, कहीं कहीं कोई शब्द सुने होते हैं, हमें मालूम नहीं होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
0: ओके, जैसा कि ये एक इको ब्रिक है जो हमने बेसिकली घर पे बनाई है, और मैं कहूंगा कि हमारे हर रूम में इस तरीके की खाली बॉटल रहती है, और जैसे हमारी गाड़ी में रहती है, किचन में एक हमने रखा हुआ है, तो कोई भी जो हमारा घर से प्लास्टिक निकलता है तो वो हम उस बॉटल में डाल देते हैं। अब इस बॉटल के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स की चीजें दिखेंगी, जैसे इसमें बिस्किट के पैकेट भी हैं, जो दवाइयों का रैपर्स बच जाता है वो भी है, चॉकलेट और टॉफीज के पैकेट्स भी हैं। तो किसी भी टाइप का जो मोस्टली प्लास्टिक जो हमारा जो रिसाइकलर है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली हम कबाड़ी वाला या रद्दी वाला बोलते हैं, वो नहीं ले जाता, उसको हम इस बॉटल में डाल सकते हैं। और बनाना बहुत ही आसान है, इसमें डाल के आपको एक स्टिक से इसको प्लास्टिक को पुश करना है ताकि ये एकदम टाइट हो जाए, और उसके ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो ये फिर प्रेस नहीं होगी, तो इतनी टाइट हो जाती है। तो जब ये टाइट हो जाती है तो फिर एक तरीके से हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने दिल्ली में बहुत सारे लोकेशन पे इससे बेंच बनाए हैं, कुछ घर में रखने के लिए स्टूल्स भी बनाए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में इससे वॉल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि ये एक स्टिक है, नॉर्मल स्टिक आप ले सकते हैं, तो मैं इसको एक जादू की छड़ी बोलता हूँ, जिससे ये जो प्लास्टिक का जिन है इसको वापस उल्टा हम इस बोतल में घुसाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल टाइट पुश करेंगे, तो अभी मैं इसको प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इस तरीका का आप कर सकते हैं। और ये मेरा एक ये छोटा मैं बोलूंगा अलादीन का जिन अभी तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर हम अभी वापस जिन को डाल रहे हैं।
2: बहुत ही कमाल की बात है मनीष जी, क्योंकि प्लास्टिक हर घर में हमें लगता है कि क्या करें, ये सवाल आता है जब भी हम सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। जी मनीष जी, जैसे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे एक सवाल भी आया, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अतुल जी है, वो हमसे पूछ रहे हैं, सिंस वी आर डंपिंग मच ऑफ आर वेस्ट इन ओशंस, डस दिस अफेक्ट्स द सैलिनिटी एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द ओशन बायोमास?
0: या बेसिकली अभी हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक ओशियंस में डंप कर चुके हैं, तो पैसिफिक ओशियन में मेनली जैसे एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहाँ पे आपको सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा, और वहाँ का एक तरीके से लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो अगर हमने सरफेस पे पूरा प्लास्टिक डाल दिया तो नीचे का जितना लाइफ जो पहले था वो पूरा खत्म हो गया है। तो डेफिनेटली जो वहाँ का फ्लोरा फौना कुछ भी है, तो एक तरीके से हमने मतलब किसी का अगर हम गर्दन दबा दें और सांस ना ले पाए तो अल्टीमेटली वो मर जाएगा. तो यही हाल हमने ओशियंस का कर दिया है कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक सिर्फ प्लास्टिक फ्लोट हो रहा है और जो नीचे जितनी फिशेस या और भी दूसरी लाइफ है वो सारी खत्म होती जा रही है. तो डेफिनेटली आवर वेस्ट इज इम्पैक्टिंग द लाइफ इन द ओशियंस.
1: जी.
0: और सैलिनिटी, इन्होंने जो अतुल जी ने सैलिनिटी की बात किया, देखिए वो तो नमक जो है वो तो हम जैसे नदियों से जितने मिनरल्स आ रहे हैं उससे हो रहा है, बट ऑक्सीजन प्रोडक्शन डेफिनेटली विल बी इम्पैक्टेड क्योंकि वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना है वही सारा ऑक्सीजन जो मैं बोलूँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम उनको खत्म कर देंगे तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा.
1: जी मनीषी, एक चीज जो आप अभी बता रहे थे उससे ये चीज समझ में आती है कि हम जो डे टू डे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका असर समुद्र पे देखने को मिलता है और ऐसे किलोमीटर दर किलोमीटर प्लास्टिक तैरता हो जब समुद्र में पाया जाता है तो उसके नीचे के जीव जंतुओं पे उस पर उसका असर होता है. तो ऐसे में कितने लोग इस चीज के बारे में सजग होते हैं कि हाँ ये हमारी वजह से हो रहा है? क्या मैं जो एक प्लास्टिक का पीस यहाँ से उठाकर कार के बाहर फेंक देता हूँ या खिड़की के बाहर डाल देता हूँ, क्या वो समुद्र तक की यात्रा कैसे तय करेगा?
0: आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया. ये नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को जब स्कूल्स में हम सेशन कंडक्ट करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि मैंने प्लास्टिक फेंका तो ये समुद्र तक कैसे पहुंचेगा. तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हवा से उड़ के जाएगा. अब वो हवा से उड़ के कैसे जाएगा? हवा से उड़ेगा जो नियरेस्ट नाली है वो नाली के पास जाएगा और वो जो नाली है वो किसी बड़े नाले से कनेक्ट होती है और वो नाला हर शहर में किसी ना किसी नदी से कनेक्ट होता है और अल्टीमेटली जो नदी है वो किसी समुद्र या सागर से कनेक्ट होती है. तो इस तरीके से जो हम छिलका कार से बिना सोचे समझे फेंकते हैं वो उड़ के किसी ना किसी तरीके से वो एक समुद्र तक पहुंचता है. और अगर आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो मेजर सोर्स हैं आज की डेट में प्लास्टिक पोल्यूशन का. मतलब भारत में ही जो मेन हमारी गंगा नदी है और भी जो बड़ी नदियां हैं वो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ओशियन पोल्यूशन में.
1: जी इससे पहले कि मैं एक और प्रश्न लूं, हमारे साथ मधुकर जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं. मधुकर जी स्वागत है आपका रेडियो मधुबन पर.
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन के लिए. सो ये मेरा पहला शो है रेडियो मधुबन के लिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड और थैंक यू वेरी मच.
1: जी मधुकर जी अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को कि आप कहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली और आपका पर्यावरण के साथ संबंध कैसे शुरू हुआ?
3: हाँ जी, मैं वैसे दिल्ली से हूँ बट मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो ऋषिकेश में हुआ है और अभी मैं देहरादून में हूँ. ये जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो देहरादून में हूँ मैं और दो दिन पहले हम लोग माउंट आबू में ही थे. तो ये तो मेरा वैसा मतलब जनरल बैकग्राउंड हो गया. बाकी मैंने कॉरपोरेट में 23 इयर्स काम किया है एंड देन लेटली आई रियलाइज कि एनवायरनमेंट पे काम करने ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरह से हम अभी डेली लाइफ में कॉरपोरेट के अंदर या अपने काम के अंदर रहते हुए एनवायरनमेंट बचा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है. जो प्रॉब्लम जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से कार्बन एमिशन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो पिछली रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन की उसके हिसाब से 2020 में ये कार्बन एमिशन का लेवल जो है पीक पे पहुंचना चाहिए था और उसके बाद में डिग्रेडेशन शुरू होना चाहिए था. जो लास्ट COP जो हमारी मीटिंग्स हुई थी उसके हिसाब से कुछ प्लान बनाए गए थे बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये कार्बन एमिशन जो है ये पीक पर नहीं पहुंचा है, अभी भी ये बढ़ रहा है और जो इसका गैप है वो बढ़ता जा रहा है. जिस वजह से हमारा ये जो तापमान है, जगह जगह शहरों का तापमान बढ़ रहा है और हम इसको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बोलते हैं. अगर अभी हमने इस पे कंट्रोल नहीं ले लिया तो अगले 10 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना तो श्योर है और उसकी वजह से फिर कुछ सिटीज और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको आपदा की तरह आ जाएगा कि वहाँ पानी का लेवल बढ़ ही जाएगा क्योंकि ये तापमान बढ़ने से आपके अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल रही है. अब ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हम अब तक करते आए हैं उसको हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा अपने एफर्ट्स को. तो इसी चैलेंज को देखते हुए मैंने फिर अपना कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ दिया 2019 में। तब से मैं फिर ये एनवायरमेंट का काम फुल टाइम कर रहा हूँ।
1: वाह, बहुत ही खूबसूरत बात है जो आपने अभी ये बात कही मधुकर जी, कि चीजों को समझकर फिर उस पर कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है, उस परिवर्तन की शुरुआत आपने अपने लाइफ में कर ही दी है और आप पर्यावरण के लिए फुल टाइम अभी काम करने लगे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये जो चीजें देखते हैं आसपास, हम ये सुनते हैं कि अभी पर्यावरण का कॉन्फ्रेंस हुआ, COP26 ग्लासगो में हुआ, हम न्यूज़पेपर इत्यादि में, मीडिया वगैरह में पढ़ते हैं कि हाँ ये 1.5 डिग्रीज है, ये बढ़ रहा है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई ये तो चलो सरकारें काम कर रही हैं, ये सब कुछ तो हो रहा है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, मुझे क्या करना चाहिए? उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न उठता है कि क्या किया जा सकता है। आप ऐसे में क्या एडवाइस करते हैं लोगों को जब आम लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो?
3: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके अंदर में जो कारें काम कर रही हैं या इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनके ऊपर डेफिनेटली सरकार उनके ऊपर नजर रखे हुए है, और जिस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जीज, इसमें इंडिया ने काफी अग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो वो है काम सरकार का। तो हमारा जो काम है, हम अपनी कैपेसिटी में एक तो अपना कार्बन फुटप्रिंट वो जरूर चेक करें। काफी वेबसाइट्स हैं जो ये बताती हैं कि हम किस तरह जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम कार्बन का उत्सर्जन कितना कर रहे हैं, किस तरह का हम व्हीकल यूज करते हैं, किस तरह का हम फ्यूल यूज करते हैं, हमारा जलाने का क्या तरीका है, हम LPG या लकड़ी जला रहे हैं, इस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब के पीछे फॉसिल फ्यूल यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो वो अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक करें और फिर उसको कम करने की शुरुआत करें। तो ये अपने लेवल पे लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने कंपोस्टिंग एट होम, जो घर में आपके घर का जो कूड़ा निकलता है उससे आप खाद बनाएं, ये भी एक आइडेंटिफाइड सॉल्यूशन है। इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी ऑनलाइन। तो इसमें 1 kg मतलब 1 kg फूड वेस्ट से आप 2.5 kg CO2 एमिशंस बचा सकते हैं अगर ये हमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये लैंडफिल में जाएगा, और लैंडफिल से ग्रीन हाउस गैसेस जो बनती हैं इसके कंपोजिशन से, जब ये वहां पे प्लास्टिक या दूसरे टॉक्सिक मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। तो ये बहुत ही आसान सरल तरीका है पर्सनल कंट्रीब्यूशन का, कि लोग अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, घर के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे, जो भी हमारा गीला कूड़ा निकल रहा है वो खाद बनाए। इसको हमें एक मुहिम की तरह लेना पड़ेगा। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड्स में देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, वहां पर ये तकरीबन वो 30 साल पहले से ये चीजें करते आ रहे हैं, उनमें काफी अवेयरनेस है और अपने नेचर के प्रति उन लोगों का काफी लगाव भी है। लगाव हमारे यहाँ भी है, हम लोग तो पूछते ही हैं, मतलब हम सूरज को भी पूछते हैं, पेड़ को भी पूछते हैं, हम गाय को भी पूछते हैं, लेकिन गाय जब प्लास्टिक खाती है तो वो फिर हमें दिखता नहीं है। हम सोचते हैं हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्लास्टिक में होता है तो ना वो गाय के लिए अच्छा है ना एनवायरमेंट के लिए। और वो मतलब आप अगर ऐसी रिपोर्ट्स देखेंगे, कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि गाय का ऑपरेशन किया गया तो 50 किलो तक प्लास्टिक उसके पेट में से निकला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हमें अपने ही स्तर पे करना पड़ेगा। कुछ ये छोटे छोटे कदम हैं, प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें, अल्टरनेटिव्स को यूज करें और खाद जरूर बनाएं। इन दो चीजों पर मैं फोकस करूंगा।
1: बहुत ही खूबसूरत बात मधुकर जी आपने बताई कि ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं, कि हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें, अपने घर में जो चीज वेस्ट जा रही है, जो खाना बच रहा है, उसको हम कंपोस्ट पे डालें। तो बायो कंपोस्टिंग से बहुत सारी चीजें आसानी से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए। हम अभी मनीष जी से भी बात कर रहे थे और वो हमें ये चीज बता रहे थे कि जैसे प्लास्टिक है एक बहुत बड़ी समस्या है, और उस प्लास्टिक के सही निस्तारण को, यानी उसको कैसे सेग्रीगेट करके हम उसको कैसे रिसाइकलिंग तक भेजें, अगर नहीं भेजते हैं तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उस कचरे को हम मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे थे। मैं मनीष जी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिस पर मधुकर जी उदाहरण दे रहे थे कि घर पे बहुत सारी वेस्ट है, उन सभी चीजों को अगर हम पहले सेग्रीगेट करना शुरू करें तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये जो बता रहे थे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है एक बहुत बड़ी समस्या है और आप उसके इको ब्रिक्स बनाने के बारे में लोगों को बता रहे थे कि जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो उस इस्तेमाल को हम पूरी तरीके से अगर हम सही से मैनेज नहीं कर सकते

0: कम से कम इतना तो किया जा सकता है। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी मैं लेना चाहूंगा कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा, मतलब मैं अगर ये करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब लोग आपको ये कहते हैं तो?
1: ओके, अगर महात्मा गांधी ने भी ये बात सोची होती तो शायद हम लोग की आज कुछ और ही हिस्ट्री नहीं होती। तो एक अगर इंसान पहला स्टेप ले तो वो बहुत कुछ चेंज डेफिनेटली कर सकता है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनती है, तो कई बार एक स्टेप एक रिवॉल्यूशन ले आता है, ला सकता है। और कहीं पे भी मैं बोलूंगा कि एक की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और क्या होता है कि मे बी हम लोग बहुत बार ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है और वहां से वो लोग कुछ और मे बी डिफरेंट या बेटर सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें प्रेरणा मिली थी एक बुजुर्ग आदमी से जो अकेले सुबह 5 बजे पार्क में अकेले वो पेड़ों की खूब सेवा करते थे, अकेले खोदते रहते थे, पानी देते थे। तो उनसे जब हमने प्रेरणा ली तो आगे जाके हमारे साथ हमने भी काम करना शुरू किया और हमारे साथ फिर और लोग जुड़ने शुरू हुए। और जैसे अब मधुकर जी ने अकेले अपनी एक मुहिम छेड़ी, उन्होंने जॉब छोड़ी और फिर अपना एक एनजीओ भी उन्होंने जिसपे काम कर रहे हैं, और उससे भी बहुत लोग प्रेरणा लेके आगे आ रहे हैं। जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो काफी बच्चे जुड़ रहे हैं और उनको भी काफी अब एक एक्साइटिंग एक्टिविटी लगती है कि जो प्लास्टिक्स के लिए जैसे हमने इकोब्रिक्स का सोल्यूशन देखा। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसकी खोज हमने की, ये बहुत सारे कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, अफ्रीका में और इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत सारी कंट्रीज में इस पे काम हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको एक तरीके से पिक किया कि और ये हम लोग 2019 एंड में उत्तराखंड में जैसे घूमने के लिए गए तो वहाँ हमने देखा कि ये प्लास्टिक्स काफी फैला हुआ है, तो वहाँ थोड़ा हमारे को प्रेरणा मिली कि इसका सोल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। और इकोब्रिक्स बहुत अच्छा सिंपल सहज तरीका है इस सिंगल यूज प्लास्टिक को अरेस्ट करने के लिए। और एक इसका बहुत बड़ा पहलू ये है कि ये जो छोटा छोटा प्लास्टिक है इसको रिसाइकलर भी लेके नहीं जाता, क्योंकि किसी चीज को यूज करने के लिए आपको उसका वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इकोब्रिक्स एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि आप सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। और ये एक अपसाइक्लिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आज सपोज आपने इको ब्रिक्स इकट्ठी करके एक बेंच बना लिया और कल को आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो उसको डिसमेंटल करके वो ब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि तो डीके नहीं होता, सालों साल तक रहता है वो, तो वही स्ट्रेंथ हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हमारे लिए जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो उसको हम सॉल्यूशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है, बट वो है ये है कि उसको हमें एक ही जगह पे एकत्रित करना है।
0: जी, एक प्रश्न हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप रेडियो को लाइव सुन रहे हैं, रेडियो मधुबन पर आप फोन कर सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर 9414151415 पर। और आज हम बात कर रहे हैं मुनीश कुंद्रा जी से और मधुकर जी से, जो आज नई दुनिया में हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त रेडियो मधुबन कर रहे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर वो कुछ बताना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि इको ब्रिक्स कैसे माइक्रो प्लास्टिक्स की समस्या को हैंडल करने में इफेक्टिव है, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं अतुल जी।
1: ओके, सो इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माइक्रो प्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं वही तरीके से जो स्टैंडर्ड प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं उसका एक डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है। तो अगर हमने जो प्लास्टिक हमने यूज किया तुरंत अगर उसको हमने कैप्चर कर लिया एक बॉटल में, एक इको ब्रिक जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिट्टी में या पानी में घुलेगा नहीं। नॉर्मली आज की डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक है ये डिसॉल्व हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कोई प्लास्टिक सॉल्यूशन नहीं मिला है जो डिसॉल्व हो जाए और इको फ्रेंडली हो। तो अल्टीमेटली वो ही प्लास्टिक एक माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो प्लास्टिक बन चुका है उसका हम कुछ कर सकते हैं, बट अगर हमने प्लास्टिक को फर्स्ट स्टेज पे ही कैप्चर कर लिया तो वो माइक्रोप्लास्टिक बनने से रुक जाएगा।
0: जी, तो ये बहुत ही मजेदार बात आपने बताई कि हम एक ऐसे फील्ड के बारे में सोच रहे हैं कि भाई प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक बनने से पहले ही रोक लें। जैसे प्लास्टिक की चीजों को हम देखते हैं तो अक्सर करके हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हम इसे देखते हैं, अरे प्लास्टिक नहीं नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं यूज करना है ऐसा। मगर नहीं यूज करने या कम यूज करने के प्रयास के बावजूद भी हमारे घर में प्लास्टिक अलग अलग स्वरूप में आता है। जैसे लोग टूथब्रश यूज करते हैं या कुछ जैसे ट्यूब्स आते हैं उन ट्यूब्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ऐसे अनेकों चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ऐसे में प्लास्टिक के निस्तारण को लेकर जैसे आपने कहा चलिए इको ब्रिक्स अगर हम बनाते हैं, ऐसे और क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं, क्या इन चीजों के प्रति हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं? जो आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो आप इन चीजों की जानकारी रखते हैं, वो कुछ शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ।
1: ओके, मे बी इसके सोल्यूशन के लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मधुकर जी से, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।
0: जी,
2: थैंक यू मनीष। इसमें ऐसा है कि 100% प्लास्टिक से हम बैन नहीं कर सकते हैं, 100% प्लास्टिक को ना यूज करें ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि काफी कन्वीनियंस प्लास्टिक से जो मिली है। बट यह है कि हम धीरे धीरे अपने डे टू डे यूज में ऐसी चीजों का प्रयोग करना शुरू करें जो प्लास्टिक से बनी हुई है, जैसे जो हम लोग यूज एंड थ्रो में जो डिस्पोजेबल होती हैं वो चीजें बायोडिग्रेडेबल, उसके काफी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, पत्तियों के बने हुए काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा टूथब्रश, तो अभी काफी ऑप्शंस टूथब्रश में बायोडिग्रेडेबल अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जैसे आपका बैम्बू का बना हुआ टूथब्रश है वो यूज होता है। तो इसमें अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी का केस बनता है कि एक चीज अवेलेबल है और जिसके लिए अफोर्डेबल है एटलीस्ट वो तो करे, हर किसी को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की चीजों ने जो कन्वीनियंस और जो मार्केट इकोनॉमिक्स है प्लास्टिक की, उससे आप सीधा बायोडिग्रेडेबल पे उसके अगेंस्ट में जाके फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा कीमत है, मतलब उसका इनकम लेवल ऐसा है, और इस तरह कोविड की जैसी सिचुएशन है उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर लीजिए एवरीथिंग, सब प्लास्टिक हटा दीजिए, क्योंकि अभी उसकी प्राइसिंग भी थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि वो अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन में अभी कम है। तो एक तो यह है कि प्रोडक्शन में गवर्नमेंट भी काफी स्कीम्स ला रही है एमएसएमई के अंदर, और काफी बच्चे, मतलब हम अगर यहाँ पे यूथ की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एरिया अपने पास में अवेलेबल है यूथ के लिए काम करने के लिए, जिसके अंदर में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल करा दिए जाते हैं तो इट विल बिकम वेरी गुड। तो यूथ को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि काफी सिटीज में अपने यहाँ पर प्लास्टिक बैन करने की बात चल रही है, बट उसके बैन होने से जो जो परेशानियां आएंगी उसका अल्टरनेटिव हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है इसके अंदर में स्टार्टअप्स है या अपने नए बिजनेसेस, नए सर्विसेज ऑफर किए जा सकते हैं। अभी कल ही मैं कहीं देख रहा था मुंबई में एक शादी के अंदर में उन्होंने कार्बन न्यूट्रल शादी, जीरो वेस्ट शादी, ये सब कॉन्सेप्ट उसके अंदर में लाया है, जिसके अंदर में वो जो भी डिस्पोजेबल है वो सब बायोडिग्रेडेबल या रीयूजेबल, जैसे कि प्लेट्स हैं या स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, और जो भी वहाँ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इस तरह से ये नया एक व्यावसायिक तौर पर भी ये नया मार्केट, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं जो डेफिनेटली यूथ कैन इजिली केटर, एंड इसमें अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी सब क्रिएट हो रही है। एनवायरनमेंट के लिए भी वैसे ही है, जिस तरह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो उसको रिकवर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए काफी सारे नए जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज्यादा फोकस है प्लांटेशन ड्राइव्स के ऊपर। तो इस तरह से नर्सरीज का जो बिजनेस है वो काफी बढ़ रहा है। फिर हम जैसे मियावाकी फॉरेस्ट लगाते हैं जो कि एक फास्ट वे है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ये इस तरह के नए सॉल्यूशंस हैं जहां पर कंपनियां सीएसआर फंड के अंदर फ्रेंडली हो। एनवायरनमेंट पहले एक स्टडी की तरह लिया जाता था बट नाउ इट बिकम ए लार्ज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके ऊपर यूथ को सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अपने कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे लगता है भविष्य इसमें बहुत ही अच्छा है। आज की डेट में मुझे बहुत कॉर्पोरेट के लोग या दूसरे लोग पूछते हैं, कुछ ऐसा जॉब बता दीजिए जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि पीछे कोविड की वजह से काफी ले ऑफ हुए। तो मैं बोलता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट का काम ऐसा है, आप मरते मर जाएंगे लेकिन वेस्ट खत्म नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी एरिया है, आप पकड़ लीजिए, बस खाली मोटिवेशन पैशन चाहिए। मैं वेस्ट मैनेजमेंट का काम उससे कर रहा हूँ। मुझे अब ये समझ में आ गया कि पीछे हमने जितना कूड़ा बनाया है, जितने तरीके बनाए हैं, मुझे लगता नहीं कि मेरी लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होंगी। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेस्ट के बड़े बड़े पहाड़ हर जगह बन रहे हैं, हर छोटी जगह पर। आप किसी गांव में रहते हैं तो आप ये डंपिंग ग्राउंड्स देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फील्ड है एंड नेवर गोइंग टू फिनिश ऐसा, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। तो इन चीज़ों को यूथ ने थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और नए बिजनेस एरियाज हैं, इनके ऊपर मूव करना चाहिए, इनके ऊपर नॉलेज बढ़ानी चाहिए। और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यूथ टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट, और कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा इसी बात।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी जो आपने ये बात कही कि भाई आजकल इतने ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो चुके हैं, यूथ भी जागरूक हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो, शादी ब्याह जैसे पब्लिक सेरेमनीज में, फंक्शंस में भी हम ध्यान रखते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो। ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और आपने ये भी कहा कि ज्यादातर लोग इसको एक करियर ऑप्शन के रूप में भी चुनना शुरू करें कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं जाएगा, इनको कभी भी मतलब रिसेशन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमेशा हमारे सामने एक समस्या के रूप में रहेगी और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। और नेचुरली जब आप ये बात कहते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ, इस पर काम करने की भी जरूरत है और ये एक ऐसा फील्ड है जो हमें नए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है और क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं। आरजे आरुषि जी, आप हमारे साथियों से कुछ प्रश्न पूछें।
3: जरूर, मेरे पास एक्चुअली सुनते सुनते तो और प्रश्न आ रहे थे, और जैसा कि मधुकर जी ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि यूथ कितना कुछ आगे कर सकता है। मनीषी मधुकर जी, मैं दोनों आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने बिजनेस आइडियाज की भी बात की, उससे पहले हम ओशंस की बात कर रहे थे। तो ठीक है, हमें जब तक हम कोई न्यूज आर्टिकल या कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं देखते, तब तक पर्यावरण के मामले में क्या चल रहा है कई बार लोकल उतना नहीं पता चलता। हमें बस इतना पता है कि हमारे घर के बाहर कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है या फिर हमारे आसपास की झील का क्या हाल है। क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो ओशन पोल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकें, एक लार्जर पिक्चर हम एक दूसरे को दिखा सकें?
1: ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बट मैं आई डू नॉट नो कि मैं इस बात का पूरा शायद आपका जवाब दे पाऊं। तो मे बी मैं मधुकर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो उसके पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक तो अगर हम देखें कि ओशियंस, अगर हम देखें कि 70% जो है ओशियंस है हमारे पृथ्वी पे, तो सिर्फ 30% लैंड है जिसपे हम लोग सर्वाइव करते हैं। अब क्योंकि हम लोग लैंड मोस्टली लैंड लॉक्ड एरियाज में रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि समुद्र का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर। और उसमें अगर आप देखें कि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, वो ओशियंस पे ही होता है अभी भी आजकल, और वो मे बी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन है, बट डेफिनेटली काफी फॉसिल फ्यूल उसमें बर्न हो रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन का एक मेजर कंटेंट आ रहा है ओशियंस से, और जो ओशियंस हैं वो काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। इसके अलावा जैसे रिक्रिएशन हो गया, हमारे लिए एक बहुत अच्छा, लोगों को होता है कि अब जब आप समुद्र में जाते हैं काफी काम रिलैक्सिंग फीलिंग अब वहां पे मिलती है। और एक और बहुत बड़ी मैं बोलूंगा इंडस्ट्री है जो मेडिसिन है, काफी सारी मेडिसिन, दुर्लभ मेडिसिन जैसे अल्जाइमर्स हो गया, कैंसर हो गया, इनकी मेडिसिन जो है ओशियंस से मिलती हैं। और डेफिनेटली काफी लोगों के लिए जीविका के लिए जो मछली पालन करते हैं या और भी जो ओशियंस में से डिफरेंट फूड ऑप्शंस है बहुत लोगों के लिए, तो वो सब उससे प्राप्त होता है। तो इसके अलावा मे बी मधुकर जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे?
2: हाँ, मनीष ने काफी सारी चीजें कवर की। मैं ये बोलना चाहूंगा, मोस्टली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है कि हमारे आसपास कहीं ओशन नहीं है तो हमें ओशन पोल्यूशन का ज्यादा पता नहीं चलता, मगर हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास रोड उनपे हम लिटरिंग देख पा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली ये सब ओशन में तो जा ही रहा है। डेली हम 8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक वेस्ट है वो ओशंस में भेज रहे हैं। और जैसा मुनीश ने भेजा कि ओशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ओशंस के अलावा इन रिवर्स का भी बहुत रोल है। और ये सीवरेज सिस्टम आप जैसे देखते हैं, एक दिन बारिश हुई और पूरे शहर में पानी भर गया, तो वी कॉल इट अर्बन फ्लडिंग, जो अर्बन एरियाज हैं, बट ये अभी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हर शहर में आ रही है। आप किसी से भी पूछिए, अभी तो हम बच्चों से पूछते हैं नाउ, बच्चे आर वेल अवेयर्ड अबाउट कि हमारी नालियां चोक थी, हमारे सीवर सिस्टम चोक हो जाते हैं प्लास्टिक की वजह से, तो ये बात तो बच्चों को भी पता चल गई है। बट बच्चों से हम सवाल पूछते हैं आप प्लास्टिक के लिए क्या कर सकते हो, तो वो यही बोलते थे सर हम क्या कर सकते, हम तो बहुत छोटे हैं, रिसाइकलिंग कर सकते, ऐसा वर्ड सुन लिया। तब हमने फिर ये थोड़ा सा ढूंढ के उनके लिए इकोब्रिक्स का सोल्यूशन निकाला। तो बच्चे आर वेरी एक्साइटेड, उनको बताते हैं तो दे लर्न वेरी क्विकली। फिर ये गाय वाला कॉन्सेप्ट है कि गाय को आप खाना देते हो पुण्य की बात है, लेकिन अगर प्लास्टिक में बांध के दे दिया तो गाय तो बेचारी एनिमल है, हमारी तरह तो समझदार नहीं है, वो तो खा लेती है, वो सोच रही है मनुष्य ने दिया है तो कुछ अच्छा ही दिया होगा, खुद का बचा हुआ ही है, लेकिन वो जो प्लास्टिक खा लेती है वो नहीं पता चलता। एंड दैट इज ट्रू फॉर मेनी अदर एनिमल्स। आप ऐसे न्यूज आइटम उठाएंगे, जिम कॉर्बेट में एक फोटो वायरल हुआ था, वहां पर जो लेपर्ड है वो प्लास्टिक उसके मुंह में और वो लेके जा रहा है। ऐसे मुंबई का नेशनल पार्क है, वहां पर डियर्स है, हिरन है, वो प्लास्टिक खा रहे। तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और ओशंस का जैसे मुनीश ने बताया कि 50% ऑक्सीजन हमें ओशन से ही मिलती है, अब ओशन हमारे कंटेमिनेटेड होंगे तो ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ेंगी। और 70% जो क्लाइमेट का कंट्रोल है वो ओशन से हो रहा है। और अभी हमने रिसेंटली देखा चेन्नई में बहुत बारिशें हुई, केरल में बहुत बारिशें हुई जो आउट ऑफ सीजन है, और फ्लड जैसी स्थिति आ रही है। तो ये दोनों चीजें मिल रही हैं, मतलब एक तरफ अर्बन फ्लडिंग जो आपके सीवर सिस्टम चोक हो रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश बेमतलब हो रही है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है ना, तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि मतलब अगर मैं बोलता रहूं तो एक घंटा भी कम पड़ जाएगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल मधुकर जी, और इम्पैक्ट आज हम तक पहुंच रहा है, दिखाई दे रहा है, और ऐसा नहीं है पर्यावरण की प्रभाव एक जगह है तो कल हम तक नहीं पहुंचेगा, हम सब जुड़े हुए हैं इसमें, तो हमें प्रयास भी साथ करने हैं। मधुकर जी, मनीष जी, जब हम आपसे ओशंस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जाने, और जैसा आपने कहा समय कितना भी है पर कम ही पड़ जाता है, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे मियावाकी जो टेक्निक है फॉरेस्ट, जो आप ओशंस के बारे में बात कर चुके, प्लास्टिक के बारे में बात कर चुके, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे और उसके बाद हम अपने श्रोताओं के सवाल भी लेंगे।
2: ठीक है, मैं इसको लेता हूँ। इसमें क्या है कि एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांटेशन होता है, जैसे हर साल प्लांटेशन ड्राइव होता है और जैसे ही बारिशें शुरू होने लगती हैं हमें यहाँ वहां से एनजीओ और आपके नेता लोग हैं बुला देते हैं, अरे आ जाइए 1000 पौधे लगाने, ये लगाने, वो लगाना, लोग जाते हैं खुशी खुशी और बहुत खुश होके आते हैं, लेकिन बाद में वो ये रियलाइज नहीं करते हमने पिछले साल पौधा लगाया था उसी जगह पर, जाए तो क्या वो पौधा बचा। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पौधे लगते हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। दूसरा क्या है कि काफी टाइम से सरकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते रहे, और एक ही तरह के प्लांट्स, जैसे आप देखेंगे एक रोड है तो वहां सारे नीम के पौधे लगे हुए, नीम के पेड़ लगे, एक ही रोड है तो उसपे सारे पीपल के पेड़ लगे हुए, एक ही रोड होगी कहीं अमलतास लगा हुआ है, तो एक नया तरह का ट्रेंड आया। लेकिन उसके पीछे जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है वो हमने नहीं देखी, क्योंकि हम जो ये पौधे पेड़ होते हैं इनसे हम दूसरे बायोडाइवर्सिटी, जो इनपे बीज आती हैं, जो मधुमक्खियां आती हैं या तितलियां आती हैं, वो लोग पॉलिनेट करती हैं और आगे ये बढ़ते रहता है, एनवायरमेंट अपने आप ही, नेचर अपने आप ही ग्रो होता है, तो वो चीज उसमें मिसिंग हो गई। तो मियावाकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम छोटे जगह पर, मतलब एज स्मॉल एज 1000 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट का एरिया जो हम ले सकते हैं, और उसमें एक हम डेंस फॉरेस्ट का मतलब है कि फॉरेस्ट कैसे होता है, अनप्लांड होता है, उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, वहां पर एक तरह का उसका मतलब उस तरह का वो फॉरेस्ट डेवलप होगा। तो अर्बन स्पेसेस में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या देहरादून है, या मसूरी है, ये सभी अब अर्बन प्लेसेस बनते जा रहे हैं जहां पर जगह कम होती जा रही है ड्यू टू हाउसिंग कमर्शलाइजेशन। तो अब छोटी जगह पर हम इस तरह का प्लांटेशन करते हैं, तो इससे क्या है कि कम जगह पर हम ज्यादा डेंसिफाई प्लांट्स लगाते हैं, तो ये 30 गुना ज्यादा डेंसिफाई होता है नॉर्मल प्लांटेशन से, और ये 10 गुना ज्यादा हमको ऑक्सीजन देता है। एंड इट इज ए प्रूवन मेथड। ये एक बॉटनिस्ट थे डॉक्टर मियावाकी, अकीरा मियावाकी, जापानीज बॉटनिस्ट, तो ये इन्होंने 70s में जब जापान के जापानीज बॉटनिस्ट थे का मतलब इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले महीने ही एक्सपायर्ड, तो 92 की एज में, तो जब जापान में वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी कंडीशंस काफी खराब थी, तो इन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी टेक्निक के ऊपर कि कैसे कम जगह पर हम ज्यादा प्लांटेशन करें और जल्दी रिजल्ट्स ले। तो नॉर्मल जो हमारे वन है, जो नॉर्मल फॉरेस्ट है, वो 30, 40 से 50 साल उनको लगते हैं ग्रो होने में डेंसली, लेकिन हम जो यहाँ पर डेवलप करते हैं ये 10 से 20 साल में उसी लेवल की ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की इन कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांटेशन विच वी डू। तो और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है और इसके बाद में हम एज ए एनजीओ हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। बोला ये जाता है कि अगर 3 साल तक आप इन पौधों को देख लेते हो तो उसके बाद में वो सेल्फ सस्टेन कर लेते हैं, उसके बाद में वो खुद ही बड़े हो सकते हैं। तो हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट्स करते हैं दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में, कहीं पर भी, और हम लोग इनको 3 साल मेंटेन भी करते हैं। तो ये अब कुछ ऐसे तरीके, जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण की इतनी विकट हो गई है कि अब हम वो पुराने तरीकों से अगर इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें नए तरीके भी लाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट, तो ये अब नए सब एरियाज है, उसमें मियावाकी अफॉरेस्टेशन या इस तरह का एग्रो फॉरेस्ट, वो सब चीजें आ रही हैं जिसको यूथ ने एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये इनकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी जिस तरह से हम डेवलपमेंट हमारी, जैसे हम इंडिया इज अ फास्टेस्ट इकोनॉमी और हम लोग काफी डेवलपमेंट में आगे हैं, तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा, और उसमें ये अपॉर्चुनिटीज बहुत इजी मिल पाएंगी हमें, और लोग काफी सेंसिटिव है इस बात के लिए।
3: जी, और यहाँ पे एक प्रश्न भी इसी से जुड़ा हमारे पास आ रहा था, और वो जानना चाह रहे थे हमारे श्रोता मित्र की किस तरीके से क्या हम अपने छतों पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जो मियावाकी फॉरेस्टेशन जो भी टेक्निक है उससे कुछ इंस्पायर्ड हो।
2: छतों के लिए नया कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है अर्बन एरिया में, उसको जो किचन गार्डनिंग है या अर्बन फार्मिंग। तो हम यहाँ अल्टीमेटली जो हमारा फोकस एरिया है वो कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन अबेटमेंट, उसको कंट्रोल करना है, रिडक्शन करना है। तो उसमें किसी भी तरह का जो इस तरह का ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव है, वेदर यू डू ये किचन प्लांटेशन या किचन फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग उसको बोला जाने लगा है, एज अ टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब वो जार्गन हमेशा यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो आप अर्बन फार्मिंग को देख सकते हैं, अर्बन फार्मिंग से भी कार्बन अबेटमेंट का जो है बेनिफिट हमें मिलता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कई लोगों ने कोविड के दौरान अपनी सब्जियां खुद उगाई और काफी अच्छा भी उन्हें फील हुआ और हमें काफी सारे ऐसे फीडबैक मिले। तो ये काम करना भी काफी आसान है, मतलब आप अपनी छतों पे थोड़ा सा सेटअप लगा के किचन गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने खुद की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और फ्लावर्स उगा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कंपोस्ट करना घर में, तो आपकी खाद भी आप खुद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाएगा जो आपको इनेबल करता है कि आप खुद ही कुछ कार्बन उत्सर्जन में कमी कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, जो कि बहुत ही जरूरी है।
3: जी बिल्कुल, और यहाँ पे समय की सीमा तो हमें यहीं तक इजाजत दे रही है। मुनीश जी, मधुकर जी, बहुत कुछ आपसे जाना, जाते जाते बस शॉर्ट में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर जुड़ना चाहें योद्धा आपसे तो क्या ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा पढ़ें, कोई एक पॉइंट जो आपको लगता है उन्हें और जानना चाहिए जरूरी है, मुनीश जी?
1: ओके, जुड़ने के लिए ricefoundation.org वेबसाइट है, वहां से जुड़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, मेनली हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। जो वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, एक तो जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है उससे हम घर पे ही कंपोस्टिंग करें, और मेनली जो प्लास्टिक है उसको हम सेग्रीगेट करके सिंपल सॉल्यूशन लाइक इको ब्रिक्स है वो बनाएं।
3: जी, मधुकर जी,
2: मैं बोलना चाहूंगा, एक तो मनीष वेबसाइट गलत दे दिया तुमने, ricefoundation.co.in है, उस पे जाएं, और हमारा वहाँ ईमेल एड्रेस है mail2ricefoundation@gmail.com, उस पे भी लिख सकते हैं हमसे बात करने के लिए। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज इस वर्ड को सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, और एक बार आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का टॉपिक है कि उसको देख के किसी को भी अब ये समझ में आने लग जाता है कि क्लाइमेट चेंज की क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर सकता है। जब सोल्यूशन ढूंढना शुरू

0: करता है, तो फिर हम उसमें से एक सपोर्ट सिस्टम है, क्या आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और नंबर भी वहां पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पहुंच सकते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है और कार्बन अबेटमेंट, ये दो चीजें हैं, कार्बन रिडक्शन जो उत्सर्जन है इसके बारे में पढ़ें और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ें, इन दो चीजों की नॉलेज जो है हर किसी को अब जरूरी हो गई है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी, मुनीश जी हमसे जुड़ने के लिए, हमें आम भाषा में समझाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए। रेडियो मधुबन के सभी दोस्तों को मैं करती हूँ यहाँ नमस्कार, लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई दुनिया नया जमाना में। नमस्कार,
2: थैंक यू, थैंक यू।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक किसान कैसे बने। जी हाँ, आज के समय में किसान के बारे में बातें करने की जरूरत पड़ी है, करियर एज ए किसान। जी हाँ, जीवन कौशल हमारा जो है, एक किसान किस तरह से काम करता है और कैसे वो अपने करियर को निर्माण करता है, जिसके बारे में आज बातचीत करेंगे। एक सम्मानजनक, स्थायी और भविष्य निर्माता करियर जिसको कहेंगे, वो है किसानी। साथियों, भारत एक कृषि

साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एज ए किसान, एक अच्छा किसान, एक उद्यमी किसान कैसे बने। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किसान कौन है। जी हाँ, हु इज अ फार्मर। किसान वो व्यक्ति है जो भूमि, जल, बीज और परिश्रम से अन्न, फल, सब्जी, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना, मसाले आदि का उत्पादन करता है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में किसान केवल उत्पादक नहीं बल्कि योजनाकार, वैज्ञानिक सोच वाला प्रयोगकर्ता, बाजार समझने वाला व्यापारी, पर्यावरण रक्षक भी है। साथियों, हम लोग कभी कभी अन्न, फल, सब्जी, तिलहन, दलहन, कपास, गन्ना, मसाले इनका उपयोग ज़रूर करते हैं, लेकिन इसके पीछे जिस व्यक्ति की मेहनत है उसे हम नहीं समझ पाते, है ना। आज हम लोग कहीं ना कहीं एक छोटी सी भूल कर रहे हैं। अन्नदाता किसान भी योजनाकार है, वैज्ञानिक सोच वाला प्रयोग करता है, बाजार समझने वाला व्यापारी है और पर्यावरण रक्षक भी है। जब हम इस संदर्भ में बात करेंगे, इस तरह से सोचेंगे, तो किसान की महत्वता को हम बढ़ावा देंगे और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, नए युवा है, वो भी इस ओर अग्रसर होंगे और एक किसान बनने में उसे खुशी होगी, उसे सम्मान मिलेगा और अच्छा महसूस करेगा। लेकिन आज के समय में हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं। एक किसान लोगों को बोले कि आप किसान बनो तो ऐसा लगेगा जैसे किसी बहुत ज़्यादा जो है नीचे तबके पे ले जा रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, वो समझता मजदूर का काम है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल हमें बदलनी है, लेकिन बदल तब सकते हैं जब हम उसे सम्मानजनक नज़रों से देखना शुरू करें और उसके पीछे का अर्थ हो समझें। साथियों, यहाँ पर मैं इसी बात को आपको बताने जा रहा हूँ, किसान करियर का महत्व। एक, पहला, देश की खाद्य सुरक्षा। किसान के बिना देश भूखा रह सकता है? अन्नदाता का योगदान अमूल्य है। दूसरा, स्वयं रोजगार और आत्मनिर्भरता। खेती में स्वयं का व्यवसाय होता है, कोई बॉस नहीं। स्थायी आय के अवसर, फसल, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मशरूम, मत्स्य पालन से बहुत आय संभव है। प्रकृति के साथ जुड़ा, मिट्टी, मौसम और मौसम चक्र को समझने का अवसर। तो साथियों, ये सारी चीज़ें एक विशेष व्यक्ति महत्व को दर्शाता है। अगर हम इन चीज़ों को ठीक से समझें तो जीवन में किसी भी व्यक्ति के कार्य को छोटा नहीं समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ें करने के लिए आज प्रोफेशनल चीज़ें भी हमारे बीच में आ गई हैं। पहले ये चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती थी, लेकिन आज समय के साथ साथ कहीं ना कहीं व्यावसायिक मोड में, शिक्षा जगत में एक नए परिवर्तन आया है। अब इस परिवर्तन में हमें अपने आप को कैसे ढालना है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं एक किसान के बारे में। जी हाँ, एक किसान करियर कैसे अपनाया जाए। तो किसान बनने के लिए आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए, पढ़ाई क्या होनी चाहिए। मैं कहूँ तो शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं। 10वीं या 12वीं आप डिप्लोमा करने, 10वीं या 12वीं के बाद कृषि डिप्लोमा कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्री टेक कोर्सेस फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके साथ में मुख्य कौशल आता है धैर्य और मेहनत, जोखिम उठाने की क्षमता, नई तकनीक सीखने की इच्छा, बाजार और लागत का ज्ञान। जब आप इन चीज़ों को ठीक से समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा किसान बनने की सारी क्वालिटी आपके अंदर आ ही जाएंगी। क्योंकि साथियों, जब फसल लगती है या लगाते हैं किसान, तो धैर्य रखना पड़ता है। 4 या 6 या 8 या 1 साल का जो भी आपने प्रोजेक्ट फसल लगाई है, तो उतना समय आपको वेट करना पड़ता है, उतना समय उसका ध्यान देना पड़ता है। 4 महीने भी अगर आप किसी फसल को लगाते 4 महीने वाला, तो 4 महीने तक आपको लगातार निगरानी करनी पड़ती है, हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है एक छोटे बच्चे की तरह। जब आप 4 महीने आराम से धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक अच्छा जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो नुकसान, जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी बारिश नहीं आया या बारिश ज़्यादा हो गया, बाढ़ आ गया, तो आपका फसल पूरी तरह से ख़त्म होता है। तो ऐसे में आपको जोखिम उठाने की भी आपके अंदर पूरी क्षमता होनी चाहिए। इसके साथ में आजकल नई टेक्निक बहुत आए हुए हैं, उन टेक्निकों का प्रयोग करके आप अच्छी फसल ले सकते हैं। बाजार और लागत का ज्ञान भी होना चाहिए। कभी कभी अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, अगर किसी चीज़ की भाव मार्केट में गिर गया है और आप उसे उगा रहे हैं, तो आपको उसका उतना पैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बाज़ार का ज्ञान हो कि बाज़ार में अब क्या चल रहा है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उस अनुसार अगर आप खेती करेंगे, फसल लगाएंगे, तो आप जो है बैलेंस कर पाएंगे और अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आइए, ऐसी सारी बातें हम लोग करेंगे ही और आगे बढ़ते हैं आधुनिक किसान के नए जो बातें हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। आधुनिक किसान किसे कहेंगे और क्या क्या चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करना है। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। बातें कर रहे करियर ऑप्शन जीवन कौशल के बारे में, आधुनिक किसान के नए क्षेत्र क्या क्या है इस पर बातें करते हैं। और हमने देखा कि कैसे हमें एक फसल लगाने के बाद कितना धैर्य रखना है, निगरानी रखना है, और बाजार का अच्छा ज्ञान हो, टेक्निक का अच्छा ज्ञान हो, तो आपके अपने करियर में चार चांद लग सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आधुनिक किसान के बारे में, आधुनिक किसानी के नए क्षेत्र के बारे में। एक जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल जो है बड़ा बूम कर रहा है। रासायनिक खाद से मुक्ति खेती की बात हो रही है, बाजार में दाम अधिक मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, ऑर्गेनिक फसल को, और स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना गया है। इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा जो है आज के समय में ये ट्रेंड फेमस हो रहा है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंपनियों के साथ समझौता करके निश्चित आय भी प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हम जो है बाजार में बेचने से कम लागत में कम मिलता है मार्केट रेट हमें, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो डायरेक्ट फैक्ट्री खरीदे और फैक्ट्री में एक तय निश्चित आय जो है आपको मिल जाता है और आपको घूमना नहीं पड़ता या वेट नहीं करना पड़ता। कभी कभी हमारे पास फसल ज़्यादा हो जाता है तो मार्केट में अगर डिमांड नहीं है तो कम भाव में लोग मांगते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम स्टॉक करके रख सकते हैं तो जब बाज़ार में भाव बढ़ेगा या फिर वो मार्केट में जो चीज़ें आपके पास है वो कम होगी तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समझ होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियों के साथ समझौता करके एक निश्चित आय जो है आप रेगुलर ले सकते हैं, जहाँ आपको ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। आपने फसल लगाई और चार महीने अब कंपनी आएगी, खुद ही कटवाई करके वो लेकर जाएगी और आपको बैठे बैठे घर पर पैसे आ जाएंगे। तीसरा एक टेक्निक आ गया है ग्रीन हाउस और पॉलीहाउस खेती। जी हाँ साथियों, ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है। अगर ग्रीन हाउस और पॉलीहाउस का आप टेक्निक समझ लेते हैं और उसमें सब्जी उगाना शुरू कर देते हैं तो ये कम जमीन में अधिक उत्पादन भी देता है और साथ ही साथ फूल सब्जी विदेशी फसलें भी यहाँ पर उगा सकते हैं और विदेश एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें ज्ञान और अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात आती है डेयरी और पशुपालन। दूध, घी, पनीर, गोबर, गैस नियमित आय देता है। अगर आपके पास कम जमीन भी है लेकिन पशुपालन का अगर आपके पास शौक है आपको, तो ये एक अच्छा दूध, घी, पनीर, गोबर, ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा इनकम देने वाला एक सुंदर बिजनेस है। एग्री स्टार्टअप, ये पांचवा एक अलग जो है आधुनिक किसानी है। तो यहाँ पर आप जो है एग्री स्टार्टअप में ड्रोन ऐप, मिट्टी परीक्षण, फसल सलाह, फार्म टू मार्केट मॉडल, ये जो है एक टेक्निक है जिसमें आप ड्रोन का इस्तेमाल करके दवाइयों का छिड़काव बहुत कम और जो टेक्निक है एप्लीकेशन के माध्यम से आप मिट्टी का परीक्षण करके अच्छी फसल ले सकते हैं और वो फसल सीधे खेती से मार्केट में जा सकता है। तो ये भी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग अगर बात करें, अगर समझो आप दाल की फसल लगा रहे हैं या आप बासमती चावल की खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि आपके पास थोड़े से कुछ स्टार्टअप मशीनरी अगर लग जाती है तो आप जो है जैसे एक बोरी अगर आप बेच देते हैं मार्केट में तो होलसेल मार्केट में आपको वो एक बोरी का समझो जो भी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉर्म पे कुछ टेक्निकली चीज़ें ऐसे लगा देते हैं और एक एक किलो का पैकेट बना के अगर आप मार्केट में डायरेक्ट बेचते हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट आपको देता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपको टेक्निकल टीम का सहयोग लेके कुछ पैकिंग मशीन्स होते हैं सस्ते और अच्छे होते हैं, उसको अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं और कुछ वर्कर्स को आप बढ़ा देते हैं तो आपका इनकम दुगना होने का चांसेस यहाँ पर है। तो ये थी कुछ नए आधुनिक खेती की बातें आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में, जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। सरकारी योजनाओं के बारे में अगर बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी आपको प्राप्त होता है, यहां से आप लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से भी आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। फसल बीमा योजना से भी आपको मदद मिलती है। सब्सिडी, ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप, कृषि विज्ञान केंद्र केवीके के द्वारा भी आपको ये योजनाएं किसान करियर को सुरक्षित और लाभकारी बनाती हैं। तो ये सपोर्ट सिस्टम है, आप इसका सपोर्ट लेकर अपने करियर को, किसानी करियर को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए अब जाते जाते मैं दो कहानी आपको बताऊंगा। एक सुभाष पालेकर का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, इन्होंने अच्छी सफलता हासिल की। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में किसान आत्महत्याओं की समस्या गंभीर थी। ऐसे समय में श्री सुभाष पालेकर स्वयं एक साधारण किसान परिवार से थे। उन्होंने देखा कि रासायनिक खेती से लागत बढ़ती जा रही है और लाभ घटता जा रहा है। उन्होंने फिर इस बात को पूरी तरह से पलट दिया। शून्य बजट प्राकृतिक खेती GBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की अवधारणा को विकसित की। और ये टेक्निक उन्होंने ऐसा किया कि देशी गाय, जीव अमृत, बीज अमृत और बिना रासायनिक खाद। परिणाम ये हुआ कि हजारों किसानों की लागत शून्य के पास आ गई और मुनाफा बढ़ा। आज देश विदेश में उनके विचार अपनाए जा रहे हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि किसान केवल खेत में नहीं बल्कि विचारों में भी क्रांति ला सकता है। दूसरे हमारे तमिलनाडु के गांधी, जिनको कहा जाता है नम्मलवार। नम्मलवार एक साधारण किसान और पर्यावरण कार्यकर्ता रहे थे। उन्होंने जीवन पर प्राकृतिक खेती का प्रचार किया। न पुरस्कारों की चाह रखा, न धन की लालसा रही। धरती माँ का शोषण नहीं, संरक्षण करो, ये उनका स्लोगन था। और उन्होंने इस पर काफी काम किया और आज तमिलनाडु के हजारों किसान उनकी शिक्षा से प्रेरित होकर जैविक खेती कर रहे हैं और सम्मानजनक जीवन भी जी रहे हैं। साथियों, यहाँ पर नलम्बर जो तमिलनाडु के गांधी है, उनका कहना है कि किसान का करियर सेवा और संतुलन सिखाता है। तो जब हम लोग सेवा और संतुलन बना के रखेंगे तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और हम लोगों के लिए एक सेवक के रूप में रहेंगे, तो लोग हमारी सेवा भाव से संतुष्टता का अनुभव करेंगे। साथियों, किसान करियर में काफी चुनौतियां हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, मौसम की अनिश्चितता के कारण भी कुछ नुकसान हो सकता है। बाजार वाम में उतार चढ़ाव के कारण भी चुनौतियां आ सकती हैं। शुरुआती पूंजी के लिए भी चुनौती आ सकती है। सही जानकारी का अभाव भी आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए सही जानकारी हो, पूंजी हो आपके पास, बाजार भाव का उतार चढ़ाव का ज्ञान हो, मौसम की जानकारी भी अच्छी आपके पास हो, लेकिन ज्ञान, टेक्निक और सहयोग, ये चीज़ें आपको हमेशा हेल्प करती है। ये चुनौतियों को अवसर में बदलने का काम करती है। तो इसीलिए ज्ञान, टेक्निक और सहयोग का हमेशा प्रयोग करें। और युवा क्यों चुने किसान करियर, अगर आप सोच रहे होंगे, चलिए ये तो बुजुर्गों का काम या गांव में रहने वालों का, युवा लोगों के लिए तो बहुत सारे विकल्प है, लेकिन मैं चाहूँगा कि युवा भी किसान करियर चुन सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और खेती आने वाले भविष्य को निर्धारित कर रही। कम पढ़ाई में भी बड़ा व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलता है, समाज में सम्मान प्राप्त होता है, देश सेवा का सीधा मार्ग है किसान। तो आज का किसान लैपटॉप, मोबाइल, ड्रोन और ट्रैक्टर सब साथ लेकर चलता है। तो इसीलिए हमारी युवा साथियों का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। साथियों, किसान होना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक गौरवपूर्ण करियर विकल्प है। ये करियर आपको आत्मनिर्भर बनाता है, प्रकृति से जोड़ता है, समाज का पेट भरने का सौभाग्य देता है। यदि युवा पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ खेती को अपनाए तो किसान न केवल समृद्ध होगा बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान केवल नारा नहीं बल्कि एक सशक्त करियर की पहचान है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप किसान बने और आधुनिकता को अपनाकर अपना जीवन और दूसरों का जीवन को समृद्ध करें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नए करियर ऑप्शन में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: श्रोताओं, आज की शाम और शाम ढल चुकी है, अंधेरा हो चुका है, परंतु हमें मालूम है कि सूरज फिर उगेगा, उम्मीद फिर जगेगी और इस संसार में रोशनी फिर से आएगी। ये अंधेरा कायम नहीं रहेगा। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका समय हमेशा का दोस्त शरद, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। हम इस बार लेकर आए हैं आपका फेवरेट शो जुनून। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी 107.8 एफएम पर हम लेकर आते हैं एक फिर से जुनूनी को, जो समाज में बदलाव करना चाहता है, परिवर्तन की बात कर रहा है और एक नव चेतना की बात कर रहा है। वो युवा है, वो अधेड़ है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुनून है और वो आगे बढ़ चुका है अपने जीवन को बदलने और दूसरे अपने आसपास के अपने भाई बहनों के जीवन को बदलने। तो ऐसे ही जुनूनी के साथ मैं आज राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर से हैं हमारे साथ कोमल। आइए जानते हैं कोमल की कहानी। कोमल, आप हमारे साथ हैं और फिर से हमने बात शुरू की है हमारे प्रोग्राम जुनून में। फिर से कुछ दिनों बाद हम जुड़े हैं और लेकर आए हैं हम सबका फेवरेट शो, जो हमें भर देता है चेतना से, उम्मीद से, नव जागरण की चेतना से, जीवन को बदलने और इस समाज को नई दिशा देने के रास्ते पे चलने की उम्मीद देता है हमारा कार्यक्रम जुनून। और जुनून में आप हैं हमारे साथ इस पर। तो कोमल, बताइए अपने बारे में कि क्या आपकी कहानी है और आप क्या करते हैं उदयपुर में।
1: सबसे पहले नमस्ते सबको और थैंक यू सो मच मुझे ये मंच पर आज मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, मेरा नाम कोमल है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ काम करूं, और जब उनके साथ कोई हिंसा होते देखती थी तो दिल को बहुत दर्द होता था। और उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मैं इनका कैसे मदद करूं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों से मिलती गई, अलग अलग एक्सपीरियंस आते गए कि किस तरीके से उनका सॉर्ट आउट करें। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक ऐसा कम्फर्ट एरिया उनको प्रोवाइड करवाती थी जहाँ उनको लगे कि हाँ, यहाँ पे मैं अपनी दिल की बात, यहाँ मैं अपना दर्द शेयर कर सकती हूँ। और उनको मैं इतना स्पेस देती थी, इतना अच्छा एनवायरमेंट देती थी कि उनको ये नहीं लगता था कि मैं उनकी सीनियर हूँ। वो मुझे अपनी एक बड़ी बहन मानते थे और हर चीज शेयर करते थे, और मैं अपने लेवल तक जो उनको सजेशन दे सकती थी, सलाह दे सकती थी, वो मैं अपने लेवल पे देती। उसमें मैं कोई लीगल एडवाइस जैसे वकील का है, ये सजेशन पहले उनको नहीं देती। देन उसके बाद में मैं उदयपुर की एक विकल्प संस्थान है जो बहुत सालों से महिलाओं और बच्चियों के लिए काम कर रही है, और

0: मदद लेती हूँ। मेरे कुछ वेल विशर्स हैं जो मेरे काम को देखते हैं और उनको अच्छा लगता है, वो मेरा सहयोग करते हैं। और हम लोग जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में भी मदद करते हैं। कुछ गरीब ऐसी फैमिली होती है जिनको उनके बच्चे जो है बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, उनके लिए हम राशन की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बारिश में आते हैं बिना स्लीपर्स के, गर्मी में आते हैं उनको हम लोग स्लीपर्स पहनाते हैं। सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में बच्चे नंगे बदन स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे भी हमने कुछ मुहिम चला के उनको स्वेटर वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि भारत में हम लोग गरीबी नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो सोच नहीं है कि मेरा पैसा मेरे तक, ये सोच नहीं बदलेगी तब तक भारत में गरीबी खत्म नहीं हो। लेकिन मैं मेरे लेवल पर, हमारे मुहिम के लेवल तक या हमारी टीम के द्वारा हम लोग जितना कर पाएंगे उतना हम लोग करेंगे, ये मेरा स्टोरी है।
1: नहीं, ये आपकी कहानी में तो बात है कि कोमल कैसे तैयारी, कोमल में ये बात चेतना कहाँ से आई है, ये समाज परिवर्तन की बात करने की बात जो है ये आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई?
0: आज से 3-4 साल पहले मैं बस्ती में गई थी लड़कियों से बात करने के लिए कि कैसे मैं उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। तो वहाँ पे एक दादी से मिली थी मैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिनके बेटे की डेथ हो गई, उनकी जो बहू थी वो अपने बच्चों को लेके पक्के मकान में रह रही थी। और उस टाइम पे मैं गई थी, बारिश का मौसम था, और वो जो दादी थी वो झोपड़ी में रह रही थी, उसके जो सामान जो था वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था। मैंने उस दादी से बात किया था, उस वक्त मुझे लगा था कि मुझे इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं फील्ड में उतरती गई, जैसे जैसे मैं बस्तियों में जाती गई, मुझे लगा कि मैं दुनिया में भेड़ चाल चलने के नहीं आई, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जहाँ पे मैं लोगों की मदद कर सकूँ। और धीरे धीरे मेरे अंदर वो कल्पनाएं जागने लगी कि मैं अलग अलग जगह जाके लोगों की मदद करने लगी, लोगों से जुड़ने लगी। और धीरे धीरे मेरी मुहिम में लोग जुड़ने लगे, लोग मेरी मदद करने लगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप मुझे सहयोग दीजिए। तो धीरे धीरे ये जो भावना, ये फीलिंग जो मेरे अंदर आई, उसको थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि पहले जब मैं लोगों से कपड़े कलेक्ट करके लाती थी, घर पे रखती थी, तो मम्मी वगैरह डांटते थे कि कहाँ से लेके आई, कहाँ इनको कलेक्ट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे मेरा परिवार भी मेरे साथ जुड़ता गया। आज मेरे परिवार का एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बैक सपोर्ट बन चुका है कि वो मेरे हर समय मेरी मदद करता है, मेरा सहयोग करता है। आज कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले पापा मुझे व्हीकल की चाबी दे देते फोर व्हीलर की, ये गाड़ी लेके जाओ, कहाँ तुम्हें किसकी जरूरत है वो लेके जाओ। और मेरा पूरा परिवार मेरे पीछे खड़ा है, मेरा सपोर्ट करता है। और इस समाज ने भी, और बहुत सारे एनजीओ से जिन्होंने मुझे मंच पे सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग मेरा सहयोग करें, ताकि मेरा जो ये मुहिम मैंने स्टार्ट किया है वो कभी स्टॉप नहीं हो पाए।
1: बहुत बढ़िया दर्शकों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, और फ्रीक्वेंसी है 107.8 FM जो कि है माउंट आबू की वादियों से। और आप सुन सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम जुनून को रेडियो मधुबन के एप्लीकेशन पर भी, तो जाएं और डाउनलोड करें रेडियो मधुबन। तो हमारे साथ हैं आज हमारी इस कहानी में जुड़ने वाली कोमल, और कोमल बता रहे हैं कि अपने एक जुनून को, कि वो कैसे हैं पुराने सामान, पुराने कपड़े लोग घरों से लेते हैं तो उनके काम में नहीं आ रहे हैं, और लेकिन वो किसी और व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता को पूरी करने का साधन बन सकता है। तो ये जो शुरुआत है कोमल, इसमें आप अभी क्या कर रहे हैं और कैसे इसको करते हैं, क्या चुनौतियाँ आती हैं?
0: अभी चैरिटी वाला अच्छा चल रहा है, चुनौतियाँ पहले बहुत आई थी, क्योंकि उनको डीप एरिया में जाना, ले जाना, लोगों से कनेक्ट होना, और पहले लोग मेरे से बहुत कम कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि मैं जहाँ पे बच्चे देखती थी वहाँ पे मुझे लगता था मुझे कपड़े देने, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरी फैमिली में इतने कोई छोटे बच्चे नहीं है, तो लोगों तक मैसेज पहुँचाना पड़ता था कि मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है, जूतों की जरूरत है। तो बहुत चुनौतियाँ भी आई थी, कुछ फाइनेंशियल भी चुनौतियाँ आई थी कि कैसे उस एरिया में पहुंचा जाए। उसके लिए हमें व्हीकल भी करना होता था, व्हीकल के लिए मैं उस टाइम पे जॉबलेस भी थी। तो उन चुनौतियों से मैंने डर कर अपने मुहिम को स्टॉप किया, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा मेरे से जितना हो पड़ेगा करूंगी। लेकिन अभी वो चुनौतियां सारी हट चुकी है, और अभी मेरे साथ बहुत सारा मजमा जुड़ चुका है, बहुत सारे टीम मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और लोग मेरे से सामने से जुड़ना चाहते हैं कि आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ इस मुहिम में पार्ट लेना चाहें।
1: तो ये कैसे चलता है ये कार्यक्रम, इसमें कैसे आप जरूरतमंद की मदद करते हैं और कैसे उनको चिन्हित करते हैं, कैसे ढूंढते हैं?
0: पहले तो हमें बस्तियों में जाना पड़ता था, खुद से ढूंढना पड़ता था, एफर्ट मारना पड़ता था, बट अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स

0: जहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रीन सोल फाउंडेशन है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने कम से कम मुझे 1000 स्कूल बैग, 1000 स्लीपर्स और 1000 मैट्स जो होते हैं वो मुझे डोनेट करने के लिए दिया। तो मैंने गोगुंदा, उदयपुर और सायरा स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे मैंने डोनेट किया। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं। तो अब वो सामने से बोलते हैं कि मैडम यहाँ जाइए, यहाँ डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में नीड है। तो अब मुझे बस्तियों की सर्च नहीं करना पड़ता, सामने से लोगों का कॉन्टेक्ट आ जाता है कि आप यहाँ जाके डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो अभी तक आपकी यात्रा कैसी रही और क्या रिसोर्सेज आप इसमें लगा रहे हैं, आपके पास कितना स्पेस है, या कैसे आप अपने घर से इसकी शुरुआत करी की आपने, या अभी आप सामान कैसे इकट्ठा करते हैं, कहाँ रखते हैं सारे सामान?
0: पहले बहुत सारी चुनौतियां भी थी, बीच में मैंने सोचा भी था कि इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैंने अपने घर पे ही स्टोर किया था, देन मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका उदयपुर में एक शॉप चलता है, तो फिर हमने कपड़ों को वहाँ कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लोगों से सामान कलेक्ट करते हैं। और आज मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है कि पहले हमें हमारे पिताजी की वजह से जानते थे, क्योंकि मेरे फादर सरपंच रह चुके हैं तो उनकी वजह से हमारी पहचान थी। लेकिन आज हमें गांव में लोग पहचानते हैं कि अरे ये वो दीदी है, अरे ये दोनों बहनें वो हैं जो गांव में जाके लोगों को कपड़े डोनेट करते हैं। तो अब घर पे ही हमारे यहाँ सामान आ जाता है, लोग हमारे घर पे ही आके डोनेट करके जाते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं। और हमारे एक ही सोच रखा है कि हमारे पास जो टू व्हीलर है हमेशा उनमें एक बैग भरा रहता है, जहाँ पे हमें लग जाता है कि ये बच्चे हैं, नंगे पैर हैं, या इनके बदन पे कपड़े नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जिनके राशन नहीं है, तो हम लोग उनको उसी टाइम हम लोग देते थे। हम वेट नहीं करते कि हम घर जाएंगे वापस लेके आएंगे, ऑलवेज हमारे बैग में सामान रहता है, हम लोग वहाँ डोनेट करते रहते।
1: क्या कहानी है आपको बताइए, उदयपुर में कैसी कैसी कहानियां आपकी नजर में है जो आपने देखी और तो लगता है कि हमें कुछ काम करने की जरूरत है?
0: चैरिटी वाला तो कोई स्टोरी वही है, रैंडम मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन अभी जो मैं विकल्प संस्थान से जुड़ी हूँ तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे सामने आई है जिसको मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे आज हमारा टॉपिक है नशा, इस नशे की वजह से इंसान हैवान बनता जा रहा है। कुछ कुछ ऐसे हमारे पास केसेस भी आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उस बच्ची का। बच्ची अपनी माँ के साथ आई थी, यानी माँ ने दूसरी शादी किया था, तब बच्ची अपने माँ के साथ आई थी अपने नए पिता के पास। वहाँ बच्ची की माँ की डेथ हो जाती है, बच्ची महज 8वीं क्लास में पढ़ती है और 13 साल की। उसके पिता 11 साल, जब बच्ची 11 साल से थी, उसके साथ गलत हरकतें करता था रात में। बच्ची ने अपने आस पड़ोस में बताया कि मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है, मैं पिता बहुत परेशान करते हैं, मैं घर से निकालो, मुझे अपने पिता के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग क्या स्कूलों में सेशन करते हैं बच्चों के साथ पॉक्सो पे, यौन हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो किसी बच्ची के पास हमारा टोल फ्री नंबर था, उस नंबर पे बच्ची का कॉल आया, फिर हमने बच्ची का सर्च किया। जहाँ बच्ची किराए रहती थी उसके पिता को भनक लगी, पिता ने वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, फिर पिता ने वहां से बच्ची को तीसरी जगह शिफ्ट किया, फिर पिता ने बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट की। हमने पीछा नहीं छोड़ा, हमने उसका पीछा किया, और जहाँ बच्ची को चौथी जगह शिफ्ट किया गया वहां पे, मतलब ये बात मुझे बताते हुए बहुत दर्द हो रहा है कि उस पिता ने पैसे के लिए अपनी बच्ची का सौदा किया। हर रात बच्ची को वो बेचता था पैसे के लिए, मज़ा 1000 रुपए के लिए अलग अलग पर्सन को बेचता था। हमें सूचना मिली, हमने कुछ गुप्तचर भी रखे, कुछ एजेंट भी रखे, हमें सूचना मिली कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। हमने फिर उसका CWC में एप्लीकेशन लगाया, फिर हमने थाने में भी FIR दर्ज करवाई, पिता को पेश किया गया, बच्ची को पेश किया गया, बच्ची को काउंसलिंग करी गई और बच्ची ने हकीकत की जो बताई, और फिर बच्ची को शेल्टर मिला, पिता को जेल मिला। और इस तरीके से जो बच्ची थी, आज बच्ची को हमें देखते हुए बहुत खुशी होती है कि बच्ची के जो चेहरे की रौनक थी वो हम वापस ला सकते, और जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो। आज बच्ची बहुत खुश है, जहाँ पे भी है वो शेल्टर में है, आज वो अपनी खुशी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है, और उसकी जो जीवन की जो जर्नी होती है, जीवन की जो रूटीन है, वो चल रही है। आज बच्ची अगर हम फ्री मिल भी जाएगी तो हम ये चाहते हैं कि बच्ची हमेशा खुश रहे। ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस था विकल्प संस्थान में आने के बाद। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से, क्योंकि उसका पिता जो था वो नशे का आदत था, उसको पैसा चाहिए होता है और वो पैसा कहाँ से लाए क्योंकि उससे कमाई होती नहीं। और ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो नशे की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद।
1: जी सर, तो इस पूरी बात में आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम कर रहे हैं, आपका वहाँ जुनून है कि कुछ बदल दें, समाज में कुछ बदलाव कर दें और कुछ लोगों के जीवन में रोशनी भर। तो इस प्रयास में आपने एक बच्ची की कहानी बताई। अब वो बच्ची की उम्र कितनी है अभी वर्तमान में?
0: अभी बच्ची 14 साल की है।
1: जी बढ़िया है। वो डेफिनेटली चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में अभी होगी और 18 साल तक वहाँ रहेगी। 18 के बाद आपके पास क्या योजना है उस बारे में भी हमें सोचना है। और सरकार की जो पॉलिसी है वो ये है कि 19 साल तक उसको एक मदद मिलेगी, एक साल तक कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी, तो 19 साल के बाद उसको समाज में छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप क्यों ना उसकी अडॉप्शन की प्रक्रिया में आप सहयोग करें। अडॉप्शन क्या आपने उसके लिए अडॉप्शन के लिए आवेदन किया है?
0: अभी नहीं किया सर।
1: PWC ने अपने
0: आदेश
1: आखिर तो प्रताप मैं आपको बताऊं कि देश में चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर एक रेगुलेटरी एक्ट है और इसके तहत 0 से 18 साल तक के बच्चों का अडॉप्शन किया जा सकता है। और कोई भी आर्थिक रूप से संपन्न और संपन्न पारिवारिक स्थिति से दंपति बच्चे का अडॉप्शन कर सकता है और उस पोर्टल पे आवेदन कर सकता है और CWC और जिले के DCP यूनिट के माध्यम से अडॉप्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो आप भी कोई बच्चा अगर आपको मिले तो आप उसको तुरंत PWC तक बच्चे को पहुंचाएं। और यदि आपका भी बच्चा है और आप उसको नहीं रखना चाहते तो बच्चे को फेंके नहीं, हर जिले में अस्पताल में DCP यूनिट में पालना गृह है और पालना गृह में यदि आप बच्चे को छोड़ते हैं तो आप उसको किसी प्रकार की कानूनी उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर नहीं होगा और किसी भी प्रकार का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं किया जाएगा और आपकी गोपनीयता को भी रखा जाएगा। तो आप बच्चे को फेंके नहीं, जिले के अस्पताल में, जिले के DCP यूनिट में रखे हुए पालना गृह में आप बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो ये थी बात हमारे जुनून की, जुनून में हमारे साथ कोमल। तो कोमल आप हमें कुछ और कहानियां बताना चाहें तो हमारे श्रोताओं को, जिससे कि उनमें जागरूकता का प्रसार हो।
0: स्टोरी में आपको बताऊंगी, हमारा मेन मकसद ये है कि महिला के अंदर जो समाज का डर है, समाज का डर इस वजह से है कि आज महिलाएं समाज के डर की वजह से बहुत सारी हिंसा सहती है, बहुत सारी मार सहती है, लेकिन वो बाहर नहीं बोलते कि से मेरा घर टूटेगा या मेरे समाज में बदनामी हो। इस वजह से बहुत सारे ऐसे घर टूटे हैं, बहुत सारे घर हैं या बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया है। और इसका मेन वजह यह है, इसकी मेन रीजन ये है कि महिलाओं के अंदर डर है, समाज का डर। सबसे पहला डर उसके अंदर समाज का है कि समाज क्या बोलेगा, क्योंकि सबसे पहले उंगली उठती है औरत के ऊपर। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन समाज का आज मैं इतनी बड़ी हुई हूँ तो मैंने खुद ने ये देखा है कि आज से अगर गलती अगर लड़की की है या लड़के की भी है, लेकिन उंगली हमेशा लड़की के ऊपर ही उठाई जाए कि लड़की की वजह होगी। अगर लड़की को बेवजह मारा भी जा रहा है तो समाज यही बोलेगा कि लड़की की ही गलती हो, तो लड़के ने हाथ उठाया होगा। उसके पीछे का जो कारण है वो जानने की कोशिश नहीं की जाती। और हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान है, पुरुष प्रधान समाज की वजह से बहुत सारी ऐसी महिला है जो गुट गुट के जीने के लिए मजबूर है, जो कि उसको पता है कि शादी के बाद उसके बच्चे हैं, अगर वो सुसाइड कर लेगी तो उसके बच्चे है वो घर घर के भीख मांगने लायक हो जाए। अगर वो अपने मायके जाके बैठती है तो वहाँ पे भी वो अपने भाई भाभी की नौकरानी बन के जिए, उसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं होगा। ये सारा चीज सोचने के बाद वो बहुत सारी ऐसी चीजें सहन करती रहती है, बहुत सारी मार है, बहुत सारे अत्याचार है सहन करती रहती है, लेकिन वो कभी बाहर नहीं बता। तो हमारा मेन मकसद ये है कि महिलाओं के अंदर जो डर छुपा हुआ है, जो डर बैठा हुआ, उसको बाहर निकालना। हम ये नहीं चाहते कि अगर आपका पुरुष आपके थप्पड़ मार रहा है तो आप उसके थप्पड़ मारो, बट एटलीस्ट आप ऐसा तो करते हैं कि अगर वो थप्पड़ मार रहा है तो आप आवाज उठाए कि मेरी गलती नहीं है, आप मुझसे बात कीजिए, आपको किससे तकलीफ है, आप ये जो मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है। बस वो आवाज उठा सकते। और इसमें 50% नहीं, मैं 80% मानूंगी कि जो रीजन है वो या तो समाज का है या किसी भी प्रकार के नशे का है। क्योंकि आदमी के जब नशे का टाइम हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का हो या फिर शराब का हो, अगर उसके नशे का टाइम हो जाता है और उसको उस टाइम पे नशा नहीं मिलता है, नशा करने का पैसा नहीं मिलता है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैंने इस नशे के ऊपर कुछ लाइन लिखी है, वो मैं आप श्रोताओं के सामने कुछ शेयर करना चाहूंगी। नशा वो चीज है, पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, नशा पत्नी का सिंदूर छीन लेता है, माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, नशा माँ की दवा और पिता का सम्मान छीन लेता है, बेटे की पढ़ाई और बेटी का बचपन छीन लेता है, नशा बहन का प्यार और भाई के अरमान छीन लेता है, बहन का प्यार और भाई का अरमान छीन लेता है, और नशा अंत में व्यक्ति के शरीर से ताकत और ताकत से आत्मा छीन लेता है, और ये नशा नाश का द्वार होता है, और जो द्वार है वो आपकी बर्बादी और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला द्वार होता है। और एक बार नशे की तरफ आपने कदम बढ़ा दिया तो यही समझो कि आपको उसका अंत, उसकी मंजिल मृत्यु ही होती है। तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो किसी भी तरह का नशा करता है, आप एक बार सोचिए कि नशे से कितने लोगों का जीवन खराब हो रहा है। आपने देखा होगा नशा करने वाला झोपड़ी में रहता है और नशा करवाने वाला बंगले में रहता है। आपने कभी देखा होगा जो शराब पीता है वो झोपड़ी में रहता है और शराब पिलाने वाला बंगले में रहता है। शराब पीने वाला साइकिल पे जाता है और शराब पिलाने वाला मर्सिडीज में जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए, नशा आपको बर्बाद ही करता है। कभी वो किसी का घर नहीं बनाता कि नशा करने वाला हमेशा सक्सेस होता है।
1: बहुत ही बढ़िया आपने कविता नशे को लेके पढ़ी है और विचार है आपके बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नशा है वो नशा करने वाले के लिए उसका जीवन भी ले सकता है और उसको आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताइए कि कोमल जी, आपको क्या लगता है कि हम कैसे इसको नशे को दूर कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी सारे नशे की दुकानें खुली हुई है या फिर जो इंटरनल बेचते हैं, उनकी सूचना देने वाले के लिए अगर आप 5,000 का या 10,000 का इनाम देना कि नशे की जो भी सूचना देती है उसको इनाम दिया जाएगा, तो आपको उसमें सुधार मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल स्टोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे खुद चुपके आपको ये जो कॉलेज के पास, कैंपस के पास होते हैं, इंस्टीट्यूट के पास होते हैं या फिर किसी हॉस्पिटल के पास होते हैं, ऐसी बहुत सारी शॉप है जो खुद चुपके ये नशे का धंधा करती है। उनको पैसों से मतलब होता है, तो हम लोग वहाँ मुहिम चला सकते हैं, स्कूल में कैंपेन कर सकते हैं, कॉलेज में कैंपेन कर सकते हैं, और उनको कुछ ऐसी पीपीटी दिखाई जाए, उनको डीपली ऐसे मैसेजेस दिए जाए, डीपली ऐसे वीडियोस शेयर किए जाए जो उनको बहुत दिल तक या बहुत इंटरनल उनको बहुत टच करे कि नशा करना बहुत खराब हो गया है। ऐसे इस मुहिम को चलाने के लिए हमें ऐसे इतने सारे यूथ को इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे 18 से 25 साल के यूथ है उनको ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि उनसे इंस्पायर होके बच्चे जो हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, वो उनसे इंस्पायर होके अपना जो डिसीजन है नशा करना है उससे थोड़ा सा दूर हो पाए।
1: तो नशे को लेकर जो आपकी बात है वो विचार है निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है। अभी नशे को लेकर क्या हालात है ग्रामीण इलाके में, कैसे आप देखते हैं युवाओं को, वो क्या कर रहे हैं, नशा किस प्रकार का नशा बढ़ रहे हैं?
0: अभी नशे का ये है कि उदयपुर में नशा पहले कुछ कुछ जगह पे होता, लेकिन वो टूरिस्ट सिटी बनने के बाद में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो खुद अपने साथ लेके भी आते और यहाँ पे भी सर्च करते हैं। तो युद्ध को लगा कि क्यों ना हम कि युद्ध बहुत ज्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको जहाँ मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अगर टूरिस्ट आएंगे उनको पैसे दे देंगे।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो जुनून, और जुनून में आपकी है फ्रीक्वेंसी 107.8 FM। बने रहिए और हमें सुनते रहिए। तो कोमल बता रहे हैं कि कैसे नशा जो है वो ग्रामीण इलाकों में टूरिज्म के माध्यम से पहुंच रहा है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो हम रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए भी बात करते रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैसे देश में आगे बढ़े, यानी कि टूरिज्म भी रहे और वो जिम्मेदार टूरिज्म, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वहाँ के विकास को, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को, वहाँ के हेरिटेज को और वहाँ के समाज को ना खराब करे, ऐसे टूरिज्म की हम बात करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो, सस्टेनेबल हो। लेकिन हमें जानने को मिल रहा है कि उदयपुर का जो पर्यटन मंत्री है उसने कहने की नशे में कॉन्ट्रीब्यूट किया, वहाँ के स्थानीय कोमल हमें बता रहे हैं। कोमल बताएं कि कैसे पर्यटन ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है आपके क्षेत्र में।
0: जी सर, तो उदयपुर सिटी बहुत फेमस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे आपको नेचर देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी हेरिटेज वॉक है या फिर ऐसी हिस्टोरिकल पैलेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके लिए इंडिया ही नहीं, इवन ऑल वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। बट क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं जो किसी भी तरह के नशे के एडिक्टिव होते हैं। अब उनको जो एडिक्शन होता है, उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर यहाँ आके वो केमिस्ट्री की शॉप से पूछते हैं या फिर किराना से पूछते हैं, और धीरे धीरे आप ये देखो ना कि अगर हम किसी शॉप पे जाके किसी चीज के लिए 10 बार बोलेंगे कि ये चीज है क्या, तो शॉप वाले को लगेगा कि यार ये चीज मुझे रखनी चाहिए क्योंकि इसका मार्केट है, और धीरे धीरे वो गुपचुप भी उस चीजों को रखते हैं और फिर उनको जो होते हैं बीच के जो डीलर होते हैं उनको भी हायर किया जाता है, और धीरे धीरे एक बार उनको अगर अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और एक बार वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो युवाओं को लगता है कि उस पर्सन को लगता है कि यार पुलिस वाले ने मुझे नहीं पकड़ा तो अब वो क्या ही पकड़े, और धीरे धीरे वो इस गिरफ्त में जाते हैं, और जब कोई लाके उसको सेल आउट कर रहा है तो वो कहता है कि एक बार मैं उसको ट्राई करूँ उसका टेस्ट कैसा है, और वही टेस्ट जो फर्स्ट टाइम का जो टेस्ट होता है वही आगे चल के उसके लिए एडिक्शन बन जाता है, और धीरे धीरे इस गिरफ्त में 18 से भी कम साल के, बहुत सोचने लायक बात है कि 18 साल से भी जो स्कूल गोइंग है 9-10 के बच्चे वो भी नशे के शिकार होते जा रहे, जैसे स्मोकिंग जो है वो करते हैं, बियर पीते हैं, गांजा पीते हैं, इसका मेन कारण ये है कि उनको वो इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और उनको पता है कि कहां से हमें ये चीज मिल सकती है, कहां से वो परचेस कर सकते हैं, तो सबसे मेन रीजन ये है कि वो इजीली अवेलेबल हो पा रहा है।
1: जी, और किस तरह के उदाहरण आपने देखे? मैंने पिछले दिनों एक शराब की दुकान है वहाँ से एक छोटे बच्चे को, मैंने 12-13 साल के बच्चे को बियर खरीदते हुए देखा, और मैंने वहीं पर दुकानदार को मैंने विरोध किया, दुकानदार ने उसको फिर शराब देने से मना किया, अन्यथा अगर मैं नहीं रोकता तो वो दुकानदार उसको शराब बेच रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हमारे सामने हैं जो हमारे दुकानदार हैं, जो शराब की दुकान पे काम करते हैं, उनको भी समझना है कि वो छोटे बच्चे के हाथ में शराब की बोतल ना दे, और इसके साथ ही अगर ग्राहक भी ये घटना देख रहा है तो ग्राहकों का भी फर्ज बनता है कि वो छोटे बच्चे को वहाँ से शराब ना खरीदने दें और दुकानदार को भी मना कर दें। तो कुछ ऐसी ही बात है जो ये हम सबको पहल लेने की जरूरत है कि ऐसा कुछ होते हुए अपने इलाके में देखते हैं, खासतौर पर सरकार के द्वारा चलाई गई दुकान पर यदि ऐसा हो रहा है तो उसका विरोध करना आवश्यक है, और अब तो सरकार के भी पंचायती राज के रूल्स में भी है यदि किसी गाँव की 50% आबादी चाह ले तो वो अपने गाँव के ठेके को अपने गाँव से बाहर कर सकते हैं, और जरूरत है कि पंचायत में ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव लिया जाए। क्या आप जानते हैं? तो इसलिए हम लेकर आते हैं ऐसा ही सुलझुनू जिसमें आप न केवल आप अपनी तकलीफ बदल सकते हैं, अपने गांव और अपने समाज के लिए बदलाव के लिए भी काम कर सकते हैं। तो आज हमारे हाथ में ऐसे ही क्रांतिकारी उदयपुर से कोमल, कोमल का नाम बड़ा कोमल है लेकिन उनके जो काम है उनमें दृढ़ता है, उनमें एक आत्मविश्वास है और उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून। कोमल आप बताइए कि आप उदयपुर के बारे में क्या सोचते हैं, उदयपुर को कैसे शहर बनाना चाहते हैं?
0: मेरा सपना ये कि मैं उदयपुर को क्लीन सिटी तो वो है, बट मैं ये चाहती हूँ कि उदयपुर में अभी बहुत ज्यादा नशा होने लग गया है और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें युवा लोग भटक रहे हैं। युवा लोग भटकने का मतलब है कि आज जो बच्चे हैं स्कूल जो गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल में जाके हम लोग सेशंस लेते हैं, उनका माइंड बहुत डाइवर्ट हो चुका है, उनका जो माइंड है वो पढ़ाई से हटके वो जो अदर एक्टिविटीज होती है जैसे घूमना फिरना, दोस्त बनाना, होटलों में जाना, कैफेज में जाना, फैशनेबल कपड़े पहनना, इन चीजों की तरह उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे अगर जब तक अपना करियर न बना ले वो इन चीजों में न पड़े, क्योंकि अभी इस जमाने में आपके इतना हाई कंपटीशन हो चुका है, किसी भी फील्ड में आप जाए किसी भी सेक्टर में जाए, हाई कंपटीशन की वजह से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करने की एज में वो करियर बनाने की एज में वो भटक जाते हैं। होटलों में घूमना, यारे दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना, उस टाइम पे उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है, इस वजह से वो भटक जाते हैं और इस वजह से उनका करियर नहीं बनता है, और करियर नहीं बनने की वजह से उनको जॉब नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ, मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्योंकि मेरा थॉट ये है कि जो बच्चा 5th क्लास में जो बुक पढ़ेगा हिंदी की, वो चैप्टर उसके 6th क्लास में काम नहीं आने वाला, क्योंकि 6th क्लास में हिंदी का चैप्टर डिफरेंट होगा, लेकिन उनको जो अदर एक्टिविटीज जो कराई जाती है, जो मोटिवेशनल उनको जो स्पीकर के द्वारा जो बातें सिखाई जाती है वो उनके लाइफ टाइम तक काम आती है, जैसे उनको करियर गाइडेंस का है, या फिर सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर उनका कोई सेशन होता है, या फिर सेल्फ डिफेंस वाला है, या कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, या फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, या उनकी अदर एक्टिविटीज है, स्किल डेवलपमेंट वाला है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करवाए जाए तो बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करे तो भी आगे चल के अपना करियर बना सके। अगर बच्चा 10th फेल भी हो जाता है, क्योंकि सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर बच्चा 10th फेल हो जाता है तो उसको फैमिली से, समाज से, स्कूल से, अपने फ्रेंड सर्कल से इतना प्रेशराइज किया जाता है कि तू तो फेल हो गया, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस तरह हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाए, ऐसे उनको गाइडेंस दे, ऐसा उनका सेशन स्कूल में चलाए, करियर

0: गाइडेंस का कि बच्चा अगर नहीं होना चाहिए लेकिन इन केस अगर वो फेल भी हो जाता है या उनके परसेंटेज डाउन भी होता है तो वो अदर स्किल को अपनाकर अपना लाइफ या फिर अपनी चॉइस है या फिर अपने जो सपने हैं उसको पूरा करता है।
1: निश्चित रूप से युवाओं के सामने एक कंफ्यूजन होता है, वो एक ऐसी दौर है जब आदमी अपने और अपने साथ साथ अपने मानसिक बदलावों से भी गुजर रहा होता है, तो और समाज के जो बदलाव है वो तो उसको प्रभावित कर ही रहे हैं, तो इन सारे अंतर्द्वंद के बीच वो बच्चा अपने आप को आगे बढ़ा रहा होता है, तो वो समय होता है कि उसको सही गाइडेंस मिले और उसको गाइडेंस के साथ साथ उसके हाथ को हुनर मिले और हाथ के हुनर के साथ साथ वो समाज और अपने देश के लिए कुछ कर पाए, और उसी समय यदि कोई नकारात्मक अनुभव उसको हो जाए तो वो जीवन भर उसे नहीं बुला पाता। और इसी तरह सब तरह की युवाओं के और बच्चों के जीवन को बदलने में लगी है हमारी आज की जीवन ही कोमल, और कोमल के साथ हमें ढेर सारी बातें, कोमल हम बातचीत तो करते रहेंगे लेकिन आप ये बताएं कि कुछ और ऐसी कहानियां जो मैं आपसे आप चाहते हैं कि इस मंच पर रखी जाए और मैं आपसे नहीं सुन पाया और आप उसमें रुचि दिखाते हैं, थोड़ा बताएं इसको।
0: मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं उन पेरेंट्स से अगर ये मेरा मैसेज किसी पेरेंट्स के पास जा रहा है तो सबसे पहले मैं उस लड़की के माता पिता से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा शराबी है, किसी नशे का आदी है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ, उसकी शादी न करें। मेरा कहने का मतलब है कि आपका बच्चा अगर किसी तरह का नशा करता है तो आपके बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, नशे से छुड़वाएं, उसकी शादी न करें। आप सोचते हैं मतलब लड़के के पिता माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देंगे तो ये सुधर जाएगा, नहीं, क्योंकि आने वाली लड़की डॉक्टर नहीं है। आप आने वाली बेटी का भविष्य मत बिगाड़े। अगर आपके बच्चे की किसी तरीके की कोई नशे की आदत है तो किसी बच्ची का भविष्य आप खतरे में न डालें और उसमें सारी हकीकत उसको बताएं। दूसरा ये बोलना चाहती हूँ मैं ये बच्ची के माता पिता से कि आप अपनी बच्ची को धन दौलत न दे, दहेज न दे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इतना संस्कार दे, इतना एजुकेशन दे कि बच्ची अपने पैरों पे खड़ा हो सके और शादी के बाद वो किसी के सामने हाथ न फैलाए और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, वो समय आने पर अपना खुद का और अपने परिवार का भी घर चला सके।
1: जी,
0: ये मेरा निवेदन है। जी सर।
1: हाँ श्रोताओं, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और ये संदेश सभी बेटियों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है कि वे भी जैसे ही अपनी उम्र में आगे बढ़े तो सिर्फ राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना ना देखे, वो भी अपने जीवन में एक मकसद बनाए कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा काम करना है, मुझे देश के लिए कुछ उत्पादक नागरिक बनना है और मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है। तो आपका सपना अगर राजकुमार को पाना होगा तो हो सकता है कई बार आपको राजकुमार ना मिले और राजकुमार के बदले में एक नशे और युवा के रूप में एक आपको पति मिल जाए, तो ये धोखा आपके साथ भी हो सकता है। तो आप अपने जीवन का मकसद जो है वो राजकुमार के संग विवाह करना ना होकर अपने जीवन का मकसद खेलों में कुछ अच्छा करना बताए, किसी की महाविद्यालय विद्यालय में पढ़ाने का सपना देखें, आप देश के लिए किसी उत्पादक फैक्ट्री में काम करने का सपना देखें, आप इंजीनियर बनने का सपना देखें, आप नर्स बनने का सपना देखें, आप डॉक्टर बनने का सपना देखें, और तो और आप देश की राजनीति में राजनेता बनने का सपना देखें। ये सपने तो कुछ काम के हैं। राजकुमार तो आपके जीवन में आपका जब आप इस सफर पे चलेंगे तो उस सफर पे हम सफर तो आपके साथ आ ही जाएगा। तो और वैसे भी हर सफल व्यक्ति के पीछे के साथ कौन नहीं डूबना चाहेगा, तो कुछ ऐसा ही हम सफर आपके साथ अपने आप ही डूबने के लिए मिल जाए। पहली बात तो है कि आप एक मजबूत सफर पे निकले, एक सफर पे निकले जिससे आपका जीवन और आपके आसपास के समाज का जीवन बदले, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन हमारी बेटियां ये भूल कर बैठती हैं कि वो जैसे ही बड़ी होती हैं तो राजकुमार के साथ विवाह करने का सपना देख लेती हैं और उन्हें कुछ नया सपना समाज के द्वारा बताया गया है। तो हमारे बीच में है कोमल जो इस तरह के गहरे विषयों पर हमारी बेटियों के साथ बात कर रही है और इस शो में तो हम पूरी दुनिया के साथ आज बात कर ही रहे हैं। तो ये ऐसे विषय हैं जिन पर सामान्यतः समाज में बात नहीं की जाती है, लेकिन आज हम इस रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके बीच के सारे विषय लेकर हैं। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं डॉक्टर, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि कोमल आप ये बताएं कि नशे को लेकर राजस्थान सरकार भी जल्दी ही डब्ल्यू को अपने अभियान का आगाज करने जा रही है और नशे को लेकर एक अत्यंत गंभीरता के साथ चलाए गए अभियान में पूरा राज्य भागीदारी करेगा, सभी नागरिक जुड़ेंगे, सभी संस्थाएं सरकार के विभाग कॉर्पोरेट को भी इसमें जोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है आप कि सरकार के साथ क्या नया किया जा सकता है नशा मुक्ति अभियान के अंदर? आप अभी राजस्थान के सीएम अभी साथ हम बात कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं?
0: मेरा मानना यह है कि सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, बहुत सारे कायदे बनाती है, लेकिन उसी को सरकार ही तोड़ देती है। जैसे कभी ब्लैक डे होता है, उस दिन शराब नहीं बेचने का नियम बना रखा है, शटर डाउन होगा, लेकिन पीछे की विंडो से शराब बिक रही है। और आप देखिए कि पीछे की विंडो से अगर शराब लिया जा रहा है तो वो पुलिस वाला खुद ले रहा है, जबकि वो सरकार का ही आदमी है। नियम यहीं से तोड़ना स्टार्ट होता है कि नियम बनाते भी आप है और तोड़ते भी आप है। अगर आपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आपने बनाया है तो उसको फॉलो आप कीजिए पहले, क्योंकि जब तक अगर मिनिस्टर वगैरह या फिर गवर्नमेंट का कोई आदमी उसको फॉलो नहीं करेगा तो लोकल पब्लिक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर इस मुहिम में महिलाओं को ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए तो आपको 100% तो नहीं मान सकती, लेकिन 90% रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे पुरुष नशे के जो आदी है वो उससे दूर हो सकते हैं। चांसेस है अगर उसमें इन्वॉल्व महिलाएं ज्यादा होगी 90% इस मुहिम में, तो 90% बच्चे या फिर 90% पुरुष है नशे से छुटकारा पा सकते, मेरा तो मानना ये है। पर
1: बहुत बढ़िया कोमल, आपने हमसे बात की, आप ऐसे ही साथ काम करते रहे और अपने चैरिटी वाले काम में भी जुटे रहे, और आपकी टीम को और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, हमारे रेडियो मधुबन की तरफ से भी शुभकामनाएं, और उदयपुर को सुंदर नगरी, झीलों की नगरी को और सुंदर बनाते रहे। वहाँ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, समाज में आ रही विकृतियों और बदलावों पर भी अपनी सटीक नजर रखी जाए और तुरंत होने वाले बदलावों को नोटिस किया जाए और उसमें समाज को जागरूक कर बदलाव के लिए आह्वान किया। तो आप इसी प्रकार से जुड़े हैं और हमारे साथ काम करते रहे, रेडियो मधुबन की पूरी टीम की तरफ से आपको सलाम और नमस्कार।
0: एक मैसेज मैं उन शराबी भाइयों को देना चाह रही थी कि 1000 की बीयर की बोतल शराबी एक बार में खत्म कर देता हूँ, लेकिन वही 1000 रुपए का जो सिलेंडर आता है वो 2 महीने तक पूरे परिवार का खाना बन सकता है। तो शराबी भाई इस बात को सोचिएगा कि 1000 की बीयर की बोतल एक बार में आपको काम में लेनी है या 1000 का सिलेंडर आपको अपने परिवार के लिए 2 महीने का खाना बनाने के लिए काम लेना है, ये बात आप सोचिएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया और आपने मुझे मौका दिया, इसलिए पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, और सबसे ज्यादा थैंक यू सो मच शरद भाई आपका, और कृष्णा बहन आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू कोमल, तो फिर से ऐसे ही हम एक जुनूनी के साथ आपको मिलवाएंगे आपके फेवरेट शो जुनून में, और जुनून में फिर से नई बात होगी, एक नया आयाम होगा और एक नए जीवन को हम छुएंगे। तो फिर से मिलेंगे, योर दोस्त एंड दोस्त सनी ने शरद, जय हिंद।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भूपाल राम पुरे जी जो कि आबरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए

0: से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मायने रखता है। जहां पर हम रहते हैं जैसे हमारा गांव और हमारा अंचल पर्यावरण सशक्त होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये एनसीईआरटी की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो एससीईआरटी के द्वारा तय एनईपी के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार्ट फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से,

0: आप पढ़ क्यों रहे? आपने देखिए, आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़े? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा? 11वीं में क्यों पढ़े? क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा। अपने अंदर जो भी है उसको बोलो भाई। आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा इसका मतलब। तो हम यहाँ पर आए हैं, क्यों आए? बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहाँ बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक आध जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना। मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए। भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो। 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई, अपन पढ़ क्यों रहे? बोलिए,
1: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए।
0: अच्छा करना है? क्या अच्छा करना है? आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे? बैठो। और कोई बेटा, बात ये है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या? बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या सर, आप भी बता सकते हैं, जो भी कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, चहुंओर विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए? यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा दे करके पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं?
2: आपको आगे बढ़ाओ,
0: आप आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका? एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए, समझ के लेवल की बात हो रही है। हाँ, तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ, मेरे ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज को व्यक्ति समझे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये बात तो समझ में आनी चाहिए।
3: लेकिन बोल नहीं पाते सर।
0: सर तो बोलना
3: बोलना पड़ेगा, लेकिन सबका उत्तर है सबके पास
0: नहीं तो सर ये बोले तो बताएं।
3: झिझक दूर करके
0: सर इनको बात बता भी दी कि क्यों क्या है ये। भाई किसी बच्चे ने अच्छे अंक प्राप्त किए इसका मतलब उसने समझा है तो उसको करना है, बात ये है। अपन कई बार क्या करते, पढ़ लिया, रट लिया, बोल दिया, 100 में से 100 नंबर आ गए, भैया वो पर्याप्त नहीं है। समझ करके लागू करना ये पर्याप्त है। जैसे आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है। यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए। ये चीज सीखनी है अपने। भाई ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते? ये आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई, नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो। नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए? अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ये काम कौन करेगा? कौन? हम कौन? मेरे घर पर मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा? आपको भी होगा ना। तो ये काम तो आपको मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर? पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए

0: पहनते हैं,
1: पहनते हैं ना आप गंदे कपड़े पहनते हो, तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको, आप धोते हो ना, ठीक है ना। तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो, फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा? तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे? उत्तर दे सकते हो, पर्यावरण किसको कहेंगे? इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे। अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो, ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मौका। तो और बोलो
2: बोलो
1: बोलो बोलो बोलो
3: पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे, पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है।
1: भाई आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं? बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? क्या चीज है ऐसी चारों तरफ,
3: दिन हो या रात, उससे प्रभावित हो रहे हैं?
1: किससे प्रभावित होते हो, किससे प्रभावित होते हो, पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ। किस किस से प्रभावित हो रहे हैं पर्यावरण में, क्या क्या आ रहा है?
4: जल,
1: जल आता है बिल्कुल,
4: पौधे, भूमि।
1: बोल बोल बोल, तू बोल यार भाई।
4: पेड़ पौधे,
1: पेड़ पौधे, और
4: जल,
1: जल,
4: भूमि,
1: भूमि आ गई,
4: पहाड़,
1: पहाड़ आ गए,
4: हवा।
1: बेटा आप समझ में आया, समझ में आया ना, ये सारी चीजें मिल करके हमको प्रभावित करती है। और कहां तक प्रभावित करती है? हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है। किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है, उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा,
3: बीमार हो जाए।
1: क्या क्या बीमारी होगी बोलो ना बेटा,
3: बोलो।
1: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा?
3: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों की जड़ है वो अपना पेट ही है। और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा
1: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है,
3: पूरी बोल।
1: अरे बोलो ना, तुम इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे, बैठे इतने लोग,
3: सब अपने ही है यहाँ पे, आपको डरने की बात नहीं है।
1: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे। नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे हैं। तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते। नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, कि जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझा रहे निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे।
3: सही।
1: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे, आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाएं। नौकरी अहम नहीं है अपने यहां पर, जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो भी कमा के खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना। तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई, ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा। आप तो नौकरी भी नहीं करते, मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
5: शिक्षा का मूल उद्देश्य
1: ये बात करनी है, बात ये करनी है। आज हम आए हैं इसलिए, ये बड़ी क्लास लेने का मतलब यही है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है, लोकल में बताना चाह रहा। आप हमारा सम्मान करते, क्यों करते? क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की इनको, पूछो। जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
5: जी
1: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ये सर मतलब क्लास में घुस गए, हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
3: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पर लेक्चरर थे और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था और उसी की बदौलत हम आज यहाँ तक खड़े हैं और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर।
1: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में और रीजनल कॉलेज में, वहां राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे, वहां क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे, मैं अच्छा मेहनत करता था इसलिए। वहां जब जाता ना,
5: इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए?
1: नहीं सर,
5: अब उसे पटानी
1: पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं कर रहे थे, अब उस तक तो मैं जाएंगे
5: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने को, क्या हमको पढ़ना है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज के लिए अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पुरेश जी अपना बात को रख रहे हैं,
1: करना ही पड़ेगी सर।
5: क्यों सर?
1: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब आप यहाँ का हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ूं, समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई। वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3-4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस, बस ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है इनको
5: रेफरेंस,
1: इनकी इनकी आवश्यकता नहीं, ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहूं, आप समझ रहे हो ना। तो चल पड़े तो चल पड़े सर, ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे तो वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है, पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना क्यों है वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई। कमाना तो एक जरिया हो सकता है
5: जी,
1: खाना तो एक जरिया हो सकता है, दो टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है। तो भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं ये बात समझ में आई? बेटा तू बोल यार, बोले जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
5: अपना नाम बोल।
1: हम क्यों पढ़ रहे
5: हैं? क्लास
0: मेरा नाम कालूराम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ
1: जी जी,
0: स्कूल सेकेंडरी स्कूल मदल्ला।
1: हाँ अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो,
0: ताकि हमारा विकास हो सके और
1: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा? बोलो बेटा बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे? सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा, गजब यार। तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे, बोलो बेटा बोल बोल।
0: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे और खाना पीना अच्छा होगा,
1: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए,
0: शुद्ध होना चाहिए,
1: ठीक है ना। शुद्ध कैसा? पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे, कैसा स्वस्थ? जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा, ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहां कहां से आते हैं सर बताना इनको, हल्का सा हल्का हल्का।
5: जो कुछ भोजन हम लेते हैं ना भोजन करते हैं बच्चे,
1: सर ये दे दीजिए,
5: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे, भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन माने प्योर, और जो भी ले रहे हम जानते कितना प्योर है, प्योर माने शुद्धता, उसमें नहीं मिलावट किसी ना किसी रूप में आते हैं। सब्जी में देखते हैं तो कितना चकाचक दिखाई देता है, लेकिन उसका पहले इंजेक्शन उसी कलर का कटेंगे तो लाल, और जब खाएंगे पेट गड़बड़ होता है कि नहीं
1: सर? क्या बता रहे बताओ मैं
5: तो, पानी से भी
1: जो लौकी है ना उसमें इंजेक्शन लगता है, लौकी फट से बढ़ जाती है दूधी दूधी तुम्हारी, तो वो जो इंजेक्शन वाली दूधी तो नुकसान करेगी ना, पर अपनी देसी वाली
5: जैसे आपका स्कूल में हम लोग देखे लौकी का दुधी का लगा हुआ है
1: बिल्कुल,
5: और
1: बिल्कुल।
5: पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, मैंने बीचा आ सकता आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारा विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं। क्या क्या देखे सर?
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा है ना यहाँ पर, आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें, उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया।
5: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल में, हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
5: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा, ठीक है ना, पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी, तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं। अब ये कोई बड़ा काम नहीं है, 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी टमाटी बैंगन लगा दिए,
5: मिर्ची लगा दी,
1: सेम फली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए,
5: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो, ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते
5: हैं। उसके साथ रासायनिक आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है, अच्छा सोच उस पौधा को दो, अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है जो हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे, और स्कूल में लेकर जाएंगे पक्का होने के बाद, सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा प्रैक्टिकल आप देखना होगा। तो चलिए हमारा तपोवन में सब कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती के साथ योगी खेती करते हैं, लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद, स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन जो लगा है अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
5: इसका बाद फिर बड़ा एकर में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
5: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे,
1: नेक्स्ट
5: अल्प विराम का बाद।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: बेटा देखो, अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण। पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर, इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है। मैं बताऊं आप यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात सर, एक्चुअली में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना। तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके, रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का, भैंस का, अपना जो गोबर है ना, बकरी का जो भी ये खाद है उसको अगर अपन उसमें सही तरीके से देते हैं, अपन शुद्ध पानी से उसकी परवरिश करते हैं, अपने हाथ से उस छोटे से पौधे को अपन बड़ा करते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाए। जब अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपना विकास बढ़िया हो जाएगा, और अपना विकास बढ़िया होगा तो अपने विचार बढ़िया हो जाएंगे, और उसको सही दिशा में उन विचारों को लगा दिया तो निश्चित रूप से हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रीफेस में सर ये दिया हुआ है सर।
2: जी जी
1: बिल्कुल। देखिए इसकी मैं बताऊं, इसकी जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मैं देख रहा हूं 2005, और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
2: क्या बात,
1: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा उस किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पर सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा के हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा के हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लग गए, उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें, और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई, बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
2: जी,
1: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, करीब प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई इतने से तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है। तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया, सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
2: नहीं है,
1: क्यों क्यों हटाया, ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है, एक मात्र 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी वो जरूरी नहीं है। इनको पूछो 100 में से 100 नंबर लाएगा वो फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी। तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरह से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से सोचना है। शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारिणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए। ये है शिक्षा का
2: क्या बात?
1: सर मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है? हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में? हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती है, पता है आपको? नैनो यूरिया देखा है? अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। तो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते हैं ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है। 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको बॉइल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसला मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहां भी लगा हुआ है आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है। कैसे? पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होगी। वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया, हम बीमार होंगे कहां से? बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे, आप अंदर से मजबूत है, आप कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
2: प्राकृतिक संसाधन।
1: हाँ, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर, इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रिया डिजेनरो में मेरे ख्याल से, राइट? इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई। वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है, वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है, आप समझ गए? आप ये बताओ, सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना? आप समझ गए बात को? भाई हमको क्या समझ रहे हैं वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है, तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया?
2: उसका राज सोने वाला आपका ये जो कर रहे इतना है, इसका राज क्या? सात्विक शुद्धता है ना, और परोपकार
1: राज तो इसका यही है,
2: विचार है ना, विचार होना चाहिए,
1: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए,
2: तब जाकर
1: मुझे जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दो जो समझाना है वो समझा के जाओ।
2: सॉरी तो सबका है
1: मेरा,
2: लेकिन विचार
1: ये भैया खड़े हैं
2: भावना उससे,
1: ये भैया खड़े हैं आपको बताओ कि हमने जब यहाँ पर, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर, कहाँ तुम्हारे एरिया में आबू रोड में, मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, लोग बजट एक देते कि यार वो वहां बैठा है उसके बजट दे दो, पूरे एरिया का बजट आता था, तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहां आता था तब ऐसा नहीं था ये, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया, पूछो इनके वहां निचलागढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूं देखो भाई साहब ने बुलाया, मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमारे जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है, दूरगामी सोच के साथ अपना विचार है, अपना संकल्प है, तो वो बढ़िया रखना, हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। भाई ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं पढ़ाने तो नहीं आया, नहीं मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं, ये मुझे पकड़ के क्यों लाए।
2: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे, फाउंडेशन है इसका ऊपर में जितना मंजिल बना सकते हैं, जो अभी जो ज्ञान सुन रहे ना वो ज्ञान आपका बेस, इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा, जो चरित्र निर्माण होगा कोई भी रोजगार का चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको, सब लोग
1: आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की।
2: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण, विचार निर्माण, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र।
1: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना, खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति अपने खूब दे रही है, गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं, इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे, सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो, करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं अरे यार आज तक तो नहीं हुआ ये क्या कर लेंगे, भाई हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने, अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए, आपको अपना प्रयास करना है, अपने आप प्रकृति दे देगा नहीं देगा, तो आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना, खाने की चिंता नहीं करनी है, भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से, ये तो नौकरी भी नहीं की है, नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो, हम तो हमारे एरिया में घूम रहे, ये तो कहां घूम रहे, उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे, तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे हैं, देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी, पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये देखो वहीं पर आ गए, क्यों चिंता है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, चरागाहों में चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था, कब सोचा था, 1992 में सोचा है मुझे लगता है, अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई, इसलिए अब हम खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ, भाई साहब आप किसका काम करेंगे, हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को, हमने आपसे यही वादा किया, मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा, बस पेड़ के पौधे जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा, बस यही काम करना है,
2: देते चलो बस,
1: बस करते चलो, करते चलो,
2: देते जो भी हमारा पास,
1: देखिए सर इसमें संयुक्त राष्ट्र
2: रिटर्न मिलेगा, अच्छा सोच कर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।
1: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, पानी नहीं है साफ,
2: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम है दिक्कत होता है ना, कितना दूर जाना पड़ता आप लोगों को, जाते हैं ना पानी कभी कोई नहीं आता, तो पानी कहाँ से आता है घर के लिए, कहाँ से आता बहन तुम बता, देखी तुम्हारे घर में नल लगा हुआ है, बताओ नहीं कहाँ से लाते पानी बताओ, कितना दूर जाना पड़ता सबको पता है ना, तो पानी का कमी है कि नहीं।
1: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये देखो ये साइंटिफिक है, ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने भी मोटरसाइकिल ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी, तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूं कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो, आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चलाए, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले, कोई बात नहीं। सही बात है ना सर? अभी मैं वो टिकट लाया था मैं, सर मुझे कहीं से आना था, दो दिन पहले आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था। मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे? मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है। तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना भी, इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाश। आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं? घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का। हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग। भाई विकल्प अपने को काम में लाना, भूख तो मिटानी है, खा लो। कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा। आई समझ में? तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना? अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदल्ला में, और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कैमरा है, पर्यावरण पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है, भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बन
1: है, क्योंकि खुद वो नहीं पाएगा,
2: अपना परिवेश देख लेंगे, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं इस माध्यम से। सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे, वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे, तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए, जब उनको ड्यूटी था जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं जा सकते,
1: तो काम ही नहीं कर पाता,
2: नहीं कर पाता, लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए, जहां जितना भी समय दे सकते, ये कम बात नहीं और आपका भाग्य का बात है। ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा, देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव, हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा, एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं, क्यों? वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हैं ना। यस बोलो, यस आई कैन, जोर से बोलो, यस
3: आई कैन,
2: यस वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम कर सकती है,
1: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस जा रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज से बात, आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा।
2: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा, हम रोएंगे नहीं, खोएगा नहीं,
1: रोएगा,
2: हम पाएंगे। यस क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, यस आई कैन, वेरी गुड, मैं कर सकता हूँ, बोलो जोर से, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं ही किया था और मैं ही करूंगा, बोलो, मैं किया था, मैं ही करूंगा, वेरी गुड, ताली बजा,
1: वेरी गुड।
2: सर हमारा गणेश सर तो कौन भूल सकते भाई, हम निचलागढ़ से परिचित है, और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग लेते हैं?
4: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई, वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ, और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर, और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल।
3: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निदेशक हाकम खान।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैं गायक कलाकार आकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान के शिमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल, ढोलक, कमायचा, सारंगी, मोरचंग, मुरली, अलगोजा, सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निमूड़ा। ये निमूड़ा हमारे मांगनियर लोगों का गया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है आकम खान।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज मन की आंखों से प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं। आमतौर पर मुझे आप हमराही में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खास लोग मिल जाते हैं जो वाकई में जिनके लिए हम कह सकते हैं कि मन की आंखों से उन्होंने कुछ किया है। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और इनकी कहानी अपने आप में बहुत अलग है। और आप सब जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को लेकर के आते हैं जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए समाज में एक अलग अपना एक मुकाम हासिल किया है और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। न सिर्फ मेहनत के बल पर ये सब किया है, बल्कि उनका जीवन कई लोगों को प्रेरित भी कर सकता है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए मन की आंखों से के इस विशेष कार्यक्रम में हम ऐसे ही लोगों को लेकर के आते हैं। आज मेरे साथ रीना भाटिया जी जुड़ी हैं। रीना भाटिया जी ब्लाइंड हैं और बहुत देर बाद इनकी आंखों की रोशनी गई। कई सारे हादसे हुए इनके साथ, बावजूद इसके इन्होंने दोबारा से खड़े होने का, उठने का, अपना एक अलग स्थान बनाने का निर्णय लिया और आज ये सफलतापूर्वक वो सब कर रही हैं जो ये करना चाहती थी। ये सीए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। चलिए अब रीना जी से ही समझेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा। रीना भाटिया जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: तो संदीप जी,
0: जी सोचता हूँ आपने रीना जी की आवाज सुनी। आप रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी रीना जी, तो हमारे सुनने वालों को बताइए जरा आपके बारे में कि आपको आंखों की तकलीफ कैसे हुई और जब इतने दिनों बाद, यानी इतनी लगभग 15-16 साल की एज के बाद ब्लाइंड हो, तो फिर कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया जरा बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जैसे संदीप जी, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से कर रही थी जब ऑयल मिक्सिंग ऑयल ड्रॉप्सी का एपिडेमिक चला था, जिसमें ऑयल में कुछ लेड कंटेंट्स मिक्सिंग थी। मैं उसका विक्टिम थी, जिसकी वजह से मेरी सिर्फ विजन के अलावा पूरा बॉडी मूवमेंट भी हैम्पर हुआ था। आवाज चलना
0: रीना जी, जो आपकी प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को बताइए। शायद बहुत लोगों को समझ में हो सकता है ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि अचानक से सेकेंड ईयर बीकॉम में जब आप थे हिंदू कॉलेज में, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया?
1: बेसिकली 1999 में कुछ ऑयल में मिक्सिंग चली थी, धारा और मस्टर्ड ऑयल में, जिसका पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ था। मैं उसमें से एक विक्टिम थी, जिसकी वजह से
0: मिलावटी ऑयल, मतलब बहुत ज्यादा लोग खाने लग गए थे ऐसा।
1: हाँ जी, कुछ ज्यादा ऑयल और मस्टर्ड ऑयल में कुछ लेड

रास्ते में कोमा में स्लिप कोमा में चली गई थी। 2.5 महीने तक कोमा में रहने के बाद जब मेरे को वापस होश आया, तब तक सिर्फ ना मेरी विजन, उसके अलावा मेरी आवाज, बॉडी मूवमेंट पूरा इम्पैक्ट हो चुका था। बेसिकली ब्रेन का एक हिस्सा डेड हो चुका था, जो बॉडी कोऑर्डिनेशन को इम्पैक्ट कर, कोमा के बाद 1-1.5 साल टोटल सब सीखा, बोलना चलना जैसे बच्चा सीखता है, घुटनों के बल चल के, फिर आगे उंगली पकड़ के चलना। मैं अपने सहारे से बैठ भी नहीं पाती थी। खाना खाना या सब कुछ पूरा डिपेंडेंट था, कुछ से कुछ भी नहीं कर पाना। विजन एक पार्ट था उसका। उसके ये मैं 6 साल घर में रही, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत इनकरेज किया, मेडिकेशन होता रहा, पर डॉक्टर्स ने कहा ज़्यादा सिर्फ इसका प्रॉपर कोई मेडिकेशन नहीं है, न्यूरो सिस्टम में सिर्फ इसका एक्सरसाइज फिजियो वगैरह से ही इम्पैक्ट होगा। उस ट्रीटमेंट से 6 साल घर में रहने के बाद जब मैंने थोड़ा सा रिज्यूमिनेट किया, तो उसके बाद सोचना स्टार्ट किया कि आगे क्या, क्योंकि एकदम से ट्रॉमा, कॉलेज लाइफ से जहाँ पढ़ रही हूँ चल रही हूँ अच्छे से, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो उससे बिल्कुल टोटल डिफरेंट लाइफ, जहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, टोटल घर पे हो, तो समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आ रहा था। पर फैमिली का बहुत सपोर्ट था, तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया साथ में क्या हो सकता है। उसी दौरान मुझे दूरदर्शन पे एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ब्लाइंड लड़की अपनी जर्नी के बारे में बता रही थी, अपनी ट्रेनिंग्स की। ब्लाइंड लोगों के लिए भी ट्रेनिंग्स और एजुकेशन फैसिलिटीज होती है, जिससे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। वो पता चला कि 2006 में मुझे हॉस का स्नैप इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड स्टडीज एंड डिसेबिलिटी स्टडीज का पता चला, और मैं वहाँ पे आई जहाँ पे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग्स, करियर काउंसलिंग्स और हायर एजुकेशन की गाइडेंस दी गई कि आगे क्या कर सकते हैं, और मेरे को वापस से कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्रेल मोबिलिटी, कुकिंग, ये सब ट्रेनिंग्स में डाला गया। इसके साथ में क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, वापस मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की ओपन लर्निंग से, जिसके साथ में मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे भी कॉमर्स ऑनर्स करना था। कार की कॉलेज में सिटिंग क्लासेस लेने स्टार्ट की, वहाँ पे मैं जाती थी, क्लास लेती थी, एंड उसके बाद वापस अपने सेंटर आके अपनी रूटीन ट्रेनिंग्स को पूरा करती थी, जिससे मोबिलिटी में भी हेल्प हो। ग्रेजुअली सेकेंड ईयर में जब मैं कॉलेज में आई, तो मुझे लगा कि ये एनफ नहीं है, मुझे सीए करना है वापस से, क्योंकि जब मैं मुझे प्रॉब्लम हुआ था ड्यूरिंग माई इंदू कॉलेज, मैं अपने सीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, तो मुझे इच्छा थी कि मैं वापस सीए परस्यू करूं, तो मैंने अपनी सीए की स्टडी साथ में शुरू की। एनजीओ की वजह से वॉलेंटियर सपोर्ट सिस्टम अच्छा था, कॉलेज के बच्चे आके पढ़ाते थे, और मैं रिकॉर्डिंग सुन के अपने वॉलेंटियर्स के सपोर्ट से और अपनी कंप्यूटर ट्रेनिंग की हेल्प से मैं अपना बीकॉम और सीए इंटर पास कर पाई। तो कॉलेज के टाइम में प्रॉब्लम्स आई, जैसे मैं सिटिंग क्लासेस लेती थी, हमारी एक टीचर उतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने कहा क्या ही फर्क पड़ता है, ब्लाइंड हो रिकॉर्डिंग हम अलाउ नहीं करते, क्लास में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना हम अलाउ नहीं कर सकते। दो काफ़ी टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, पर ये एक टीचर थी, उन्होंने कहा नहीं आप एग्ज़ाम भी हम ऐसे नहीं राइटर नहीं दे पाएंगे, और वैसे आपका मेन ओपन से तो आपको कॉलेज के एग्जाम, इंटरनल एग्जाम मैटर नहीं करते। थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता था, सबसे ज्यादा इशू आता था क्योंकि

0: को थोड़ी सी मोबिलिटी का इशू भी था, बिकॉज ऑफ वो जो मेरी मोबिलाइजेशन चली गई थी, पैरालिटिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो जब मैं रोड पे चलती थी तो काफी लोगों को लगता था कुछ ड्रग्स ले रखे हैं, तो काम पूछने कि आपने कुछ नशा वशा कर रखा है क्या, तो वो थोड़ा सा
1: कहाँ की बात
0: डिप्रेसिंग
1: बता रहे हैं, कहाँ पे ऐसा लगता था?
0: था। जैसे मैं सड़क पे चलती थी क्योंकि वॉक
1: अच्छा
0: नॉर्मल नहीं थी, तो कई लोग
1: अच्छा
0: आके रोक के पूछते थे, मैडम आपने ड्रग्स ले रखे हैं, और इसी चक्कर में कई लोग को लगता था हाँ यंग लड़की है नशे में है, तो सॉर्ट ऑफ इट्यूशू को नेगेटिव। पर कभी कभी तो लगता था कुछ नहीं करना, पर मेरी पेरेंट्स और शालिनी का नाम मैम जो डायरेक्टर थी वो हमेशा कहती थी लोगों से कब तक डरोगे, बाहर तो निकलना है, जिंदगी तो जीनी है। उसके बाद उन्होंने मेरा पहला प्लेसमेंट नैप सेंटर के थ्रू हुआ, एक लॉ फर्म में रियल जॉब, कि कब तक सेंटर में रहोगे, बाहर निकलो, लोगों के बीच निकलोगे तो समझ जाएगा जिंदगी कैसी जीनी है, आगे सेल्फ भी तो एम्प्लॉयमेंट होना है। तो वहां पे मैंने लॉ फर्म में एज ए लीगल रिसर्चर की जॉब पार्ट टाइम ज्वाइन की। अब पहले ले अपनी सीए की पढ़ाई करती थी। सीए एंट्रेंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें सीए के साथ ट्रेनिंग करनी होती, फिजिकल ट्रेनिंग, किसी सीए
1: हाँ
0: के अंदर आर्टिकल शेप। मोस्ट ऑफ दी सीएस ने मना कर दिया कि एक ब्लाइंड पर्सन आर्टिकल शिप कैसे करेगा, हम नहीं दे सकते, समझा के बहुत चैलेंजेस आए इसमें। बट फाइनली एक सीए फॉर्म में मैंने अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन की, आर्टिकल शिप। बाकी सारे आर्टिकल्स की तरह ट्रेवल करती थी और कोशिश करती थी, क्योंकि काफी चीजें हमें नंबर्स हार्ड कॉपी में होते हैं, फिगर्स को वैलिडेट करना होता है, तो मैं किसी वॉलेंटियर के सपोर्ट से या अपने कुलीग के सपोर्ट से उसको करती थी वो काम। पर एक दिन एक पार्टनर को पता चला कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो उन्होंने कहा आर्टिकल शिफ्ट नहीं कर सकते आप, ऐसे हम क्लाइंट पे तो नहीं भेजेंगे आपको। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं, पर ठीक है, इसी तरह जैसे कुछ लोग मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, वैसे मल्टीपल लोग मिलते हैं जो बहुत मोटिवेट करते हैं। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे लोग मिले जो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, इनकरेज किया कि नहीं आपको करना है आगे, तो खुद ही पढ़ना है। मेरी सी इंटर्नशिप में हमारे एक सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, रीना आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि किसी में कोई कमी हो के भी कोई कुछ कर पा रहा है, आपकी जगह खुद ही बनानी है। तो बस वो चीज पकड़ के आगे बढ़ना शुरू किया। फिर ग्रेजुअली सीए की फॉर्म्स में इंटर्नशिप के बाद मेरे को जॉब का सोचना स्टार्ट किया। इन बिटवीन बहुत सारे मैथ के प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी रही, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैम के साथ हमारे एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसमें ऑल ओवर इंडिया में 100 आईटी लैब सेट करनी थी। उस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने ट्रेवल किया बहुत सारे स्कूलों में अक्रॉस इंडिया, सब में ट्रेनर्स जो लोग ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को उनको ट्रेन किया हमने, उनको अवेयरनेस सेशन लिया। इस तरह की एक्टिविटीज में मैं जुड़ी रही और ग्रेजुअली मैंने अप्लाई किया अर्नेस्ट यंग, एक सीए फर्म है, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में मानी जाती कंसल्टेंसी के लिए, टास्क के लिए। वहां पे मैंने ज्वाइन किया 2012 में, टास्क की सबसे बड़ी कंपनी एमएनसी, जहाँ पे मैं आज भी जॉब करती हूँ। मैंने को अपॉर्चुनिटी मिली टू ज्वाइन एज अ ट्रेनी 2012 दिसंबर में, क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे कि मैं काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और स्क्रीन रीडर्स का अवेयरनेस नहीं था। मैं फर्स्ट ब्लाइंड लड़की थी ईवाई में जॉब के लिए, जिन्होंने फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन जो हायर किया गया था, तो 9 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद काम देखते हुए उन्होंने मुझे परमानेंट रोल पे ले लिया। पर इशू था क्योंकि उनको एक्सेसिबिलिटी का अवेयरनेस कम था, तो इनिशियली स्क्रीन रीडर्स को इंस्टॉल करना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर के सॉफ्टवेयर अलाउड नहीं होते बड़ी बड़ी कंपनीज में। ग्रेजुअली अंडरस्टैंड किया, मेरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी कुलीग्स ने, सीनियर्स ने। उस सपोर्ट से उन्होंने एक जॉब्स का लाइसेंस लिया और आज की डेट में हमारी इंडिया कंपनी में, ईवा इंडिया में, ऑलमोस्ट 5 to 6 ब्लाइंड पीपल काम कर रहे हैं एंड हायरिंग मोर।
1: अच्छा, तो कुछ चीजें हैं रीना जी जो छूट रही हैं, जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोताओं को पता चले। एक तो मुझे बताइए कि बेसिकली आप दिल्ली में ही रहते थे शुरू से ही बाय बर्थ?
0: मैं शुरू से दिल्ली में नहीं रहती थी बाय बर्थ, मेरा होम टाउन हिमाचल है। मेरे फादर एक प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में जॉब करते थे, उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ शिमला से, तो मैं दिल्ली आई जब मैं 10th क्लास में थी। तो पर जब मुझे प्रॉब्लम हुआ उस टाइम में दिल्ली में ही थी,
1: तब आप
0: क्योंकि
1: अकेले ही थे
0: 10th,
1: दिल्ली में?
0: हाँ जी पापा की पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। ओबेरॉय क्लार्क करके एक होटल होता है सिविल लाइन्स के पास, उसमें वो मैनेजर प्रोफाइल पे थे, तो हम लोग भी दिल्ली रिलोकेट हो गए थे शिमला से।
1: अच्छा, तो पापा वगैरह सब दिल्ली में रहते थे। आपकी फैमिली में कौन कौन है?
0: मेरी फैमिली में मुझसे बड़ी सिस्टर है, एक ब्रदर है, मेरे पेरेंट्स हैं।
1: अच्छा, और फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम इस तरह की रही? अच्छा,
0: नहीं,
1: नहीं है। कि जो दूरदर्शन पे जो आप वीडियो देख रहे थे वो किस लड़की का था?
0: कोई अर्चना नाम सुना था मैंने उस टाइम, दो मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता, क्योंकि वो भी शायद नए भारतीपुरम के बाय बर्थ ब्लाइंड बच्चा था कोई, जिसने अपने एजुकेशन नए भारतीपुरम से की थी। तो उसने अपनी वीडियो में बताया कि किस तरह से ट्रेनिंग्स और एजुकेशन के साथ आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, कैसे जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल लाइवलीहुड जी सकते हैं।
1: तो सीए का जो आपने एग्जाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था आपका?
0: नहीं, सीए एंट्रेंस भी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। उसके बाद सीए इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं हमारे, तो मेरा पहला ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, सेकेंड ग्रुप इंटर का सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, फिर सीए फाइनल के दो ग्रुप्स होते हैं अगेन, जिसमें एक ग्रुप तो मेरा निकल गया था सेकेंड अटेम्प्ट में। पर उसके बाद जॉब लग गई ईवाई में, तो काफी सालों तक मैं दे नहीं पाई थी। एक दो अटेम्प्ट बीच में ट्राई किया, फिर क्योंकि जॉब के साथ वॉलंटियर सपोर्ट कम था, टाइम कम था, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा।
1: ये सारे एग्जाम आपने सीए एंट्रेंस से लेकर के बाद में तक जितने भी थे वो सब स्क्राइब के थ्रू दिए या आपने इंडिपेंडेंटली दिए? अच्छा,
0: नहीं, स्क्राइब के थ्रू राधर सीएस एग्जाम देते हुए भी इतना इजी नहीं था। जब मैं इंटर का एग्जाम दे रही थी, बल्कि हमारे साथ मेरे नॉन में एक और लड़का था मिलिंद करके, जो वो भी सीए एग्जाम दे रहा था, और उस टाइम सीए के लोग भी इतने सेंसिटाइज नहीं है मुझे लगता है, आज की डेट में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस लड़की को उन्होंने ये बोल दिया था, उसके स्काइप के घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो उसको स्काइप चेंज करना था। उन्होंने कहा आप स्काइप चेंज करोगे, आप अलाउड नहीं एग्जाम देना, आपका स्काइप इज एज गुड कि आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप राइटर चेंज नहीं कर सकते। एंड उस पर्सन ने सीए ड्रॉप करके लॉक किया है, और सेम इशू मेरे साथ आया था कि मेरे को कैब उन्होंने चेंज करने से मना कर दिया था। रादर मैंने जब सीए अथॉरिटी से मिली कि ऐसा ऐसा स्कूल में ये इशू हुआ, उन्होंने कहा आप लोग तो राइटर के थ्रू पास होने के तरीके होते हैं। तो मेरी एक वॉलेंटियर ने केस किया था पीए इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट, जिस केस को मैं जीती थी, और उसके अकॉर्डिंग रूल बने थे कि स्काइप को आप सीए इंस्टीट्यूट राइटर फंड भी देगा और एक डिपॉजिटरी बनाएगा जिसमें जो बच्चा है स्टूडेंट है सी का क्लाइंट बच्चे को चॉइस मिलेगी, वो के थ्रू भी स्काइप अरेंज कर सकता है, पर्सनल कर सकता है और स्काइप चेंज भी कर सकता है एज पर गाइडलाइंस।
1: ओके, तो रीना जी जब आपके साथ 1999 में जो हादसा हुआ उससे पहले भी आपने सीए बनने का ही सोचा था या तब तक कुछ सोचा ही नहीं था?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब मैंने सीए स्टार्ट करने की सोची थी, एक बार एंट्रेंस दिया था।
1: जब आप नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तभी आप सीए ही बनना चाहते थे?
0: हाँ जी हाँ जी, तभी मैं सीए एस्पिरेंट कर रहे थे।
1: ओके, तो सीए की जो स्टडीज हैं उसमें मतलब आपको उनको पढ़ने में उसकी तैयारी करने में मतलब ब्लाइंड पर्सन होते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस रहे उसमें?
0: बेसिकली क्या होता है स्टडीज में चैलेंज तो आता है बिकॉज हम नंबर्स में डील करते हैं संदीप जी, बेसिकली हम सीए में बहुत सारे सब्जेक्ट में नंबर्स हैं, अकाउंट्स ये मैथमेटिक्स रिलेटेड, तो उसको ईटेक से पढ़ना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है अपने आप में, क्योंकि जब हम ईटेक से पढ़ते हैं उसको जॉस के साथ तो वो पहले पूरे कॉलम को पढ़ेगा बजाय हॉरिजॉन्टल पढ़ने के रोज वाइज, और हमारी रिक्वायरमेंट होती है रोज वाइज पढ़ने की, तो ये चैलेंज आता है। और वॉलेंटियर्स के लिए भी नंबर वाइज समझाना क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग है क्या कैसे जाना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, पर आपकी को ये चैलेंज से एक्सेप्ट करते हुए उसको लेके चलना होता है। कुछ वॉलेंटियर्स ने इतना सपोर्ट किया कि मेरे को हाथ पे एज अ ड्राइंग बना के अपनी उंगली से किस तरह से ये चल रहा है, ऐसे प्रेजेंटेशन होनी है आपके आपको अपने राइटर को इस तरह समझाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में बनाएं, वो मेरे लिए थोड़ा इजी हुआ।
1: अच्छा, तो रीना जी बताइए ये सीए में मतलब जो लोग सीए का एग्जाम देना चाहते हैं या जो सीए बनना चाहते हैं तो कौन कौन से पेपर्स इसमें होते हैं, कौन कौन से बुक्स इसको इनमें पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए।
0: जरूर, बेसिकली सीए में आपकी अगर एंट्रेंस लेवल पे बात करते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैट्स होता है, बेसिक लॉ होता है, बेसिक बहुत बेसिक, और अब करंटली उन्होंने फिर से सिलेबस चेंज किया है जिसमें मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बेसिक लेवल पे क्या लिया, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो ये दो एग्ज़ाम मेंटेड होते और सबसे बड़ी बात 50% स्कोर करना मस्ट होता है। वैसे उसके बाद आपको इंटर लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें मेरे टाइम में 8 पेपर्स थे जिसमें अकाउंट्स लॉ कॉस्टिंग बिजनेस स्टडीज ये सब एग्जाम होते थे, एंट्रेंस में एक इकोनॉमिक्स का भी एग्जाम होता है इसमें एंट्रेंस लेवल पे, और ये सब एग्जाम के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, ऑडिटिंग एक सब्जेक्ट रहता है, कॉस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, ये आपको एंट्रेंस लेवल पे होता है, इसमें भी आपको पर पेपर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ता है, पर ओवरऑल आपको 50% स्कोर करना पड़ता है, अगर आपकी किसी पेपर में 40 से कम आ गए और या एग्रीगेट में 50 से कम आ गए तो आपको पूरा ग्रुप वापस रिपीट करना पड़ता है सारे के सारे चारों एग्जाम, एक्सेप्ट अगर किसी सब्जेक्ट में आपके 60 से ऊपर आए वो वाला एग्जाम आपको उस सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ता। इसी तरह फिर इसी तरह फाइनल में फिर दो ग्रुप्स होते हैं, अब जो नए सिलेबस आए उसमें इन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स कम कर दिए हैं, जैसे अब एक ओपन बुक एग्ज़ाम हो गया जिसमें एक सब्जेक्ट रादर दो सब्जेक्ट्स हटा दिए इन्होंने और उसकी जगह एक ओपन बुक एग्ज़ाम कर दिया, और अदरवाइज उसमें भी आपका कंप्यूटर टेस्टिंग के एग्ज़ाम होता है, अकाउंट्स है ये, ऑडिट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये मस्ट एग्ज़ाम है।
1: रीना जी बताइए कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स आप बता रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो आपने प्रीलिम्स में कौन सा स्क्राइब लिया था?
0: हमारी कंडीशन जो प्रिस्क्राइब है, आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट ले सकते हो। अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे फाइनल लेवल हो। सी ए, सी एस, सी डब्ल्यू, इनमें से किसी में एनरोल नहीं होना चाहिए।
1: तो ऐसे में, है ना, ऐसे में ये पेपर सॉल्व करवाते समय आपको मुश्किल नहीं आई? मतलब उसको तो कुछ भी समझ नहीं थी सीए की, या इन जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में भी जरा भी अंदाजा नहीं था, तो पूरा पेपर आप ही को, खैर वैसे भी सॉल्व करवाना होता है, ये भी आप ही को सॉल्व करवाना था। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्क्राइब के साथ बैलेंस बनाने में कैसे मतलब आप सफल हुए?
0: बेसिकली वही, इस चीज के लिए मैं क्रेडिट देती हूँ अपने वॉलेंटियर्स को, जिन्होंने, जैसे मैं बता रही थी कि मेरे को हाथ, मेरे हाथ पकड़ के समझाते थे कि आपको अपने रेडियो के ये बताने कि इस फॉर्मेट में टेबल बनेगा, इतने कॉलम्स इस तरह से लिखना है, उसको कौन सी चीज कौन सी साइड में आएगी, लेफ्ट में राइट में, इस तरह से बताए। वो आपको अपने माइंड में पिक्चर इमेजेस बनानी पड़ेगी, जैसा आपकी वॉलेंटियर्स बताती जाए, ताकि आप वही चीज रिट्रेट कर सको अपने स्काइप को।
1: आपको सीए बनाने में मतलब आपके वॉलेंटियर्स का भी बहुत बड़ा रोल है।
0: यस, उन्हीं का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने कोई टेक्निकल कोचिंग नहीं ली, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं की, क्योंकि सीए की कोचिंग्स दो, एक तो दूर दूर होती है, ट्रेवल करना मुश्किल होता है, और ग्रुप में, एक ग्रुप में क्लासरूम में कम से कम 80 to 100 स्टूडेंट्स होते हैं, और आपका टीचर आपको ये व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे बता रहा होता है, और एक बच्चे को बताने के लिए वो स्पेसिफिकली सब कुछ वर्बल नहीं बोलेगा, तो इसलिए मेरे को, मैंने पूरी स्टडीज अपने वॉलेंटियर्स के थ्रू ही की है।
1: आपके वॉलेंटियर्स कौन रहे हैं?
0: मेरे वॉलेंटियर्स कॉलेज स्टूडेंट्स से, आईआईटी के स्टूडेंट्स भी रहे हैं, और मेरे एग्जाम इंटर लेवल पे तो सारे एग्जाम 12th के बच्चों ने दिया।
1: अच्छा, अब ये तो रही प्रीलिम्स की बात, फिर मेंस में कौन था आपका स्क्राइब या किस लेवल का
0: सेम
1: था?
0: सेम बीकॉम
1: सेम।
0: ऑनर्स अंडर ग्रेजुएट
1: ओके
0: रिक्वायरमेंट ही है, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए।
1: ओके, ये रिक्वायरमेंट है तो ये अच्छा। तब तक खैर आपने जब दिए तब तो वो तो 2013 वाली गाइडलाइंस भी नहीं आई थी।
0: नहीं, जब आप ही के सीए का अपना पी, क्योंकि सीए के अपनी गाइडलाइंस पे ही चलता है, सीए के ऐसी कोई डिफरेंट गाइडलाइंस कोई और फॉलो नहीं करती, सीए के अपने नॉर्म से। मेरे केस के बाद सिर्फ ये चेंज हुआ था कि हाँ, राइटर को राइटर फंड मिलेगा, और राइटर आप चेंज कर सकते हो। आज अगर मैं एक राइटर ले जा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में मैं कोई और को ले जा सकती हूँ। पहले जब मैंने अपने इंटर लेवल के एग्जाम दिए थे तो ये अलाउड नहीं था।
1: और मेंस में सबसे ज्यादा मुश्किल कौन से सब्जेक्ट में आई आपको?
0: अकाउंट्स,
1: क्यों?
0: अकाउंट्स बेसिकली, एक्चुअली एक तो पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम है, नंबर आपको, एडिशंस, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम लगता है, बहुत शॉर्ट हो गया है, दो हमें 1.5 आवर एक्स्ट्रा मिलता है, और उसके अलावा भी लगता है टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसमें राइटर की स्पीड, राइटर की अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप बता रही हो पर राइटर क्या समझ पा रहे हैं आपको नहीं मालूम। थ्योरेटिकल एग्जाम में तो जो आपने बोल दिया वो उसने लिख दिया एज इट इज, पर यहाँ पे फॉर्मेट्स का है, आपकी पर्टिकुलर फॉर्मेट्स फॉलो होने चाहिए, उसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, अगर आपने वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं दिया जो प्रिस्क्राइब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
1: अच्छा, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशल आपने क्या किया उसकी प्रिपरेशन करने के लिए?
0: बस वही अंडरस्टैंडिंग इमेजेस का, मेंटल माइंड में इमेजेस बना बना के, ओके इस कॉन्सेप्ट का ये प्रेजेंटेशन है, इसमें इस तरह का लेआउट बनेगा, वही चीजें जो वॉलेंटियर से पूछती थी मैं कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या हेडिंग्स है, किस तरह से लिखा।

0: गया है, कौन सा ऑर्थो कॉलम है, कौन सा इनर कॉलम है, वो वैसे ही आप जितने क्वेश्चन करोगे आपको वॉलंटियर्स उतने एड्रेस कर पाएगा, तो उस तरह से समझ के हो गया।
1: ओके, कुल मिलाकर के बहुत मेहनत तब तो खैर करनी थी, अभी भी मेहनत कोई कम नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है।
0: जरूरत, ये तो हर फील्ड के लिए मुझे लगता है सबके लिए जरूरी
1: बीकॉम
0: है।
1: बैकग्राउंड होना कितना जरूरी है सीए के लिए? कॉमर्स बैकग्राउंड होना कितना जरूरी
0: नहीं,
1: है?
0: ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड कर पाओ तो आप कैच कर लोगे। जिसको कॉमर्स बैकग्राउंड होगा उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। जब 11th 12th में पढ़ते हैं या बीकॉम में पढ़ते हैं वो कंसेप्ट हेल्प करते हैं आपको। पर ऐसा नहीं है कि अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं।
1: तो भाई रीना जी सीए बन गए और सारे एग्जाम क्लियर भी हो गए और ईवाई में जॉब भी मिल गई। जॉब
0: हाँ जी,
1: मिलने के बाद क्या-क्या मुश्किलें रही आपको?
0: देखो जॉब मिलने के बाद शुरू में तो ऑफिस में ये एक्सेप्टेंस कराना कि हाँ ठीक है आपको विजन प्रॉब्लम है तो आप भी और लोगों की तरह कर सकते हैं, वो एक चैलेंज रहता है। उसके बाद आज की डेट में जो चैलेंज आते हैं कि काफ़ी सारी बड़ी एमएनसी है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनको विजन प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आती है चीज़ें आपको वो उस हिसाब से नहीं आती जो एक्सेसिबल हो। चीज़ें नॉन एक्सेसिबल होती है वो आपकी टीम पे डिपेंड करता है। मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे कोलीग्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे उनको लगता है मेरा जॉब सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो मेरे को समझाते हैं कि ऐसा है। दो आज की डेट में 12 साल हो गए मुझे ईवाई के साथ काम करते हुए, असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जॉब पे काम कर रही हूँ, तो वो फर्क पड़ता है आपको। हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है विजावीस अपने अदर कोलिग्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको मल्टीनेशनल कंपनी में ग्रो करना है, अपने को प्रूव करना है, आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा।
1: अच्छा रेना जी, अभी आपका काम क्या रहता है ईवाई में?
0: मेरा काम है बेसिकली टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स रिलेटेड कंसल्टेंसी में मैं काम करती हूँ, जिसमें हमारा है पीपल एडवाइजरी। इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज इंडिया आते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनकी पूरी टैक्स का कंप्लायंसेस इंडिया लॉस के अकॉर्डिंग देखना, स्टार्टिंग फ्रॉम जब वो जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, उनको इंडिया टैक्स के ओरिएंटेशन देना कॉल होती है, इंडिया टैक्स ब्रीफिंग कॉल। उसके अलावा क्या टैक्स, कितना टैक्स डिडक्ट होना है, प्रोविडेंट फंड कंप्लायंसेस क्या है, और उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में सपोर्ट करना, ये सारा मेरा काम का पार्ट है। फिर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस इशू किया असाइनी को, तो उसके लिए उस रिस्पॉन्स बनाना और उसको फाइल करना इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास, वो पार्ट ऑफ माई वर्क।
1: ओके, तो रीना जी चूंकि बात अब आईटी की चल रही है यानी इनकम टैक्स की चल रही है और आप सीए हैं और इतनी अच्छी जॉब पर हैं, इतनी अच्छी कंपनी में हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमारे श्रोताओं को मिल जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ये आसान भाषा में समझाइए जरा।
0: बेसिकली अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, दो पहले ओल्ड टैक्स रेजीम में जैसे हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम LIC में कंट्रीब्यूट कर दिया, हम प्रोविडेंट फंड में हमारी कंपनी हमारे कंट्रीब्यूशन लेती है, उस सब का हमें बेनिफिट मिलता है टैक्स के अगेंस्ट। या आपने आज कोई घर खरीदा उस पे इंटरेस्ट पे करें, हाउसिंग लोन पे करें, तो उस सब का बेनिफिट मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सब बेनिफिट्स कटा के जो आपकी इनकम आती है उस पे आपका टैक्स लगता था। गवर्नमेंट ने कहा उसके अब उस सबको ऑथेंटिकेट करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल एक चैलेंज बन गया, क्योंकि कुछ लोग फेक क्लेम भी ले लेते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज ने कहा आपके पास दो ऑप्शन है, आप पुराने रिजीम को फॉलो करो जिसमें 80U मिलता है, जैसा में डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है 1,25,000 या 75,000 का एलआईसी प्रोविडेंट फंड वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो 1,50,000 का कॉमन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमारी टैक्सेबल इनकम से कम होता है, उसके बाद हमें टैक्स लगता है। हमें एचआरए कंपनी हमें एचआरए अलाउंस देती है, अगर हम रेंट पे करें तो हम एचआरए एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेते हैं, हाउसिंग लोन पे हमें बेनिफिट मिलता है ओल्ड रिजीम में। अब न्यू रिजीम में उन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि जितने आपको इनकम मिल रही है बिना किसी बेनिफिट लिए आप पूरे कॉर्पोरेट टैक्स को ऑफर कर दो, पर आपके टैक्स रेट हो जाएंगे कम। जैसे ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख के बाद 5 लाख तक 5% है, 5 से 10 लाख की इनकम तक आपका 10% है, 10 लाख 5 से 10 लाख की इनकम तक 20% है, 10 लाख के 30% का टैक्स लगता है। अब न्यू रेजिम में उन्होंने क्या किया कि अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, उसमें भी अगर सारी इनकम मिला के आपकी 12 लाख से कम बैठ रही है तो जो आपका टैक्स बन रहा है 12 लाख तक वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको 0 टैक्स देना है। तो ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं न्यू
1: न्यू
0: रेजिम
1: टैक्स
0: में।
1: रिजिम में ये तो ठीक है, लगभग सबको मालूम है 12 लाख तक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, इस तरह के स्लैब
0: यस
1: हैं। लेकिन इसमें भी हम क्या क्या डिडक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत से लोगों
0: इसमें
1: को नहीं समझ में आती है।
0: बेसिकली इसमें ना बहुत लिमिटेड बेनिफिट्स अवेलेबल है। अगर आपको लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ग्रेच्युटी मिल रही है जो आपके बेसिकली रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, या आप जॉब
1: बिल्कुल
0: छोड़ते हैं वो सिर्फ आपको
1: वन
0: डिडक्शन का
1: टाइम।
0: एक वन टाइम वो मिलता है, अदरवाइज आपको एचआरए का नहीं मिलेगा। अगर आप मेडिकल प्रीमियम दे रहे हैं ये सब कुछ भी आपको अलाउड नहीं है, एटीयू का डिसेबिलिटी बेनिफिट भी नहीं अलाउड है, तो सिर्फ वन टाइम रिटायरमेंट बेनिफिट की सैलरी में से कम होता है। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको एक सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो सबको मिलता है, वो न्यू रिजीम में 75,000 भाई, ओल्ड रिजीम में 50,000 का है, तो 25,000 का वहां बेनिफिट आ जाता है।
1: और इंश्योरेंस में
0: इंश्योरेंस वगैरह को कोई डिडक्शन नहीं मिलता न्यू रिजीम।
1: ओके ठीक है। तो रीना जी कभी ईवाई को छोड़ के कहीं और स्विच करने का नहीं सोचा आपने?
0: अभी तो नहीं, क्योंकि मेरे को सोशल वर्क का बहुत शौक है। सबसे अच्छी बात कि हमारी कंपनी एक एनजीओ एक्टिविटीज रन करती है जिसमें एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से पार्टिसिपेट कर सके, तो मैं उसका भी पार्ट इन्वॉल्व हूँ। उसमें रिपल्स इंडिया और रिपल इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम वीकेंड्स पे अपना टाइम निकाल के स्कूल जाते हैं, बच्चों को गाइड करने, अंडर प्रिविलेज को करियर काउंसलिंग देने या प्लांटेशन ड्राइव, तो मैं इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूँ। प्लस मुझे लगता है एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई है और जो मेरी नीड्स है मिल कंप्लीट हो रही है, तो अभी तो नहीं सोचा। लॉन्ग रन में जरूर इच्छा है कि मैं ईवाई छोड़ के वापस सीएसआर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहती हूँ फुली, जिसमें मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन सोशल वर्क की तरफ दे सकूँ।
1: ओके। तो यानी जॉब के साथ साथ सोशल वर्क भी हो रहा है ईवाई के साथ, ये एक आपको अच्छी लगती है ये बात।
0: हाँ
1: कभी
0: जी,
1: अपना खुद का फर्म खोलने का नहीं सोचा आपने?
0: नहीं मुझे लगता है थोड़ा सा इश्यू रहता है जब आप, एक तो नॉर्मली भी सीए फॉर्म जब आप खोलते हो लोगों का एक ट्रस्ट फैक्टर जीतना बहुत आसान नहीं होता। आजकल इतनी सीए फॉर्म्स खुली है, कंपटीशन बहुत हाई है, खास तौर से जब आपको विजन प्रॉब्लम होता है तो लोग फाइनेंशियल नंबर्स पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे कि आप कर पाओगे ठीक से उनका काम, तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करना बहुत टाइम लेता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको कंटिन्यूटी नहीं रहती कि आपके पास फाइनेंशियल फ्लो बना रहे, और मुझे लगता है फाइनेंशियल फ्लो की डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है फैसले जवाब को थोड़ी सी लिमिटेशन दो।
1: आज आपकी ग्रोथ को देख के फैमिली खुश है?
0: बहुत ज्यादा उन्हीं के सपोर्ट और उन्हीं की ब्लेसिंग्स है। मेरे पेरेंट्स शायद मैं कभी ये करेज नहीं कर पाती घर से निकलने का, अगर मेरे पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते, मुझे सपोर्ट नहीं करते।
1: तो रिया जी, जो आपको प्रॉब्लम हुई थी उस समय 1999 में, अभी आईज इफेक्टेड हैं आपकी, और अभी और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं
0: हाँ
1: आपको, या
0: जी,
1: दिमाग सब ठीक है?
0: देखिए मेरे स्पीच में फिर भी थोड़ा सा इशू है, नॉर्मल स्पीच से विज़विज़, और थोड़ा सा मुझे मोमेंट का इशू है, नॉर्मल थोड़ा सा मोमेंट वॉक में हिला रहे है। जैसे स्मूथ नॉर्मल इंसान चलता है, चाहे विजन इम्पेयरमेंट हो तभी, मुझे थोड़ा सा वॉक का इशू रहता है, बैलेंस का इशू।
1: यानी कुल मिला के पूरी तरह से मतलब वो ठीक नहीं हुए आप उसमें?
0: ये कह सकते हैं फ्रॉम दैट पॉइंट 80% बेटर हूँ, क्योंकि उस लेवल पे मैं जहाँ बिल्कुल खुद के सहारे से बैठ नहीं सकती थी, आज की
1: सही।
0: डेट में मैं खुद के सहारे से ऑफिस आती हूँ, जाती हूँ, अपने आप अपना काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंटली रह रही हूँ, अपनी कुकिंग वगैरह सब खुद करती हूँ, तो उस लेवल से आई फील काफी बेटर हूँ।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुल मिला के अब आप इन फ्यूचर मतलब टोटली सोशल वर्क ही करना चाह रहे हैं?
0: ये हाँ, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ मिला है सोसाइटी से, मेरे वॉलेंटियर से, तो मेरा इंक्लिनेशन है शुरू से कि मैं वापस कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ और सोसाइटी को वापस कुछ दे पाऊँ।
1: बहुत अच्छी बात। अच्छा, लोग आपसे गाइडेंस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं?
0: बिल्कुल,
1: कैसे?
0: मेरे को वैसे भी काफी लोग कॉल करते हैं, तो आप, मैं अपना नंबर बता सकती हूँ, वरना मेरी ईमेल आईडी reenabhatia2@gmail.com, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं।
1: जिसमें आप कंफर्टेबल हैं तो आपकी ईमेल आईडी हम बता देते हैं, रीना भाटिया 28। हाँ,
0: reenabhatia2@gmail.com।
1: अच्छा, रीना भाटिया 2। ओके,
0: हाँ
1: आर
0: जी,
1: डबल ई एन ए बी एच ए टी आई ए, है ना?
0: हाँ जी,
1: ओके, आर डबल ई एन ए बी एच ए टी आई ए 2@gmail.com।
0: आगे आप मेरा नंबर भी शेयर कर सकते हैं,
1: बताइए,
0: 9971931354 31354।
1: T1 3534। तो श्रोताओं, अगर आप रीना जी से सीए के बारे में या इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आप अगर गाइडेंस लेना चाहें तो कॉल करने का कोई समय?
0: ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कभी ये होता है कि मैं ऑफिस में हूँ तो मैं कॉल उठा के बोल देती हूँ कि इस समय बात नहीं हो पाएगी, मैं अब वापस उनको कांटेक्ट कर लेती हूँ।
1: ओके, तो श्रोताओं, आप ईमेल पे भी बने जा तक तो आप ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए रीना जी को, reenabhatia2@gmail.com। और अगर आप कॉल भी करेंगे तो अगर रीना जी फ्री हुई तो आपको जवाब देंगी, अदरवाइज नहीं देंगी। नंबर एक बार रिपीट कर देते हैं रीना जी,
0: 9971931।
1: 7171931354।
0: हाँ जी,
1: ओके, तो अब रीना जी, जॉब के अलावा अभी इन दिनों में क्या क्या करती हैं आप? क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? क्या क्या पसंद है आपको? कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हैं आप?
0: मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच में ट्रैवल करती हूँ लोकल नियर बाय प्लेसेस में फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मैं एक हमारे क्रिकेट फॉर ब्लाइंड वीमेन द मर्तनम ट्रस्ट के साथ मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, ब्लाइंड गर्ल्स को क्रिकेट ऑन द ग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मोटिवेशन सपोर्ट, खुद खेलती नहीं हूँ पर उनके साथ इन्वॉल्व रहती हूँ। इसके अलावा लैब की कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे अभी भुवनेश्वर में उड़ीसा में फेबररी में गवर्नमेंट का एक जॉब फेयर आया था, उसके लिए मैं डिस्कशन के लिए गई थी, तो इस तरह के कुछ कुछ सोशल वर्क में मैं इन्वॉल्व रहती हूँ। पर्सनल में मुझे ट्रैवल और कुकिंग का शौक है,
1: सब जगह ट्रैवलिंग अकेले करते हैं रीना जी?
0: मोस्टली बाकी कुछ जगह फ्रेंड्स के साथ, जैसे मेरे को एडवेंचर स्पोर्ट वगैरह का शौक है, तो फ्रेंड्स के साथ जाके रिवर राफ्टिंग, उसमें दो वो लोग अलाउ नहीं करते, पर ठीक है फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग वगैरह इन सब एक्टिविटीज में मुझे शौक है, तो इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ।
1: रीना जी, आपकी तरह जो लोग किसी परेशानी में हैं, जिनको लगता है कि बस अब लाइफ खत्म हो गई है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगी आप?
0: मैं कहूंगी लाइफ कभी खत्म नहीं होती, हर अंधेरी के बाद एक रोशनी चलती है, हमें सिर्फ हिम्मत हौसला दे के आगे बढ़ना और अपनी हिम्मत बना के उन चुनौतियों को का सामना करने की जरूरत है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे और कारवा अपने आप बन जाएगा।
1: क्या बात है, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, कारवा अपने आप बन जाएगा। तो रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, और आपके लाइफ एक्सपीरियंस से इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिसनर्स को बताने के लिए। और बहुत अच्छा लगा, आप जो भी करना चाहती हैं वो सब कर पाएं, सक्सेस मिले और ज़्यादा आपको लाइफ में, हम यही आपके लिए विशेष देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं।
1: तो श्रोताओं, ये सुना आपने प्रोग्राम मन की आंखों से रेडियो मधुबन पर। आप सब रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही हम नई नई शख्सियतों से आप सबको रूबरू करवाते रहेंगे, ताकि अगर आप कहीं हिम्मत हार रहे हैं, आप कहीं डगमगा रहे हैं, आप अगर कहीं चलना शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको भी रास्ता मिल जाए।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

करते हैं, निरंतर बातें करते रहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हिम्मत और शक्ति को खोने ना दो, इसे पास ऑन करो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम अपने आप को जागृत करेंगे फिर से समय के बदलते इशारे को समझते हुए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता। निरंतर जागृत रहने और जागृत करने अपने से यही बात करते हैं। प्रकृति में हो रहे हलचल, इंसान के द्वारा किए गए बुरे कर्म वक्त को परिवर्तन करता है। घड़ी तो महज स्थूल समय को दर्शाती है, पर प्रकृति और मनुष्य के कर्तव्य सूक्ष्म समय को भी चेंज करता है। तो बुरे वक्त को अच्छे में बदलने के लिए हम फिर से आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है गुलदस्ता। साथियों, प्रकृति ने फिर से करवट बदली है। पितृ पक्ष संपन्न होता है, देवी पक्ष का प्रारंभ होता है। निर्भय, साहस और हिम्मत को अर्जित करने का समय है यह।

0: दोस्तों, ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान माता पिता।
2: माँ के आने की आहट है, खुल गए भक्ति के द्वार। माँ आ रही हैं, माँ आ रही हैं। बुराइयों का संहार कर, दुर्गति का विनाश कर, अराजकता को समाप्त कर, दुर्गम पथ में सुख शांति का संचार करती हैं देवियां। आज महालया है, महालया के साथ ही पितृ पक्ष का समापन होता है। इस दिन के बाद से देवी पक्ष की शुरुआत मानी जाती है और माँ दुर्गा के आगमन का एहसास होता है। माँ दुर्गा, माँ शेरावाली, माँ जगधात्री, इनकी स्तुति व जयगान हमें निर्भीक बनाती हैं और समय की यही पुकार है। यही अभी याचना कर रहा है समय कि अब निर्भीक बन जाओ, अब साहसी बन जाओ। सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को स्वर्णलता आगाज कर रही है, स्वागत कर रही है कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तू ही नैया, तू ही खिवैया, तू ही है पतवार। महालया पितृ पक्ष से देवी पक्ष में संक्रमण का प्रतीक है। महालया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम सब अपने पूर्वजों को धन्यवाद करते हैं और उनसे क्षमा याचना भी मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपके कारण हम इस जीवन को देख रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं भरपूर, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो हमें क्षमा करें। साथ ही आज एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है कि हम देवियों के आगमन के लिए भी उत्साहित रहते हैं। तो देखा साथियों कि हमारे भारतवर्ष में एक अध्याय खत्म होता है तो दूसरा अध्याय तुरंत ही वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो खत्म के साथ शुरुआत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण यह समय है। तो समय बहुत परिवर्तनशील है और समय हमें क्या करना है यह भी इंडिकेट करता है। और अभी समय यही है कि हम महालया के प्रति अपने दिल में जो भाव है उसे हम व्यक्त करें और आने वाले समय के लिए भी तैयार हो जाएं।

0: बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।
1: महालया को परंपरागत रूप से आध्यात्मिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त जो हैं वो अपने पारिवारिक रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उस दिन प्रार्थना, चिंतन और सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। भाव बहुत गहरा है, गंभीरता भी है तो दूसरी ओर उत्कंठा भी है कि कब नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है, कब देवियों का हम स्वागत करेंगे, दिल से उनकी आराधना और स्तुति करेंगे। भक्त देवी दुर्गा की प्रार्थना भी करते हैं और शांति, समृद्धि, सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोहरा भाव है आज के इस दिन में, तो इन दोनों भावों को हम अपने हृदय में सम्मिलित करते हैं और साथ ही हमने जो अपने आप से वादा किया है कि साहसी और निर्भीक जीवन का हम आगाज करते हैं समय को देखते हुए।
2: अगर हौसले हों बुलंद तो कोई भी बाजी जीत लेंगे हम, अगर हो खुद पर यकीन, खुद पर यकीन।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: देवियां जो है वो विभिन्न शक्तियों का स्वरूप है, इनके बारे में तो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे, लेकिन आज हमने इस विषय को क्यों चुना कि हमें निर्भीक बनना है, हिम्मत और साहस के साथ जिंदगी को बिताना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पर व्यक्ति को जो है अपने जान को जोखिम में डालकर भी कईयों को बचाना पड़ा और उन्होंने बचाया भी। आप उस इंसिडेंट को समझ पा रहे होंगे हमारे इशारे से। तो आज समय है कि हम अपने अंदर जो अलग अलग शक्तियां हैं, जो सुप्त हैं, उन्हें हम बाहर निकालें। इनवोकिंग शक्ति विद इन सेल्फ एंड इनवोकिंग डिफरेंट शक्तीज, यही है अभी के समय की पुकार। इसलिए हम समय के साथ चल रहे हैं, एक तो घड़ी की सुइयों के साथ भी चल रहे हैं, और वायुमंडल में कौन से शक्ति की आवश्यकता है उसके हिसाब से भी हम चल रहे हैं। तो आज महालया है, महालया के इस पावन पर्व में हम सब शामिल हैं और माँ को भी याद कर रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य
3: नमस्तस्य।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ शेरोवाली, इन सब की आराधना और उपासना मात्र से ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का समावेश होता है, जागृत होता है। नवरात्रि महोत्सव का आधार ही है महालया का ये अद्भुत देवी श्लोक, जो शक्ति, गति, दैवीय ऊर्जा का संचार करता है। तो हम सब हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, और कार्यक्रम गुलदस्ता को लेकर आती हूँ हर सप्ताह मैं आपकी वही सखी सहेली स्वर्णलता। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को आप ध्यान से सुन रहे होंगे हर बार की तरह। कहते हैं कि महालया मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा प्रमुख हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग नाम हैं और उस हिसाब से वो इसको फॉलो करते हैं। तो हम आज के दिन विशेष अपने अंदर शक्ति भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो हम अपने द्वारा उत्पन्न कर रहे हों, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा समस्याएं आ रही हों, या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो, कोई भी समस्या हो, विपत्ति हो, या कभी कभी इंसान जो है वह बैंक्रप्ट हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता किसी भी कारणवश, तो ऐसे सिचुएशंस में हम देवियों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और इन श्लोकों के उच्चारण से हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे हम असंभव को भी संभव कर देते हैं।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

भारत में पूरे वर्ष भर में दो नवरात्रियां प्रमुख हैं। एक है बसंत नवरात्रि और दूसरा है शरद नवरात्रि। तो अभी महालया का जो पर्व है, यह पर्व शरद नवरात्रि को लेकर आता है। तो महालया की सुबह वो सुबह है जो शोक को स्वागत में बदल देती है। जी हाँ साथियों, साल भर जो है सभी इसी पर्व का इंतज़ार करते हैं, नवरात्रि त्यौहार का। तो महालया आते ही सबके दिल में बिगुल बज उठता है, शंख की ध्वनि अंदर ही अंदर गूंज उठती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो दिन आ रहे हैं जो बहुत ही कलरफुल होंगे, रंगारंग होंगे, त्योहारों में हम सब मस्त होंगे, है ना। वो दृश्य सामने आ रहा है। अभी हमने आपको सुनवाया बंगाली सॉन्ग जिसमें महालया पर्व का वर्णन था और दुर्गा माँ के आने की जो खुशी है, प्रेम के आंसू आंखों में आ जाते हैं, ऐसे भाव को लिए हुए था यह गीत। और उम्मीद है आप इस गीत को फील कर पा रहे थे। महालया से 15 दिन पहले पितृपक्ष कहलाता है और यह दिन उस कथा को पुनः प्रकट करता है कि कैसे देवताओं ने राक्षस महिषासुर को पराजित करने में असमर्थ होकर अपनी सारी शक्ति एक तेजस्वी देवी में समाहित कर ली। प्रत्येक देवता द्वारा प्रदत्त शक्तियों से युक्त दुर्गा ने कई दिनों तक राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसका संहार किया। यह कथा महालया की सुबह भोर से पहले गाई जाती है। तो आज हम इस गीत से एक शपथ भी ले सकते हैं कि इस गीत में कहा गया है कि सभी डर, सभी जो भी अंदर हलचल है, भय है, उसको भी दूर करती हैं देवी माँ। तो भय या डर भी एक शत्रु है जिसका विनाश जरूरी है। सूझबूझ व प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, शक्ति के बलबूते पर वह अपनी स्वरक्षा कर सकते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मंत्र पाठ करके, श्लोक का उच्चारण करके देवी माँ से शक्ति हम धारण करते हैं। वैसे साथियों, हम सबको पता है कि देवी देवताओं को ये सारे गुण शक्तियां किनसे प्राप्त हुई। जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से, भगवान से। एक भगवान ही हैं जिनसे हमें सारी शक्तियां मिलती हैं। नॉर्मल मनुष्य जो है उसमें ये सारी शक्तियां नहीं होती, उसमें गुण अवगुण दोनों ही होते हैं। और गुणों को जब हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं, शक्तियों को जब हम उनसे प्राप्त करते हैं और उसमें संपूर्ण बनते हैं, तब हम देवी देवता कहलाते हैं। तो ये जो देवी देवताएं हैं, ये हम में से ही कोई हैं जिन्होंने संपूर्णता को अर्जित की इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि समाज में जहां पर भी कुकर्तव्य हो रहे हैं, जहां पर भी अराजकता है, जहां पर भी हलचल है, वहां पर हम अचल रहकर हम डर, भय, चिंता, हर बुराइयों का विनाश करेंगे। और इन्हीं शपथ के साथ आज स्वर्णलता विदा लेती है और आपसे मुलाकात होगी नवरात्रि पर्व के दौरान। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए और हाँ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कायम रहिए इसी रेडियो चैनल पर।

मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयों बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहां से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहां है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आप सभी का. और आप सभी ट्यून इन कर रहे हैं कार्यक्रम नई दुनिया में. मैं हूं आपका दोस्त आरजी श्री और मेरे साथ हैं मेरे साथी आरजे आरुषि जी. स्वागत है आरुषि जी आपका.
1: थैंक यू सो मच. नमस्कार सभी दोस्तों को और नमस्कार आपको भी श्री जी.
0: तो क्या हाल चाल है हमारे माउंट आबू के, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं. ये नई दुनिया नया जमाना में नया मौसम है.
1: बिल्कुल, मेरे ख्याल से पर्यावरण का जो विषय है हर साल मन में आता भी है, गहराई से चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में.
0: बिल्कुल. तो दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते हम लेकर आए हैं कार्यक्रम नई दुनिया. और जैसे आप जानते हैं कि हम उन लोगों से आपकी खास मुलाकात करवाते हैं जो इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाने में, एक नई दुनिया बनाने में कार्यरत हैं. हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मगर हम में से बहुत सारे लोग उन समस्याओं को देख के अनदेखा करने वाले होते हैं. कुछ लोग उन समस्याओं को देखते हैं और जब भी सामने आती हैं वो समस्याएं तो उन समस्याओं को कोसते रह जाते हैं कि ये समस्या ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. और हमें से कुछ लोग इन समस्याओं को दूसरों के सिर पर मढ़ देते हैं कि भाई इनके कारण से ये हो रहा है, ये समस्या की जड़ है. मगर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो समस्या को समस्या समझकर उसके समाधान खोजने और उस समाधान के स्वरूप बनने का प्रयास करते हैं. ऐसे ही कुछ खास लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे. आज हमारे साथ स्टूडियो में साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुंद्रा जी. मनीष कुंद्रा जी वैसे तो पेशे से ये नोकिया में काम करते हैं. और नोकिया में जब आप सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, एक जानी मानी कंपनी है, तो पर्यावरण से इनका क्या संबंध है. इन सब चीजों में आज उनसे बातचीत करेंगे. तो मनीष जी हमारे साथ हैं. मनीष जी स्वागत है आपका.
2: थैंक यू श्री भाई. थैंक यू आरुषि सिस्टर. थैंक यू.
0: तो पहले तो रेडियो मधुबन की तरफ से और हमारे सभी सुनने वालों की तरफ से आपका स्वागत है. और जैसे मैंने ये कहा कि आज है, कहां से आप जुड़ रहे हैं हमारे दोस्तों को बताएं.
2: दिल्ली, मैं दिल्ली से जुड़ रहा हूं, दिल्ली द्वारका से. और
0: तो मनीष जी, जहां सर्दी की बात आती है, हम देखते हैं कि हर मौसम में चीजें बदलती हैं और हर मौसम के हिसाब से हम अपने आप को बदलते हैं. ये स्वाभाविक है कि हम अपनी तैयारियां करते हैं. वैसे जैसे अगर आप बाहर के जो परिवर्तन देख रहे हैं, अभी पर्यावरण में जो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए तो अब हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके नाम में भी ये शब्द जोड़ दिया गया है, क्लाइमेट चेंज. तो आप क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों को कैसे देखते हैं, आपका परिप्रेक्ष्य क्या रहा है? और क्योंकि आप तो नोकिया में काम करते हैं, पर्यावरण से आपके इस संबंध की शुरुआत कैसे हुई, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के प्रति आपकी आसक्ति कब शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए.
2: ओके, बेसिकली पर्यावरण के बारे में मैं बोलूंगा कि कोई लगभग 7-8 साल पहले अपने जो हमारे आसपास के पार्क हैं उसमें हम देखते थे कि कुछ एक बुजुर्ग हैं जो पार्क में अकेले लगे हुए हैं, पेड़ों की सेवा कर रहे हैं. तो उनसे हमें प्रेरणा मिली कि हमें भी कुछ करना चाहिए. फिर हमने पेड़ लगाने से शुरुआत किया. उसके बाद धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमारे आसपास जो कूड़े की समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है. जब भी हम दिल्ली से बाहर निकलते हैं या किसी भी शहर में हम जाते हैं तो सबसे पहले जो हमारा स्वागत है वो एक बड़े कूड़े के पहाड़ से होता है. तो उसके लिए फिर हमने सोचना शुरू किया और हमने फिर देखा कि जो ये कूड़ा है ये हमारा ही कूड़ा है, हम ही जनरेट कर रहे हैं और इसका समाधान भी हमारे पास ही है. और आपने जैसे क्लाइमेट चेंज की बात की तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे जो महासागर है, समुद्र है, उनका है. क्योंकि ये जो जितना कूड़ा है अल्टीमेटली ये समुद्र में जाके मिल जाता है. और किसी भी जो हमारी पृथ्वी सिर्फ 30% है तो उस पे जो ओशियंस का क्लाइमेट के ऊपर एक मेजर रोल है. अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे साइक्लोन्स जनरेट हो रहे हैं तो वो उसका एक मेजर वो है क्योंकि जो समुद्र के उसमें बदलाव आ रहा है और वो हमारे को लैंड पे इम्पैक्ट कर रहा है. जो हमारी बारिश होती है, सब कुछ होता है, वो सब अल्टीमेटली जनरेट समुद्र से होता है. जो ऑक्सीजन हम लेते हैं लगभग 50% जो है वो हमें समुद्र से मिलता है. और आज की डेट में आप देखें तो प्लास्टिक पोल्यूशन एक मेजर कॉज है ओशियंस में. और इससे लैंड का क्लाइमेट ही नहीं बल्कि ओशियंस में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका भी जीवन बहुत बड़े एक खतरे में आ गया है. और अभी हम ग्लोबल वार्मिंग की भी बात कर रहे हैं तो जो अल्टीमेटली ओशियंस लेवल रेज करने में काफी ज्यादा आई वुड से कि वो उसका इम्पैक्ट है.
0: जी, ये जो बात आपने बताई कि हम सागर की तरफ अगर हम देखें कि हमारा सारा कचरा एंड में जाकर सागर में मिलता है, ये अपने आप में एक नई बात है। बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते। और ये जो बात आपने अभी बताई कि जितनी धरती पर ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन भी लगभग 50% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलता है। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो जंगलों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और

0: जो पानी है, तो जो उसमें वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना है वो बहुत ही ह्यूज है। जो हम एल्गी पॉपुलेशन वो सब देखें, वो उस सरफेस एरिया उसका बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। और दूसरी तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने की क्षमता है वो भी उनमें बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली प्लांट्स भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आई वुड से पृथ्वी पे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर आप, बहुत सारी रिसर्च है इस पे कि जो ओशियंस का कितना इम्पैक्ट है मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस के लिए।
1: जी, पहले तो ये एक गहरा सब्जेक्ट है, इस विषय पर आपने बहुत गहरे से जानकारी दी। आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपने इस विषय पर अध्ययन किया है, आप क्या करते हैं पेशे से, उसके बारे में भी हमारे दोस्तों को कुछ बताएं।
0: हाँ जी, पेशे से तो मैं एक बेसिकली टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मैंने 1995 में आई वुड से डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ गए थे। तो ऑलमोस्ट 26 साल से हम टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं। बट जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा इंटरेस्ट, इस पे हमने काम करना शुरू किया। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोगों से प्रेरित होकर हम पेड़ पौधे लगाने से जुड़े, और हमें फिर और भी बड़ी बड़ी समस्याएं जो एनवायरनमेंट की हैं वो नजर आने लगी। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में श्री भाई आपने कहा था कि बहुत लोगों को नजर ही नहीं आता, आपने देखा होगा कि सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है, वो बहुत सारे 95% लोगों को नजर ही नहीं आएगा उनको। दे आर, वो क्या हम कहते हैं कि दे आर ब्लाइंड टू इट। अब लेकिन जैसे जैसे अब अवेयरनेस बढ़ती है फिर उनको नजर आना शुरू होता है, फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनिसिपल कमिटीज पे और डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज पे डालना शुरू कर देते हैं कि ये तो उनका दायित्व है, उनको करना चाहिए। तो इसको हमने थोड़ा स्टडी किया, तो इसमें एक तो बेसिकली मेनली है कि अवेयरनेस जब जागती है तो लोगों को पता लगना शुरू होता है कि हमारा ही कचरा है, हमें ही साफ करना है। और तो मेनली जैसे हम लोग एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, उसमें एट सोर्स हम किस तरीके से अगर कूड़ा अलग अलग कर लेते हैं तो जो समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरा, हम लोग ट्री प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेनली मियावाकी टेक्निक है जो एक जैपनीज पद्धति है उसको यूज करते हैं। इसको अर्बन एफॉरेस्टेशन टेक्निक भी कहा जाता है, जिसमें एक बहुत छोटे से एरिया में पेड़ लगाए जा सकते हैं। और फिर देन थर्ड आता है एक इको ब्रिक्स, जिसमें हम मेनली सिंगल यूज प्लास्टिक या MLP जिसको बोलते हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक, उससे हम इको ब्रिक्स बनाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे बेसिकली हम एक ऐसा सोल्यूशन मोड हमने मतलब काम करना शुरू किया। तो साथ में बेसिकली हम लोग भी, मैं बोलूंगा कि हम लोग ही सीख रहे हैं। तो बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो हमें और भी नई चीजें सीखने को मिलती हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसे अभी मुनीष जी से बात करते हुए ये चीज सुनने को मिला कि भाई हम में से ज्यादातर लोगों को सड़क पे जो कचरा है वो चीज हम देखते ही नहीं, हमें नजर ही नहीं आता है। मैं आपको बता दोस्तों, आज से 2-3 दिन पहले की बात है कि माउंट आबू में एक क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया गया। जो माउंट आबू के अलग अलग संगठन हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सरोवर परिसर रहा, शांतिवन परिसर रहा, माउंट आबू में CRPF का ट्रेनिंग हेडक्वार्टर है तो CRPF के जवान, माउंट आबू के नगर पालिका, होटल एसोसिएशन इत्यादि, ऐसे आर्मी और एयरफोर्स, इतने सभी संगठनों ने मिलकर, बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों, स्कूल्स, NGOs ने मिलकर आबू रोड से लेकर माउंट आबू जाने वाली जो सड़क है, तलहटी से लेके माउंट आबू टोल नाके वाली जो सड़क है, उस पूरे सड़क के किनारे जो भी कचरा था उस सारे कचरे को इकट्ठा किया और सड़क को एकदम चकाचक साफ सुथरा कर दिया। और मैं यात्रा कर रहा था माउंट आबू से नीचे की ओर आ रहा था, तो मैंने जब सड़क देखा तो मैं अचानक से हैरान हो गया कि शाम के 5 बजे सड़क ऐसी साफ सुथरी कैसे हो गई। और फिर जब मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो फिर मुझे पता चला कि आज पूरे दिन क्लीनलीनेस ड्राइव चला है और बहुत सारे वॉलंटियर्स ने, माउंट आबू के नागरिकों ने मिलकर ये काम किया है और ये सफाई देखने को मिली। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारे हाथ में है कि हम अपने आसपास की चीजों को स्वच्छ रखें। जैसे कचरा प्रबंधन की बात होती है कि वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, आरजे आरुषि आपने भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहां पर लोग प्रयास करते हैं तो सफाई हो जाती है।
2: बिल्कुल, और ज्यादातर देखा है कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत जागरूक भी हैं आजकल, और मैं यहाँ एक सवाल एक्चुअली पूछना जा रही थी मनीष जी से कि जैसा उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सीखा उन्होंने और उनसे भी लोग सीख रहे हैं आगे, जब यहाँ पे आबू के कुछ यूथ मिलते हैं वो अपनी तरफ से बहुत प्रयास भी कर

0: रहे हैं, आगे कुछ सीख भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर और ट्रेनिंग की आवश्यकता है या और कुछ सीखना है कि वो प्लास्टिक है उसका और क्या बनाए, वो कई चीजें क्रिएटिव भी कर रहे हैं, उनके साथ सफाई भी कर रहे हैं, पर उन्हें अधिक ट्रेनिंग की या फिर और कुछ सीखने की जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं उन्हें?
1: ओके आरुषि जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और बेसिकली थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो जो ड्राइव था, तो फॉर्चुनेटली सौभाग्य से हम लोग भी उस दिन वहीं पे थे, तो हम लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो जो शांतिवन सेंटर से जो ब्रह्म कुमारीज के लोग गए थे, तो हम भी उसमें थे। तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उस दौरान हमने देखा था कि रास्ते में काफ़ी हद तक प्लास्टिक्स हमें काफ़ी मिला था, मेनली चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स के पैकेट, और काफ़ी लोग जो गुटखा खा के पैकेट्स फेंक देते हैं, बॉटल्स, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत वहाँ मिली थी। तो एक तो बेसिकली डेफिनेटली जब ऐसी ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं, तो उस समय जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको उस प्रॉब्लम का एक तो पता चलता है कि ये कितनी सीवियर प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तो ये मे बी गिल्ट भी होता है कि कहीं कभी हमने भी ऐसा किया है कि हमने भी बिना सोचे समझे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं और वहाँ हम बहुत सारा कचरा छोड़ के आते हैं। तो ऐसी ड्राइव्स अगर रेगुलर कंडक्ट हो तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, लोग मोटिवेट होते हैं, आगे बढ़ के आते हैं। और जैसे कि आपने यूथ का बात किया कि वो कुछ करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप तो मैं बोलूँगा कि जितनी अवेयरनेस ड्राइव्स वो क्रिएट कर सकते हैं, अब हर किसी का एक अपना एक एक एरिया ऑफ इम्पैक्ट होता है, उनका एक सोशल सर्कल है, तो अपने सोशल सर्कल में एक तो अवेयरनेस क्रिएट करें कि अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, अब ये एक इंडिविजुअल एफर्ट से काम नहीं चलेगा, अब एक मास मूवमेंट की तरह ये एनवायरनमेंट पे काम होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम बहुत क्रिटिकल उस पे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। और इसके लिए जैसा कि सॉल्यूशंस की बात करें, तो हमने देखा कि जो इको ब्रिक्स एक बनाने का तरीका है, वो एक सिंपलेस्ट तरीका है जो हर कोई इंडिविजुअल अपने घर में कर सकता है। जैसे हमने बहुत सारे सेशंस स्कूल्स में कंडक्ट किए, इवन माउंट आबू में कुछ स्कूल्स से हमने सेशन कंडक्ट किए, तो ये इको ब्रिक्स जो है बच्चे भी अपने घर में बना सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सोल्यूशन हैं जिसके लिए इंडस्ट्रियल सेटअप चाहिए, जैसे आप प्लास्टिक अगर इकट्ठा करते हैं तो आप उससे ब्रिक्स जो एक टाइल्स होती हैं पेव टाइल्स बना सकते हैं, या और भी उसको रिसाइकिल करके दोबारा से यूज किया सकता है, बट वो सारे इंडस्ट्रियल एफर्ट्स है। तो हम लोग अगर ध्यान दें कि एक बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन कि आपने एक प्लास्टिक की बोतल देखी रास्ते में और उसमें आपने प्लास्टिक भरना शुरू कर दिया, तो उससे आप बेसिकली मैं बोलूँगा हर कोई उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट डेफिनेटली जैसे यूथ की बात करें, जो कुछ इनोवेटिव लोग हैं जो कुछ इसको एज अ प्रोफेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, वो उस पर आप काम कर सकते हैं।
0: जी अमनीश, जैसा आपने इको ब्रिक्स के बारे में बताया, तो प्लास्टिक उसके अगर आप थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप बता पाए कि कितना स्टफ करना है, ज्यादा या कितना स्पेस रखना है, मेरे ख्याल से उसके बारे में सुना होगा, कहीं कहीं कोई शब्द सुने होते हैं, हमें मालूम नहीं होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है।
1: जैसा कि ये एक इको ब्रिक है जो हमने बेसिकली घर पे बनाई है, और मैं कहूंगा कि हमारे हर रूम में इस तरीके की एक खाली बॉटल रहती है, और जैसे हमारी गाड़ी में रहती है, किचन में एक हमने रखा हुआ है, तो कोई भी जो हमारा घर से प्लास्टिक निकलता है तो वो हम उस बॉटल में डाल देते हैं। अब इस बॉटल के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें दिखेंगी, जैसे इसमें बिस्किट के पैकेट भी हैं, जो दवाइयों का रैपर्स बच जाता है वो भी है, चॉकलेट और टॉफीज के पैकेट्स भी हैं। तो किसी भी टाइप का जो मोस्टली प्लास्टिक जो हमारा जो रिसाइकलर है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली हम कबाड़ी वाला या रद्दी वाला बोलते हैं, वो नहीं ले जाता, उसको हम इस बॉटल में डाल सकते हैं। और बनाना बहुत ही आसान है, इसमें डाल के आपको एक स्टिक से इसको प्लास्टिक को पुश करना है ताकि ये एकदम टाइट हो जाए, और उसके ऊपर अगर आप खड़े होंगे तो ये फिर प्रेस नहीं होगी, तो इतनी टाइट हो जाती है। तो जब ये टाइट हो जाती है तो फिर एक तरीके से हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने दिल्ली में बहुत सारे लोकेशन पे इससे बेंच बनाए हैं, कुछ घर में रखने के लिए स्टूल्स भी बनाए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज में इससे वॉल्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। तो जैसे कि ये एक स्टिक है, नॉर्मल स्टिक आप ले सकते हैं, तो मैं इसको एक जादू की छड़ी बोलता हूँ, जिससे ये जो प्लास्टिक का जिन है इसको वापस उल्टा हम इस बोतल में घुसाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बिल्कुल टाइट पुश करेंगे, तो अभी मैं इसको प्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस तरीका का आप कर सकते हैं। और ये मेरा एक ये छोटा मैं बोलूंगा अलादीन का जिन अभी तैयार हो रहा है, तो इसके अंदर हम अभी वापस जिन को डाल रहे हैं।
0: बहुत ही कमाल की बात है मनीष जी, क्योंकि प्लास्टिक हर घर में हमें लगता है कि क्या करें, ये सवाल आता है जब भी हम सोचते हैं पर्यावरण के बारे में। और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है जो बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकते हैं। जी मनीष जी, जैसे आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे, यहाँ पे एक सवाल भी आया, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अतुल जी हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं, सिंस वी आर डंपिंग मच ऑफ आर वेस्ट इन ओशंस, डस दिस अफेक्ट द सैलिनिटी एंड द ऑक्सीजन प्रोडक्शन बाय द ओशन बायोमास?
1: या बेसिकली अभी हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक ओशियंस में डंप कर चुके हैं, तो पैसिफिक ओशियन में मेनली जैसे एक बहुत बड़ा मेजर एरिया है जहां पे आपको सिर्फ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा, और वहां का एक तरीके से लाइफ पूरी खत्म हो चुकी है। क्योंकि जो अगर हमने सरफेस पे पूरा प्लास्टिक डाल दिया, तो नीचे का जितना लाइफ जो पहले था वो पूरा खत्म हो गया है। तो डेफिनेटली जो वहां का फ्लोरा फौना कुछ भी है, तो एक तरीके से हमने मतलब किसी का अगर हम गर्दन दबा दें और वो सांस ना ले पाए तो अल्टीमेटली वो मर जाएगा। तो यही हाल हमने ओशियंस का कर दिया है कि मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक सिर्फ प्लास्टिक फ्लोट हो रहा है, और जो नीचे जितनी फिशेस या और भी दूसरी लाइफ है वो सारी खत्म होती जा रही है। तो डेफिनेटली आवर वेस्ट इज इम्पैक्टिंग द लाइफ इन द ओशियंस
2: जी।
1: और सैलिनिटी, इन्होंने जो अतुल जी ने सैलिनिटी की बात किया, देखिए वो तो नमक जो है वो तो हम जैसे नदियों से जितने मिनरल्स आ रहे हैं उससे हो रहा है, बट ऑक्सीजन प्रोडक्शन डेफिनेटली विल बी इम्पैक्टेड, क्योंकि वहां पे जो फ्लोरा एंड फौना है वही सारा ऑक्सीजन जो मैं बोलूँ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम उनको खत्म कर देंगे तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
2: जी मनीष जी, एक चीज जो आप अभी बता रहे थे उससे ये चीज समझ में आती है कि हम जो डे टू डे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका असर समुद्र पे देखने को मिलता है, और ऐसे किलोमीटर दर किलोमीटर प्लास्टिक तैरता हो जब समुद्र में पाया जाता है तो उसके नीचे के जीव जंतुओं पे उस पर उसका असर होता है। तो ऐसे में कितने लोग इस चीज के बारे में सजग होते हैं कि हाँ ये हमारी वजह से हो रहा है? क्या मैं जो एक प्लास्टिक का पीस यहाँ से उठाकर कार के बाहर फेंक देता हूँ या खिड़की के बाहर डाल देता हूँ, क्या वो समुद्र तक की यात्रा कैसे तय करेगा?
1: आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप किया। ये नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को जब स्कूल्स में हम सेशन कंडक्ट करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि मैंने प्लास्टिक फेंका तो ये समुद्र तक कैसे पहुंचेगा। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हवा से उड़ के जाएगा। अब वो हवा से उड़ के कैसे जाएगा? हवा से उड़ेगा जो नियरेस्ट नाली है वो नाली के पास जाएगा, और वो जो नाली है वो किसी बड़े नाले से कनेक्ट होती है, और वो नाला हर शहर में किसी ना किसी नदी से कनेक्ट होता है, और अल्टीमेटली जो नदी है वो किसी समुद्र या सागर से कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से जो हम छिलका कार से बिना सोचे समझे फेंकते हैं वो उड़ के किसी ना किसी तरीके से वो एक समुद्र तक पहुंचता है। और अगर आप देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो मेजर सोर्स हैं आज की डेट में प्लास्टिक पोल्यूशन का। मतलब भारत में ही जो मेन हमारी गंगा नदी है और भी जो बड़ी नदियां हैं वो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ओशियन पोल्यूशन में।
2: जी इससे पहले कि मैं एक और प्रश्न लूं, हमारे साथ मधुकर जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ। मधुकर जी स्वागत है आपका रेडियो मधुबन पर।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन के लिए। सो ये मेरा पहला शो है रेडियो मधुबन के लिए, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और थैंक यू वेरी मच।
2: जी मधुकर जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप क्या करते हैं प्रोफेशनली, और आपका पर्यावरण के साथ संबंध कैसे शुरू हुआ?
3: हाँ जी, मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है वो ऋषिकेश में हुआ है, और अभी मैं देहरादून में हूँ। ये जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो देहरादून में हूँ मैं, और दो दिन पहले हम लोग माउंट आबू में ही थे। तो ये तो मेरा वैसा मतलब जनरल बैकग्राउंड हो गया। बाकी मैंने कॉरपोरेट में 23 इयर्स काम किया है, एंड देन लेटली आई रियलाइज कि एनवायरनमेंट पे काम करने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी डेली लाइफ में कॉरपोरेट के अंदर या अपने काम के अंदर रहते हुए एनवायरनमेंट बचा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। प्रॉब्लम जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से कार्बन एमिशन का लेवल बढ़ रहा है, तो जो पिछली रिपोर्ट थी यूनाइटेड नेशन की उसके हिसाब से 2020 में ये कार्बन एमिशन का लेवल जो है पीक पे पहुंचना चाहिए था और उसके बाद में डिग्रेडेशन शुरू होना चाहिए था। जो लास्ट COP जो हमारी मीटिंग्स हुई थी उसके हिसाब से कुछ प्लान बनाए गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये कार्बन एमिशन जो है ये पीक पर नहीं पहुंचा है, अभी भी ये बढ़ रहा है और जो इसका गैप है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हमारा ये जो तापमान है, जगह जगह शहरों का तापमान बढ़ रहा है और हम इसको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर अभी हमने इस पे कंट्रोल नहीं ले लिया तो अगले 10 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना ही बढ़ना तो श्योर है, और उसकी वजह से फिर कुछ सिटीज और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनको आपदा की तरह आ जाएगा कि वहाँ पानी का लेवल बढ़ ही जाएगा, क्योंकि ये तापमान बढ़ने से आपके अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो पिघल रही है। अब ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो हम अब तक करते आए हैं उसको हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ाना पड़ेगा अपने एफर्ट्स को। तो इसी चैलेंज को देखते हुए मैंने फिर अपना कॉरपोरेट का जॉब छोड़ दिया 2019 में, तब से मैं फिर ये एनवायरमेंट का काम फुल टाइम कर रहा हूँ।
2: वाह, बहुत ही खूबसूरत बात है जो आपने अभी ये बात कही मधुकर जी, कि चीजों को समझकर फिर उस पर कार्य करने के लिए हमें अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है उस परिवर्तन की शुरुआत आपने अपने लाइफ में कर ही दी है और आप पर्यावरण के लिए फुल टाइम अभी काम करने लगे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये जो चीजें देखते हैं आसपास, हम ये सुनते हैं कि अभी पर्यावरण का कॉन्फ्रेंस हुआ, COP26 ग्लासगो में हुआ, हम न्यूज़पेपर इत्यादि में, मीडिया वगैरह में पढ़ते हैं कि हाँ ये 1.5 डिग्रीज है, ये बढ़ रहा है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई ये तो चलो सरकारें काम कर रही हैं, ये सब कुछ तो हो रहा है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल, मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न उठता है कि क्या किया जा सकता है। आप ऐसे में क्या एडवाइस करते हैं लोगों को जब आम लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो?
3: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके अंदर में जो कारें काम कर रही हैं या इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनके ऊपर डेफिनेटली सरकार उनके ऊपर नजर रखे हुए है, और जिस तरह से हम देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जीज, इसमें इंडिया ने काफी अग्रेसिव टारगेट्स रखे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो वो है काम सरकार का। तो हमारा जो काम है, हम अपनी कैपेसिटी में एक तो अपना कार्बन फुटप्रिंट वो जरूर चेक करें। काफी वेबसाइट्स हैं जो ये बताती हैं कि हम किस तरह जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें हम कार्बन का उत्सर्जन कितना कर रहे हैं, किस तरह का हम व्हीकल यूज करते हैं, किस तरह का हम फ्यूल यूज करते हैं, हमारा जलाने का क्या तरीका है, हम LPG या लकड़ी जला रहे हैं, इस तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब के पीछे फॉसिल फ्यूल यूज होता है प्रोडक्शन के अंदर। तो वो अपना कार्बन फुटप्रिंट चेक करें और फिर उसको कम करने की शुरुआत करें, तो ये अपने लेवल पे लोग कर सकते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने कंपोस्टिंग एट होम, जो घर में आपके घर का जो कूड़ा निकलता है उससे आप खाद बनाएं, ये भी एक आइडेंटिफाइड सोल्यूशन है, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी ऑनलाइन। तो इसमें 1 kg मतलब 1 kg फूड वेस्ट से आप 2.5 kg CO2 एमिशंस बचा सकते हैं अगर ये हमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये लैंडफिल में जाएगा और लैंडफिल से ग्रीन हाउस गैसेस जो बनती हैं इसके कंपोजिशन से, जब ये वहां पे प्लास्टिक या दूसरे टॉक्सिक मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो ये ग्रीन हाउस गैस जनरेट करता है। तो ये बहुत ही आसान सरल तरीका है पर्सनल कंट्रीब्यूशन का, कि लोग अपने लेवल पे, अपने स्तर पे, घर के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे, जो भी हमारा गीला कूड़ा निकल रहा है वो खाद बनाए। इसको हमें एक मुहिम की तरह लेना पड़ेगा। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड्स में देखें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, वहां पर ये तकरीबन वो 30 साल पहले से ये चीजें करते आ रहे हैं, उनमें काफी अवेयरनेस है और अपने नेचर के प्रति उन लोगों का काफी लगाव भी है। लगाव हमारे यहाँ भी है, हम लोग तो पूजते ही हैं, मतलब हम सूरज को भी पूजते हैं, पेड़ को भी पूजते हैं, हम गाय को भी पूजते हैं, लेकिन गाय जब प्लास्टिक खाती है तो वो फिर हमें दिखता नहीं है। हम सोचते हैं हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्लास्टिक में होता है तो ना वो गाय के लिए अच्छा है ना एनवायरमेंट के लिए। और वो मतलब आप अगर ऐसी रिपोर्ट्स देखेंगे, कुछ ऐसे केसेस आए हैं कि गाय का ऑपरेशन किया गया तो 50 किलो तक प्लास्टिक उसके पेट में से निकला। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हमें अपने ही स्तर पे करना पड़ेगा। कुछ ये छोटे छोटे कदम हैं प्लास्टिक को कम से कम प्रयोग करें, अल्टरनेटिव्स को यूज करें और खाद जरूर बनाएं। इन दो चीजों पे मैं फोकस करूंगा।
2: बहुत ही खूबसूरत बात मधुकर जी आपने बताई कि ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम घर पे कर सकते हैं कि हम अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें, अपने घर में जो चीज वेस्ट जा रही है, जो खाना बच रहा है, उसको हम कंपोस्ट पे डालें। तो बायो कंपोस्टिंग से बहुत सारी चीजें आसानी से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए। हम अभी मनीष जी से भी बात कर रहे थे और वो हमें ये चीज बता रहे थे कि जैसे प्लास्टिक है, एक बहुत बड़ी समस्या है और उस प्लास्टिक के सही निस्तारण को, यानी उसको कैसे सेग्रीगेट करके हम उसको कैसे रिसाइकलिंग तक भेजें, अगर नहीं भेजते हैं तो क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उस कचरे को हम मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहे थे। मैं मनीष जी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिस पर मधुकर जी उदाहरण दे रहे थे कि घर पे बहुत सारी वेस्ट हैं, उन सभी चीजों को अगर हम पहले सेग्रीगेट करना शुरू करें तो फिर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये जो बता रहे थे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है एक बहुत बड़ी समस्या है और आप उसके इको ब्रिक्स बनाने के बारे में लोगों को बता रहे थे कि जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं वो उस इस्तेमाल को हम पूरी तरीके से अगर हम सही से मैनेज नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो किया जा सकता है। इसके बारे में और थोड़ी जानकारी मैं लेना चाहूंगा कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या हो जाएगा, मतलब मैं अगर ये करने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब लोग आपको ये कहते हैं तो?
1: ओके, अगर महात्मा गांधी ने भी ये बात सोची होती तो शायद हम लोग की आज कुछ और ही हिस्ट्री नहीं होती। तो एक अगर इंसान पहला स्टेप ले तो वो बहुत कुछ चेंज डेफिनेटली कर सकता है। और कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनती है, तो कई बार एक स्टेप एक रिवॉल्यूशन ले आता है, ला सकता है। और कहीं पे भी मैं बोलूंगा कि एक की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और क्या होता है कि मे बी हम लोग बहुत बार ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं बट उनको समझ में नहीं आता क्या करें, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है और वहां से वो लोग कुछ मे बी डिफरेंट या बेटर सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें प्रेरणा मिली थी एक बुजुर्ग आदमी से जो अकेले सुबह 5 बजे पार्क में अकेले वो पेड़ों की खूब सेवा करते थे, अकेले खोते रहते थे, पानी देते थे। तो उनसे जब हमने प्रेरणा ली तो आगे जाके हमारे साथ हमने भी काम करना शुरू किया और हमारे साथ फिर और लोग जुड़ने शुरू हुए। और जैसे अब मधुकर जी ने अकेले अपनी एक मुहिम छेड़ी, उन्होंने जॉब छोड़ी और फिर अपना एक एनजीओ भी उन्होंने जिसपे काम कर रहे हैं, और उससे भी बहुत लोग प्रेरणा लेके आगे आ रहे हैं। जब हम स्कूल्स में जाते हैं तो काफी बच्चे जुड़ रहे हैं और उनको भी काफी अब एक एक्साइटिंग एक्टिविटी लगती है कि जो प्लास्टिक्स के लिए, जैसे हमने इको ब्रिक्स का सॉल्यूशन देखा। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये इसकी खोज हमने की, ये बहुत सारे कंट्रीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, अफ्रीका में और इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत सारी कंट्रीज में इस पे काम हो रहा है। तो हम लोगों ने इसको एक तरीके से पिक किया कि, और ये हम लोग 2019 एंड में उत्तराखंड में जैसे घूमने के लिए गए तो वहां हमने देखा कि ये प्लास्टिक्स काफी फैला हुआ है, तो वहां थोड़ा हमारे को प्रेरणा मिली कि इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। और इको ब्रिक्स बहुत अच्छा सिंपल सहज तरीका है इस सिंगल यूज प्लास्टिक को अरेस्ट करने के लिए। और एक इसका बहुत बड़ा पहलू ये है कि ये जो छोटा छोटा प्लास्टिक है इसको रिसाइकलर भी लेके नहीं जाता, क्योंकि किसी चीज को यूज करने के लिए आपको उसका वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इको ब्रिक्स एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि आप सब कुछ एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। और ये एक अपसाइक्लिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आज सपोज आपने इको ब्रिक्स इकट्ठी करके एक बेंच बना लिया और कल को आप कुछ और भी बनाना चाहते हैं तो उसको डिसमेंटल करके वो ब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि तो डीके नहीं होता, सालों साल तक रहता है वो, तो वही स्ट्रेंथ हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम उसकी स्ट्रेंथ की वजह से हमारे लिए जो क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। बट वो है ये है कि उसको हमें एक ही जगह पे एकत्रित करना है।
2: जी, एक प्रश्न हमारे दोस्त पूछ रहे हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप रेडियो को लाइव सुन रहे हैं, रेडियो मधुबन पर आप फोन कर सकते हैं 9414151415 पर। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर 9414151415 पर। और आज हम बात कर रहे हैं मुनीश कुंद्रा जी से और मधुकर जी से, जो आज नई दुनिया में हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त रेडियो मधुबन कर रहे हैं वो इस कमेंट सेक्शन में भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर वो कुछ बताना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि इको ब्रिक्स कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स की समस्या को हैंडल करने में इफेक्टिव हैं, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं अतुल जी।
1: ओके, सो इसमें बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो माइक्रोप्लास्टिक जिसको हम बोलते हैं, वही तरीके से जो स्टैंडर्ड प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं उसका एक डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है। तो अगर हमने जो प्लास्टिक हमने यूज किया तुरंत अगर उसको हमने कैप्चर कर लिया एक बॉटल में, इको ब्रिक जिसको हम बोलते हैं, तो वो मिट्टी में या पानी में घुलेगा नहीं। नॉर्मली आज की डेट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्लास्टिक है ये डिसॉल्व हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कोई प्लास्टिक सॉल्यूशन नहीं मिला है जो डिसॉल्व हो जाए और इको फ्रेंडली हो। तो अल्टीमेटली वो ही प्लास्टिक एक माइक्रो प्लास्टिक का रूप ले लेता है। तो ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो प्लास्टिक बन चुका है उसका हम कुछ कर सकते हैं, बट अगर हमने प्लास्टिक को फर्स्ट स्टेज पे ही कैप्चर कर लिया तो वो माइक्रोप्लास्टिक बनने से रुक जाएगा।
2: जी, तो ये बहुत ही मजेदार बात आपने बताई कि हम एक ऐसे फील्ड के बारे में सोच रहे हैं कि भाई प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक बनने से पहले ही रोक लें। जैसे प्लास्टिक की चीजों को हम देखते हैं तो अक्सर करके हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हम इसे देखते हैं, अरे प्लास्टिक नहीं नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं यूज करना है ऐसा। मगर नहीं यूज करने या कम यूज करने के प्रयास के बावजूद भी हमारे घर में प्लास्टिक अलग अलग स्वरूप में आता है। जैसे लोग टूथब्रश यूज करते हैं या कुछ जैसे ट्यूब्स आते हैं उन ट्यूब्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ऐसे अनेकों चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ऐसे में प्लास्टिक के निस्तारण को लेकर जैसे आपने कहा चलिए इको ब्रिक्स अगर हम बनाते हैं, ऐसे और क्या क्रिएटिव सॉल्यूशंस हैं, क्या इन चीजों के प्रति हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं? जो आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो आप इन चीजों की जानकारी रखते हैं, वो कुछ शेयर करें हमारे दोस्तों के साथ।
1: ओके, मे बी इसके सोल्यूशन के लिए मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मधुकर जी से, वो अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।
2: जी,
3: थैंक यू मनीष। इसमें ऐसा है कि 100% प्लास्टिक से हम बैन नहीं कर सकते हैं, 100% प्लास्टिक को ना यूज करें ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि काफी कन्वीनियंस प्लास्टिक से जो मिली है। बट यह है कि हम धीरे धीरे अपने डे टू डे यूज में ऐसी चीजों का प्रयोग करना शुरू करें जो प्लास्टिक से बनी हुई है, जैसे जो हम लोग यूज एंड थ्रो में जो डिस्पोजेबल होती हैं वो चीजें बायोडिग्रेडेबल, उसके काफी ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं। पत्तियों के बने हुए काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा टूथब्रश, तो अभी काफी ऑप्शंस टूथब्रश में बायोडिग्रेडेबल अवेलेबल हैं, जिसके अंदर जैसे आपका बैम्बू का बना हुआ टूथब्रश है वो यूज होता है। तो इसमें अल्टीमेटली अफोर्डेबिलिटी वर्सेस अवेलेबिलिटी का केस बनता है कि एक चीज अवेलेबल है और जिसके लिए अफोर्डेबल है एटलीस्ट वो तो करे। हर किसी को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक की चीजों ने जो कन्वीनियंस और जो मार्केट इकोनॉमिक्स है प्लास्टिक की, उससे आप सीधा बायोडिग्रेडेबल पे उसके अगेंस्ट में जाके फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा तबका ऐसा है जिसके लिए पैसे की बहुत ज्यादा कीमत है, मतलब उसका इनकम लेवल ऐसा है। और इस तरह कोविड की जैसी सिचुएशन है उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर लीजिए, एवरीथिंग सब प्लास्टिक हटा दीजिए, क्योंकि अभी उसकी प्राइसिंग भी थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी या प्रोडक्शन में अभी कम है। तो एक तो यह है कि प्रोडक्शन में गवर्नमेंट भी काफी स्कीम्स ला रही है एमएसएमई के अंदर, और काफी बच्चे, मतलब हम अगर यहाँ पे यूथ की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एरिया अपने पास में अवेलेबल है यूथ के लिए काम करने के लिए, जिसके अंदर में बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अगर अवेलेबल करा दिए जाते हैं तो इट विल बिकम वेरी गुड। तो यूथ को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि काफी सिटीज में अपने यहाँ पर प्लास्टिक बैन करने की बात चल रही है, बट उसके बैन होने से जो जो परेशानियां आएंगी उसका अल्टरनेटिव हमें कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। तो यूथ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ये जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है, इसके अंदर में स्टार्टअप्स है या अपने नए बिजनेसेस, नए सर्विसेज ऑफर किए जा सकते हैं। अभी कल ही मैं कहीं देख रहा था मुंबई में एक शादी के अंदर में उन्होंने कार्बन न्यूट्रल शादी, जीरो वेस्ट शादी, ये सब कॉन्सेप्ट उसके अंदर में लाया है, जिसके अंदर में वो जो भी डिस्पोजेबल है वो सब बायोडिग्रेडेबल या रीयूजेबल, जैसे कि प्लेट्स हैं या स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं वो यूज कर रहे हैं, और जो भी वहाँ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल है। तो इस तरह से ये नया एक व्यावसायिक तौर पर भी ये नया मार्केट, नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं जो डेफिनेटली यूथ कैन इजिली केटर, एंड इसमें अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अब क्रिएट हो रही है। एनवायरनमेंट के लिए भी वैसे ही है, जिस तरह से एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है तो उसको रिकवर करने के लिए, रिस्टोरेशन के लिए काफी सारे नए जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ज्यादा फोकस है प्लांटेशन ड्राइव्स के ऊपर। तो इस तरह से नर्सरीज का जो बिजनेस है वो काफी बढ़ रहा है। फिर हम जैसे मियावाकी फॉरेस्ट लगाते हैं जो कि एक फास्ट वे है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ये इस तरह के नए सॉल्यूशंस हैं जहां पर कंपनियां सीएसआर फंड के अंदर फ्रेंडली हो। एनवायरनमेंट पहले एक स्टडी की तरह लिया जाता था, बट नाउ इट बिकम ए लार्ज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके ऊपर यूथ को सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए, और अपने कॉलेजेस में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे लगता है भविष्य इसमें बहुत ही अच्छा है। आज की डेट में मुझे बहुत कॉर्पोरेट के लोग या दूसरे लोग पूछते हैं कुछ ऐसा जॉब बता दीजिए जो कभी खत्म ना हो, क्योंकि पीछे कोविड की वजह से काफी ले ऑफ हुए। तो मैं बोलता हूँ वेस्ट मैनेजमेंट का काम ऐसा है, आप मरते मर जाएंगे लेकिन वेस्ट खत्म नहीं होगा। तो बहुत ही ईजी एरिया है, आप पकड़ लीजिए, बस खाली मोटिवेशन, पैशन चाहिए। मैं वेस्ट मैनेजमेंट का काम उससे कर रहा हूँ। मुझे अब ये समझ में आ गया कि पीछे हमने जितना कूड़ा बनाया है, जितने तरीके बनाए हैं, मुझे लगता नहीं कि मेरे लाइफ टाइम में ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होंगी। और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेस्ट के बड़े बड़े पहाड़ हर जगह बन रहे हैं, हर छोटी जगह पर। आप किसी गांव में रहते हैं तो आप ये डंपिंग ग्राउंड्स देख सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा फील्ड है एंड नेवर गोइंग टू फिनिश ऐसा, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है। तो इन चीज़ों को यूथ ने थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, और नए बिजनेस एरियाज हैं इनके ऊपर मूव करना चाहिए, इनके ऊपर नॉलेज बढ़ानी चाहिए, और दैट विल डेफिनेटली हेल्प यूथ टू डेवलप एम्प्लॉयमेंट, और कुछ अच्छा काम भी हो जाएगा इसी बात।
2: जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी जो आपने ये बात कही कि भाई आजकल इतने ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो चुके हैं, यूथ भी जागरूक हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो, शादी ब्याह जैसे पब्लिक सेरेमनीज में, फंक्शंस में भी हम ध्यान रखते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो, रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो। ये बहुत ही काबिले तारीफ बात है, और आपने ये भी कहा कि ज्यादातर लोग इसको एक करियर ऑप्शन के रूप में भी चुनना शुरू करें कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी आउट ऑफ मार्केट नहीं जाएगा, इनको कभी भी मतलब रिसेशन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमेशा हमारे सामने एक समस्या के रूप में रहेगी और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। और नेचुरली जब आप ये बात कहते हैं तो इससे पता चलता है कि हाँ, इस पर काम करने की भी जरूरत है, और ये एक ऐसा फील्ड है जो हमें नए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है और क्रिएटिव तरीके से सॉल्यूशंस भी मिल सकते हैं। आरजे आरुषि जी, आप हमारे साथियों से कुछ प्रश्न पूछें।
0: जरूर, मेरे पास एक्चुअली सुनते सुनते तो और प्रश्न आ रहे थे, और जैसा कि मधुकर जी ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि यूथ कितना कुछ आगे कर सकता है, मनीषी मधुकर जी मैं दोनों आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने बिजनेस आइडियाज की भी बात की, उससे पहले हम ओशंस की बात कर रहे थे, तो ठीक है, हमें जब तक हम कोई न्यूज आर्टिकल या कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं देखते तब तक पर्यावरण के मामले में क्या चल रहा है कई बार लोकल उतना नहीं पता चलता। हमें बस इतना पता है कि हमारे घर के बाहर कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है या फिर हमारे आसपास की झील का क्या हाल है। क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो ओशन पोल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, जो हम एक दूसरे से शेयर कर सकें, एक लार्जर पिक्चर हम एक दूसरे को दिखा सकें?
1: ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बट मैं आई डू नॉट नो कि मैं इस बात का पूरा शायद आपका जवाब दे पाऊँ, तो मे बी मैं मधुकर जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा वो उस पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक तो अगर हम देखें कि ओशियंस, अगर हम देखें कि 70% जो है ओशियंस है हमारे पृथ्वी पे, तो सिर्फ 30% लैंड है जिसपे हम लोग सर्वाइव करते हैं। अब क्योंकि हम लोग लैंड मोस्टली लैंड लॉक्ड एरियाज में रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि समुद्र का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे ऊपर। और उसमें अगर आप देखें कि आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट है, वो ओशियंस पे ही होता है अभी भी आजकल, और वो मे बी एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का सोल्यूशन है, बट डेफिनेटली काफी फॉसिल फ्यूल उसमें बर्न हो रहा है. इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन का एक मेजर कंटेंट आ रहा है ओशियन से, और जो ओशियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं. इसके अलावा जैसे रिक्रिएशन हो गया, हमारे लिए एक बहुत अच्छा, लोगों को होता है कि अब जब आप समुद्र में जाते हैं काफ़ी काम रिलैक्सिंग फीलिंग अब वहाँ पे मिलती है. और एक और बहुत बड़ी मैं बोलूँगा इंडस्ट्री है जो मेडिसिन हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन, दुर्लभ मेडिसिन जैसे अल्जाइमर्स हो गया, कैंसर हो गया, इनकी मेडिसिन जो हैं ओशियंस से मिलती हैं. और डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए जीविका के लिए जो मछली पालन करते हैं या और भी जो ओशियंस में से डिफरेंट फूड ऑप्शंस हैं बहुत लोगों के लिए, तो वो सब उससे प्राप्त होता है. तो इसके अलावा मे बी मधुकर जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पर?
3: हाँ, मनीष ने काफी सारी चीजें कवर की. मैं ये बोलना चाहूंगा, मोस्टली आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है कि हमारे आसपास कहीं ओशन नहीं है तो हमें ओशन पोल्यूशन का ज्यादा पता नहीं चलता, मगर हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास रोड उनपे हम लिटरिंग देख पा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली ये सब ओशन में तो जा ही रहा है. डेली हम 8 मिलियन टन जो है प्लास्टिक वेस्ट है वो ओशंस में भेज रहे हैं. और जैसा मुनीश ने भेजा कि ओशंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ओशंस के अलावा इन रिवर्स का भी बहुत रोल है. और ये सीवरेज सिस्टम आप जैसे देखते हैं, एक दिन बारिश हुई और पूरे शहर में पानी भर गया, तो वी कॉल इट अर्बन फ्लडिंग, जो अर्बन एरियाज हैं, बट ये अभी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हर शहर में आ रही है. आप किसी से भी पूछिए, अभी तो हम बच्चों से पूछते हैं ना, बच्चे आर वेल अवेयर अबाउट कि हमारी नालियां चोक थी, हमारे सीवर सिस्टम चोक हो जाते हैं प्लास्टिक की वजह से. तो ये बात तो बच्चों को भी पता चल गई है, बट बच्चों से हम सवाल पूछते हैं आप प्लास्टिक के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो यही बोलते थे सर हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं, ऐसा वर्ड सुन लिया. तब हमने फिर ये थोड़ा सा ढूंढ के उनके लिए इकोब्रिक्स का सोल्यूशन निकाला. तो बच्चे आर वेरी एक्साइटेड, उनको बताते हैं तो दे लर्न वेरी क्विकली. फिर ये गाय वाला कॉन्सेप्ट है कि गाय को आप खाना देते हो पुण्य की बात है, लेकिन अगर प्लास्टिक में बांध के दे दिया तो गाय तो बेचारी एनिमल है, हमारी तरह तो समझदार नहीं है, वो तो खा लेती है भाई, वो सोच रही है मनुष्य ने दिया है तो कुछ अच्छा ही दिया होगा, खुद का बचा हुआ ही है, लेकिन वो जो प्लास्टिक खा लेती है वो नहीं पता चलता. एंड दैट इज ट्रू फॉर मेनी अदर एनिमल्स. आप ऐसे न्यूज आइटम उठाएंगे, जिम कॉर्बेट में एक फोटो वायरल हुआ था, वहां पर जो लेपर्ड है वो प्लास्टिक उसके मुंह में और वो लेके जा रहा है. ऐसे मुंबई का नेशनल पार्क है, वहां पर डियर्स है, हिरन है, वो प्लास्टिक खा रहे. तो ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है. और ओशंस का जैसे मुनीश ने बताया कि 50% ऑक्सीजन हमें ओशन से ही मिलती है. अब ओशन हमारे कंटेमिनेटेड होंगे तो ये ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी और धीरे धीरे बीमारियां बढ़ेंगी. और 70% जो क्लाइमेट का कंट्रोल है वो ओशन से हो रहा है. और अभी हमने रिसेंटली देखा चेन्नई में बहुत बारिशें हुई, केरल में बहुत बारिशें हुई जो आउट ऑफ सीजन है, और फ्लड जैसी स्थिति आ रही है. तो ये दोनों चीजें मिल रही हैं, मतलब एक तरफ अर्बन फ्लडिंग जो आपके सीवर सिस्टम चोक हो रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश बेमतलब हो रही है और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है ना. तो इन सब चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि मतलब अगर मैं बोलता रहूं तो एक घंटा भी कम पड़ जाएगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल मधुकर जी, और इम्पैक्ट आज हम तक पहुंच रहा है, दिखाई दे रहा है. और ऐसा नहीं है पर्यावरण की प्रभाव एक जगह है तो कल हम तक नहीं पहुंचेगा, हम सब जुड़े हुए हैं इसमें, तो हमें प्रयास भी साथ करने हैं. मधुकर जी, मनीष जी, जब हम आपसे ओशंस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जाने, और जैसा आपने कहा समय कितना भी है पर कम ही पड़ जाता है, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे मियावाकी जो टेक्निक है फॉरेस्ट, जो आप ओशंस के बारे में बात कर चुके, प्लास्टिक के बारे में बात कर चुके, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे और उसके बाद हम अपने श्रोताओं के सवाल भी लेंगे.
3: ठीक है, मैं इसको लेता हूँ. इसमें क्या है कि एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांटेशन होता है, जैसे हर साल प्लांटेशन ड्राइव होता है और जैसे ही बारिशें शुरू होने लगती हैं हमें यहाँ वहाँ से एनजीओ और आपके नेता लोग हैं बुला देते हैं, अरे आ जाइए 1000 पौधे लगाने, ये लगाने, वो लगाना. लोग जाते हैं खुशी खुशी और बहुत खुश होके आते हैं, लेकिन बाद में वो ये रियलाइज नहीं करते हमने पिछले साल पौधा लगाया था उसी जगह पर, जाए तो क्या वो पौधा बचा. वो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पौधे लगते हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं होती. दूसरा क्या है कि काफी टाइम से सरकारी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते रहे, और एक ही तरह के प्लांट्स, जैसे आप देखेंगे एक रोड है तो वहाँ सारे नीम के पौधे लगे हुए, नीम के पेड़ लगे, एक ही रोड है तो उसपे सारे पीपल के पेड़ लगे हुए, एक ही रोड होगी कहीं अमलतास लगा हुआ है, तो एक नया तरह का ट्रेंड आया। लेकिन उसके पीछे जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है वो हमने नहीं देखी, क्योंकि हम जो ये पौधे पेड़ होते हैं इनसे हम दूसरे बायोडाइवर्सिटी, जो इनपे बीज आती हैं, जो मधुमक्खियां आती हैं या तितलियां आती हैं, वो लोग पॉलिनेट करती हैं और आगे ये बढ़ते रहता है, एनवायरमेंट अपने आप ही, नेचर अपने आप ही ग्रो होता है, तो वो चीज उसमें मिसिंग हो गई। तो मियावाकी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम छोटे जगह पर, मतलब एज स्मॉल एज 1000 स्क्वायर फीट या 600 स्क्वायर फीट का एरिया जो हम ले सकते हैं, और उसमें एक हम डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट का मतलब है कि फॉरेस्ट कैसे होता है, अनप्लांड होता है, उसको हम स्टिमुलेट कर देते हैं, वहां पर एक तरह का उसका वर्च, मतलब उस तरह का वो फॉरेस्ट डेवलप होगा। तो अर्बन स्पेसेस में जैसे दिल्ली है, मुंबई है, या देहरादून है, या मसूरी है, ये सभी अब अर्बन प्लेसेस बनते जा रहे हैं जहां पर जगह कम होती जा रही है ड्यू टू हाउसिंग कमर्शलाइजेशन। तो अब छोटी जगह पर हम इस तरह का प्लांटेशन करते हैं, तो इससे क्या है कि कम जगह पर हम ज्यादा डेंसिफाई प्लांट्स लगाते हैं, तो ये 30 गुना ज्यादा डेंसिफाई होता है नॉर्मल प्लांटेशन से, और ये 10 गुना ज्यादा हमको ऑक्सीजन देता है। एंड इट इज ए प्रूवन मेथड। ये एक बॉटनिस्ट थे डॉक्टर मियावाकी, अकीरा मियावाकी, जापानीज बॉटनिस्ट। तो ये इन्होंने 70s में जब जापान के जापानीज बॉटनिस्ट थे का मतलब इसलिए क्योंकि ये अभी रिसेंटली पिछले महीने ही एक्सपायर्ड, तो 92 की एज में। तो जब जापान में वर्ल्ड वॉर के बाद में उनकी कंडीशंस काफी खराब थी, तो इन्होंने इस पे काफी रिसर्च करी टेक्निक के ऊपर कि कैसे कम जगह पर हम ज्यादा प्लांटेशन करें और जल्दी रिजल्ट्स ले। तो नॉर्मल जो हमारे वन है, जो नॉर्मल फॉरेस्ट है, वो 30 40 से 50 साल उनको लगते हैं ग्रो होने में डेंसली, लेकिन हम जो यहाँ पर डेवलप करते हैं ये 10 से 20 साल में उसी लेवल की ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की, इन कंपेयर टू नॉर्मल कन्वेंशनल प्लांटेशन विच वी डू। तो और इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, और इसके बाद में हम एज ए एनजीओ हम लोग इसको मेंटेन करते हैं। बोला ये जाता है कि अगर 3 साल तक आप इन पौधों को देख लेते हो तो उसके बाद में वो सेल्फ सस्टेन कर लेते हैं, उसके बाद में वो खुद ही बड़े हो सकते हैं। तो हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट्स करते हैं दिल्ली एनसीआर में, नॉर्थ इंडिया में, कहीं पर भी, और हम लोग इनको 3 साल मेंटेन भी करते हैं। तो ये अब कुछ ऐसे तरीके, जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण की इतनी विकट हो गई है कि अब हम वो पुराने तरीकों से अगर इनको सॉल्व करने बैठेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें नए तरीके भी लाने पड़ेंगे। और जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट, तो ये अब नए सब एरियाज, उसमें मियावाकी अफॉरेस्टेशन या इस तरह का एग्रो फॉरेस्ट, वो सब चीजें आ रही हैं जिसको यूथ ने एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये इनकी जरूरत ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी जिस तरह से हम डेवलपमेंट हमारी, जैसे हम इंडिया इज द फास्टेस्ट इकोनॉमी और हम लोग काफी डेवलपमेंट में आगे हैं, तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा, और उसमें ये अपॉर्चुनिटीज बहुत इजी मिल पाएंगी हमें, और लोग काफी सेंसिटिव है इस बात के लिए।
0: जी, और यहाँ पे एक प्रश्न भी इसी से जुड़ा हमारे पास आ रहा था, और वो जानना चाह रहे थे हमारे श्रोता मित्र की किस तरीके से क्या हम अपने छतों पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, जो मियावाकी फॉरेस्टेशन जो भी टेक्निक है उससे कुछ इंस्पायर्ड हो।
3: छतों के लिए नया कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है अर्बन एरिया में, उसको जो किचन गार्डनिंग है, अर्बन फार्मिंग। तो हम यहाँ अल्टीमेटली जो हमारा फोकस एरिया है वो कार्बन उत्सर्जन जो है, कार्बन अबेटमेंट, उसको कंट्रोल करना है, रिडक्शन करना है। तो उसमें किसी भी तरह का जो इस तरह का ड्राइव है, प्लांटेशन ड्राइव है, वेदर यू डू ये किचन प्लांटेशन या किचन फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग उसको बोला जाने लगा है, एज अ टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब वो जार्गन हमेशा यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो आप अर्बन फार्मिंग को देख सकते हैं, अर्बन फार्मिंग से भी कार्बन अबेटमेंट का जो है बेनिफिट हमें मिलता है। और इसके अलावा मुझे लगता है कई लोगों ने कोविड के दौरान अपनी सब्जियां खुद उगाई और काफी अच्छा भी उन्हें फील हुआ, और हमें काफी सारे ऐसे फीडबैक मिले। तो ये काम करना भी काफी आसान है, मतलब आप अपनी छतों पे थोड़ा सा सेटअप लगा के किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, और अपने खुद की ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स और फ्लावर्स उगा सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कंपोस्ट करना घर में, तो आपकी खाद भी आप खुद बना सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम बन जाएगा जो आपको इनेबल करता है कि आप खुद ही कुछ कार्बन उत्सर्जन में कमी कर पा रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, जो कि बहुत ही जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, और यहाँ पे समय की सीमा तो हमें यहीं तक इजाजत दे रही है। मुनीश जी, मधुकर जी, बहुत कुछ आपसे जाना, जाते जाते बस शॉर्ट में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अगर जुड़ना चाहें योटा आपसे तो क्या ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुछ ऐसा पढ़ें, कोई एक पॉइंट जो आपको लगता है उन्हें और जानना चाहिए, जरूरी है। मुनीश जी,
1: ओके, जुड़ने के लिए ricefoundation.org वेबसाइट है, वहां से जुड़ सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, मेनली हमें अपने घर से स्टार्ट करना है। जो वेस्ट सेग्रीगेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, एक तो जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है उससे हम घर पे ही कंपोस्टिंग करें, और मेनली जो प्लास्टिक है उसको हम सेग्रीगेट करके सिंपल सॉल्यूशन लाइक इको ब्रिक्स है वो बनाएं।
0: जी, मधुकर जी,
3: मैं बोलना चाहूंगा, एक तो मनीष वेबसाइट गलत दे दिया तुमने, ricefoundation.co.in है, उस पे जाएं, और हमारा वहाँ ईमेल एड्रेस है mail2ricefoundation@gmail.com, उस पे भी लिख सकते हैं हमसे बात करने के लिए। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज इस वर्ड को सर्च करें, यूट्यूब पे देखें, और एक बार आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल जाएगा तो मुझे लगता है कि वो इस तरह का टॉपिक है कि उसको देख के किसी को भी अब ये समझ में आने लग जाता है कि क्लाइमेट चेंज की क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर सकता है। जब सोल्यूशन ढूंढना शुरू करता है तो फिर हम उसमें से एक सपोर्ट सिस्टम है कि आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और नंबर भी वहां पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे पहुंच सकते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है और कार्बन अबेटमेंट, ये दो चीजें हैं, कार्बन रिडक्शन जो उत्सर्जन है इसके बारे में पढ़ें और क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ें, इन दो चीजों की नॉलेज जो है हर किसी को अब जरूरी हो गई है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर जी, मुनीश जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमें आम भाषा में समझाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए। रेडियो मधुबन के सभी दोस्तों को मैं करती हूँ यहाँ नमस्कार, लेते हैं आपसे इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते नई दुनिया नया जमाना में। नमस्कार,
1: थैंक यू।

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੀ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ, ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ? ਆਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੋਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ, ਪਿਤਰੋ ਕਾ ਖਤਮ ਹੁਆ, ਆਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਹੀ ਬੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਿਉਹਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਿਉਹਾਰ, ਤਿਉਹਾਰ ਪੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਤਾਂ ਸਭੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਂਗੇ ਕੱਲ ਕੇ, ਕੱਲ ਸੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੋ ਕਾ ਤੋ ਦੇਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਵਿਵਿਧਤਾ ਮੇਂ ਏਕਤਾ। ਤੋ ਦੇਖੀਏ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਲੋਕ, ਕਿਤਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਹੈ, ਵਸੁਧੇ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਜੈਸਾ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। तो कल से हम सब नवरात्रि मनाएंगे, डांस करेंगे, पूजा करेंगे, देवियों का आवाहन करेंगे, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएंगे, ये सब तो करवे करेंगे ना। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है। जिंदगी का सत्य कि हर एक को जिसको आया उसको जाना है। और जितने हम जी चुके, सपोज हम 70 साल जी चुके, तो अभी उससे कम ही जीना है ना, 10-12 साल ज़्यादा से ज़्यादा। कितना जिया गया इंसान, 20 साल और, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम साल मुझे जीना है, ये समझ आने के बाद मुझ में ये परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया वो बता दे रहे, और हरेक में आना चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन, किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूँ। कोई अपना चला जाता है ना, छोड़ के चला जाता है या दुनिया से चला जाता है, तो अब रोना छोड़ चुका है, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। तो जब पता ही है, सबको जाना ही है, तो जाने में रोना का है भाई? इतने साल वो जी लिया, जितना उसकी चाबी भरी थी, जितनी चाबी भरी राम जी ने, उतना चले खिलौना, तो उतना चल गया वो खिलौना, चाबी खत्म हो गई, चला गया। दूसरी बात, उही प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, ये सोचना भी छोड़ दिया है। काहे कि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा, और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही इतने होंगे कि वही लूट का सोट के कौन कितना ले ले, ये कोशिश करेगा। तो इसकी भी चिंता ना करे कि अगर एकदम से विदाई हो जाती है तो अरे हमारे बाद हमारे ये बेटवा का क्या होगा, नाती पोते का क्या होगा, कोनो फिकर करबे की जरूरत नहीं है, उनका सबको वो मालिक बैठा है। तो अभी हम वो सब फिकर करना छोड़ दिए हैं। तीसरी बात, सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूँ। कोई कितना बड़ा पराई मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़ा राष्ट्रपति आ जाए, हम अपने को तो सबको सम्मान करते, लेकिन कोई बड़ा ओहदा वाला आए तो उसका हमको उसके पैसे का, उसका पावर का, उसका पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डर लगता। काहे डरे भाई, को चोरी थोड़ी की है जो डरेंगे, और वो होगा तो अपने घर का होगा, हम हैं तो अपने घर के राजा हैं। चौथी बात, खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। हम जिंदगी भर दूसरों के लिए जीते हैं, कभी हम अपने लिए नहीं जीते, अपने लिए समय नहीं निकालते। मुझे क्या पसंद है, मुझे हंसना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे दूसरे से बतियाना पसंद है, वो कुछ भी नहीं कभी हम करते हैं, बस दूसरे को खुश करे में ही सारी जिंदगी निकाल देते। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है, जब मैं नहीं थी तब भी दुनिया चल रही थी, मैं हूं तो भी दुनिया चल रही है, कल मैं चली जाऊंगी तो भी दुनिया चलती रहेगी, कोई किसी के बिना रुकता नहीं है। पांचवी बात,
छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया है। पहले तो 5-5 पैसे के लिए करते थे, अरे भाई 20 पैसे का धनिया और काहे दे रहे हो, 15 पैसे का दे दो। अब तो वो सब नहीं करते हैं। कभी कभी जानता हूँ कि मैं ठगा जा रहा हूँ, कभी ये भी मालूम है कि चीज 20 रुपए की है, सामने वाला इमोशन में 30 में जा रहा है, ठगा जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जाता हूँ। अरे 10-20 रुपए में वो कौन सा बिल्डिंग बांध लेगा और हम कौन सा फकीर बन जाऊंगा। छठवीं बात, कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूँ, पहले उसके भी मोल भाव करते थे। 25-50 रुपए खर्च करता हूँ, जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, उनको फ्री में मिल गई है 20-25 रुपए की चीज, और वो 20-25 रुपए से मेरे को कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने वाले की तो खुशी कितनी होती है, तो वो देखकर हम खुश हो जाता हूँ। सातवीं बात, सड़क पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार की चीज भी

वो बात और फिर भी मुझे माफ किया। नौवीं बात, गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना पसंद करता हूँ। कोई गलत व्यक्ति आ गया, दो बात कह दिया, समझ लेना पागल है, बोलो नहीं मुंह से लेकिन मन में समझ लो कि ये तो पगलवा है, तो इसे का बहस करे, तो वो अपनी शांति मन की बनी रहेगी। और दसवीं बात, लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले आनंद का मजा लेता हूँ, ताकि सामने वाले खुश हो जाते हैं तो उनकी खुशी देखकर, और मुंह से वो ना बोले लेकिन फिर भी दिल से आपको दुआएं मिल जाती है अगर आप कोई के चेहरे पे बिना स्वार्थ के मुस्कान लाते हैं तो। ग्यारहवीं बात, ब्रांडेड कपड़े, हाँ ये यहाँ के कपड़े हैं, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज से व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना छोड़ दिया है कि इसने ऐसे कपड़े पहने, इसके पास तो 2 लाख वाला फोनवा है, इससे ऐसे बतियाना चाहिए, नहीं सब एक जैसे हैं। 2 लाख का हो कि 10 लाख का फोन हो कि वो 2-3 हजार रुपए का फोन हो, बात तो वही करेंगे, मैसेज हुआ तो वही आएगा, तो फिर उसके लिए काहे हम आगे पीछे छोड़े। व्यक्तित्व विचारों से निखरता है, ब्रांडेड चीजों से नहीं, ये समझ गया हूँ। चीज वस्तु किसी के व्यक्तित्व को नहीं बनाती, बनाते हैं इंसान के विचार। बारहवीं बात, मैं ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखता हूँ जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमारी तो ऐसी परंपरा, अरे परंपरा किसने बनाई भाई, और बनाई भी उन्होंने गलत बनाई तो आप चेंज कर लो ना, सुधार कर लो ना, तो और जो हम पर थोपने की कोशिश करते हैं, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, अरे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, मुझ पर थोपने की कोशिश करते हैं, अब उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करता क्योंकि कई लोगों ने ये पहले ही कर दिया है उन लोगों के साथ में। 13वीं बात, जब कोई मुझे जीवन की दौड़ में पीछे छोड़ने के लिए चाले खेलता है, दुनिया में बहुत चाल चलते हैं भाई लोग, तो मैं शांत रखकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार ना तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, ना ही मेरा कोई प्रतिद्वंदी है, तो काहे तुम आगे मैं पीछे तुम आगे, करे भाई अपने अपने हिसाब से, कर्मों से आगे पीछे बढ़ो। 14वीं बात, मैं वही करता हूँ जिससे मुझे आनंद आता है, लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दी है। 4 लोगों को खुश रखने के लिए अपना मन मारना छोड़ दिया, हाँ मुझे ही कपड़े पहनने थे, हाँ पहनने हैं भाई, तुम्हें क्या करना, कोई गलत तो नहीं पहने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, ये बाला इसे कहे बना, अरे भाई मुझे अच्छे लगते, तुमको नहीं अच्छे लगते, आँख बंद कर लो मत देखो ना, तो अपना मन मारना छोड़ दिया है, जो खाना है वो खाएंगे, जब खाना है तब खाएंगे। 15वीं बात, 5-स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद करता हूँ। सबको को अच्छा लगता है, काहे कि 5 तत्व का शरीर भी तो प्रकृति का ही बना है ना, तो जहाँ उसकी गोद में जागे तो ऐसा महसूस होगा माँ की गोद में आए। जंक फूड की बजाय बाजरे की रोटी और मटर की सब्जी में संतोष पाता हूँ। हर एक की ये लास्ट विश यही होती है, दिखाने को कितना भी कहे हम पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, 5-स्टार से मंगवाया, लेकिन अंत में तो यही अच्छा लगता है। 16वीं बात, अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय किसी जरूरतमंद के हाथ पे 500-1000 रुपए देने का आनंद लेना सीख गया हूँ, और हर किसी की मदद पहले भी करता था और अब भी करता हूँ, और करना चाहिए हर इंसान को जितना कर सकते। 17वीं बात, गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद करने लगा हूँ, पहले करता था बहुत, नहीं ऐसा है काहे झंझट में फंसते हैं, बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने लगा हूँ, खुद से प्यार करने लगा हूँ। 18वीं बात, मैं बस इस दुनिया का यात्री हूँ, मैं अपने साथ केवल वो प्रेम आदर और मानवता ही ले जा सकूंगा जो मैंने बांटी है, ये मैंने स्वीकार कर लिया है। 19वीं बात, मेरा शरीर
मेरी आत्मा और मेरा

नाम सब मुझको दिया हुआ है। जब मेरा अपना कुछ भी नहीं है तो लाभानी की का गन्ना भाई। और 20वीं बात, अपनी सभी प्रकार की कठिनाइयां या दुख लोगों को कहना छोड़ दिया है। कहे कि मुझे समझ आ गया कि जो समझना है उसे कहना नहीं पड़ता और जिसे कहना पड़ता है वो समझता ही नहीं। 21वीं बात, अब अपने आनंद में ही मस्त रहती हूँ। कहे कि मेरी किसी भी सुख या दुख के लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, ये मुझे समझ आ गया है। 22वीं बात, हर पल को जीना सीख गया हूँ क्योंकि अब समझ आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये दिन भी बीत जाएंगे। 23वीं बात, आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में डूब गया हूँ। मुझे समझ आया है कि अनंत का मार्ग इन्हीं से मिलता है। और आखिरी 24वीं बात, प्रकृति में रहने लगा हूँ। मुझे समझ आ गया है कि अंत में उसी की गोद में समा जाना है। देर से ही से लेकिन समझ आ गया है, शायद मुझे जीना आ गया है। आशा करते हैं हम सब भी ऐसे ही जीना सीख लें तो कितना अच्छा होगा। अंतिम आनंद ही तो चाहिए, खुशी तो चाहिए, किसी की टैटे तो नहीं चाहिए। तो हम दूसरे से नहीं करेंगे तो कोई हमसे काहे करेगा। आप शांति में रहिए, सब कुछ शांति में हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी अच्छी बात कह दिए आपको, बहुत गुड़ बात कह दिए। अभी एक गीत सुन लेते हैं, ओके बाद फिर आपसे बताते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनिएगा गीत।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: त्रेता युग की बात है। अयोध्या से कुछ दूर एक समृद्ध नगर रहा। वहाँ धनंजय नाम का एक अत्यंत धनवान श्रेष्ठी रहता था। उसके पास सोने चांदी के भंडार, विशाल भवन और अनेक सेवक रहे। उसका एक वृद्ध और बुद्धिमान सेवक था सत्यकेतु। वो केवल धन का हिसाब ही नहीं रखता था, बल्कि अपने स्वामी को सही मार्ग दिखाने का साहस भी रखता था। एक दिन राज दरबार में आयोजित एक भव्य उत्सव में धनंजय की भेंट नगर की प्रसिद्ध नर्तकी मृणालिनी से हुई। वो अपने रूप और मधुर वाणी के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसने धनंजय की संपत्ति देखकर उसका विशेष सम्मान किया और आग्रह किया कि वो कभी उसके भवन पर अवश्य आए। धनंजय उसके मधुर व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ ही दिनों में उसके भवन पर जाने लगा। मृणालिनी भी उसे अपने प्रेम का विश्वास दिलाती। धीरे धीरे धनंजय का अधिकांश समय वही बीते लगा। सत्यकेतु ने एक दिन विनम्रता से कहा, स्वामी, प्रेम वो है जिसमें व्यक्ति आपके धन से नहीं, आपके हृदय से जुड़ता है। जहाँ धन समाप्त होते ही संबंध समाप्त हो जाए, वहाँ प्रेम नहीं स्वार्थ होता है। धनंजय ने उसकी बात हंसकर टाल दी। अब कुछ समय बाद धनंजय अत्यंत बीमार पड़ गया। कई दिनों तक उस सैया से उठ नहीं सका। उसी बीच मृणालिनी का जन्मोत्सव आया। धनंजय ने सत्यकेतु को बुलाकर कहा, मेरे लिए स्वर्ण और रत्नों से जड़ा एक अत्यंत मूल्यवान हार लेकर जाओ और मृणालिनी को दे आओ। उसे कहना कि ये उस व्यक्ति की ओर से है जो उससे सबसे अधिक प्रेम करता है। सत्यकेतु समझ गया कि स्वामी अभी भी मोह में है। फिर भी उसने आदेश का पालन किया। वो मृणालिनी के भवन पहुंचा और हार सामने रखते हुए बोला, देवी, ये उपहार उस व्यक्ति ने भेजा है जिससे आप सबसे अधिक प्रेम करती हैं। मृणाली ने बिना सोचे तीन नाम गिन दिए। सत्यकेतु शांत स्वर में बोला, इन तीन में उस व्यक्ति का नाम नहीं है जिसने यह हार भेजा है। मृणाली ने घबरा गई। सामने चमकता हुआ बहुमूल्य हार था। उसे लगा कि यदि सही उत्तर ना दिया तो उपहार हाथ से चला जाएगा। उसने तुरंत 13 नाम गिना दिए। सत्यकेतु ने पूछा, क्या इन 13 में भी हमारे स्वामी का नाम नहीं है? मृणालिनी मौन हो गई। सत्यकेतु ने हार का डिब्बा बंद किया और बोला, देवी, आपने आज मेरे स्वामी की आंखें नहीं खोली, बल्कि उनका भ्रम तोड़ने का अवसर दिया है। वो हार लेकर वापस लौट आया। धनंजय बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पूछा, हेलो,
3: हाँ नमस्कार, सहारनपुर से सिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
2: ओम शांति, कैसे हैं भैया?
3: बस एकदम अच्छे हैं। और आज जो ज्ञान की भी बातें करी, मेरी बहुत ही अपने को प्रेरणादायी मिली
2: जी।
3: ऐसा है कि देखो, ज्ञान ही मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिल तो करे लगता। तो अपने को गधे को नहीं मिलना है, अपने को ज्ञान से ही मिलना आप जैसे
2: जी, जी।
3: और दूसरा बहन जी, के आज सर्व पितृ दिन है, तो आज के दिन अपने पराए आगे के जो भी है।
2: आपने क्या कहा? बीच में आवाज कट रही थी, मेरे समझ में नहीं आया। आपकी आवाज कट रही थी बीच में। हाँ, क्या बोला आपने?
3: तो इसमें क्या क्या अपने दिन है,
2: हाँ, श्राद्ध का लास्ट दिन है जी।
3: इसमें है जो आगे अपना अपने दूसरी बात दादा गुजर गए, कोई भाई है कोई भतीजे है।
2: ठीक है भैया, हाँ कल से नवरात्रि शुरू हो रही ना, उसकी आपको भी मंगल कामनाएं, आपके परिवार को भी पूरे रेडियो मधुबन परिवार की तरफ से। ठीक है, ओके भैया। तुम रनाली ने क्या कहा, सत्य केतु ने हार उसके सामने रख दिया और शांत स्वर में कहा, स्वामी आपका प्रेम जिस हृदय में था वहाँ आप न तीन में थे न तेरह में, फिर भी आप उस मोह को प्रेम समझते रहे। धनंजय कुछ क्षण मौन रहा, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन उसे समझ आया कि धन से खरीदा हुआ सम्मान प्रेम नहीं होता, और आकर्षण को प्रेम समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। उसने मृणालिनी के भवन की ओर फिर कभी कदम नहीं बढ़ाया। अपने धन का एक बड़ा भाग धर्म, गौ सेवा, ब्राह्मणों और निर्धनों की सहायता में लगा दिया। उस दिन से धनंजय का जीवन बदल गया, शिक्षा का मिली। सच्चा प्रेम आपकी संपत्ति नहीं, आपकी उपस्थिति चाहता है। जहां आपका मूल्य केवल आपके धन से हो, वहां प्रेम खोजने की भूल मत कीजिए, क्योंकि सच्चे संबंधों में व्यक्ति गिना जाता है, उसका धन नहीं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। समझदार को इशारा काफी। अरे इतने साल में तो भाई आप सब समझदार हो ही गए। चलिए एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। सुनिएगा गीत।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड, लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक, फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवॉपरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे। 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? No, he will run at the fastest of fast speed. If not the 100 meters world record, लेकिन 100 meters Indian record तो उसको तोड़ना ही था. What I'm trying to communicate is, ऐसा नहीं है कि उसके पास energy नहीं था, energy था, but he kept on programming. I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया? एक switch off किया, दूसरा switch on किया, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन। राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aarambh karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग दैट वी डू।

बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में देवपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राजमहल में सत्यदास नाम का एक सेवक रहता रहा। वो अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त रहा। सत्यदास का विश्वास था कि मनुष्य को अपना कर्म पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। वो अक्सर कहता रहा, जिसने जीवन दिया है वही जीवन की आवश्यकताओं का प्रबंध भी करता है। एक दिन सत्यदास अचानक राजमहल की सेवा में नहीं पहुंचा। राजा ने कारण पूछा तो पता चला कि उसके घर पुत्र का जन्म हुआ है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सत्यदास ने वर्षों से ईमानदारी से सेवा की है, आज उसके घर भगवान ने पुत्र भेजा है, उसकी सहायता करनी चाहिए। राजा ने उसी दिन सत्यदास की मासिक दक्षिणा बढ़ा दी। कुछ दिनों बाद सत्यदास राजमहल आया। राजा ने बढ़ी हुई दक्षिणा उसके हाथ में रखी, लेकिन सत्यदास ने न कोई प्रश्न किया और न ही विशेष प्रसन्नता दिखाई। उसने सिर झुकाकर धन स्वीकार किया और भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ महीने बाद सत्यदास फिर एक दिन राजमहल नहीं आया। इस बार राजा को बहुत क्रोध आया। वो सोचे, मैंने इसकी सहायता की, इसकी दक्षिणा बढ़ाई, फिर भी ये अपने कर्तव्य में लापरवाही कर रहा है। राजा ने उसकी दक्षिणा फिर पहले जितनी कर दी। जब सत्यदास को ये पता चला तो उसने तब भी कौनो शिकायत नहीं की। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे बुलाकर पूछा, सत्यदास, जब मैंने तुम्हारी दक्षिणा बढ़ाई तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और अब मैंने घटा दी तब भी तुम्हारे चेहरे पर कोनो चिंता नहीं है, आखिर इसका रहस्य क्या है? सत्यदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, जिस दिन मैं सेवा में नहीं आया था उस दिन मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ था। जब आपने मेरी दक्षिणा बढ़ाई मैंने समझ लिया कि मेरे पुत्र के पालन पोषण का साधन स्वयं भगवान ने आपके हाथों भेज दिया है, इसलिए मैंने उसे अपना अधिकार नहीं प्रभु का प्रसाद माना। राजा ध्यान से सुनते रहे। सत्यदास ने आगे कहा, और जिस दिन मैं दूसरी बार अनुपस्थित रहा उस दिन मेरी वृद्ध माता ने संसार छोड़ दिया। जब आपने मेरी दक्षिणा कम कर दी तो मैंने समझ लिया कि जिस माँ का जीवन भर पालन करने का सौभाग्य मुझे मिला वो अपने हिस्से की चिंता और अपना ऋण अपने साथ लेकर प्रभु के पास चली गई। राजा की आंखें नम हो गई। सत्यदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धन बढ़ने पर अहंकार क्यों करूं और घटने पर दुख क्यों करूं? धन मेरा था ही कब, जो मिला वो प्रभु की कृपा थी और जो चला गया वो भी उसी की इच्छा थी। राजा धर्मकेतु कुछ क्षण मौन रहे, फिर सिंहासन से उठकर सत्यदास के पास आए और बोले, आज तुमने मुझे राज धर्म से भी बड़ी बात सिखा दी। राज चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन जीवन चलाने के लिए विश्वास चाहिए। उस दिन राजा ने सत्यदास को सम्मानित किया और कहा, मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। जो हमारे पास है वो प्रभु की देन है, और जो नहीं है उसके पीछे भी कोई कारण अवश्य है। सत्यदास मुस्कराया और बोला, जिसे प्रभु ने दिया वो पर्याप्त है, जिसे नहीं दिया उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मन शांत हो तो छोटी सी कुटिया भी महल है, और मन अशांत हो तो महल भी कारागार है। शिक्षा का मिली कहानी से, जीवन में सुख आए
तो अहंकार मत कीजिए और दुख आए तो निराश मत होइए। ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कर्म करते रहिए। जो प्राप्त है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सच्चे संतोष और सुख का मार्ग है। आशा है आप बहुत कुछ इस बात से सीखे होंगे। और सब जानते हैं आज श्राद्ध का अंतिम दिवस है, शनिश्चरी अमावस्या है। कहते हैं कि अगर किसी को नहीं पता कि उनके पितर कब गए थे, उनके वृद्ध दादा दादी नाना नानी या माता पिता कौन सी तिथि को गए थे, तो वो तिथि को अगर आप श्राद्ध नहीं कर पाए तो कोनो बात नहीं, आज आखिरी दिन है, उनके नाम से किसी को कुछ दान गरीब को कर दीजिए, किसी गरीब का पेट भर दीजिए। समझ लीजिए कि आपको जो आप चाहते हैं, आपकी मन की श्रद्धा, वैसे तो किसी के पास कुछ पहुंचता नहीं, वहाँ पे स्वर्ग में कहते गए स्वर्ग में तो खाना मिलता नहीं होगा का, लेकिन फिर भी हमारी संतुष्टि के लिए, हमें लोग का कहेंगे उसके लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप किसी गरीब को खिला दीजिए, किसी ब्राह्मण को खिला दीजिए, किसी जिसको जरूरत है उसको। हम समझते हैं कि आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हमने अपने पूर्वजों की श्राद्ध कर ली। बाकी कल की तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे, कल से नवरात्र मनाएंगे, तो आशा करते हैं कि आज आप अपने सारे दिमाग से जो भी तंसन वंसन है ना पूर्वजों का, कई लोग कहते हैं पितृ दोष है, कई लोग कहते हैं कि हाँ पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया करके घर में कंगाली आ रही, ये सब मन का अंधकार है। ये सब मन में हमारे ना जो भर के रखा हुआ है अंधविश्वास वो है, लेकिन आपके मन को हल्का करने के लिए वैसे भी दान पुण्य करना चाहिए, है तो कर दो। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, ये आज की अमावस्या को बहुत बड़ी अमावस्या मानते हैं, तो आज के दिन जो कुछ भी आप करेंगे तो आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। चलिए एक गीत और सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बताएंगे, सुनिएगा गीत।

0: देखिए भाई, मनुष्य ने कितनी ही सुख सुविधाएं एकत्रित कर ली है, लेकिन फिर भी अफसोस है कि आज धरती पर सभी जीवों में सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य ही है, क्योंकि टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी भी खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। केवल विकृत मानसिकता के कारण संत जन कहते हैं, परमात्मा का दिया हुआ दुख एक सच्ची दुआ से दूर हो सकता है, लेकिन स्वयं के द्वारा निर्मित किया हुआ दुख लाख दुआओं से भी दूर नहीं होता। बाकी समय बीत जाने के बाद कदर की जाए तो वो भी कदर नहीं, अफसोस ही कहलाता है। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती है। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है, ये भी सच्ची बात है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन अमावस्या पर गलत रिश्तों का भी मन ही मन श्राद्ध कर दो। कुछ लोग जिंदा रहकर भी अपनी जिंदगी से विदा होने चाहिए, कुछ रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए जिनमें कुछ बचा ना हो। आशा करते हैं कि आप इन बातों को जरूर कहीं ना कहीं अपने जीवन में उतारेंगे। पिता के बिना आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, पिता के बिना आंखों का ये मंजर ना मिलेगा, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर ना मिलेगा। फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर ना मिलेगा। जब तक कोई होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती है। आंखों आंसुओं को कभी ओस का कतरा ना समझना, आंसुओं को कभी ओस का कतरा ना समझना। ऐसा तुम्हें चाहत का समुंदर ना मिलेगा, ऐसा तुम्हें चाहत का समुंदर ना मिलेगा। इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें, इस ख्वाब के माहौल में बेख्वाब है आंखें। जब नींद बहुत आएगी बिस्तर ना मिलेगा, जब नींद बहुत आएगी बिस्तर ना मिलेगा। ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी साया है मोहब्बत। इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। पिता की महिमा यही है कि साधारण संतान भी असाधारण ऊंचाइयों को छू लेती है और असंभव संभव हो जाता है, क्योंकि पिता एक ऐसा जीव है वो जिंदगी भर अपने बच्चे की भलाई चाहता है, लेकिन बड़े होने के बाद वही बच्चे उसकी कदर नहीं समझते। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, बहुत बार हम किए हैं, बहुत बार कहे हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब है। अपने मन के विचारों को इतना छोटा मत बनाइए, अपने मन को गरीब मत बनाइए। तन भले गरीब हो लेकिन मन हमारे विचार बहुत ऊँचे हो तो जीवन वैसे ही बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। देखे भाई, हम जितना बोल सकते थे उतना बोल दिया, और कल भी तो बोलेंगे आपके साथ। तो आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं, कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
1: हाय, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और बस खुशियाँ मनाइए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो होने के नाते सामुदायिक का गतिविधि सामुदायिक तक पहुंचे, कोई वंचित नहीं रहे। इस कार्यक्रम का माध्यम से अपना गांव और अपना अंचल में जो गतिविधि हो रही है, जो इतिहास है, जो संस्कृति है, जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज खुशी का बात है क्योंकि आप सबको विदित है पर्यावरण के तहत एक एपिसोड हम हर रविवार को चलाते हैं, जिसमें हमारा श्रीमान भूपाल राम पुरेत जी जो कि आबुरोड ब्लॉक से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रूप से सेवानिवृत्त होने के पश्चात रेडियो मधुबन कार्यक्रम में अपना सहयोग दे रहे हैं। हर जगह में जाकर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ न कुछ टिप्स जानकारियां अवेयरनेस देते हैं। तो आज खासकर हमारे आग्रह पर और वो अपना स्वेच्छा से एक विद्यालय जो कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोदुल्ला में पहुंचे, बच्चों को कुछ टिप्स पढ़ाई का संदर्भ में चरित्र निर्माण के साथ साथ अपने जहां रहते हैं उस एरिया को सशक्त समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए पर्यावरण का कितना आवश्यकता है, वो भी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो उनको स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। और आज हम मोदुल्ला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे, बच्चों का साथ रूबरू होंगे, पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण विषय बहुत मैंने मायने रखता है, क्योंकि जहां पर हम रहते हैं जैसे हमारा गांव और हमारा अंचल पर्यावरण सशक्त होगा, सुंदर होगा और समृद्ध होगा, तो हमें जीवन जीने की और आगे बढ़ने की एक शिक्षा मिलेगी और हमें खुशी से रह पाएंगे। तो देर किस बात की, सर से हम सुनेंगे क्लास में कैसे बच्चों का साथ रूबरू हो रहे हैं। सर आपको स्वागत है।
1: पर्यावरण पर बात करेंगे और इसमें जो आपका जो ये टेक्स्ट बुक है प्रस्क्राइब, जो कि मेरे ख्याल से सर ये एनसीईआरटी की तरफ से लिखी हुई है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये बुक प्रस्क्राइब है। अपने यहाँ पर दो तरह का सिस्टम चलता है, एक तो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चलाती है और दूसरा चलाती है एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और वो लिखती है प्रारंभिक कक्षाओं के लिए। आपकी जो छोटी कक्षाओं की जितनी भी पुस्तकें होगी वो एससीईआरटी के द्वारा तय एनईपी के तय मानदंडों के अनुरूप वो लिखी जाएगी, वो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है। अच्छा, ये जो लिखी गई है वो मेरे ख्याल से अप टू स्टार्ट फ्रॉम 6 होगी मेरे ख्याल से, जो भी है। तो ये सारी किताबें जो आपके पास में जो एनईपी 2020 के तहत बनी हुई है उस पर हम काम करेंगे। बच्चों एक प्रश्न पूछता हूं आपको, भैया सवाल का जवाब थोड़ा सा, ये जो पुस्तक पढ़ाई जा रही है, चलिए ये बताइए आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये बताइए बस, पढ़ने का क्या आपका क्या उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? आप सभी पढ़ रहे हैं ना, आप सब पढ़ रहे हैं ना, 12वीं क्लास में आए तो पढ़ क्यों रहे हैं भाई आप, और हम पढ़ रहे हैं ना, हम यहां पर आए, हम क्यों आए हैं यहां पर, हम क्यों आए, अरे सिखाने तो आए हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं? आपने देखिए आप पहली कक्षा पास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और करते करते पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? आप 10वीं क्लास में क्यों नहीं छोड़ा, 11वीं में क्यों पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो बताओ बेटा, अपने अंदर जो भी है उसको बोलो भाई, आपको बोलना तो पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो पता क्या चलेगा, इसका मतलब तो हम क्यों, हम यहां पर आए हैं, क्यों आए, बस आ गए, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप क्यों यहां बैठे हो, क्यों पढ़ रहे हो, इसका कोई भी सवाल का कोई एक जवाब तो होगा ना। आप हिंदी नहीं बोल पाते, अपनी बोली में बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ लूंगा, मुझे सब ठीक है ना, मुझे चीज समझाने से मतलब है, समझ हमारे अंदर कितनी है वो अपने अंदर होना चाहिए भाई, हम पढ़ क्यों रहे हैं, बोलो 12वीं क्लास से सवाल का जवाब तो आना चाहिए। मैं तो सर से बात कर रहा था कि पहली क्लास का बच्चा भी हमसे बात करेगा, अब 12वीं वाला नहीं बोलेगा और मैं ही बोलता रहूंगा तो इसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। बोलिए भाई अपन पढ़ क्यों रहे, बोलिए
2: कुछ आगे जाकर अच्छा कर सके, इसलिए
1: अच्छा करना है, क्या अच्छा करना है, आपने अब तक अच्छा ही किया है, घर पे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाया है, ठीक है ना, तो अच्छा ही तो कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या अच्छा करेंगे? बैठो। और कोई बेटा बात यह है कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमारा विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, सब तरफ से विकास हो। सब तरफ से विकास का मतलब क्या, बोलना चाहे तो हाथ ऊपर करना तो पता चले। सब तरफ से विकास का मतलब क्या सर, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बात ऐसी है तो आप भी बोलिए, अपन सभी मिलके करें। सब तरफ से विकास हो अपना, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, चहुंमुखी विकास। तो ये सर्वांगीण विकास को कैसे समझे बताइए? यानी हम सब तरफ से आगे बढ़ करके जीवन में अपने आप को ठीक रखते हुए औरों के लिए भी उपयोगी बने, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। परीक्षा देकर के पास होने का मतलब क्या है, उसको समझा सकते हैं?
2: आपको आगे बढ़ाओ,
1: आप आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, परीक्षा दे के पास हुए क्या मतलब रहा उसका? एक बच्चा है 100 में से 100 अंक ला रहा है, एक बच्चा है 100 में से 40 ला रहा है, एक बच्चा 100 में से 50 ला रहा है, क्या मतलब हुआ? देखिए समझ के लेवल की बात हो रही है। हाँ, तुम समझ के लेवल की बात करोगे तो टेक्स्ट की बात आती है, और अब तक अपन समझे ही नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब तो ये पढ़ना कितना ठीक है अपने लिए। सर यही चीज सर मैं एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, मेरे ये मूल मेरे अंदर भावना रही कि उस चीज

0: प्रकृति के बीच में रहते हैं, कहते हैं ना आपके चारों तरफ ये जो बना हुआ जो वातावरण है वो आपको प्रभावित करता है। यहाँ की वायु है, यहाँ की पानी है, यहाँ की स्थितियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों ने क्या करा कि ये जो कम हो रहे हैं तो और पौधे लगा दिए। ये चीज सीखनी है अपने, ये आप पौधे लगाते नहीं लगाते तो क्या हो जाते, ये आपने लगाए तो हो गया ना, और लगाया तो कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़ पौधे आपने लगाए तो सुंदरता बढ़ गई, नहीं बढ़ी? तो इसका मतलब हम जीवन में क्या पढ़ करके पास होना ये तो अलग बात है भाई, ये तो एक पैरामीटर है, आप समझ रहे हो। नंबर लाना तो एक सिस्टम है, एक पैरामीटर है। आपको क्या करना है जीवन में, ये पौधे हम हमारे यहाँ स्कूल में लगाए हैं ना, तो हम कहाँ और लगाए, अपने घर पर भी लगाए, अपने गांव में लगाए, अपनी कम्युनिटी में लगाए, भाई तब जाकर के इससे होने वाली सुंदरता अपने घर पर भी दिखेगी, दिखेगी नहीं दिखेगी? तो ये काम कौन करेगा, कौन, हम कौन? मेरे घर पे मैं स्वयं करूंगा, आपके घर पर आप स्वयं करोगे, आपके घर पर आप स्वयं करोगे तो सबको फायदा होगा, आपको भी होगा, सबको होगा तो किसको होगा, आपको भी होगा ना। तो ये काम तो आपको मिल बैठ के करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम इस शिक्षा की जो उद्देश्य है वो पूरा कर पाएंगे। पास हो गए और नौकरी लगी, ये इसका सही उद्देश्य तो नहीं है, ये कोई बीच का एक रास्ता है जिसको निकालने वाली बात है। भाई जो पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के नौकरी लग जाता है, उसके अलावा दूसरे लोग क्या भूखे ही बैठे रहते हैं फिर? पर उनके जीवन में अगर शिक्षा है, पर्यावरण है, तो वो निश्चित रूप से अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप अच्छे साफ धुले हुए कपड़े पहनते हैं ना, आप गंदे कपड़े पहनते हो? तो जब गंदा होता है तब कौन धोता है उसको, आप धोते हो ना, ठीक है ना? तो उसकी सफाई आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप भोजन करते हो, फिर अच्छा भोजन करेंगे तो निश्चित रूप से वो अच्छा पोषण देगा, वो काम कौन करेगा? तो आप सब खुद के लिए ये जब काम करेंगे पर्यावरण से जो संबंधित है, जो हमारे इस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो अब आप ये बताइए कि पर्यावरण किसे कहेंगे, उत्तर दे सकते हो? पर्यावरण किसको कहेंगे? इनको प्रश्न पूछा है मैंने इतनी देर बोलने के बाद में कि भाई पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये देवे? अरे आपको जैसा आता है वैसा बोलो, ताकि मुझे उसमें से कुछ निकालने का मौका। भाई मैं तो और बोलो बोलो बोलो बोलो
1: हाँ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब चारों ओर, आवरण यानी ढका हुआ। अब चारों ओर से अपन क्या क्या ढका हुआ दिख रहे हैं, पेड़, पानी, जमीन, ये सारा पर्यावरण में शामिल है।
0: भाई आप और हम सभी यहां पर किस चीज से प्रभावित होते हैं, बाहरी ओर से, बाहर से, बाहर से, बाहर से किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, जो अपने शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्या चीज है ऐसी चारों तरफ?
1: दिन हो या रात, उससे प्रभावित हो रहे हैं।
0: किससे प्रभावित होते हो, किससे प्रभावित होते हो? पर्यावरण में क्या क्या आएगा, यही तो पूछना चाह रहा हूँ, यही तो निकालना चाह रहा हूँ, किस किस से प्रभावित हो रहे हैं पर्यावरण में, क्या क्या आ रहा है?
2: जल,
0: जल आता है बिल्कुल,
2: पौधे,
0: बोल बोल बोल तू बोल यार भाई,
2: पेड़ पौधे,
0: पेड़ पौधे और
2: जल,
0: जल,
2: भूमि,
0: भूमि आ गई,
2: पहाड़,
0: पहाड़ आ गए,
2: हवा।
0: बेटा आप समझ में आया, समझ में आया ना, ये सारी चीजें मिलकर के हमको प्रभावित करती है। और कहां तक प्रभावित करती है, हमारे जीवन, उसके विकास और उसकी मृत्यु, किसी भी जीव का। देखिए ये तुम्हारे ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती, मैंने एक बात कही, हर एक पर डालती है, किसी जंतु पर भी तो प्रभाव डालती है, कुत्ते पर प्रभाव डालती है, बिल्ली पर प्रभाव डालती है, शेर पर प्रभाव पड़ता है इसका, प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है ना। तो इन सब पर इसका चारों तरफ से जो प्रभाव पड़ता है वो क्या करता है, उसके जीवन को सुनिश्चित करता है, लाइवलीनेस, उसके विकास को सुनिश्चित करता है। आप अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या होगा,
1: बीमार हो जाए,
0: क्या क्या बीमारी होगी बोलो ना बेटा,
1: बोलो,
0: अशुद्ध पानी पिएंगे तो क्या क्या होगा?
1: पानी पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती है, पेट खराब हो जाएगा, मेन तो पेट ही है, सब रोगों

0: की जड़ है वो अपना पेट ही है, और गंदा पानी पिएंगे तो सीधा।
1: बोलो कौन कौन सी बीमारियां होती है?
0: पूरे बोल।
1: अरे बोलो ना तुम, इधर उधर बोल जाओगे तो हम उसको ठीक कर लेंगे। बैठे कितने लोग,
0: सब अपने ही है यहाँ पे, आपको डरने की बात नहीं है।
1: बेटा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से तुम्हारे इधर ये आ जाना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे।
0: हाँ।
1: नौकरी मैंने कर ली, ये कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब नहीं है। आपने तो बहुत बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ पर बस सब छोड़ दिया, यही कर रहे हैं। तो करना ये है, ये पर्यावरण बनाते, ये पर्यावरण बनाते। नौकरी लगना ही शिक्षा नहीं है। मैं रिटायर हो गया, पूछो, इन्होंने रिटायर कर दिया सरकार ने, कि जाओ कर जाए, सो जाओ जाकर, वो शिक्षा है क्या? शिक्षा वो है जो कुछ करने के लिए प्रेरित करे। मैं आज ये समझा रहे निकला हूं कि आप उस चीज को समझ लो कि आप पढ़ क्यों रहे।
0: सही।
1: आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ कैसे रहे। आप उस चीज को समझ लो कि आप स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को कैसे चलाए। नौकरी अहम नहीं है। अपने यहां पर जो नौकरी में नहीं लगे वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो भी कमा के खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना। तो फिर भाई पैसा कमाना ही सारी चीजें थोड़ी होता है। आप इस बात को समझ लो कि नौकरी हमारा लक्ष्य नहीं है भाई। ये नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा, वो नहीं तो वो विकल्प मिल जाएगा। आप तो नौकरी भी नहीं करते। मैं रिटायर हो गया, आप तो नौकरी भी नहीं करते।
2: शिक्षा का मूल उद्देश्य
1: ये बात करनी है, बात ये करनी है। आज हम आए हैं इसलिए। ये बड़ी क्लास लेने का मतलब यही है कि शिक्षा की मूल बात आप तब तक पहुंचाओ कि शिक्षा सौपड़ी वासवा हुदिस नहीं है। लोकल में बताना चाह रहा, आप हमारा सम्मान करते। क्यों करते? क्योंकि मैंने कभी किताबें पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं की। इनको पूछो, जब भी इनको पूछो कि जब मैं कक्षा लेता था ना भैया, मैं अगर क्लास में घुस गया सर
2: जी,
1: तो पूरे दिन क्लास चलेगी नॉन स्टॉप। ये मतलब क्लास में घुस गए, हमारे डाइट में सर लोग इतने डरते थे कि ये सर अंदर आने ही नहीं चाहिए।
0: लगभग 1993-94 की बात है जब मैं 11th में पढ़ता था, और सर की वजह से मैंने ज्योग्राफी ली थी, क्योंकि सर उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे और वहां पर लेक्चरर थे, और इनका पढ़ाना बहुत ही अलग ही तरीके का था, और उसी की बदौलत हम आज यहाँ तक खड़े हैं, और मैं वही उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे।
1: बेटा मैं बात आपसे ये कह रहा हूँ कि सर मैं पीजी की क्लास लिया करता था रीजनल कॉलेज अजमेर में, उस मेयो कॉलेज में, और रीजनल कॉलेज में वहां राजे महाराजाओं के लड़के ही पढ़ते थे। वहां क्लास लेने के लिए मुझे सर पीजी से बुलाते थे, मैं अच्छा मेहनत करता था इसलिए। देखो वहां जब जाता ना,
2: इतने गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद भी आपको थोड़ा मिलने के पहले थोड़ा सा रेफर किए।
1: नहीं सर,
2: अब उसे
1: पता नहीं पड़ेगी, मेहनत तो हम नहीं करें। अब उस तक तो मैं जाइए
2: आग बंद कर नहीं किए सब चीज रहने को, क्या हमको पढ़ना है, मैंने हमारा लक्ष्य क्या है, कितना दे और देने में उसको कितना ग्रहण करने की कैपेसिटी कितना देखना होता है। बड़े बच्चे के लिए तो कॉलेज का अलग है, लेकिन यहाँ के लिए जो स्टैंडर्ड में जिसे पूरे जी अपना बात को रख रहे,
1: करना ही पड़ेगी सर।
2: नहीं सर,
1: सर तो वहां जब सर मतलब डिवोटेड, आप इन्हें समझे मेरी बात को, समर्पित हो जाओ, मेरी बात को समझ रहे हो? मतलब यहाँ का हाँ कहना नहीं ताकि मैं आगे बढ़ू। समर्पण ऐसा होना चाहिए भाई, वहां पीजी की सर क्लास में घुसे तो 3-4 पीरियड एक साथ चलेंगे, घुसे तो चलते रहो बस बस। ये तो इसलिए हमको चाहिए कि लिमिट में बंधने के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है, इनको
2: एक रेफरेंस,
1: इनकी इनकी आवश्यकता नहीं। ये इसलिए कि मैं तुम्हारे तक सीमित रहूं, आप समझ रहे हो ना? तो चल पड़े तो चल पड़े सर, ये डाइट की क्लास में घुसे तो अब घुसे थे वो बच्चे समझेंगे कि अब बाहर जाने का काम नहीं, वो जाएंगे ही नहीं, वो बाहर कैसे जाएंगे, उनको मैटर ही ऐसा मिल रहा है। पर पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, तो हमको भी उस बात को छोड़ो, पूरी तैयारी के साथ पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना क्यों है? वो इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद भी हम काम में लगे, वो इसलिए पढ़ना है भाई। कमाना तो एक जरिया हो सकता है
2: जी,
1: खाना तो एक जरिया हो सकता है, दो टाइम का भोजन तो कहीं भी मिल जाएगा, अपने खेत में खेती करेंगे तो भी मिल जाएगा ना, मकान तो बना हुआ है, खेती करेंगे खाना मिल जाएगा, नरेगा में जाएंगे भोजन मिल जाएगा, लेकिन करना क्या है? तो भैया हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात समझ में आई? बेटा तू बोल यार, बोल जो अपने जैसे भी बोलना बोल दे बस,
2: अपना नाम बोल।
1: हम क्यों पढ़ रहे
2: हमारा क्लास?
3: मेरा नाम कालूराम है, मैं कक्षा 12th में पढ़ता हूँ
1: जी जी,
3: स्कूल सेकेंडरी स्कूल मदल्ला।
1: हाँ, अब पढ़ क्यों रहे हो ये बोलो,
3: ताकि हमारा विकास हो सके। और
0: इसलिए आप किस तरह से हुए उसके लिए हम प्रयास,
1: विकास इसलिए होगा कि आप स्वस्थ रहो। स्वस्थ कैसे रहोगे? चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, स्वस्थ कैसे रहोगे बेटा? बोलो बेटा बोलो भाई, स्वस्थ कैसे रहोगे? सोने वाला कभी स्वस्थ नहीं होता बेटा। गजब यार, तो फिर बोलो स्वस्थ कैसे रहोगे? बोलो बेटा बोल बोल।
3: स्वस्थ हमारे शरीर को अच्छा रखेंगे और खाना पीना अच्छा होगा।
1: खाना पीना शुद्ध होना चाहिए,
3: शुद्ध होना चाहिए,
1: ठीक है ना? शुद्ध कैसा? पानी छना हुआ होना चाहिए, ठीक है, अच्छी जगह का होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे, कई तरह की बीमारियां नहीं होगी, हमको मोती जरा नहीं होगा, पेट संबंधी बीमारियां नहीं होगी। जब हम स्वस्थ रहेंगे फिर भोजन कैसा करेंगे? कैसा स्वस्थ? जो देसी गोबर से बना हुआ पका हुआ अनाज का जो भी भोजन होगा वो सबसे अच्छा होगा। ये केमिकल प्रयोग करके पैदा हुआ भोजन अच्छा हमारे लिए नहीं हो सकता। भाई साहब से पूछिए कि किस किस तरह के केमिकल सर उस भोजन में आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं सर, बताना इनको हल्का सा, हल्का हल्का।
4: जो कुछ भोजन हम लेते हैं ना, भोजन करते हैं बच्चे,
1: सर ये
2: सभी तो भोजन करते, भोजन बिना हम कैसे चल पाएंगे? भोजन तो जरूरी है, लेकिन भोजन जो हम ले रहे हमारा शुद्ध भोजन होना चाहिए। शुद्ध भोजन माने प्योर, और जो भी ले रहे हम जानते कितना प्योर है। प्योर माने शुद्धता, उसमें नहीं मिलावट किसी ना किसी रूप में आते हैं। सब्जी में देखते हैं तो कितना चकाचक दिखाई देता है, लेकिन उसका पहले इंजेक्शन उसी कलर का कटेंगे तो लाल, और जब खाएंगे पेट गड़बड़ होता है कि नहीं?
1: सर क्या बता रहे बताओ मैं
2: तो, पानी से भी
1: जो लौकी है ना उसमें इंजेक्शन लगता है, लौकी फट से बढ़ जाती है दूधी दूधी तुम्हारी, तो वो जो इंजेक्शन वाली दूधी तो नुकसान करेगी ना, पर अभी देसी वाली
2: जैसे आपका स्कूल में हम लोग देखे हैं लौकी का दूधी का लगा हुआ है,
1: बिल्कुल,
2: और पूरा रासायनिक कुछ भी नहीं है उसमें, पूरा जैविक और शुद्ध, माने विचार सकते आपका विचार जो है ना, हमारा स्कूल में हमारा विद्यालय में एक किचन गार्डन हो और हम उसको उगाए, हम बहुत सारा पौधा देखे हैं। क्या क्या देखे सर?
1: जो आपका जो किचन गार्डन मैंने देखा ना यहाँ पर, आपकी जो मैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में था उसमें, उसमें बहुत विकास हुए, हमारा मतलब ही विकास है बस, क्योंकि हम उसमें उस पॉजिटिव दिशा में काम करते हैं। किचन गार्डन सर प्रत्येक हॉस्टल में बनाया गया।
2: क्या बात,
1: प्रत्येक हॉस्टल में, हॉस्टल है ना आपके आदिवासी हॉस्टल जितने भी
2: छात्रावास,
1: सभी में बनाए छात्रावासों में, और सभी में वहीं पर उगाई हुई सब्जी काम में ली जाने लगी। आपने भी बनाया ये छोटा सा, ठीक है ना, पर वो सर हॉस्टल की सब्जी उस हॉस्टल में काम में आ जाती थी। तो सभी अपने अपने घर पर भी ये कर सकते हैं, अब ये कोई बड़ा काम नहीं है। 10 टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटी टमाटी बैंगन लगा दिए,
2: मिर्ची लगा दी,
1: सेम फली लगा दी, मिर्ची लगा दी, और क्या चाहिए?
2: पपीता लगा दो, हमेशा चलता
1: लगा दो, ये अपने हाथ से अपन बना करके उसको उगा करके खा सकते हैं।
2: तो उसके साथ जिस रासायनिक, आपके पास बाजार जाना जरूरत नहीं है, गाय गोबर तो मिलता है, भैंस का गोबर रहता है ना, तो उसको डालिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं, आपका मन में सोचना है अच्छा, सोच उस पौधा को दो अच्छा बन जाए, अच्छा बहुत इतना फल है जो हमारा परिवार खाने का अड़ोसी पड़ोसी को दे, और स्कूल में लेकर जाएंगे पक्का होने के बाद, सभी मेरा बर्थडे में खिलाएंगे, ऐसे सोचो। वो पौधा को पेड़ को उनको संकल्प दो, तो पेड़ के साथ बढ़कर ऐसे बात करो मन से, देखो पौधा कितना आगे बढ़ेगा प्रैक्टिकल, और देखना होगा तो चलिए हमारा तपोवन में सब, कोई रासायनिक नहीं है, जैविक खेती का साथ योगी खेती करते हैं। लेकिन जानेंगे अल्प विराम के बाद, स्कूल का जो गार्डन और सभी हॉस्टल का जो गार्डन जो लगाए अपना खुद के लिए, बोले कम जमीन में लगाओ,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इसका बाद फिर बड़ा एकड़ में बड़ा जगह में लेकर बना सकते हैं, लगा सकते हैं, तो ये आपका फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा, इसका साथ साथ पर्यावरण को भी अति
1: बिल्कुल फायदा होगा,
2: फायदा करेंगे। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, है ना सर, इसका बाद फिर सर से सुनेंगे
1: नेक्स्ट
2: और फिर विराम का बात।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: बेटा देखो अब तक अपन ने बात की, आपने कहा है कि किचन गार्डन में लगे हुए सर जो सब्जी फल अपने यहाँ पर जो लगा हुआ उसी की बात कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के यहाँ पर इतना अच्छा वातावरण है, देखिए यही पर्यावरण। पर्यावरण को यूं समझना पड़ेगा कि सरकार ने लागू क्यों किया है सर, इसके प्रीफेस में लिखा हुआ है, मैं बताऊं आपको। यहाँ इस प्रीफेस को देखने वाली बात सर, एक्चुअली में ये जो पढ़ाई होती है ना सर, इसमें हमारे ये लोग प्रीफेस को नहीं देखते, अंदर घुस जाते। जैसे मैंने जो अभी बात की वो बेसिक बात की है कि शिक्षा क्यों है, पढ़ना क्यों है, पर्यावरण क्यों है, अपन इस पर थोड़ी सी चर्चा की है ना, तो वो इसलिए कि अपन आगे बढ़े, खुद स्वस्थ होकर के अच्छा खा करके, रसायन से रहित, जो रसायन के बिना, अगर भाई आप अगर केमिकल वाला यूरिया है वगैरह है इसका उपयोग ना करके आप गाय का भैंस का अपना जो गोबर है ना, बकरी का जो भी ये खाद है उसको अगर अपन उसमें सही तरीके से देते हैं, अपन शुद्ध पानी से उसकी परवरिश करते हैं, अपने हाथ से उस छोटे से पौधे को अपन बड़ा करते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो जाए। जब अपना स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो अपना विकास बढ़िया हो जाएगा, और अपना विकास बढ़िया होगा तो अपने विचार बढ़िया हो जाएंगे, और उसको सही दिशा में उन विचारों को लगा दिया तो निश्चित रूप से हम हमारी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। इस प्रीफेस में सर ये दिया हुआ है सर।
2: जी
1: बिल्कुल, देखिए इसकी मैं बताऊं, इसकी जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा मैं देख रहा हूं 2005, और 2005 सर ये बता रहा है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए।
2: क्या बात,
1: हम इस पर काम करते थे सर, हमने नेशनल पॉलिसी पे काम किया है, किताबें तो खूब बाद में लिखी जाती है, ये कि स्कूली जीवन से बाहर, और अपन तो स्कूल में किताब पढ़ रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं है। आप बाहर देखें, बाहर जाकर कि ये प्रकृति हमको क्या सिखा रही है, ये पर्यावरण बाहरी हमको क्या सिखा रहा है, ये हमको कैसे बीमार कर रहा है, ये देखें। सिखाने का मतलब हमको कहां से बीमार कर रहा है और हम क्या उल्टा पुल्टा खा करके बीमार हो रहे हैं। एक बात और मैं कहूं इसके साथ ही कह दूं, बाहर से जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं ना, हो सकता है बनाया होगा उस किसी टाइम पास के लिए, कभी बहुत दूर जा रहे हैं भूख लगी तो वहां कुछ खा ले, नो डाउट हो जाना, लेकिन सामान्य तौर पे सुबह उठते ही कुरकुरे लाओ, दोपहर को कुरकुरे लाओ, शाम को कुरकुरे लाओ, तो ये तो शरीर को बिल्कुल बर्बाद कर देगा भाई। ये है शिक्षा के हमको खाना क्या है, ये है शिक्षा के हमको पानी कहाँ का पीना है। तुम कहीं भी जाकर के पानी पीने लग गए, उसमें कीड़े आते हैं ना, कहीं भी जाकर के लग गए पानी पीने, उसमें न मालूम कोई केमिकल डाला हुआ है उस कीड़े को मारने के लिए, डालते हैं ना लाल दवा वगैरह, उसमें न मालूम क्या डाला हुआ है, हम सही तरीके से हाथ नहीं धो रहे उस पानी को पी रहे उस मेरे हाथों से, तो बीमार नहीं होंगे तो कहां से क्या होगा। ये है शिक्षा, हम शुद्ध वायु ले रहे, इंडस्ट्रीज के पास में औद्योगिकरण से धुआं फैलता है, इतनी बीमारियां होती है सर को पता है, इतनी बीमारियां होती है इलाज ही नहीं है उनका। तो आप बाहर निकले उसको देखें, और स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रयास करें, विचारों की शुद्धि करें। देखिए सर 86 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी मैं जानता हूं, उसमें था सर बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चे को केंद्रित करके शिक्षा दी जाती थी, मास्टर पढ़ाता था, वो भैया खत्म हो गया। 2005 की दो अलग पॉलिसी आई, बाहर ले जाने वाली हुई, और अब जो आई है 2020 एनईपी 2020 में कुछ लिखा होगा सर
2: जी,
1: देखिए इसमें साफ लिखा है सर, शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। मैंने आपको ये बात साफ साफ कही है कि परीक्षा ही इसका आधार नहीं है, परीक्षा तो पास करने का एक पैरामीटर है, जैसे ये बच्चा तैयारी कर रहा है ना उसमें एक पैरामीटर होता है, इसकी पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, करीब प्रत्येक तैयारी में एक पैरामीटर होता है कि भाई कितने से तेज दौड़ेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एक पैरामीटर है, तो ये परीक्षा भी तो पैरामीटर है भैया। सर अपने यहाँ तो फेल करने का भी सिस्टम
2: नहीं है,
1: क्यों क्यों हटाया, ये शिक्षाविदों ने मिलकर इसलिए हटाया कि ये तो एक सिस्टम है, एक मात्र 100 में से 100 नंबर लाने वाले की ही नौकरी लगेगी, वो जरूरी नहीं है। इनको पूछो 100 में से 100 नंबर लाएगा वो, फिर वो दौड़ कैसे लगाएगा उतनी। तो सब तरफ से स्वस्थ होना है, तो सब तरह से स्वस्थ होना है, तो सब तरफ से सोचना है। शिक्षा का मतलब तो वो है, शिक्षा का मतलब पुस्तक पढ़ करके नंबर लाना तो नहीं है, वो याददाश्ती का एक पैरामीटर हो सकता है, वो तो एक बिंदु है जो बहुत ही छोटी सी बात है। तो ये इसका मतलब अब ये हुआ कि दैनिक समय सारिणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिसमें शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। वास्तव में हकीकत में तुमको क्या सीखना है वो सीखना है, ये समझ होनी चाहिए। ये है शिक्षा का
2: क्या बात
1: सर, मूल उद्देश्य। और हकीकत क्या है, हम अनाज कैसे पैदा करें अपने खेत में। हम डीएपी और यूरिया का अगर प्रयोग कम करेंगे ना, आपको पता है नैनो यूरिया अभी आया है, एक छोटी बोतल आती है तुम्हारे सबके घर पे होगी, वो जो अपने जो वो जो बैग वाला यूरिया जो काम में लेता है उससे बड़ा काम करता है, छोटी सी बोतल आती है, पता है आपको, नैनो यूरिया देखा है, अतरी कूपे आवे तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो उसका सारा काम कर लेता है। जो बदलते हुए समय में हमको उपयोग क्या करना है, उसकी जगह गाय भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, बकरी का जो भी होती है ये खाद, वो अगर आप काम में लेते हैं तो वो आपको शुद्ध अनाज देगी। और सर आने वाले समय में अगर आप देखो तो आपके वहां आरोग्य वन में गया था मैं, वहां दवाई नहीं छिड़कते, ये तुम्हारे पंप लगा के छिड़कते हैं ना, वो दवाई नहीं छिड़कते, उससे तो बीमारियां आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जितना आवश्यक है उतना करना ही पड़ेगा, लेकिन जीवामृत वहां बनता है, 10 पेड़ों के पत्ते होते हैं, उनको बॉइल किया जाता है, उसमें आंवला मिलाया जाता है, उसला मिलाया जाता है, एलोवेरा, और उससे एलोवेरा यहां भी लगा हुआ आपके यहाँ, उसको मिलाते हैं उसमें और उसको फिर स्प्रे किया जाता है, कैसे, पानी के माध्यम से दे दिया जाता है, ऑटोमेटिक सब में वो सारी दवाई लग गई, कोई बीमारी नहीं होती, वो खाद लग गया, वो दवाई लग गई, वो सारा उत्पादन बढ़िया से बढ़िया हो गया। हम बीमार होंगे कहां से, बीमार होते हैं लेकिन कम होंगे, आप अंदर से मजबूत है आप कम बीमार होंगे। तो इसका जो मूल जो पर्यावरण का उद्देश्य वो ये है। अब आपको आपके कंटेंट वाली बात भी मैं कर देता हूं क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ लिया है,
2: प्राकृतिक संसाधन,
1: हाँ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन इसमें से इस क्लास को। तो इसमें हमने क्या करा है, 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा और कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है, विश्व की साझी विरासत जैसी धारणाओं के बारे में इसमें आपके बताने वाली बात है, और समकालीन विश्व में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता का इनसे क्या मतलब, आपका जो मूल जो जनता है जो पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ हो रही है वो इसके बारे में क्या सोचती है और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, वो इन सम्मेलनों में सर तय होता है। ये है सर, इसके लिए 60 के दशक में ये पर्यावरण के बारे में समझ पैदा हुई जिस बारे में अभी आप और हम रूबरू हो रहे हैं आपकी क्लास में। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर, ये हुआ था सर रिया डिजेनरो में मेरे ख्याल से, राइट, इसमें लिखा हुआ नहीं है, विश्व राजनीतिक मुद्दों को शामिल कर दिया यहां पर। ये जो 1992 में ये जो हुआ था इसके अंदर पर्यावरण की चिंता की गई, वैसे बहुत लंबे समय से इस पर काम चल रहा है। वही वाली बात जो मैंने आपसे निवेदन किया है, वो क्या, किताब पढ़ते हैं नंबर तो लाते हैं पर काम नहीं हो रहा है, आप समझ गए। आप ये बताओ, सरकार ने मुझे रिटायर कर दिया पर मेरी समझ ये है कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं ना, आप समझ गए बात को, भाई हमको क्या समझ रहे हैं वो समझना है। आपने कहा कि आप आओ साहब पर्यावरण को समझाओ, तो मैं शायद ये समझाने में सफल रह रहा हूं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस कक्षा में पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। सरकार ने मुझे उम्र के हिसाब से रिटायर कर दिया कि भाई नहीं यार, 60 साल के बाद आदमी कमजोर पड़ जाता है यार वो, पर देख लो हमने तो पर्यावरण के साथ में आनंद लिया है, तो पर्यावरण में मुझे स्वस्थ कर दिया दौड़ने के लिए, आज भी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना भैया।
2: उसका राज होने वाला आपका ये जो कर रहे इतना है, इसका राज क्या, सात्विक शुद्धता है ना, परोपकार
1: राज तो इसका यही है,
2: विचार है ना, विचार होना चाहिए,
1: विचार एकदम शुद्ध होना चाहिए,
2: तब जाकर काम
1: निकला। मुझे जैसे मुझे ये विचार है अभी कि मैं आपको वो चीज दूं जो समझाना है वो समझा के जाओ।
2: सारी तो सबका है
1: मेरा,
2: लेकिन विचार
1: ये भैया खड़े हैं
2: भावना उससे,
1: ये भैया खड़े हैं आपको बताओ कि हमने जब यहाँ पर, मैं जिला शिक्षा अधिकारी था यहाँ पर, कहा तुम्हारे एरिए में आबू रोड में, मैं तुम्हारे ट्राइबल में खूब काम किया, ऐसे ऐसे काम किए, लोग बजट एक देते कि यार वो वहां बैठा उसके बजट दे दो, पूरे एरिया का बजट आता था, तो हमने बजट को ऐसा उपयोग किया कि उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है। मैं जब यहां आता था तब ऐसा नहीं था ये, लेकिन अब इतना बढ़िया हो गया, पूछो इनके वहां निचला गढ़ में जाते लोग खुश होते। आज मैं आया हूं, देखो भाई साहब ने बोला मुझे आनंद आ रहा है कि चलो हमारे जो बोया था ना वो बढ़िया अच्छा उग करके फल दे रहा है आप सबको, तो हमको अच्छा लगता है। तो हम स्वस्थ क्यों है? दूरगामी सोच के तहत अपना विचार है, अपना संकल्प है, तो वो बढ़िया रखना। हम अच्छा करें तो अच्छा हो जाएगा, मैं समय का उपयोग अच्छा करूंगा तो अच्छा होगा। भाई ये बात तो तुमको समझ में आई कि मैं यहां पढ़ाने तो नहीं आया? नहीं, मैं ये पढ़ाई कहां से आई और क्यों आई इसके लिए आया हूं, ये मुझे पकड़ के क्यों लाए?
2: लेकिन क्या है जो अभी समझा रहे, फाउंडेशन है इसका, ऊपर में जितना मंजिल बना सकते हैं, जो अभी जो ज्ञान सुन रहे ना वो ज्ञान आपका बेस, इसका आधार से चरित्र निर्माण होगा। जो चरित्र निर्माण होगा कोई भी रोजगार के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा आपको,
1: सभी आपके पास में चरित्र है किसी रोजगार की।
2: तो शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र निर्माण, विचार निर्माण, शुद्ध विचार, शुद्ध चरित्र।
1: आप बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? खाने की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है, ये प्रकृति अपने खूब दे रही है। गड़बड़ कहाँ है कि हम गड़बड़ हो जाते हैं तो बीमारी में अपन खत्म हो जाते हैं, इधर उधर जाने में अपना काम पूरा हो गया। आप सही चलोगे, सही काम करोगे तो अपने आप ही सही बरसने लग जाएगा। अच्छे काम के लिए कहीं पर प्रतिरोध करना भी सीखो, करना पड़ता है। हम जब निकलते हैं अरे यार आज तक तो नहीं हुआ, ये क्या कर लेंगे भाई, हम रिटायर भी हो गए अब तक तो तुमने, अरे हमने प्रयास हमारा कर देना चाहिए। आपको अपना प्रयास करना है, अपने आप प्रकृति दे देगा नहीं देगा? आप प्रयास करोगे तो नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, हमको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना। खाने की चिंता नहीं करनी है, भोजन मिल जाएगा। अरे देखो हम तो नौकरी से, ये तो नौकरी भी नहीं की है, नौकरी अच्छी जगह से छोड़ छाड़ के आ गए, भूखे बैठे हैं। अच्छा अपन तो, हम तो हमारे एरिया में घूम रहे, ये तो कहां घूम रहे, उड़ीसा से आए हैं और यहां घूम रहे। तो कहने का अर्थ इसका जो है कि आप अच्छा करोगे निश्चित रूप से आपको अच्छा मिल जाएगा। अब ये जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं इस पे जा रहे हैं, देखिए यहां पर चिंता क्या हुई थी, पर्यावरण की चिंता क्यों है, ये देखो वहीं पर आ गए। क्यों चिंता है? दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, जबकि उपजाऊ भूमि के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, चरागाहों में चारे खत्म होने को है, मत्स्य भंडार घट रहा है, जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हुई है, प्रदूषण बढ़ा है, खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो ये जब उन्होंने तब सोचा था, कब सोचा था? 1992 में सोचा है मुझे लगता है। अब तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया भाई, इसलिए अब हम खड़े हुए, मैं खुद खड़ा हुआ। भाई साहब आप किसका काम करेंगे? हम ईश्वरीय चिंतन करेंगे, अच्छी बात कहेंगे और पर्यावरण से ही देखेंगे सभी चीजों को। हमने आपसे यही वादा किया, मुझे कहीं ले जाओ वहीं से पर्यावरण शुरू होगा हमारा। बस पेड़ के पौधे, जो पेड़ है उसकी जड़ों में पानी डालेंगे वो छाया देगा कि नहीं देगा? बस यही काम करना है,
2: देते चलो, बस
1: करते चलो, करते चलो
2: देते जो भी हमारा पास।
1: देखिए सर इसमें संयुक्त राष्ट्र
2: रिटर्न मिलेगा, अच्छा सोचकर देंगे ना तो रिटर्न अच्छा ही मिलेगा।
1: सर ये विकासशील देशों की सर 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, पानी नहीं है साफ।
2: इस गांव में भी पानी के लिए कितना गर्मी का टाइम है दिक्कत होता है ना, कितना दूर जाना पड़ता आप लोग को, जाते हैं ना पानी कभी कोई नहीं आता, तो पानी कहाँ से आता आप घर के लिए, कहाँ से आता बहन तुम बता, देखिए तुम्हारे घर में नल लगा हुआ है, बताओ नहीं कहाँ से लाते पानी बताओ, कितना दूर जाना पड़ता सबको पता है ना, तो पानी का कमी है कि नहीं?
1: अब सर देखिए वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है, ये देखो ये साइंटिफिक है। ओजोन कम क्यों हो रहा है पता है? पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपने भी मोटरसाइकिल ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, आपने भी ले ली, तो वो जो निकलने वाला जो सल्फर है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ जाएगी? तो मैं तो साहब से निवेदन यही करता हूं कि इन साधनों का कम से कम उपयोग करो, आधा किलोमीटर तक हम पैदल चले, उससे ज्यादा है तो साइकिल से चले, ज्यादा ही दूर है तो मोटरसाइकिल काम में ले ले, कोई बात नहीं। सही बात है ना सर? अभी मैं वो टिकट लाया था मैं, सर मुझे कहीं से आना था, दो दिन पहले आपने बुलाया था, मैं कहीं बाहर गया था। मैंने सर ट्रेन पकड़ी, कोई कैसे जाएंगे? मैंने कहा यार अपन ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन में कोई पॉल्यूशन नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई पॉल्यूशन नहीं, आपका उसमें योगदान होता है। तो अच्छे काम के लिए आप ये करो ना भी, इसकी जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, उसका अच्छा विकल्प चुनो ताकि उसका प्रदूषण नहीं हो। तो मेरे ख्याल से सर सार रूप में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अपने लिए जिए, मतलब पर्यावरण की शुद्धि के लिए अपना विकल्प तलाशें। आप नाश्ता करने में कुरकुरे नहीं खाएं, क्या खाएं? घर पे हल्का सा नाश्ता बना के खा लें, घर की चीज का। हम कोई गलत चीज का उपयोग नहीं करें, अच्छी चीज का उपयोग। भाई विकल्प अपने को काम में लाना, भूख तो मिटानी है, खा लो। कोई इधर उधर की कचरा पचरा खाने से अच्छा सा केला लेके खा लो, उसी कीमत में मिल जाएगा। आई समझ में? तो आप सब तरफ से स्वस्थ हो जाएंगे और फिर शांति से सुबह थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा अपने लिए सोचा करो, थोड़ा परिवार के लिए सोचा करो, ठीक है ना? अपने को गुस्सा नहीं आना चाहिए, शांति से बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को प्यार से सिखाओ, ये सारी चीजें सिखाओगे तो अपने आप ही अपन मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्ताव, देखिए कितना भाग्य का बात है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुदल्ला में, और इतना बड़ा एक्सपर्ट जो कि हमारा पर्यावरण पूरा एक्सपर्ट है, बच्चों को अपना जो भाव है, भावना है, बच्चे कैसे आत्मनिर्भर बन
1: है, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं पाएगा,
2: अपना परिवेश देख लेंगे, अपना गांव को सशक्त बना सकते हैं। इस माध्यम से सुने हमारा श्रोता मित्र इसको फायदा लेंगे जरूर, और जो बच्चे सुन रहे इस कार्यक्रम को शाम को 7 से 8 बजे, वो भी इस कार्यक्रम का माध्यम से जितना हो सके ज्यादा ना कम अपना आवश्यकता अनुसार ग्रहण करके उसको काम में लाएंगे तो जरूर सर का इतना मेहनत आपको देने के लिए जो आए हैं, जब उनको ड्यूटी था जो पोस्ट पे थे उनको पूरा बांधा हुआ था, उन्होंने कहा नहीं जा सकते,
1: तो काम ही नहीं कर पाता
2: नहीं
1: था।
2: लेकिन अभी रिटायरमेंट होने के बाद जहां भी जाए, जहां जितने भी समय थे दे सकते, ये कम बात नहीं और आपका भाग्य का बात है। ऐसे बार बार आपको जो मिलेगा, देखो केवल गाँव पूरा एजुकेटेड गांव, हर घर छोड़ के एक एम्प्लॉय मिलेगा, एजुकेटेड शिक्षक हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ ना कुछ पोस्ट लेकर रहते हैं। क्यों? वो मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं और उनका शुद्धता विचार कुछ करने के लिए गांव के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? यस बोलो, यस आई कैन, जोर से बोलो, यस
3: आई कैन,
2: यस वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ, बोलो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम कर सकती है,
1: ये एक्चुअल में एक पर्यावरण को एविडेंस आ रहा है कि भाई वास्तव में ये लोग कम्युनिटी में जाकर के ये चीज से आप लोग बोलेंगे तो पता चलेगा।
2: देखो सभी से अपना करेंगे तो कुछ पाएंगे, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा जो सोएगा वो रोएगा, हम रोएंगे नहीं, खोएगा नहीं,
1: रोएगा,
2: हम पाएंगे। यस क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, यस आई कैन, वेरी गुड, मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ, बोलो जोर से, मैं नहीं करूंगा कौन करेगा, मैं ही किया था और मैं ही करूंगा, बोलो, मैं किया था मैं ही करूंगा, वेरी गुड, ताली बजाओ,
1: वेरी गुड।
2: सर हमारा गणेश सर को कौन भूल सकते भाई, हम निचलागढ़ से परिचित है और गणेश सर रेडियो मधुबन और ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या जानते हैं और क्या सहयोग लेते हैं?
4: बहुत बहुत धन्यवाद पवित्र भाई, वैसे मेरी मनसा तो कुछ अलग ही है, लेकिन हमारा विद्यालय जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास में आया हुआ है और उसको मैं मिनी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ और लगातार प्रयासरत हूँ और आने वाले समय में शायद ये दृष्टि यहाँ पे विकसित हो जाएगी। धन्यवाद,
5: बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर और हमारा साथी सहयोगी श्रीमान भोपाल राम पुरेत जी को, सुंदर में आज बच्चों का साथ रूबरू होकर पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमारा नैतिकता और चरित्र निर्माण में पर्यावरण कितना आवश्यकता वो विषय रखे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर पर्यावरण स्पेशल।
3: नमस्कार, मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जीरी हिचकी, मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिशार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान करताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये करताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने करताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमिला के अंदर ये बच्चों को संगीत की करताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों करताल, ढोलक, कमायचा, सारंगी, मोरचंग, मुरली, अलगोजा, सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निम्बूड़ा। ये निम्बूड़ा हमारे मांगनियर लोगों का गया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है।

0: राम राम रतन भाई, राम राम।
1: ओहो राम राम भाई, कंचन राम राम। आप भाई आओ, तबियत तो हाउ है।
0: हाँ तबियत तो हाउ है, और थारे लहर जीव राजी, और थारे लहरिया ने सोण और भी गणे हो गयो बारे हो राजी।
1: बात है ओला दो मारे लेरियो लिया दो आज, लेरिया पे लगा दो जालर, लगा दो लूमा चार लिया।
0: वाह वाह, लगा दो लूमा चार, यानी खाली लेरियो नहीं लानो है बल्कि लूमा भी लगा,
1: लूमा भी लगानी
0: है। वाह वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान की अपना गीत है जहाँ संस्कृति और संस्कृति की झलक दिखाई दे।
1: बिल्कुल कंचन, तो गावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन तो बिल्कुल सही क्यों है,

0: भाई कंचन पाचो स्वागत करा हाँ अपना सगला श्रोता बंधु और गावरी बात है कार्यक्रम में आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: केड़ा केड़ा गीत चलिया है
1: खेर केड़ा केड़ा काई है कोई पत्नी अपने पति सु मनुहार कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है, एक आग्रह कर रही है।
0: मेरे लावो तो थाने पलका पे राखा, लावो तो बचे थाने पलका पे को नहीं रखा मतलब ये में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं, नहीं रखवा को नहीं कह रहा, पर मेरे को अर्थ समझ जाओ।
1: हाँ सही बात है, मन चुनर मंगा दे नंदी के बीरा। कई जना तो श्रोता बंधु जो नई पीढ़ी है वो नंदी का बीरा भी नहीं समझी, छोटा अपना टाबर ही नहीं समझे,
0: हाँ, नहीं समझे
1: तो वो तो बता देवा भैया अपन कौन नंदी को भीरो है। अरे बीरा यानी भाई, भाई। नंदी यानी नणंद, नणंद का भाई
0: यानी खुद का हस्बैंड,
1: खुद के हस्बैंड तो यान है।
0: सही बात है, और आप लेरिया की बात कर रहे हैं तो भाई लेरिया देख पहले तो केड़ा केड़ा लेरिया चलता सिंपल आप बात की थी गुलाबी पोलिस्टर पे पचे सिफोन पोलिस्टर पे चालू हुए पचे अमेरिकन पे, अमेरिकन का कपड़ा को आज भी मैंने याद नाम याद है शांतिनाथ को पोत,
1: शांतिनाथ को पोत
0: शांतिनाथ को पोत अमेरिकन को 60 रुपया की आती साड़ी।
1: ओ पूरा ही विश्लेषण कर दियो वाह भाई वाह।
0: पचे धीरे धीरे और भी अलग अलग कपड़ो चालवा लागो
1: खेर,
0: और हाँ पचे डिजाइन चालवा लागो, और आज तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले। आज तो देखो प्योर में भी मिले तो आज
1: पॉलिस्टर में भी मिले
0: कपड़ो वे जेना आप कही के वाह पीलिया को कपड़ो आवे चुंदर को कपड़ो आवे
1: जोरजट
0: जोरजट वहां में भी चाल रहे
1: हो,
0: वहां में भी चाल रहे हो जोरजट में तो तरह तरह का लेरिया चाल रहा।
1: सही बात है,
0: और लेरिया पहली प्लेन चालता जिमे खाली कोर का फूल वेता मोगरा का फूल वेता और नीचे के तो लपो वे तो के बीजो वे तो पचे धीरे धीरे बदलाव आयो आरी तारी को काम चालवा लाग्यो
1: लपो बीजो आरी तारी ये सब हो काई वो भी बता।
0: देखिए कोर की वेराइटी है,
1: हाँ
0: कोर में लपो वे थोड़ा चोड़ो वे
1: चोड़ो
0: बीजो वे जो कंगूरा वालो
1: यानी गोटा लपो यानी गोटा,
0: हाँ गोटा की न्यानिस लपो वे तो
1: ओ मैं हाँ, समझ गई
0: सिंपल प्लेन पट्टो वे तो
1: हाँ
0: बारीक बारीक डिजाइन वेती वाणी में
1: मारे बटे इन्ने पेमक का वे
0: अच्छा
1: पेमक गोटो हाँ थोड़े थोड़े चेंज हो जावे नी भाषा को हाँ,
0: और बीजो जी में त्रिकोण डिजाइन वे
1: हाँ
0: समझ गई सका वे
1: हाँ पाजेब जान की हुआ थोड़ी
0: हाँ हाँ
1: है ना हाँ
0: सकड़ो वे वो
1: सकड़ो वे
0: बीच में फूल आवे तो पहले तो फूल भी हाथों बनाता कोर
1: अरे वो पांच पत्ती रा फूल
0: हाँ पांच पत्ती छह पत्ती का फूल
1: हाँ
0: तो
1: सही बात है पहले घड़ा ही बनता
0: हाँ। अरे आज भी याद आवे तो फूल याद आवा दे दो तो भी आप यू मोड़
1: तिकोणा तिकोणा बना वो गोटा का फूल
0: बीच में एक घाट लगाता
1: बीच में एक गांठ लगा था भाई चल मैंने तुम्हारा बचपन याद आ गया और एक बात बता दू तेने कही हुए कि मारे पड़ोस में ज्ञान की घोटा पत्ती को काम करता कटे सिलाता हुई और बेचारे अपने जीवन निर्वाह के वास्ते कोई कुछ करे कोई कुछ करे टाइम पास भी हो जावे
0: हाँ।
1: और तो भाई मन ने भी और वे सब छोरिया राख दिया आपने कने पीसा तो मारी भी इच्छा हुई है कि मैं भी घोटो किनारी को काम कर लू और मैंने भी पैसा मिली सी
0: हाँ।
1: कहिए मैं भी थोड़ा बहुत बना देती और वाने भी सहयोग लाग जातो और मैंने तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया देती रहा एक दो दिन चालियो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा कमान ले आई चल भाई ठीक है छुट्टी आए तो घर में कोई बात नहीं धीरे धीरे कर कमारो तो लोभ लालच बढ़ गयो कठे पढ़ाई कठे अपनी सब अरे हाँ। भाई लेकिन मारे तो घर वाला कही है कि एजुकेशन के प्रति खास अवेयरनेस ही एक दिन तो मारी माँ धीरे से जार मारे कान के चुटकी भरी और मैंने उठा लेना की वो दिन मैंने आज भी याद है
0: अच्छा।
1: और बड़ी होगी मैं तब तब सोचती कि देखो वाह वे सब भी तो घनी जनी छोरियां करती यान को काम
0: हाँ।
1: बाकी माँ ने इतरो ध्यान नहीं दियो पढ़ाई पे तो ये वास्ते वे घोटा में और यहाँ इनकी छोटे छोटे काम में रह गया पर मारी माँ एजुकेशन में ध्यान दी तो आज मैं सब ने पढ़ा कुछ न कुछ बना दिया
0: बिल्कुल खुद ही शिक्षिका बन गए
1: हैं वो ही
0: सही है
1: तो
0: वो क्या मैं थोड़ी चीज में आप अटक गया अच्छा आप ऊपर नहीं आ सका
1: ऊपर नहीं आ सका
0: तो बहुत बढ़िया है कि पढ़ाई के प्रति अवेयरनेस रहे और आज तो भाई छोप कर रही तो माने भी गर्व है तो आप बात कर रहे हैं भाई पहली देखो तो ग्रहण आज भी देखो लेडीज घर में बैठन कतरे काम कर रही
1: है
0: बिल्कुल
1: सही बात है। घरेलू उद्योग कई जना का रोजगार को माध्यम भी है।
0: घर चल रो भैया
1: घर चाल
0: 10,000 धामड़ा में जो आपने लेडीज कमा रही है वहाँ को घर चल रो
1: सही बात है
0: क्योंकि अति आवश्यकता तो है नहीं है। रोटी कपड़ा मकान वीमो निकल जावे लाइट बिल ही असल है। सरकार 200 यूनिट के छूट दे रखी जो भाई फर्क भी पड़ गयो।
1: बिल्कुल सही बात है। सरकार भी खेर अच्छा कदम उठावे विकास के वास्ते।
0: बिल्कुल तो 8-10 हजार आराम कर खर्चो चल जावे।
1: बिल्कुल
0: यह बात अच्छी लगी कि चलो कहीं नहीं तो आप कहीं भी करो पर फ्री मत बैठा रहो आप आर्टी ने बैठा वो क्या खाली दिमाग शैतान को घर
1: और कई भी टाबरा ने तो पढ़ाना भी जरूरी है। देखो
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है
1: यानी आप छोटे छोटे लालच के वास्ते कई बार कही है कि भी यहाँ बांध देवा है वाने टारगेट दे देवा कि भी तूने भी वो करना है तो भी बालक को जो एक विकास है वो तो अवरुद्ध हो जावे
0: आजकल कंपटीशन को जमानो है। पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई पे फोकस देवो
1: बस
0: और कहीं नहीं करना
1: पढ़ाई पे ध्यान देना है।
0: दूसरी बात आप नवरी बात आप नहीं तो असा ना राजस्थान का महीने ले रहा कोई खूब वेल्यू है। सावन महीना में ससुरालू बहू के लेरियो भेजे ही भेजा
1: जना
0: के वो के वा बात अलग वे वो सोम एक आधा किस वे बाकी भेजी है तो पच वे लेरियो नहीं पेरे। मैंने याद आवे वाके रिश्तेदार में वाके पीलो नहीं पेरे छापा में जो पीलो देवे और वाके बीना नहीं ने पीला को उतरो शोक है वाके सारो पीलो छूट गयो वहां को नहीं तो पीला को घणो ही शोक है। वाके कई खबर कई
1: कई बार की डेथ हो जावे या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जावे तो
0: वे आनो करन आई पियर में और पियर में ससुरा जी बीमार हो जो
1: चलता बने
0: पेरियो भी नहीं पीलियो पीलियो के वे सब क्यों पीलियो पेरन लेवना बटियो चापा को आनो आवे तो अड़ोस पड़ोस में सब जगह पे अपने मिठाई बाटी है इन्हें राजस्थान में लेवना के वे तो सासू जी को तैयार भेजा आप दो ही चाले वहां लेवना दे जावा तो भी इन्होंने पीलियो पेरियो और हाथ में लड्डू की तपेली ली थी और उठी ना ससुरा जी की डेथ हुई तो क्या बस वो पड़ गई पीलियो नहीं पहनना।
1: कई बार कही है कि देखो एक ज्ञान की सोच के वास्ते कि अब वे जद पीलियो पहनता तो वहां घटना याद आ जाती। अठे ज्ञान की बात है शुरुआत तो ज्ञान हुई वे एक नेगेटिव माहौल बन जातो ये वास्ते शुरुआत में वे रोक दिया पर बाद में जी की इच्छा है वो पहनो नहीं।
0: भले पहनो सही बात है
1: कोई अति मोटी गांठ थोड़ी लगानी
0: वो लगवानी भी नहीं चाहिए।
1: हाँ लगवानी भी नहीं चाहिए।
0: तो वाह भाई कंचन टाइम हो गयो देखता टाइम तो भाग रहे हो तो चलो अदरत्या को भी बात की थी आप लेरिया की भी बात की थी और भी आप बांधनी की चुंदर की पीलिया की सब की बात करा पर आज कल ये सगला श्रोता बंधु इजाजत छावा और थारों भी भाई आओ जय राम राम
1: राम राम भी राम राम।
2: ओम शांति मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और जो ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज फिर से हम लोग जुड़े हैं एक नए विषय को लेकर। जैसे कल हमने संस्कार बनाने की विधि को समझने की कोशिश की थी, तो आज एक और थोड़ा सा हम लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे। एक ऐसे विषय को लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं जिसमें खास हम लोग बात करेंगे अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ। तो ये पूरा जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है, अगर आप इसको ठीक से समझ लें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप जीवन जीने का जो कला है वो समझ जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको अपने संस्कार और दूसरों के संस्कारों का या स्वभाव का पता नहीं होगा तो आप डील ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिजनेस डील करना चाहते हैं या किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या फिर आप किसी के साथ चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो व्यक्ति के संस्कार, आपके खुद के भी और दूसरों के भी। तो इन दोनों की अगर गहरी समझ हो जाए आपको तो आप प्रॉपरली हर चीज को कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस बात को। तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ फिर से राजेश सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई।
1: बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, शुक्रिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आज इस विषय पर, जैसे कि संस्कारों की बात चल रही थी, तो अपने और दूसरों के संस्कारों की समझ, ये विषय क्यों चुना आपने? आपको क्या लगता है इस विषय पर क्यों बोलना चाहिए?
1: हाँ, इस विषय पर हमें इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य जो है वो अकेला नहीं रहता, वो समाज में रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: चाहे हम परिवार में हैं, समाज में हैं, और जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारे संस्कारों से, हमारी आदतों के ऊपर निर्भर करता है। और अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारे आपसी संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन टकराव वहाँ पैदा होता है जब हमारी एक दूसरे से आते नहीं मिलती हैं, या जिसे हम भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग कहें, गुण नहीं मिलते एक दूसरे से। क्योंकि इंडिया में कल्चर है, अगर शादी भी करानी हो तो पहले पंडित जी को टेवा दिखाया जाता है और कहते हैं कि दो लोगों को सारी उम्र साथ में रहना है ताकि उनका जीवन जो है वो शांतमय हो, खुशमय हो, एक दूसरे को समझ कर साथ में चल सके। लेकिन उन कहते हैं इनके टेवे को या उनकी कुंडली को, कहते हैं हॉरोस्कोप को मिलाया जाना चाहिए ताकि अगर इनके गुण मिलते हों और ये जीवन जो है इनका अच्छा बीते, कल को जाके तलाक ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो, और जिस काम के लिए वो दो आत्माएं इकट्ठी रहना शुरू कर रही थी जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करने के लिए, उसके लिए उल्टा ना हो जाए। इसके लिए बहुत बहुत बहुत ज़रूरी विषय है
0: राजेश जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आज के समय में क्यों ज़रूरी है इस विषय पर आपने बोलना चाहा। तो मैं चाहूँगा कि आप कैसे समझे कि दूसरे के स्वभाव और संस्कारों को कैसे समझें?
1: दूसरे के स्वभाव संस्कार को समझने से पहले मैं समझता हूँ पहले हम ये समझें कि कौन से संस्कार अच्छे हैं या कौन से संस्कार बुरे हैं। इसके ऊपर ही बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो उसके कुछ हमने खुद ही चिंतन कर करके, अगर आपको पसंद आए तो भाई ये कह सकते हैं कि ठीक है ये संस्कार अच्छा है या ये संस्कार या ये आदत जो है वो अच्छी है, ये आदत जो है वो अच्छी नहीं है, इसको हमें बदलने की आवश्यकता है। कैसे कहेंगे? तो पहला मापदंड तो ये है कि अगर मुझे वो पसंद है, आई लाइक इट, और मुझे उससे फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा न केवल मुझे फ़ायदा हो रहा है बल्कि मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, मेरे परिवार में रहने वाले लोग, जो मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे समाज में रहने वाले लोग हैं, मेरे संबंधी हैं, उनको भी उनसे लाभ हो रहा है। और दूसरा मापदंड कहेंगे कि जिनको बुद्धिजीवी ये कहें कि हाँ ये सही है, क्योंकि कई बार समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे मान लीजिए समाज में 100 में से 90% लोग हैं शराब पीने वाले हैं, और अगर वो 90% लोग ये कहें कि हाँ शराब पीना अच्छा है तो सही बात नहीं है। क्योंकि बुद्धिजीवी जो लोग हैं इसको वो नकार देंगे, वो कहेंगे शराब हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसको समझा है, पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब बुद्धिजीवी लोग इसको मानते हैं तो हम कहेंगे ये संस्कार अच्छे हैं। और तीसरे संस्कार, हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हों, हमारी सेहत के लिए भी अच्छी हों, और वो हमारी सेहत को अच्छा करें। जैसे हमने अभी बताया कि शराब पीना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग पीते होंगे, तो वो कहेंगे तो बहुत अच्छी है, इसको तो पीना चाहिए, बल्कि सबको ही क्या होना चाहिए, पिलाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये मापदंड लेकर के हम चल सकते हैं कि ये वाले संस्कार जो हैं ये अच्छे हैं और ये वाले संस्कार जो हैं वो बुरे हैं। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे समझें, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं संस्कारों को समझने के लिए। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो हमें बचपन से ही बाय बर्थ हमें मिले होते हैं, वो हमें किसी ने सिखाए नहीं या किसी ने बताए नहीं, लेकिन बचपन में से ही हमारे में आ जाते हैं। ऐसे भी संस्कार, जैसे हमारी, हम कहेंगे हमारी बुद्धिमत्ता, जिसको हम इंग्लिश में हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हमारे सीखने की विधि क्या है या हम कैसे लोग हैं। जैसे हम बताते हैं कि आठ तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, आठ तरह की बुद्धिमत्ता होती है। जैसे कई लोग होते हैं उनमें वर्बल इंटेलिजेंस होती है कि वो पढ़ने से सीखते हैं, सुनने से सीखते हैं, और उनको सुनना या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोग होते हैं उनमें विजुअल इंटेलिजेंस होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम आजकल मूवीज़ देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या अगर वो क्लास में बैठे होंगे स्टूडेंट तो उनको टीचर को देखना बड़ा अच्छा लगता है कि टीचर कैसा लग रहा है, और वो कोई डायग्राम बना रहा है तो वो डायग्राम बनाने से समझ जाएंगे। और ऐसे लोग जो हैं इस विधि से सीखते हैं, और ऐसे ही अगर वो अपने प्रोफेशन में जाएंगे, जैसे वो फोटोग्राफी में चले जाएं या पेंटर बन जाएं या ग्राफिक्स में चले जाएं, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस विधि से सीखते हैं उसी प्रोफेशन में जाना उनको जो है अच्छा लगता है, और ये बाय बर्थ होता है। ऐसे कोई लॉजिक लोग होते हैं, वो हर एक चीज़ में कारण ढूंढते हैं कि ये अगर अच्छी है या बुरी है तो क्यों।

कुछ होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरपर्सनल पर्सनैलिटीज, ऐसे लोग वो होते हैं जिनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है. आप उनको जो भी कहो वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं. जैसे कई क्लास में स्टूडेंट्स हो गए, चाहे उनको आप आगे वाले टेबल पे बिठाओ चाहे पीछे बिठाओ, वो हमेशा बातें करते रहेंगे. ऐसे लोग जो हैं लीडर्स बन जाते हैं, वो समाज सेवी बन जाते हैं, वो काउंसलर्स बन जाते हैं. और उनको अगर हमने कुछ सिखाना है तो उनसे बातें करके, उनसे बातचीत करके हम उनको बहुत आसानी से सिखा सकते हैं. लेकिन जो इंट्रापर्सनल पर्सनैलिटी होती है वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो खुद का खुद ही सीखते हैं, खुद ही पढ़ेंगे, खुद ही कोशिश करेंगे. और ऐसे सिक्स तरह की पर्सनैलिटी होती है जिनको हम कहते हैं वो म्यूज़िक इंटेलिजेंस होती है. उनको गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, गीत गाएंगे, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, और उनका ये शौक होता है. आप उनको नहीं भी सिखाएं तो भी वो उनको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ऐसे कई लोग बचपन से गीत गाते हैं, उनको आपको ज़्यादा कैसे हम गीत गाते हैं सिखाना नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा रिफॉर्म करना पड़ता है ताकि वो बहुत प्रोफेशनल जो हैं वो सिंगर बन जाएं ना. तो ऐसे कई तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं. ऐसे हमारे पास एक स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी होती है कि ये लोग बचपन से आध्यात्मिक होते हैं. और सत्संग में जाना, ध्यान करना, मंदिर में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, मस्जिद में जाना उनको बहुत अच्छा लगता है. और आध्यात्मिक किताबें पढ़ना ना, और भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना उनको बचपन से ही अच्छा लगता है. उनको सिखाना नहीं पड़ता कि आपको जो है ये करना पड़ता है. और एक और पर्सनैलिटी जिसको हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, ये लोग करने से सीखते हैं. इसलिए स्कूल में, कॉलेजेस में जो है वो लैब्स बनी होती हैं, लेबोरेटरीज बनी होती हैं. जैसे थ्योरी तो पढ़ाते हैं लेकिन ये लोग थ्योरी से नहीं सीखते, लेकिन जो वर्बल पर्सनैलिटी होती है वो थ्योरी से सीख जाती है. विजुअल पर्सनैलिटी देखने से सीख जाती है. उनको आप करके बताओ उनको उनसे कोई मतलब, लेकिन काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहती है तो हाथों से करना चाहती है, जिसको हम कहते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं. वो प्रैक्टिकल से सीखती हैं. जब लेबॉरेटरी में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब उन्हें समझ लगेगी हाँ ऐसे करना पड़ता है. आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं वो खिलौनों से खेलते नहीं हैं, लेकिन उनको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे. जैसे हमारे एक्टर्स हैं, वो अपनी बॉडी से जो है एक्शंस करते हैं. हमारे डांसर्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं हमारे सारे, ये काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी में आते हैं, जिसमें कि बॉडी की मूवमेंट ज़रूरी है, जिसमें कि कोई ना कोई कार्य करना, ये लोग कार्य करने से जो है वो सीखते हैं. ऐसी हमारे पास जो है ये अलग अलग तरह की वैरायटीज़ होती हैं, लोग होते हैं, हम उनको समझ पाते हैं. कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति गाना ही क्यों गाता है. जैसे माँ बाप समझते हैं कि ये मेरा बच्चा ये गाना ही क्यों गाता है, इसको मैथ पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं चाहता हूँ ये इंजीनियर बने लेकिन ये सिंगर बनना चाहता. माँ बाप को समझ नहीं लगती कि दूसरों के बच्चे जो हैं वो साइंस में क्यों होशियार और मेरा बच्चा क्यों नहीं. उनको लगता है शायद ये पढ़ता ही नहीं. लेकिन उनको ये समझ नहीं आती इनके ये जो गुण हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो आत्मी, ये बाय बर्थ उनमें होती हैं. और अगर वो उनको उस फील्ड में जाने में सपोर्ट करें जो बाय बर्थ उनमें संस्कार या आदत होती है, तो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं. लेकिन केवल केवल उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है. तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है किसी व्यक्ति के संस्कारों को समझने की. दूसरा होता है जैसे रिश्तों में, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, या घर में एक परिवार में कुछ लोग रहते हैं, एक दूसरे के संस्कारों को समझना. कई लोग होते हैं वो बाय बर्थ बहुत इमोशनल होते हैं. इमोशनल माना कि जिनका जो है वो राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, माना कि उनका माइंड बहुत इमोशनल होता है. और अगर कोई व्यक्ति उनसे अच्छी तरह बात नहीं करे तो जैसे छुई मुई होता है ना, पत्ते को हाथ लगाएंगे तो मुरझा जाते हैं. तो अगर आप उनसे प्यार से बात नहीं करेंगे, अच्छे शब्दों में बात नहीं करेंगे, उन्हें अच्छी तरह अटेंड नहीं करेंगे, तो उनका चेहरा उतर जाता है, बहुत उदास हो जाते हैं. भले आप उनका काम नहीं करो, फॉर एग्जांपल वो किसी ऑफिस में जाएंगे, किसी ऑफिसर से मिलते हैं, ऑफिसर कहता है कि नहीं भाई आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो रूड से बोलेगा तो भले काम नहीं किया रूडली भी बोला तो उदास हो जाएंगे. दो दो तीन तीन दिन उदास रहेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, अपसेट हो जाएंगे. लेकिन
अगर वही ऑफिसर उसको बड़े प्यार से अटेंड करता है, उनको चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, बड़े प्यार से बोलता है कि मजबूरी है, मैं ऐसा, तो वो समझते हैं उस व्यक्ति को, उदास नहीं होंगे, और इसलिए भी उदास नहीं होंगे कि उस व्यक्ति ने उसका काम नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि हर कोई उनसे प्यार से बात करे। और ऐसे लोग प्यार से ही बात करते हैं, बहुत केयर करते हैं, संभाल करते हैं। आपने देखा होगा आपके

0: परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे एक माँ में ये नेचुरल गुण होता है अपने बच्चे की केयर करने का, वो तो बात अलग है कि माँ में नेचुरल गुण होता ही है, लेकिन बहुत सारे जैसे बड़े भाई बहन होते हैं, कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं अपने छोटे भाई बहनों का बड़ा अच्छे तरह ध्यान रखते हैं, या फादर जो है वो हर एक बच्चे का पूछेगा, अपने रिश्तेदारों को भी पूछेंगे, न केवल अपने परिवार को बल्कि दूसरों को भी पूछेंगे और उनका ध्यान देंगे, उनकी केयर करेंगे, कोई बीमार हो जाएगा तो उनको पानी ला के देंगे, खाना खिलाएंगे, उनके लिए दवाई लेके आएंगे। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इमोशनल पर्सनैलिटीज। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट एक और पर्सनैलिटी होती है जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक पर्सनैलिटी। ये लोग होते हैं, इनको काम से मतलब होता है, ये शब्द अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन अगर इनका काम हो गया तो ये कहेंगे सब ठीक है, और इनको काम से मतलब होता है, और ये अपने प्यार को कैसे जाहिर करते हैं, शब्दों से जाहिर नहीं करते, किसी को छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उनके प्यार जाहिर करने का तरीका होता है वो दूसरे व्यक्ति का काम कर देंगे। और खुद भी वो वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटीज होती हैं। और अगर एक ही परिवार में जो वाइफ एंड हस्बैंड है उन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की समझ नहीं आती, एक व्यक्ति चाहता है काम होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति कहता नहीं अच्छे शब्द बोलो, उसको अच्छे शब्दों से मतलब है, उसको काम से मतलब है, तो दोनों को ये समझ नहीं आती अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या कारण है। तो ये पर्सनैलिटीज भी बाय बर्थ होती हैं। तो एक दूसरे को समझना कि ये जो गुण हैं, ये जो आदतें हैं, जो संस्कार हैं, उनसे बचपन में ही हैं। और भी बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, उन्होंने दवाई के हिसाब से व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया होता है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम आर्सेनिक पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइप ए पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी विद ए गोल्डन स्टिक इन द हैंड। ये वो लोग होते हैं जो अपने जिनको काम भी पसंद होता है, लेकिन वो लोग होते हैं जिनको हर एक चीज़ टाइम पर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं हरी वरी एंड करी, अपने काम से बहुत ज़्यादा मतलब रखेंगे, टाइम से उनको पहुंचना अच्छा रहता है, और बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं कि हर काम उनका जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं होगा तो वो थोड़ा सा उनका मूड ऑफ हो जाता है, और दूसरों से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही हों, उनको हम कहते हैं आर्सेनिक पर्सनैलिटीज़ या टाइप ए पर्सनैलिटीज़। इसके अपोजिट होता है होम्योपैथी में, उनको कहते हैं सल्फर पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता कि हम टाइम से पहुँचें या हमारा काम परफेक्शन से हो, कहते हैं जैसा है चलता है चलते रहने दो। और जो आर्सेनिक पर्सनैलिटी होती है बड़ी सफाई पसंद होती हैं, बचपन में उन्हें सफाई का गुण होता है, लेकिन सल्फर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैले हैं, कुचैले हैं, कमरे में गंद पड़ा है, उनके लिए सब ठीक है, आराम से चल रहा है, उनको ये पता नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अरे सब कुछ ठीक ही तो है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसको सफाई पसंद है उसको ये समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति रह कैसे रहा है, इतने गंद में कैसे रह रहा है, इसको खिन नहीं आती, इसको बुरा नहीं लगता, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक दूसरे को समझने के, तो ऐसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया कि कैसे हम एक दूसरे के नेचर को समझ सकते हैं, और अलग अलग पर्सनालिटी के बारे में आपने जिक्र किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन आपने दिया, बहुत ही अच्छा आपने विस्तार से बताया। तो चलिए मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को समझ में आ गया होगा, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, किसी को देखने से सीखना अच्छा लगता है, किसी को सुनने से समझ जाते हैं, किसी को बोलने से अच्छा लगता है, और किसी को करके दिखाने से अच्छा लगता है। तो वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, वैरायटी ऑफ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग व्यक्ति की क्षमता है, तो उन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा स्टडी करते रहना चाहिए, और जिस व्यक्ति को जिस तरह से अच्छा लगता है, जिस भाषा में वो समझ पाता है, जिस भावना से वो समझ पाता है, जिस तरीके से, जिस स्टाइल को वो पसंद करता है, उन्हीं चीज़ों को आपको उसी तरह से लोगों के साथ डील करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, सबको सब एक्टर्स पसंद नहीं आएंगे, किसका फेवरेट कोई है, किसका फेवरेट कोई है, तो ये भी हमारी जो है चॉइसेस भी अलग है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर व्यक्ति की हॉबीज़, उसके नेचर, उसके स्वभाव, संस्कारों को थोड़ा सा जरूर समझ ले और फिर उसके अनुसार आप डील करते हैं तो उन्हें बेहद खुशी होती है। और आपको दोस्ती करना या उनके साथ कुछ भी कार्य को करना होगा या सामाजिक सेवा करना होगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा विस्तार से आपने बताया संस्कारों के बारे में और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे।
0: मैसेज फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि हम सबको स्वीकार करना सीखें। क्योंकि जैसे आपने अभी समझा कि हर एक की आदतें, हर एक के संस्कार अलग हैं।
1: बिल्कुल।
0: और बाय बर्थ ही होते हैं, जैसे वैरायटी होती नेचर में। नेचर में एक तरह के फूल नहीं होते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: एक तरह के फल नहीं होते हैं, एक तरह के पेड़ पौधे नहीं होते हैं, नेचर में वैरायटी है। इस तरह इंसान भी जो है जैसे उनकी शक्लें एक जैसी नहीं होती बल्कि वो एक ही परिवार में जन्मे होते हैं। इस तरह की कई जुड़वा बच्चे भी होते हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग हैं। इस तरह हमारे संस्कार अलग हैं लेकिन हमें क्षमता डेवलप करनी चाहिए, अपने में आदत डेवलप करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को स्वीकार करना सीख लें, कि दूसरों के आदतों को, दूसरों को संस्कारों को हम रिस्पेक्ट करें। जब हम उनको स्वीकार कर पाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है जैसा मैं हूँ वैसा अगला बन जाए, लेकिन बदलना बड़ा मुश्किल। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी आत्मा को बदल लीजिए, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दूसरा भी मेरे जैसा बन जाए, जैसा मैं हूं सामने वाला भी वैसा ही होना चाहिए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो वैरायटी हो सकती है, अलग हो सकता है और अलग चीज़ भी अच्छी हो सकती है। जैसे रंग जो हैं, सात रंग कुदरत में बने हैं। किसी को ब्लैक कलर अच्छा लगता है तो किसी को व्हाइट अच्छा लगता है। जिसको व्हाइट अच्छा लगता है उसको समझ नहीं आती इसको ब्लैक क्यों अच्छा लगता है और जिसको ब्लैक अच्छा लगता है उसको ये समझ नहीं आती इसको व्हाइट क्यों अच्छा लगती है। रंग तो सारे ही अच्छे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करूंगा हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को अच्छा लग रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और अपना और अपनों का ख्याल रखें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ। फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: I acquire the wisdom. Life is significant. Everything is good.
1: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

जी, आज है 11 अक्टूबर 2026 और आज से नवरात्र के पावन दिन आरंभ हो रहे हैं। चारों ओर भारतवासियों में एक खुशी की लहर है, शिव शक्तियां आ गई, अर्थात शिव के उत्पन्न की हुई शक्तियां इस धरा पर आ गई है और इसीलिए हर कोई इन नवरात्र के पावन दिनों में विशेष देवियों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और यही मन के अंदर कामना रखते हैं कि देवियों से हमें वरदानों की प्राप्ति हो, मन इच्छित फल की प्राप्ति हो। चारों ओर यही भावना को लेकर के हर भक्त आत्मा माँ माँ कह करके पुकार रहा है और ये शक्तियां मनुष्य की भक्ति भावना के हिसाब से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। चारों ओर एक ऐसी खुशी है कि माँ अम्बा जैसे साक्षात इस धरा पर आकर के हमारी भावनाओं का फल हमें प्रदान कर रही है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, जहां पर भी विश्व भर में भी भारतवासी निवास करते हैं, आज से 9 दिन तक कितना सुंदर एक माहौल बनता जाता है, जैसे माँ की गोद में हर बच्चा सहजता से चला जाता है और माँ उनकी भावना के हिसाब से उन्हें फल प्रदान करती है। तो सभी भाई बहनों को नवरात्र के इन पावन दिनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। शिव शक्ति की आरती करते हुए, पूजा करते हुए आपकी मनोकामनाएं सर्व पूरी हो, यही हमारी दुआएं हैं। ओम शांति। आज है 11 अक्टूबर 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2012 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा कहे, आज विशेष स्नेह का दिन है और आज अमृत वेले से दिल के स्नेह के मोतियों की माला लेकर सभी बच्चे वतन में पहुंच गए थे। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नैनों से, मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे थे। बाप दादा हरेक बच्चे को देखते हुए कैसे बाप बच्चों के लौ में लीन थे और बच्चे बाप के लौ में लीन थे। फिर आज के दिन का महत्व बाबा ने बताया कि 18 जनवरी का महत्व क्या है। आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे, साथ ही बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ता रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया, स्वयं बैकबोन बने, बच्चों को विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष किया और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख, जो जिम्मेवारी दी उसकी रिजल्ट को देख, बच्चों पर बहुत बहुत खुश है और दिल से मुबारक भी दे रहे हैं। विश्व सेवा के वरदान प्रमाण हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से सेवा की है। अभी बाबा समय अनुसार ये भी देखते हैं कि बच्चों में बहुत उमंग है
कि बाप को प्रत्यक्ष करना है। दुनिया के आत्माओं के दिल में भी धीरे धीरे ये आने लगा है, समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है, अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते हैं वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। अब बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को उमंग उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। क्यों? क्योंकि सभी का वायदा है, साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाया। इतनी जिम्मेवारी होते भी न्यारा प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह रहा। तो बाबा भी यही देखना चाहते हैं कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना है और बनाना है, संपन्न बनना और बनाना। और उसके लिए बाबा कहे, एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। बाप दादा की तो यही आश है कि हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा हो। फिर बाबा स्मृति दिलाते हैं पिछले लगातार दो तीन मुरलियों से जो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, इसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाबा कहते हैं दो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत की अपने प्रति विधि बनाए। आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। बाबा कहते कहा है ना, मन जीत जगत जीत। तो मन मनाभव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। संकल्प समय दोनों से व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। बाप दादा का इशारा है। क्या इशारा देते बाबा? कि अभी डबल राजा बनो, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। क्यों? क्योंकि अभी कर्मातीत बनना है, समय समीप आ रहा है, तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है, सदा स्वराज्य अधिकारी। तो दो बातें बाबा ने जैसे विशेष अंडरलाइन कराई, जब दो कार्य बाप दादा ने दिया, ये दो मास स्वराज्य अधिकारी कहां तक रहे, और दूसरा मन

बाप दादा भी एक्स्ट्रा सहयोग देगा। अब समर्थ बन, वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। कभी भी कोई भी बहन अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। पांडव से पांडव पति साथ है। फिर बाबा कहे, एक दो के सहयोगी बन, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। कर्म योगी स्थिति, उसमें विशेष अटेंशन ज्यादा होना चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 18 जनवरी 2012 को सुनाए थे, जिसमें आज विशेष बाप दादा हर एक बच्चे के लगन को भी देखते हैं, साथ में तीव्र पुरुषार्थी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है, सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन, वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ, मन जित बन, आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है, चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं। 18 जनवरी माना ही स्नेह का दिन, तो सभी बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं। आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन है? बाबा पूछते हैं, आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन है? आज अमृत वेले से चारों तरफ के बच्चे अमृत वेले से भी पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। बाबा कहते, अमृत वेले से पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन के भावों को बाप के आगे अर्पण कर रहे थे। आप जानते हो, बाबा कहते, आप जानते हो कि बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। हाँ, कोई भी बच्चा कहाँ भी है, लेकिन बाबा बच्चों के स्नेह का भाव देखते हैं तो बाबा कहते हैं बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नैनों से, मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे थे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए। बाबा भी सबके स्नेह के भाव को देख करके सभी के स्नेह में समा गए और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे थे। बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लव में लीन थे और बच्चे बाप के लव में लीन थे। बच्चे बाप के लव में लीन थे और बाप बच्चों के लव में लीन थे। आज का दिन, आज का दिन का विशेष महत्व क्या है उसको बाबा स्पष्ट करते हैं। आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया, स्वयं बैकबोन बने, बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया और बाप दादा अभी बच्चों

इस सेवा को देख, जो जिम्मेवारी दी उसके रिजल्ट को देख, बच्चों पर बहुत बहुत खुश है और दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा, क्या देखा बाबा ने? अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी के वरदान प्रमाण हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से सेवा की है और कर भी रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी, हर एक बच्चे के दिल में लगन है मेरा बाबा, और बाप के दिल में स्नेह है वह मेरे बच्चे। बाबा ने रिजल्ट में भी देखा कि हर एक बच्चे के दिल में लगन है मेरा बाबा, और बाप के दिल में स्नेह है वह मेरे बच्चे। वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है। बाबा ने यह भी देखा कि मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है। क्या उमंग है? कि अभी जल्दी से जल्दी चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। यह उमंग, यह उत्साह बाप दादा ने चक्कर लगा के देखा कि बच्चों में ये उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। छोटे बड़े सेवा केंद्रों के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत बहुत बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। वरदान भी मिल गया कि आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा आज स्नेह के दिन चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को अपने दृष्टि से, दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल का स्नेह याद प्यार पदम गुना दे रहे हैं। बाबा भी पदम गुना याद प्यार और स्नेह दे रहे हैं। अभी समय अनुसार क्या चाहते हैं बाबा? अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। बाबा ने ये देखा कि जो बच्चों का उमंग है वो धीरे धीरे बाहर की आत्माओं में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले तो समझते थे पता नहीं ये क्या करते हैं, अभी यहां तक आए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है, यहां तक तो जरूर आए हैं। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को, चारों और जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? पूछते बाबा, अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी, अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है। तो बाप दादा की चाहना क्या है? कि अभी ऐसा पुरुषार्थ करें जो सब बाप समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि अभी हम सभी रिटर्न जर्नी पर है। समान फरिश्ता बनना ही है, क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे।
ये वायदा है बाबा के साथ। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता बन गया तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तेपन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है, लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा न्यारा और प्यारा रहा। जिम्मेवारी संभालते हुए भी ब्रह्मा बाबा न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिकर बादशाह रहा। फिकर नहीं, बेफिकर बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिकर बादशाह फरिश्ता बनना ही है, ये दृढ़ संकल्प है। बाबा कहते ये अंदर में दृढ़ संकल्प हो ये बनना ही है, कि ये सोचते हो बन ही जाएंगे। बाबा के क्या है, बनना ही है या सोचते हैं कि बन ही जाएंगे? अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थ बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना, इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में क्या करना है, तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। बाबा कहे एक दूसरे के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आशा रखते हैं। क्या आशा है बाबा की? कि यह लहर वायुमंडल में फैले, तीव्र पुरुषार्थ की लहर वायुमंडल में जरूर फैले। बाप दादा खुश है, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने ये देखा कि अभी भी बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहे तीव्र पुरुषार्थ करना है अभी हर बच्चे में। बाप दादा की यही आश है कि हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा, ऐसे सितारा हो जो समझते हैं हम बाप की आशाओं के सितारे बन ये उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे। वह हाथ उठाओ। देखा बाबा ने, सबने हाथ उठाया तो बाबा कहते अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाप दादा हाथों को देख के खुश हो जाते हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, पीछे वालों का दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे वालों का दिखाई दिया। अभी पीछे वाले भी उठा रहे हैं तो बाबा हरेक को मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई दे रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा तीव्र पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन क्या अटेंशन रखना है? अभी बाबा उस तरफ हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं तो बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। जब कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो साकार में वह कार्य अच्छा हो जाता है। इसीलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में ये होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क दे रहे हैं? कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी
कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है। बाबा इसी दो बात पर लगातार दो तीन मुरलियों से हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, समय और संकल्प को वेस्ट नहीं जाने देना है। तो इसीलिए बाबा कहे उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा ये होमवर्क देना चाहते हैं कि ये दो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत की अपने प्रति विधि बनाए। कोई ऐसी विधि बनाओ बचत की स्वयं के प्रति। इन दो मास में बाबा दो मास का समय देते हुए कहते हैं, इन दो मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। बाबा कहे अभी विशेष मनसा शक्ति के ऊपर कंट्रोल भी करना है और अटेंशन देना है कि मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है, क्या कहा हुआ है, मन जीत जगत जीत, मन जीत जगत जीत। तो मन मना भाव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को समाप्त करना है। कर सकते हैं पूछते बाबा, कर सकते हैं, करेंगे वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपनी रिजल्ट आप देखना, खुद ही अपनी रिजल्ट देखना है। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। इस बात के ऊपर विशेष बाबा अंडरलाइन कराते हैं, मन जीत जगत जीत, अर्थात मन मनाभव के वायुमंडल से मन के व्यर्थ को समाप्त करना है और मन खुश तो मन की खुशी सबको बांटेंगे। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। संकल्प समय दोनों से व्यर्थ समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। जितना समर्थ संकल्प होगा उतना बाबा कहे आने वाले समय में वो वायुमंडल में फैलेगा। बाप दादा एक बात पर बच्चों को देख खुश है, कौन सी बात को देखकर खुश है, कौन सी बात पर, कि हर बच्चे ने सेवा तो की है लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो, जानते हो ना डबल राजा माना, कौन सा डबल राजा, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। दुनिया में कोई बाप ऐसा नहीं होगा जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी यानी सेल्फ डिसिप्लिन में हो। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना, स्व पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं राज्य अधिकारी। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे, कभी कभी नहीं। बन सकते हैं
पूछते बाबा बंस।